0: यही जानकारी नहीं मिल रही।
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त।
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर।
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है। दोस्तों आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा मैम। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद उमा, और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
0: मैम जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
6: हाँ बिल्कुल, जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुर्छिया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल को लगाते हैं, और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है। लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछवा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये।
0: तो मैम ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है।
6: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा, और उसी तरीके से साथ साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों जो पत्ते के किनारे किनारे से। ठीक है, उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है जिसमें हमारा दाना बनता है वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
0: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
6: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो, खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको अपने पौधों पर नज़र आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज़्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
0: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मैम, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
6: हाँ बिल्कुल, तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तिला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तिला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जाकर के देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज़ करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तिले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तिला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है। तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी, एक लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप एक से डेढ़ लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर लेकर के आप एक लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तिले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल, उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले या आप सूर्यास्त के बाद। जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई, इवन हम जो वैज्ञानिक है, वो भी हमें छिड़काव करना रहता है तो हम 4 बजे शाम के बाद ही करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ता है बीमारियों का रोकथाम में।
7: तो मैम यानी कि जब अधिक तापमान हो दोपहर हो तब छिड़काव नहीं करना चाहिए।
6: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि जब मॉइस्चर स्ट्रेच हमारे फील्ड में बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है। तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
7: जी मैम, तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
6: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही है किसान, जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी, तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया। तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहाँ पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफ़ेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे, जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफ़ेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी। फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहाँ पे भी ये लोग सेम सफ़ेद की वैरायटी में GT5 वहाँ पे लगा रहे थे, वहाँ पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है, और सफ़ेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जाकर के हमने सर्वे किया, तो वहाँ पे जो ज़्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है 1-2 जगह पे लगाया, खरीफ में तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज़्यादातर लोगों ने GT5 लगाया, और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है। काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं, जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था। इस पर्पज से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की, आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया तो काले तिल के अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था, मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा।
7: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम,
6: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
7: जी मैम, तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
6: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाएं, या अगर आपको दिख जाए बीज उपचार करके नहीं लगाया आपके 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तीले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तीला का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
7: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद उमा।
7: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
8: उन्नत कृषि।
9: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
10: कब से?
9: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
10: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
9: खांसी?
10: हाँ।
9: इसको तो एक आध महीना हो गया।
10: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
9: डॉक्टर, खांसी तो है।
10: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
9: टीबी?
10: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
9: ठीक है।
10: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: भी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 4 सितंबर से 8 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्व हवा चलेगी। कमजोर मानसून को देखते हुए एक सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU 8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगा है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की पहचान होती है कि उनकी मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर या लाल चना की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, इसके साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें और उन्हें संतुलित आहार दें। आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। और नाम से पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करके मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर उन फूलों के पौधे खेत में होते हैं तो कीटनाशकों का आपको कम प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गेंदा के पौधों की बात करें तो सूत्रकृमि, जिसे कि नेमाटोड भी कहते हैं, या फिर कुछ और भी कीटों के प्रबंधन में काफी उपयोगी माना जाता है। वैसे ही सूरजमुखी और गेंदा जैसी और भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो मिट्टी की हानिकारक नेमाटोड के प्रबंधन में बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी होती है। और कुछ ऐसे भी फूलों के पौधे होते हैं जो लाभकारी कीटों को, जो कि फसलों को, मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप अपने मुख्य फसलों के साथ फूलों के पौधों को लगाएं, तो आपको आय तो मिलती ही है, साथ ही आपके फसलों को आप कीटनाशकों से बचाते हैं और आप मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। और जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों से हमें लगता है कि कितना ही आय हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा, तुरंत मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि एक रास्ते पर चलने से आपको नुकसान होगा तो आप कई सारे रास्ते खुले रखिए। और जब फूलों की खेती की बात आती है तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन के बारे में। किसान भाई बहनों और जो भी हमारे श्रोता है, आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आय का। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में भी फूलों की बहुत ज्यादा मांग है, हर तरह के फूलों की मांग है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ताजे, सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन कर आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं या आय का एक नया जरिया बना सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह से। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापक उद्यान पुष्प एवं भूदृश्य विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत फूलों के मूल संवर्धन के बारे में।
0: जी मैम, तो मैम जब हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करते हैं तो फूलों का, पुष्पों का मूल्य संवर्धन क्यों जरूरी होता है?
1: देखिए, ताजे फूलों एवं पत्तियों में अधिक नमी होने के कारण इनकी आयु सीमित होती है, जिससे हम अधिक समय तक इन्हें भंडारित नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए फूलों को मूल संवर्धित करने की तकनीक काफी महत्वपूर्ण है, जिससे हम फूल की सुंदरता को काफी समय तक सहज कर रख सकते हैं।
0: जी मैम, तो अगर हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करें तो मूल्य संवर्धन के कितने वर्ग होते हैं?
1: देखिए, प्रायः तीन तरीके के फूलों को हम मूल संवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ताजे फूलों का मूल संवर्धन। अगर हम फूलों को बाजार में बेचने ले गए हैं और कुछ फूल बच गए हैं, तो वहीं बैठे बैठे हम उनसे कुछ ताजे फूलों में थोड़े सा कुछ ऐसे लगा के उनको मूल संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। दूसरा वर्ग हमारा ऐसे फूलों का होगा, जैसे कि फूलों को हम सुखा लेंगे और सूखे फूलों से हम कई तरीके के उत्पाद बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग। और तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो फूलों को या तो हम ठंडे पानी या गर्म पानी में उबालकर, पीसकर या उसमें किसी भी तरीके से प्रसंस्करण करके हम मूल संवर्धित उत्पाद बनाएंगे, तो ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया प्रसंस्कृत फूलों का मूल संवर्धन।
0: पहले वर्ग के साथ मैम शुरू करते हैं, तो क्या फूलों के मूल्य संवर्धित उत्पादों की जब हम बात करते हैं
1: जी,
0: तो ताजे फूलों के मूल्य संवर्धन द्वारा कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: देखिए, ताजे फूलों से हम गुलदस्ता, मालाएं या जैसे गजरा, वेनी या फिर साज सज्जा के रूप में भी इन फूलों में, जैसे जो आजकल हम शादी ब्याह में डेकोरेटिव डेकोरेशन के चीजें देखते हैं, तो ये साज सज्जा भी की जा सकती है। तो आजकल जैसे शादी ब्याह बहुत ही आधुनिक हो गया है और इसमें सिर्फ मंडप ही नहीं, अपितु इसमें हम बात करें तो गाड़ी, पंडाल या यहाँ तक कि घर के अंदर की भी सजावट की जाती है। वहीं फूलों से बनी हुई रंगोली और मेहंदी और हल्दी जैसे फंक्शंस में फूलों से बने गहने भी बहुत डिमांड में हैं। जो इस तरीके के उत्पाद हम ताजे फूलों से तुरंत के तुरंत बनाकर कर सकते हैं
0: जी, अगर फूल बच गए तो उसका इस्तेमाल करें
1: जी।
0: तो मैम क्या पुष्पों के, जब हम मूल संवर्धन उत्पादों की बात करते हैं, अभी आपने अलग अलग अवसरों के बारे में बताया, तो शोका कुल अवसरों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है। जैसे उल्लासित अगर अवसरों की बात करें तो वहां तो हम बुके देते हैं या गुलदस्ता भेंट करते हैं, पर अगर हम शोका कुल सभाओं की बात करें तो वहां भी हम एक कीपाकार गुलदस्ता या तिकोनाकार या गोलाकार गुलदस्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में रीथ बोलते हैं। प्रायः इनमें हम हल्के वर्ण के फूल, क्योंकि शोक है तो हल्के सफेद से लेकर हल्के रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, और जितने ही फूल तो उतनी ही पत्तियां भी इस्तेमाल करके इनका आकार दिया जाता है। और आजकल जैसे कि कह लें कि इसमें खास बात यह है कि फूलों के साथ इसमें पत्तियां भी जो इस्तेमाल होंगी तो वो बड़ा अच्छा लुक देती हैं, मतलब फूलों के साथ उनका कंट्रास्ट इफेक्ट आता है। मेनली जैसे कि फूल हो गए गुलाब, कार्नेशन, ग्लैडुलस, एस्टर, लिली, या पत्तियां हो गई जैसे साइकस, ताड़, फर्न, इनको हम प्रयोग करके बहुत अच्छे रीथ्स बनाते हैं, और ये रीथ्स बुके के मुकाबले काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं, तो इनका भी शोका कुल सभाओं में प्रयोग होता है। और वहीं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे में गुलाब का तेल या तुलसी का तेल या इनके पौधे बगीचे में होना भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि ये भी हमारे एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं। इनसे जो निकलने वाली खुशबू होती है ये एरोमा थेरेपी में भी बहुत काम आती है।
0: जी मैम, मैम जब हम फूलों से साज सज्जा की बात करते हैं तो क्या इस वक्त हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है?
1: जी, बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि सामान्यतः फूलों की साज सज्जा के मिश्रण में हल्के रंगों की अपेक्षा गहरे रंग अधिक इस्तेमाल होते हैं, बट वहीं पर जैसे मैंने बताया शोका कुल में आप हल्के रंग इस्तेमाल करेंगे। और फूलों के संयोजन में क्या होता है कि कलियों को प्रायः हम किनारे की ओर रखते हैं, और जो भारी फूल होता है उसे हम, या चटकीले रंग का फूल होता है उसे हम सेंटर पर रखते हैं। प्रायः हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि फूलों के अधिक रंग या अधिक तरीके के फूलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके के फूलों का ही इस्तेमाल करके हमको गुलदस्ता या साज सज्जा करनी चाहिए। और वहीं पर कृत्रिम रोशनी अगर है तो हल्के रंगों की जगह गहरे रंग इस्तेमाल करने चाहिए, और नेचुरल लाइट में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फूलों को यदि पात्र में रखना हो तो फूलों की लंबाई पात्र से कम 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। और प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए हमें प्रायः लचीली टहनियाँ या लटकने वाले क्लाइंबर जो फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अभी हमने बात करी थी कि गाड़ी को जब हम शादी ब्याह के लिए सजाते हैं तो उसमें भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे गाड़ी के रंग से विपरीत हो, तभी वो निखर के आएगी उसकी सजावट। और यदि कार को बहुत दूरी तय करनी है तो हमको फूलों की डंडियों के नीचे गीली फोम का इस्तेमाल करना चाहिए। और कम खर्चे में अगर गाड़ी को सजाना है तो छोटे छोटे बटन होल का प्रयोग करना चाहिए। अधिक खर्चे में भी हमें भारी भरकम सजावट से बचना चाहिए ताकि गाड़ी चलाने में कोई असुविधा ना हो। और प्रायः सफ़ेद गाड़ियों के लिए हमें रंग बिरंगे फूल जैसे ऑर्किड, जरबेरा या गुलाब, या फिर हरी चटकीली पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही में इनके रिबन या हल्के नेट या फ्रिल को इस्तेमाल करके भी हम गाड़ी को सजा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम रंगों पर सही ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी सजावट निखर के आएगी।
0: जी मैम, मैम अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम सूखे फूलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो वो किस प्रकार किया जा सकता है?
1: देखिए, यहाँ पर फूलों को सुखाकर फिर हम अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ये जो उद्योग है ये बड़ा नवीन उद्योग है, क्योंकि इसमें हम सूखे फूलों को उनके ढांचे के बिगाड़े बगैर या उनके नेचुरल प्राकृतिक रंग को संजो के सुखाते हैं, एवं अन्य विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि हो गई आपकी फ्रेम जड़ित तस्वीरें, बधाई कार्ड, कवर या पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड या शीशे की कटोरी में बने हुए पेपर वेट, ऐसे बहुत तमाम इस तरीके के उत्पाद हैं जो हम सूखे फूलों से बना सकते हैं। ये उत्पाद टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल भी, और अन्य उत्पाद जैसे जो और उत्पाद हैं टू डायमेंशनल में वे हैं ग्रीटिंग कार्ड या फिर पॉट पोरी या फिर आपका वॉल हैंगिंग हो गया, पुष्प विन्यास हो गया, या थ्री डायमेंशनल में गुलदस्ता, पेन स्टैंड, इस तरीके के उत्पाद हो गए जो होटलों और मॉल में बहुत मांग में हैं। साथ ही ऐसे उत्पादों से जो खाली बैठी घर में महिलाएं हैं या कोई भी वर्ग है वह इसका बहुत फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। इसमें हम कबाड़ का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जो कबाड़ है उसके साथ खराब फूलों को सुखाकर उनसे उत्पाद बनाते हैं, और वहीं इनकी डिमांड अधिक होने के कारण इनकी जो बिक्री

0: सकते हैं, या फिर जो बचे हुए फूल हैं उनको सुखाकर पाउडर बना के मुर्गी के दानों में मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो होता है क्या है, अक्सर इसके लिए गेंदा का प्रयोग किया जाता है, जब डेकोरेशन के बाद जो फूल गेंदा के बच जाते हैं तो उनको पीस कर, क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड और भी पिगमेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये मुर्गी की आँखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अंडे के पीले भाग को और रंग प्रदान करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके के उत्पाद बनाकर भी हम काफी लाभ कमा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम उबाल कर या पका कर बात करें तो इससे हम गुलकंद या फूलों से बनी हुई चाय या सौंदर्य आइटम जैसे हो गए क्रीम, शैम्पू या गुलाब जल, ये भी बना सकते हैं।
1: जी मैम, तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को एवं अन्य श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि फूलों से, अगर आप फूलों से खेती करेंगे तो बहुत इससे फायदा है। फूलों से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमी अधिक है, बस इस नमी को यदि हम कंट्रोल कर लें और इससे मूल संवर्धित उत्पाद बना लें तो किसान भाई बहन या उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या शारीरिक कमज़ोर से भी अगर कोई मेंबर है तो वो घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे उत्पाद बना सकता है जिनकी भारी डिमांड है और इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है।
1: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि किस प्रकार से ताजे सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, फूलों की खेती से न केवल आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अंततः फायदा इससे हमें ही होता है। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना

0: 90.8 ग्रीन एफएम पर। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
0: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। साथ ही अपने फसलों की भी अच्छी निगरानी कर रहे होंगे। जब हम अपने फसलों की निगरानी करते हैं तो उसमें खरपतवार दिखते हैं और ये किसान भाई बहनों के लिए बड़ी चिंता का सबब होते हैं। खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन खरपतवार नाशी कई बार गहरे प्रभाव भी छोड़ते हैं और ये प्रभाव नकारात्मक होते हैं, यानी कि अन्य फसलों पर भी प्रभाव देखा जाता है। तो बदलते वक्त के साथ खेती गृहस्थी भी थोड़ी बदली है और चीजें आसान भी हुई है। खेती गृहस्थी को आसान बनाने के लिए कुछ नई चीजें भी आ रही है। उन्हीं में से एक है नैनो हर्बिसाइड्स, यानी कि नैनो शाकनाशी या नैनो खरपतवार नाशी। और इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। तो आइए आज के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं नैनो हर्बिसाइड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
0: सर। आपसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि नैनो शाकनाशी क्या है?
3: यह जो है आज के परिप्रेक्ष्य में आपका जो प्रश्न है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो अभी का जो समय चल रहा है, जो परंपरागत खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी के चलते अभी जो रिसर्च के द्वारा नए चीज आए हैं किसान भाइयों के लिए, जिसे कि हम नैनो शाकनाशी भी कहते हैं, नैनो खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में नैनो हर्बिसाइड भी बोलते हैं। यह एक खरपतवार नाशी है जिसे नैनो तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें कि खरपतवार नाशक तत्व जो होते हैं लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के भीतर समाहित रहता है, या नैनो कण के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक कुशल एवं लक्षित होता है और इसे ही नैनो खरपतवार नाशी कहा जाता है।
0: तो नैनो खरपतवार नाशी किसे कहा जाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन पहले से बाजार में बहुत सारे खरपतवार नाशी मौजूद हैं, नैनो खरपतवार नाशी की क्या जरूरत है सर? अभी इसका महत्व क्या है?
3: यह जो परंपरागत जो हम यूज करते थे, जो प्रयोग में लाते थे हमारे किसान भाई जो खरपतवार नाशी, उसके तुलना में अभी जो यह नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खरपतवार नाशी है, यह जो है ना, इसका बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करते हैं, मतलब कि यह एकदम जो है ना टू द पॉइंट, जहां पे हमको यूज करना है वहां पे यह काम करता है। और परंपरागत जो हम यूज करते थे उसके तुलना में यह अत्यधिक कुशल भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक रसायन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है। और इससे भी अधिक जो इसका महत्वपूर्ण चीज़ है अभी के परिपेक्ष में, जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यह जो नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खर पतवार नाशी है, यह जो है ना पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होता है, मतलब अवशेष मात्रा इसका कम होता है। और भी देखें, साथ ही साथ तो यह नियंत्रित रिलीज प्रदान करता है जिससे कि मात्रा जो है ना कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो है ना जो आगे जो भी फसल भी आएंगे उसके लिए भी यह जो है ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और यह उपयोग की मात्रा भी अगर देखें तो परंपरागत के तुलना में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। ऐसे समझा जाए कि लगभग दसवां हिस्सा हम लोग यूज करते हैं परंपरागत के तुलना में। और यह धीरे धीरे भी काम करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो है ना टारगेट डिलीवरी होता है, इसीलिए यह जो है ना धीरे धीरे काम करता है। और भी देखें तो बीज का जो छिलका होता है उसमें भी जो खरपतवार नाशी पौधे के जो बीज होते हैं, कुछ कुछ बीज बहुत कठोर होते हैं, उस कठोरता के में भी यह जो है ना बहुत आसानी से जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो बहुत सारे जो परंपरागत खर पतवार नाशी हैं उससे जो है ना प्रतिरोधी क्षमता आ रहा है, तो उसको भी जो है ना उसको भी अगर हम देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम नैनो खर पतवार नाशी का प्रयोग करें तो अच्छा है। और साथ ही साथ पौधे के विकास में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। उसके बाद है कि जो नीचे का पानी जो लेवल था परंपरागत खरपतवार नाशी से दूषित हो रहा था, तो उसके दूषित जो प्रभाव है इसके उपयोग से कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इससे इसके चलते जो कृषि की पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत संभावना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है ना किसानों की आय दुगुनी करें। तो उसमें हम समझते हैं कि यह जो है ना टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय है अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने के कगार पे है। और ओवरऑल देखेंगे, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो है ना स्वास्थ्य पर भी जो है ना चूँकि कम प्रभाव होगा, चूँकि इसका जो है ना रेसिडुअल इफेक्ट अवशेष का जो प्रभाव है कम है, तो इससे कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
0: तो सर अभी जैसे कि आपने बताया तो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत कम मात्रा में और अवशेष भी कम छोड़ता है, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी इतने फायदे इसके होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बताइए।
3: जी यह क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी उसमें भी हमने अभी बात भी किया, उसी में है कि यह जैसे सबसे जो पहला और जो प्रथम इसका जो यह है नैनो खर पतवार नाशी का, यह पूरा लक्षित जो करता है यह जो है ना लक्षित क्रिया द्वारा काम करता है, कि मतलब हमको जहाँ पे डालना है वहीं पे भी जाता है, जिससे कि जो है ना जो खरपतवार नाशी जो पौधे के विशिष्ट भाग होते हैं जैसे बीज है या प्रकंद है, तो उसके जो है ना सभी अंगों में यह आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो है ना आकार हमने जैसा कि बताया था इसके परिभाषा में भी कि इसका जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसके चलते यह जो है ना पूरा जो है ना लक्षित करके जाता है और उसके लगभग सभी भागों को यह लक्षित करता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है ना इसका प्रवेश भी बहुत बेहतर तरीके से होते हैं, जो हम परंपरागत यूज करते थे चूँकि उसके साइज में अंतर था लेकिन इसका साइज छोटा होता है, तो इसका जो है ना जो है ना प्रवेश भी बहुत बेहतर होता है। और साथ ही साथ प्रवेश बेहतर के साथ साथ जो इसका जो ऊपर का सतही क्षेत्रफल जितना छोटा कण होगा उसका उतना ही सतही क्षेत्रफल भरा होता है, तो इसके चलते क्या होता है कि यह बड़ा प्रभावी होता है, क्योंकि वह जो है ना उसका जो कार्य क्षमता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सतही का जो क्षेत्रफल है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा क्या है कि यह जो रासायनिक संजय और बहाव को कम करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका जो है ना अवशिष्ट कम होता है, तो इसलिए जो है ना यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो इस तरह से यह जो है ना यह तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह जो है पूरा लक्षित होकर काम करता है, बेहतर ढंग से प्रवेश करता है और रासायनिक संजय के अवशिष्ट को जो है ना वह कम करते करते हुए अपना टिकाऊपन बनाए रखता है।
0: मतलब सबसे बड़ी बात है कि लक्षित होकर काम करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है
3: जी,
0: कि
3: जी,
0: जिस चीज को खत्म करना है ये उसी को खत्म करता है और अवशेष भी नहीं रहता।
3: जी, जी।
0: सर काम कैसे करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन नैनो हर्बिसाइड को बनाया कैसे जाता है?
3: तो इसका जो है बनाने का जो तरीका है तो मुख्यतः दो तरह से इसको बनाए जाते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्ट नैनो कण का उपयोग करते हैं, लोग बोलते हैं डायरेक्ट नैनो कण, और प्रत्यक्ष रूप से जो कि हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे चीज हैं जो डायरेक्ट खरपतवार नाशी की तरह काम करते हैं और उसको जो है ना नैनो रेंज में हम ला के उसका उपयोग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि नैनो कणों को समाहित करके भी हम बनाते हैं। इसमें जो है ना जो परंपरागत जो अपना खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ समाहित करके भी हम इसका बनाते हैं, जिससे कि इसका जो है ना कार्य क्षमता में जो है ना कई गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो नैनो जो कण होते हैं या छोटे छोटे हैं होते हैं इसका कार्यशीलता बहुत ज़्यादा होता है, सतह का जो जो ऊर्जा है वह भी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद सतह क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि परंपरागत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है कि अब दो जो दो प्रकार है बनाने का, उसमें जैसे कि प्रत्यक्ष जिसमें नैनो कणों का हम उपयोग करते हैं उसमें जो परंपरागत जो सक्रिय अवयव होते हैं वह उसको जो है ना नैनो रेंज में स्केल में डिलीवरी सिस्टम में शामिल किया जाता है, इससे क्या हो जाता है ना इसका जो है ना प्रभावशीलता बढ़ जाती है और पर्यावरण का कि पे जो है ना जो बुरा प्रभाव है वह कम हो जाता है। और तीसरा जो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा भी पहले भी किया कि जो यह टारगेट होता है और कंट्रोल रिलीज होते हैं, हम आपको जो इसमें जो है ना जो हम प्रयोग करते हैं वह बहुत लक्षित तरह से होता है और इसका नियंत्रण जो हम रिलीज का नियंत्रण है वह भी बहुत प्रभावी होता है। साथ ही साथ जो हमने चर्चा किया था कि इसका उपयोग जो है ना जो धीरे धीरे जो होता है ना तो इसको जो है ना कि जितना जहाँ जिस पौधे को चाहिए उस तरह से काम करके या जो है ना अपना कुशलता से उस पौधे को नाश करने में या खरपतवार नाशी को हटाने में बहुत भूमिका निभाती है। और जो दूसरा जो है नैनो कण समाहित जो करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जो बहुत ही जो उपयुक्त होता है जैसे पॉलीमर जो यूज होता है पॉलीमर आधारित जो हम लोग बाहक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पॉली के प्रेक्टो पीसीएल जो यूज करते हैं यह जो है ना बहुत ही उसके लिए जो है ना कंफर्टेबल होता है जो है ना बहुत उसके लिए सहयोगपन का काम करता है। दूसरा है कि मिट्टी के आधारित पे भी हम लोग बाहक का यूज करते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्ले वेस्ट बाहक, तो उसमें उसका खासियत यह है कि जो क्ले हम यूज करते हैं वह तो ऑलरेडी प्राकृतिक चीज़ है, हम उसमें वहाँ रसायन का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से भी इसकी जो है ना महत्ता और भी बढ़ जाती है चूँकि यह प्राकृतिक रूप से हम इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए क्या होता है कि इसमें खर्च जो है ना कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, क्योंकि जो है ना अच्छे गुणवत्ता अगर हम मिट्टी क्ले को यूज करते हैं तो उसमें भी जो है ना नैनो कण को समाहित करने में बड़ा अच्छी भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जो है ना इसमें क्या होता है कि सोखने की भी क्षमता बढ़ जाती है।
0: अच्छा
3: जी, जिसमें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है ना और भी है जैसे सिलिका आधारित बाहक है जिसको कि मेसोपोरस सिलिका नैनो कण भी बोलते हैं, उसी तरह कार्बन आधारित बाहक होते हैं जिसमें कि मुख्यतः जो है ना तेल वगैरह का भी जो है ना यूज करते हैं, तो इसमें जो है ना जो मुख्य जो चीज होते हैं इसमें जो है ना कार्बन होते हैं और कार्बन से जो संबंधित है जैसे ग्राफीन वगैरह होता है उसका जो है ना उपयोग जो है ना बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना दो इसका मुख्य तरीका है बनाने का कि जिसमें कि हम नैनोकण को हम जो है ना प्रत्यक्ष रूप से हम यूज करते हैं, दूसरा नैनोकणों को डिफरेंट तरह के पॉलीमर में या क्ले या सिल्का वेस्ट वाहक में उसको समाहित करके जो है ना अपना जो खरपतवार नाशी है उसको यूज करके बनाने से क्या होता है कि इसकी जो है ना कार्य क्षमता जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते
0: हैं। सर आपने बताया कि इसे कैसे बनाया जाता है, दो प्रकार से इसे बनाया जाता है
3: जी।
0: और दो प्रकार से बनाया जाता है तो इसके प्रकार भी कई तरह के होते होंगे
3: जी, जी।
0: तो नैनो हर्बिसाइड्स कितने प्रकार के मौजूद हैं?
3: अच्छा अच्छा जी, यह जो है ना मुख्यतः अगर अगर देखेंगे तो यह तीन तरह के होते हैं, जैसे कि पहला इसको बोलते हैं कार्बनिक खरपतवार नाशी, दूसरा अकार्बनिक खरपतवार नाशी, और तीसरा है जो है ना संयुक्त नैनो खरपतवार नाशी। तो यह जो है ना जो तीनों का जो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कार्बनिक खरपतवार नाशी के रूप में जो नैनो खरपतवार नाशी होता है इसमें मुख्यतः मुख्य चीज़ जो होता है ना कार्बनिक चीज़ का उपयोग किया जाता है, जैसे तेल वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो जिससे कि इसकी जो है ना क्षमता में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे इसका जो है ना उपयोगिता बढ़ता है। तो और दूसरा है कि कार्बनिक खरपतवार जो नाशी होता है इसमें हम लोग मुख्यतः जो धातु युक्त जो है ना नैनोकण होता है जो बहुलता से मिल जाता है वैसे नैनो खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जिससे कि इसमें जो इसकी खासियत क्या है और कार्बनिक खरपतवार नाशी का इसमें जो धातु कण यूज करते हैं ना तो उसमें जो है ना छिद्र पोरस चीज होता है और उसमें जो पोरस में आसानी से जो अपना परंपरागत जो खरपतवार नाशी जैसे एट्राजिन है, सेमाजिन है, ग्लूफोसाइनेट है, ग्लेफोसाइनेट है, तो यह सब जो है ना बहुत आसानी से उसमें समाहित हो जाते हैं, इससे इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो तीसरा है इसको संयुक्त नैनो शाकनाशी भी बोलते हैं, तो इसमें दोनों तरह के चीज यूज करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक।
0: अच्छा,
3: तो यह देखते हुए कि कहीं दोनों के उपयोग से इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाए तो तीसरा जो है ना संयुक्त नैनो शाकनाशी का भी इसमें यूज होता है, इसमें संयुक्त रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिला रहता है। और उदाहरण तौर पर जो हम लोग यहाँ एक आया है जैसे है ना बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो यह जो है ना जो हर्बिसाइड का उदाहरण है नैनो हर्बिसाइड का जो कि बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो इसमें जो है ना किसान भाई लोग इस तरह के जो है ना नैनो हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। उसी तरह जो है ना PCL जो है ना एटीजेन NPS है, PCL जो एक पॉलीमर है और एट्राजिन नैनो पार्टिकल बेस्ड है, उसी तरह PCL एमेट्रॉन है नैनो पार्टिकल है, PCL सिमाजिन्स नैनो पार्टिकल्स है, तो इसमें जो है ना दोनों तरह के इसमें जो परंपरागत जो खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ मिक्सित जब करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाता है।
0: मतलब बनाया दो प्रकार से जाता है लेकिन अभी जो मौजूद है तीन प्रकार के हैं, एक कार्बन बेस्ड है, दूसरा जो कि अकार्बनिक है, और तीसरा संयुक्त है जिसमें दोनों प्रकार के मिलाए हुए हैं। अब तक हमने नैनो खरपतवार नाशी से जुड़ी लगभग हर बात जानी है, लेकिन सबसे अहम बात जो किसान भाई बहन के लिए ज़रूरी होती है कि इसे उपयोग कैसे करेंगे, नैनो खरपतवार नाशी का उपयोग करने का क्या तरीका है, ये सर बताएं आप।
3: यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने बहुत चीज़ देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, यह है क्या, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका उपयोग
0: जी जी,
3: क्योंकि इसका उपयोग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो कण बहुत छोटा होता है, अपना जो सूक्ष्म जो मतलब इतने छोटे छोटे हैं अपने आँख से इसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और इसका उपयोग निश्चित तौर पर सुरक्षात्मक ढंग से ही करना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग किया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान भाई भावनात्मक में आके या किसी तरह के दूसरे को देख के भी जो है तो कभी कभी ज़्यादा यूज कर लेते हैं
0: जी, जी।
3: तो उस तरह से हमको बचना चाहिए, जहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा भी है तो इसके साथ सावधानी भी बरतने की उतनी ही ज़रूरत हो जाती है। और जो तीसरा जो है कि इसका जो उपयोग पौधों के सक्रिय चरणों के आधार पे करें तो और अच्छा होता है, कि जो पौधा जो खरपतवार जो पौधे होते हैं तो उसका जो विकसित जो जो पूरा सक्रिय फेज जो होता है अगर उस समय टारगेट करें तो जो है ना नैनो हर्बिसाइड या नैनो खरपतवार नाशी या जो है ना अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि उस फेज में यह बहुत एक्टिव तरह से काम करेगा, बहुत सक्रिय रूप से काम करेगा, जिससे कि उसमें जो है ना खरपतवार नाशी पे जो है ना बुरा इफेक्ट तो पड़ना है, पड़ना चाहिए ताकि वह पौधा मर जाए और जो अपना जो जो खाद्य पौधा है उसको जो है ना विकास व्यवहार अच्छा हो। और भी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यतः इसको जो है ना बहुत तरह से यूज करते हैं, लेकिन जो अभी तक देखा गया है कि इस जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, तो इसलिए किसान भाइयों को इसका उपयोग जो है ना स्प्रे तरह से करें तो अच्छा है। और जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका उपयोग तभी करें जब देखें कि हवा की बहाव नहीं है, अच्छा। उसमें बहाव होने से जो है जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि बहाव के साथ कुछ जो है ना खरपतवार नाशी जो नैनो खरपतवार नाशी है अपने खाद्य पौधे पे भी आ जाए तो उससे जो है ना उसमें हानि की संभावना है। तो हम यहाँ किसान भाई को ज़रूर यह चीज़ बताएंगे कि जिस समय हवा का बहाव कम हो और उस समय जो है नहीं करें तो यह ज़्यादा कारगर भी होगा और इसका हानिकारक जो प्रभाव है कम है। और किसान भाई जब भी यूज करें तो ज़रूर या उपयोग करें तो उस समय ज़रूर मुंह पे कुछ कपड़ा हो या जो मास्क है उसका यूज करें, क्योंकि यह हमने बताया था प्रारंभ में यह बहुत छोटे होते हैं तो जितना ही छोटा होगा तो हो सकता है कि उसका प्रभाव ही उतना ही होगा। और तीसरी और जो आगे की बात है कि किसान भाई अगर नहीं जानते हैं किसी तरह का कि हम कितना लें क्या करें तो जो परंपरागत हम यूज करते थे प्रयोग करते थे उसका जो है ना दसवां हिस्सा से
0: काम हो जाता
3: है। हाँ के तुलना में आप लें, अगर पहले एक लीटर लेते थे तो उसका दसवां हिस्सा 0.1 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना किसान भाई ध्यान में रखें इसका उपयोग और जब जरूरत हो तभी करें
0: जी।
3: हाँ जब जरूरत हो तभी करें और जरूर बुद्धिमत्ता को प्रयोग करके ही करें, भावनात्मक में दूसरे को देखा होसी करके किसान भाई इसका उपयोग नहीं करें, जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही करें।
0: तो मतलब नैनो खरपतवार नाशी बहुत फायदेमंद है लेकिन जितनी इसकी आवश्यकता होती है उतनी ही उतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए और हवा का बहाव ये भी ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही इसकी मात्रा कितनी है ये तो ज़रूरी है ही और मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि ये हमारे किसान भाई बहनों के काम आएगी और जो परंपरागत खरपतवार नाशी है उसका एक विकल्प है क्योंकि उसमें बहुत नुकसान भी होते थे तो उसका एक ये बेहतरीन विकल्प है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी,
3: धन्यवाद।
0: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। उन्नत कृषि
4: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
5: कब से?
4: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से
5: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बात।
4: खांसी?
5: हाँ।
4: इसको तो एक आध महीना हो गया,
5: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
4: डॉक्टर, खांसी तो है।
5: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
5: हाँ तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
4: ठीक है।
5: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवा सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
10: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
11: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
10: 11 दोस्त
11: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
10: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
11: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
10: लेकिन ऐसा क्यों?
11: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
10: टीकी, तो इसका हल क्या है?
11: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
10: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
12: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 4 सितंबर से 8 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्व हवा चलेगी। कमजोर मानसून को देखते हुए एक सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, आरयू 8, बाकुला इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरिबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगा है उन्हें बता दें तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की पहचान होती है कि उनकी मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर या लाल चना की खेती करते हैं उन्हें बता दे अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, इसके साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें और उन्हें संतुलित आहार दें। आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें, या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर, या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
5: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
9: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
10: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं, और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
9: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
10: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
9: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
10: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए, और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें, इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
9: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
10: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है, और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भूटा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
9: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
10: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी ढाई एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
9: और बुआई की विधि क्या?
10: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पछिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
9: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में। हाँ,
10: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप चॉइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
9: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
10: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें, और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
9: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
10: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पर अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भूटे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
9: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
10: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है। उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है। नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है, तो देने की जरूरत नहीं है।
9: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
10: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है। और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है। उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें, इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
9: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
10: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने 2 दवा बताया, सिर्फ 2 ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
9: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: धन्यवाद। धन्यवाद।
9: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि,
11: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
12: कब से?
13: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
12: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
13: खांसी?
12: हाँ।
13: इसको तो एक आध महीना हो गया।
12: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
13: डॉक्टर, खांसी तो है।
12: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
13: टीबी?
12: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
13: ठीक है।
12: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
0: कितने दोस्त हैं?
7: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
9: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
10: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
2: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 4 सितंबर से 8 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। कमजोर मानसून को देखते हुए एक सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की BLM 389, RU 8, बाकुला इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरीबेग सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगा है उन्हें बता दें तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की पहचान होती है कि उनकी मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर या लाल चना की खेती करते हैं उन्हें बता दे अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, इसके साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें और उन्हें संतुलित आहार दें। आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनिशाला में।
1: प्यारे बच्चों, आज मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन ये मजा सिर्फ बात करने का नहीं है, ये मजा तो कहानी कहने का भी है। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मजा आ गया। तो अब कहानी का नाम सुनकर ही आपके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि कहानी सुनने में आपको मजा आने वाला है ना? तो शुरू करें हम आज की कहानी। लीजिए, कहानी के चक्कर में मैं आपको ढेर सारा प्यार दुलार और नमस्कार कहना तो भूल गई। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार नमस्कार और लाड दुलार। तो आइए हम आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है मजा आ गया। पता है बच्चों, दो बच्चियां थीं, एक का नाम था तोसिया और एक का नाम था मिली। मिली और तोसिया दोनों बहनें हैं। तोसिया और मिली को एक पेड़ बहुत पसंद था, आम का पेड़, खूब बड़ा, खूब घना पेड़ और उस पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। वे उस पेड़ के पास रोज खेलने जाती थी, कभी छुपन छुपाई खेलती तो कभी पेड़ के तने से लिपट कर कोई गीत गाती। पता है बच्चों, उसी पेड़ पर एक चिड़िया और एक इल्ली रहती थी, उन्हें भी पेड़ पर बहुत मजा आता था। चिड़िया ने तो पेड़ के पत्तों में अपना एक घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में कई सारे छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन बच्चे अभी अंडे में ही थे, अंडे अभी फूटे नहीं थे, इसलिए बच्चे बाहर नहीं आए थे। एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन जोर से हवा चलने लगी। उस हवा की वजह से पेड़ कभी दाएं तो कभी बाएं झूलने लगा और पेड़ के झूलने के साथ ही इल्ली और चिड़िया का घर भी झूलने लगा, कभी दाएं तो कभी बाएं। इल्ली भी पेड़ के साथ साथ झूल रही थी। पता है, चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ गई और पेड़ फिर भी बहुत जोर से दाएं बाएं झूल रहा था। इल्ली को भी बहुत मजा आ रहा था पेड़ के साथ दाएं बाएं झूलने में। चिड़िया पेड़ के चारों तरफ उड़ने लगी और वह वापस अपने घोंसले में आ गई। थोड़ी देर में हवा रुक गई। चिड़िया को अपने घोंसले में आने के बाद बहुत राहत मिली कि चलो अच्छा है, हवा बंद हो गई और पेड़ का हिलना भी रुक गया। हवा के रुकने के साथ ही तोसिया और मिली फिर से खेल खेलने लगी। कभी वे लुका छिपी का खेल खेलती तो कभी वह पेड़ के चारों तरफ पकड़म पकड़ाई खेलती। उन्हें बहुत मजा आया पेड़ के चारों तरफ खेलने में। तो ये तो थी कहानी मजा आ गया। आपके भी ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे जब आपको बहुत सारा मजा आया होगा, अपने दोस्तों के साथ खेलने में, अपने भाई बहनों के साथ खेलने में और खूब सारी हवा का आनंद लेने में। जब बहुत तेज आंधी चलती है तो पेड़ पौधे भी हिलने लगते हैं और उन पेड़ पौधों पर जो जो चीजें होती हैं वे भी पेड़ के साथ साथ हिलने लगती हैं। तो उनके तो मजे आ जाते हैं, उनके लिए पेड़ का हिलना मतलब पेड़ का झूला बन गया और फिर चिड़िया हो या चिड़िया के बच्चे हो या इल्ली हो, सब पेड़ के साथ झूला झूलते हैं। तो ये तो कहानी थी मजा आ गया। अब हम एक और कविता सुनाने वाले हैं आपको और इस कविता में भी झूले की बात है। तो हम शुरू करते हैं आपके लिए यह कविता जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल उड़चल उड़चल, बरस रहा है रिम झिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। कैसी लगी आपको कविता झूला? आप भी इस कविता में आने वाले बहुत सारे शब्दों के साथ झूल रहे होंगे। जैसे डाली झूम रही थी वैसे आप झूल रहे होंगे, जैसे पत्ता पत्ता झूल रहा था आपका मन भी झूलने लगा होगा। और बारिश के तो क्या ही कहने, उसमें तो हर बच्चे को बहुत मजा आता है। प्यारे बच्चों, इस कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जिसमें ल की आवाज है। क्या आप पहचान पाएंगे ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें ल की आवाज है? शाबाश, झूला में ल की आवाज है, लेकिन पहले या बाद में? ल की आवाज बाद में है, पहले तो झ की आवाज है, झूला।

0: फिर झुनिया ने क्या किया?
1: झरने का पानी उड़वाया, काला काला झाग बनाया। तब झगड़ू को गुस्सा आया, मिला न पानी तो झल्लाया।

आया समझ में? तो झूला में ला अंत में है, यानी कि शब्द के अंत की आवाज है ला। अब मैं कविता की एक और पंक्ति पढ़ती हूँ और आप बताइए कि क्या उस पंक्ति में ल की आवाज वाला कोई शब्द है या नहीं। मैं शुरू करूँ? ठीक है। अम्मा आज लगा दे झूला, कितने शब्द हैं? एक, और शब्द क्या है? झूला। इस झूले पर मैं झूलूंगा, कितने शब्द हैं? दो। वेरी गुड। और शब्द कौन कौन से हैं? झूले, झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, इसमें तो एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ल की आवाज हो। आसमान को मैं छू लूंगा, कितने शब्द हैं? एक। वेरी गुड। और शब्द कौन सा है? लूंगा। शाबाश। झूला झूल रही है डाली, कितने शब्द हैं? तीन। वेरी गुड। और शब्द कौन कौन से हैं? झूला, झूल, डाली। वेरी गुड। और तीनों ही शब्दों में ल की आवाज कहाँ है? शुरू में है या आखिर में? आखिर में है ल की आवाज, झूला, झूल, डाली। झूल रहा है पत्ता पत्ता। अब यहाँ पर ल की आवाज वाला कौन सा शब्द है? झूल। शाबाश। तो इसका मतलब कितने शब्द हुए? एक या दो? एक। इस पंक्ति में एक ही शब्द है जिसमें ल की आवाज है। इस झूले पर बड़ा मजा है, इसमें कितने शब्द हैं? ल की आवाज वाले? एक। और शब्द कौन सा है? झूले। वेरी गुड। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। उफ, इस पंक्ति में तो बहुत सारे ल हैं। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता।

शाबाश, ये हुए पांच शब्द। अब तो आप शब्दों में ल की आवाज को पहचानते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि आप ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं जिसमें ल की आवाज होती है, बस हम उस ल की आवाज को आज अलग से पहचान रहे हैं। लेकिन इस ल की आवाज से बनने वाले बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें आप अक्सर करते हैं। जैसे झूला झूलने की फरमाइश रखते हैं तो आप ल की आवाज बोलते हैं। अगर आपको कहीं सैर सपाटे पर जाना हो तो आप कहते हैं मैं भी चलूंगा, आप कहते हैं मैं भी चलूंगी, आप कहते हैं हम भी चलेंगे, तो इसमें भी तो ल की आवाज है। और एक और चीज है जो सब बच्चों की मनपसंद चीज है, और वह क्या है? लट्टू। हाँ हाँ, हो सकता है, या फिर लड्डू। बिल्कुल, लड्डू भी हो सकता है। लड्डू हर बच्चे को पसंद होता है। अब ये लड्डू चाहे आटे का बना हो, या बेसन का हो, या फिर बूंदी का हो, तो लड्डू जैसे बच्चे अक्सर लड्डू खाते हुए दिख जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ल की आवाज है, तो क्यों ना हम झटपट उन शब्दों को दोहरा लें। तो आइए आप सुनिए शब्द और बताइए कि इसमें ल की आवाज है या नहीं। तो हमारा पहला शब्द है लीची। ल की आवाज है? हाँ है। और अगला शब्द है ढोल। इसमें भी ल की आवाज है, लेकिन शुरू में है या आखिर में? आखिर में ल की आवाज है, ढोलक। अब ल की आवाज कहाँ है? ढोलक, बीच में। वेरी गुड, ढोलक। एक और शब्द है अलमारी। यहाँ ल की आवाज कहाँ है? बीच में। किसके बाद? आ के बाद। तो यह शब्द है अलमारी। एक और शब्द है लोमड़ी। ल की आवाज कहाँ है? शुरू में। वेरी गुड। तो अब आप ल की आवाज को पहचानने लग गए हैं। तो हम बच्चों एक खेल खेलते हैं, तैयार हैं? इस खेल में बड़ा मजा है। आपको करना ये है कि मैं कुछ शब्द कहूंगी, अगर उस शब्द में आपको ल की आवाज सुनाई देती है तो आप हाँ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे झुम्मी। याद रहेगा, अगर शब्द में ल की आवाज है, या ल की आवाज कहीं भी हो सकती है, शुरू में हो सकती है, बीच में हो सकती है, और आखिर में हो सकती है, बस शब्द में अगर ल की आवाज है तो आप हाँ की जगह कहेंगे झुम्मी, और अगर शब्द में ल की आवाज नहीं है तो आप कहेंगे झुम्मा। याद रहेगा। तो हम शुरू करते हैं खेल झुम्मा झुम्मी का। हमारा पहला शब्द है ढोल। झुम्मी, ढोलक, झुम्मी, लपेटना, झुम्मी, बगीचा, क्या होगा? झुम्मा। शाबाश। हमारा अगला शब्द है लड़का। झुम्मी, झूला, झुम्मी, मेला, झुम्मी, आंगन, झुम्मा, आंगन में ल की आवाज नहीं है। आगे चलें। लोमड़ी, झुम्मी, सुहानी, झुम्मा, सिलाई, झुम्मी, दिखना, झुम्मा, मेला, झुम्मी, घर, झुम्मा। अब कुछ और शब्द हमारे पास बचते हैं, हम शुरू करें? ठीक है। नल, झुम्मी, डाली, झुम्मी, झाड़ू, झुम्मा, टायर, झुम्मा, दरी, झुम्मा, आलू, झुम्मी, रेल, झुम्मी, खेल, झुम्मी, मजा, झुम्मा।

0: लाखन ने सोचा,
1: राजा देगा ढेरों उपहार। आहा,
0: राजा ने पर डांट लगाई, जोर से भी ललकार।
2: लाखन।

0: लकड़ी।
1: मजा आया आपको? तो आप भी ये खेल अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ खेल सकते हैं। बस याद इतना रखना है कि हाँ की जगह हम कह रहे हैं झुम्मी और ना की जगह हम कह रहे हैं झुम्मा। तो बस झुम्मा झुम्मी को आपको याद रखना है। आप चाहें तो हाँ और ना के लिए कुछ और मजेदार शब्द खोज सकते हैं, जैसे हाँ के लिए जलेबी और ना के लिए लड्डू। अब ऐसा ना हो कि जलेबी और लड्डू कहते कहते आपके मुंह में पानी आ जाए और आप सारा खेल छोड़कर सबसे पहले रसोई में भागे कि नहीं पहले हमें जलेबी दीजिए या हमें लड्डू दीजिए। तो आप अपने शब्द चटपटे भी रख सकते हैं, जैसे इमली और जैसे आम। तो बस आप ऐसे ही चटपटे मजेदार मीठे गुलगुले जैसे नाम रखिए और इस खेल को अपने दोस्तों के साथ जरूर खेलिए। आप चाहें तो इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द या इन शब्दों से बनने वाली एक कहानी भी तैयार कर सकते हैं, जैसे एक दिन की बात है, लड्डू नाम का एक बच्चा था। लड्डू का नाम था लड्डू और सब प्यार से उसे लड्डू जी कहते थे। एक दिन लड्डू जी की क्लास में एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था झुमकी। तो झुमकी ने कहा, लड्डू ये तुम्हारा नाम किसने रखा है? अब लड्डू बेचारा उदास सा रहता था क्योंकि सब उसे उसके नाम से चिढ़ाते थे। लड्डू ने झुमकी से कहा, पता नहीं झुमकी मेरा ये नाम किसने रखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम बदल दूँ। लेकिन झुमकी ने कहा, नहीं नहीं लड्डू, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, बिल्कुल एकदम लड्डू जैसा। लेकिन झुमकी, सब बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। तो झुमकी ने कहा, तो क्या हुआ, उन्हें कहना है तो कहने दो, तुम बस उनकी बातों पर ध्यान मत दो। धीरे धीरे लड्डू बड़ा हो गया। अब वह बड़ा हो गया तो भी उसका नाम रहा लड्डू। अब उसने सोचा कि अब मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। लेकिन वह सोचता रहा कि वह अपना कौन सा नाम रखे, प्यारा सा नाम। लेकिन उसने सारे नाम ट्राई किए, चाहे ये नाम था मदन या फिर अमर या फिर शादाब या फिर अक्रम, लेकिन उसे कोई नाम सूझ ही नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि ठीक है, मेरा नाम तो लड्डू ही सही है। झुमकी ने भी लड्डू को यही समझाया कि लड्डू, तुम्हारा नाम जो भी हो वह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी पहचान हमारे काम से होती है, तो बस हमें अच्छे काम करने चाहिए और हमारी अपनी पहचान बन जाएगी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारा नाम लड्डू है या फिर हमारा नाम झुमकी। तो ऐसे ही लड्डू और झुमकी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती आज भी याद की जाती है। अब इस कहानी को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ढोलक के ऊपर भी कोई कहानी बना सकते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक गांव था, गांव का नाम था नंदनवन। उस नंदनवन में एक ढोलक रहती थी, ढोलक का नाम था ढोलक, और ढोलक तो थी एकदम ढोल जैसी थी। ढोल जैसी नहीं, एकदम ढोलक जैसी थी, बहुत प्यारी सी छोटी सी। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में एक लड़का रहता था, उसे ढोलक बजाना बहुत पसंद था। वह ढोलक पर थाप देता और फिर गीत गाता। पता है बच्चों उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था मोहन। मोहन को ढोलक पर थाप देकर गीत गाना बहुत पसंद था। एक दिन वह एक गीत गा रहा था और गीत गाते गाते वह ढोलक पर थाप दे रहा था, तभी से फटाक की आवाज आई और ढोलक का एक सिरा फट गया। अब ढोलक को ठीक कराने के पैसे मोहन के पास नहीं थे, लेकिन बच्चों मोहन ने गीत गाना नहीं छोड़ा और ढोलक को उसने यूं ही एक तरफ छोड़ दिया और खूंटे पे टांग दिया। बहुत समय बाद एक बार बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश कि चारों तरफ पानी भर गया। घर में जितने भी कीट पतंगे थे, कीड़े मकोड़े थे, चींटे थे, चींटियां थी, चिड़िया थी, सब आश्रय ढूंढ रहे थे कि सूखी जगह मिले तो वहां दुबक जाएं। तभी सबको दीवार पर टंगी हुई वह ढोलक दिखाई दी जिसका एक सिरा फटा हुआ था। अब वह एक गुफा की तरह हो गया था, तो सारे जीव जंतु उस ढोलक के अंदर जाने लगे। सब जीव जंतुओं ने ढोलक का बहुत शुक्रिया अदा किया कि अगर आज तुम नहीं होती तो हम पानी से नहीं बच पाते। ढोलक ने सभी का स्वागत किया कि आइए, मेरे घर में आप सभी का स्वागत है। तो अच्छा हुआ कि मोहन ने ढोलक को ठीक नहीं करवाया, और वह ढोलक, चाहे वह फटी ढोलक क्यों न थी, वह ढोलक सभी के आशय का हिस्सा बनी। तो बस आप ऐसे ही कहानी बना सकते हैं और इन कहानियों को आगे भी बढ़ा सकते हैं, और आप चाहें तो इन शब्दों के इर्द गिर्द अपने अनुभव लिखकर हमें भेज सकते हैं। फिर इन अनुभवों में बात चाहे झूले की हो, या लड्डू की हो, या लट्टू की हो, या फिर ढोलक या अलमारी की हो, आपके पास ढेर सारी बातें हैं हमसे कहने के लिए, और हमारे पास ढेर सारा समय है आपकी बातें सुनने के लिए। तो आप अपनी बातें हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, earlyliteracy.ncrt@gmail.com। तो हम आपकी प्यारी सी बातों का इंतजार करेंगे, और मैं उषा दीदी आप सबसे तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।
0: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर,
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं उन पशुपालक भाई बहनों के बारे में जो इस बात से परेशान होंगे कि जब उनके फार्म से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उसका किस तरीके से वो प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से वो उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे भी वो मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं हम डॉक्टर ज्योति माला साहू से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद।
12: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पशु अपशिष्ट प्रबंधन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है।
14: देखिए, पशु अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है पशुओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, जैसे गोबर, गौमूत्र, बिछावन की सामग्री और अन्य जैविक अवशेषों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से संग्रह करना, भंडारण करना, उनका उपयोग करना और निपटान करना, यह पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पशुशाला स्वच्छ रहती है और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ रोगों का खतरा कम होगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी घटता है। साथ ही साथ इसका उपयोग हम जैविक खाद बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं जिससे खेती की लागत कम होगी और पशुपालकों की अतिरिक्त आय भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ की दृष्टियों से ये अत्यंत आवश्यक है।
12: जी मैम, अगर उचित प्रबंधन ना किया जाए तो क्या ये पर्यावरण पर प्रभाव डालता है?
14: देखिए, उचित प्रबंधन ना करने पर इसका पर्यावरण पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ ही साथ मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि खुले में पड़ा हुआ पशु अपशिष्ट जो होते हैं वो दुर्गंध फैलाते हैं, मक्खियाँ, मच्छर और अन्य रोगकारक जीवों को वो उनकी संख्या को बढ़ावा देते हैं। इससे मानव में डायरिया, हैजा, टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा होता है। साथ ही साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और खास करके इस मौसम में जो अभी चल रहा है बारिश का मौसम, तो वर्षा के दौरान क्या होता है कि पशु अपशिष्ट जल स्रोतों में मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं जिससे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और खुले में इस तरह से अगर अपशिष्ट हैं तो उनके सड़ने से मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि वायु का प्रदूषण करती है और जलवायु परिवर्तन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए अगर पशु अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, उपचार और उपयोग किया जाता है तो हम जलवायु परिवर्तन पे काम कर सकते हैं, इन पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और इससे मीथेन जैसी हानिकारक गैसें का उत्सर्जन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके उपयोग से जैसे कि अभी देख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस है तो इनके उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर से निर्भरता कम हो सकती है और इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करके हम रासायनिक उर्वरकों पर भी जो निर्भरता है उनको कम कर सकते हैं।
12: तो मैम, प्रबंधन के कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं?
14: देखिए, जो भी पशुपालक भाई बहन है वो गोबर को खुले में ना फेंकने के बजाय अगर इन्हें गड्ढों में या इकाइयों में डालकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर सकते हैं, है ना। इसमें आता है कंपोस्टिंग जिसमें गोबर एवं अन्य पशु अपशिष्ट को नियंत्रित परिस्थितियों में सड़ाकर खाद बनाई जाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग जिसमें केचुओं की सहायता से, इसमें एक विशिष्ट प्रजाति का केचुआ आता है जो लाल रंग का होता है, इसे एसिना फेटिरा कहते हैं। तो इनकी सहायता से गोबर या अपशिष्ट को विघटित किया जा सकता है। तीसरी वैज्ञानिक विधि है गोबर को बायोगैस संयंत्र में डालकर उससे मीथेन उत्पन्न करना और इस मीथेन का उपयोग हम खाना बनाने में या बिजली उत्पादन करने में कर सकते हैं। इस बायोगैस संयंत्र से निकलती है स्लरी जिनका उपयोग हम डायरेक्ट खेत में कर सकते हैं और स्लरी में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अलावा गौमूत्र को अलग से एकत्र करके जैविक तरल खाद जिसे जीवामृत कहते हैं वो बनाया जा सकता है जो कि जैव कीटनाशक, एक अच्छा जैव कीटनाशक है। इसके अलावा डेयरी फार्म से निकलने वाले जो भी गंदे पानी होते हैं उनका उपचार किया जा सकता है, तो इसके लिए सेटलिंग टैंक बिठा सकते हैं, ऑक्सीकरण पॉन्ड बना सकते हैं और बायोफिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो पानी का उपचार कर सकते हैं और इन उपचारित पानी को पुनः सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे गोबर हैं उनके गोबर के कंडे बनाए जा सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण है बायोचार, इसको बनाया जा सकता है जो कि एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोगी है।
12: मैम बायोचार क्या होता है?
14: देखिए बायोचार एक ठोस पदार्थ है जो कि कार्बन से परिपूर्ण होता है। यह गोबर, फसल अवशेष, लकड़ी के टुकड़े, पत्तियां और अन्य जैविक पदार्थों को एक सीमित ऑक्सीजन में या कह लो कि कम हवा में गर्म करके बनाया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पायरोलिसिस। अब ये सारे अवशेषों को भट्टी में डाला जाता है जिसका तापमान होता है 300 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया में जो जैविक पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह जलने के बजाय कार्बन युक्त बायोचार में बदल जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं। तो यह मिट्टी में लंबे समय तक रहता है और यह पानी और पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है, और साथ ही साथ यह सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार करता है। और यह बायोचार खास करके अम्लीय मिट्टी के सुधार में सहायक होते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी बहुत लाभदायक है ये।
12: मैम बायोगैस संयंत्र के लिए कितना गोबर लगता है और गैस कितना बनता है और लागत कितनी होती है इसकी?
14: देखिए बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर की जो मात्रा होती है वो संयंत्र के आकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोग्राम ताजा गोबर और उतनी ही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह गोबर लगभग 1 से 2 गाय या भैंस से आसानी से मिल जाता है। और इसी प्रकार अगर 2 घन मीटर का संयंत्र हो तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन हमें चाहिए होगा। अब उत्पादन की बात करें तो 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 घन मीटर गैस बनती है जो कि लगभग 1 LPG सिलेंडर के एक हिस्से के बराबर ऊर्जा देती है। तो उसी तरह से हिसाब लगा लेंगे कि अगर 2 से 3 घन मीटर संयंत्र है तो यह होगा कि एक परिवार के एक दैनिक खाना बनाने की जरूरत को वो पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं कि समय की, तो कितना समय लगता है अगर एक बार बायोगैस संयंत्र बैठा दिए तो संयंत्र को चालू करने के बाद गैस बनने में लगभग 30 से 45 दिन लगते हैं, क्योंकि गोबर को सड़ा कर उनका गैस बनाना है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। और इसके बाद प्रतिदिन गैस बनती रहती है अगर गोबर और पानी की सही मात्रा उसमें डाली जाए तो। अब लागत की अगर हम बात करें तो एक घरेलू संयंत्र से लागत लगभग 25,000 से 60,000 रुपये तक हो सकती है और बड़े संयंत्र की लागत उससे अधिक हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई योजनाएं हैं तो उनसे सब्सिडी भी मिल सकती है जिससे वास्तविक खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हर महीने LPG गैस पर जो होने वाला खर्च है वो बच जाता है और साथ ही साथ जैविक खाद भी मिल जाती है जिससे खेती का खर्च भी कम हो जाता है।
12: जी मैम, तो क्या इस क्षेत्र में सरकार की भी कोई योजनाएं हैं और क्या कोई ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है हमारे पशुपालक भाई बहन को?
14: जी हाँ, पशु अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार सहायता प्रदान कर रही है। बिहार राज्य की बात करें तो पहले योजनाएं थी बायोगैस संयंत्र बैठाने के लिए, पर अभी फिलहाल ये योजना बिहार सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, इसके तहत ये योजना है जो बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए सहायता देती है। इसके अलावा गोबरधन स्कीम के माध्यम से गोबर और जैविक कचरे को धन में बदलने, बायोगैस और जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि और पशुपालन विभाग समय समय पर प्रशिक्षण दे रही है, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। तो पशुपालकों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि वे अपने जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित या फिर कोई भी संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और उनसे होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
12: तो मैम, क्या पशु अपशिष्ट का खाद और ईंधन के अलावा भी किसी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है?
14: जी हाँ, बायोगैस के अलावा पशु अपशिष्ट से कई और लाभकारी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बाजार में हाल ही में कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की काफी अच्छी मांग है। और इसके अलावा गोबर से गोबर के उपले, दिए, अगरबत्ती और प्राकृतिक पेड़ जैसी कई वस्तुएं बनाई जा सकती है, जो कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। और आजकल गोबर आधारित जैविक खाद और ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में काफी इनके मांग में काफी तेजी बढ़ रही है, जिससे किसान सीधे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकता है। तो इस प्रकार पशु अपशिष्ट को केवल कचरा ना मानकर अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है।
12: अंत में आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
14: मैं पशुपालकों को ये संदेश देना चाहूंगी कि वे वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें।
12: तो पशुपालक भाई बहन, जो भी आपके एनिमल फार्म से वेस्ट आता है उसका आप उपयोग करें, सदउपयोग करें, और इससे न केवल आपको फायदा होगा बल्कि पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई।
14: धन्यवाद।
12: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
15: उन्नत कृषि
16: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
17: कब से?
16: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
17: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
16: खांसी?
17: हाँ।
16: इसको तो एक आध महीना हो गया।
17: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
16: डॉक्टर, खांसी तो है।
17: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
16: टीबी?
17: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
16: ठीक है।
17: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
2: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 4 सितंबर से 8 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्व हवा चलेगी। कमजोर मानसून को देखते हुए एक सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, आरयू 8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरिबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगा है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की पहचान होती है कि उनकी मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर या लाल चना की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, इसके साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें और उन्हें संतुलित आहार दें। आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। आज के समय में मिट्टी की जरूरत और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है हमारी कि हम जैविक खेती को अपनाएं। और बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती को अपना भी रहे हैं और ऐसे में उनके मन में सवाल आता है कि जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा। आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक खेती क्या होता है।
1: देखिए, आज की जरूरत है। जैविक खेती को विषमुक्त खेती भी कहते हैं, यानी जो बिना जहर वाली जो खेती है, जिसमें ऐसे उत्पाद पैदा हो जिसमें कोई जहरीला चीज ना हो, उसको हम जैविक खेती कहते हैं। हाँ, परिभाषा के रूप में यदि जानना चाहें तो यह है कि कृषि की वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कृत्रिम कीटनाशकों या आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जैविक पदार्थ है उसका ही हम प्रयोग करते हैं और उससे जो खेती होती है उसको हम जैविक खेती कहते हैं।
0: जी, तो सर जैविक खेती के फायदे क्या क्या है?
1: बहुत समचीन प्रश्न है। जैविक खेती आज की नीड है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है, आने वाली जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है तो मिट्टी को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं, उम्मीद करता हूं कि 2050 तक हम बढ़ करके लगभग 170 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। और इस 170 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करवाना, वह भी ऐसी मिट्टी से जिस मिट्टी में कि लगभग 6 पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी में कम हो गया है। जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वह तो हर एक किसान लगभग प्रयोग कर रहा है। यूरिया, DAP, पोटास तो प्रयोग ही कर रहा है। बहुत सारे किसान जिंक भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं बोरन भी प्रयोग करते हैं बोरेक्स के रूप में। साथ ही साथ यदि आप देखें तो कहीं कहीं सल्फर का प्रयोग करते हैं। यानी 6 तत्व तो किसान भी जान रहा है कि वो लिमिटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो शोध हुआ है, जो मिट्टी की जांच हुई है, उसे यह भी पता चला है कि हमारा जो लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, मॉलिब्डिनम है, यह भी जल्दी ही कम होने वाला है। और उस सारी चीजों के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि कार्बन हमारी मिट्टी में कम हो गया हुआ है। आज से 70 साल पहले लगभग हमारी मिट्टी में 1% के आसपास कार्बन था, जो घट करके अब बामुश्किल 0.3-0.4% रह गया है। और यह इतना जल्दी कार्बन बढ़ता नहीं, 4-5 साल तक यदि हम ढांचा पलटते हैं तो बामुश्किल 0.1-0.2% कार्बन हमारी मिट्टी में बढ़ता है। हम चाहते हैं वायुमंडल में कार्बन कम रहे, मैं चाहता हूं कि मिट्टी में कार्बन बढ़े, लेकिन हो गया है उल्टा। हमारे वायुमंडल में कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, हमारी मिट्टी में कार्बन कम हो रहा है। और यह तभी दूर होगा जबकि हम ऐसी चीजों को अपनी मिट्टी में डालें जिसमें कार्बन हो, चाहे वह हरी कोई चीज, यानी कि कहने का मतलब हरी खाद पलटे, या चाहे जो हमारे जैविक खाद हैं, चाहे वो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे नाडेप कंपोस्ट हो, इन सारी तरह की चीजों को हम अपने मिट्टी में डालें जिससे कार्बन बढ़े, यह निहायत ही जरूरी है। और आने वाली जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा यदि हम चाहते हैं कि उसका सुनिश्चित हो सके तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें करें।
0: जी सर। सर, अगर हम मिट्टी की उर्वरता के बारे में बात करें तो जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
1: अब यह पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये है कि जैसे आपने एक चीज पूछा था कि जैविक खेती के क्या फायदे, तो एक तो पहली बात कि हानि रहित शुद्ध और पौष्टिक भोजन हमें मिल सकता है तो जैविक खेती से मिल सकता है। पर्यावरण का यदि संरक्षण होना है, वह भी जो हमने अभी पद बताया भी, वह भी हो सकता है तो जैविक खेती से हो सकता है। और लंबी अवधि तक यदि उपजाऊ जमीन चाहते हैं तो वह भी हमें मिलेगा तो जैविक खेती से मिलेगा। अब यह है कि जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे होता है, तो एक तो पहली चीज कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूरी तरह बंद होता है इसमें। हालांकि कुछ रसायन ऐसे हैं जैसे मान लीजिए जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, ये सारी चीजें अलाउड हैं, कुछ केमिकल्स अलाउड हैं, लेकिन जिसका कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं है वही सिर्फ केमिकल्स हमारे लिए अलाउड हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें पूरी तरह बंद होता है। इससे क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों के चलते जो हमारी मिट्टी में कोई विषाक्त चीजें आ रही हैं वो विषाक्त चीजें नहीं आएंगी। दूसरी बात, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब का प्रयोग उसमें होता है, जिससे क्या होता है कि ये लंबे समय तक हमारी जो है उर्वरता बनी रहती है। साथ ही साथ जो एक चीज है, जो लाभदायक जीव जीवाणु हमारे मिट्टी से कम हो गए हुए हैं उनकी संख्या बढ़ती है। एक चीज मैं बताऊं कि जितने लाभदायक जीवाणु हैं उनको एनर्जी सोर्स के रूप में कार्बन चाहिए, और कार्बन मिलेगा तभी जब कोई कार्बनिक पदार्थ उसमें हम डालेंगे। तो वह कार्बनिक पदार्थ जब उसमें आ जाता है तो उससे वह लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिताजी या दादाजी हैं, उनसे पूछिए कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया था, कभी एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग किया था, कभी पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया था, तो कहेंगे नहीं, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि ये लाभदायक जीव जीवाणु हमारी मिट्टी में थे। और क्यों थे? क्योंकि इसमें कार्बन था, कार्बन ज्यादा होने से उसकी जल धारण क्षमता भी ठीक ठाक होती है। साथ ही साथ उसमें जो दूसरा फायदा होता है वह यह है कि उसको जो खाने के लिए चाहिए एनर्जी सोर्स जो चाहिए वह एनर्जी सोर्स भी वहां से मिल जाता था, इसीलिए लाभदायक जीव जीवाणु वहां पर थे। यहां केचुआ आपके मिट्टी में खूब थे, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, लेकिन आज या तो तालाब तक सिमट के रह गए हैं या बगीचा तक सिमट करके रह गए हुए हैं। तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उनकी संख्या भी कम हो गई है। और तीसरी बात, जो फसल चक्र हम अपनाते हैं जैविक खेती में, उसमें बीच में कहीं ना कहीं दलहनी फसल को जरूर रखते हैं, और यह दलहनी फसल बड़ी अच्छी चीज है। ये समझिए अपने आप में यूरिया बनाने की फैक्ट्री है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ला करके हमारी मिट्टी में डालता है। भाई हम क्या करते हैं, बूस एंड एबर प्रोसेस से जो हम यूरिया वगैरह बनाते हैं वहां पर भी तो यही करते हैं। और यहां पर यदि हम इस चीज को देखें तो यहां पर भी यह काम जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है और उसके शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, उसके कारण यह सामान्य तापक्रम में हो जाता है। जबकि यूरिया के फैक्ट्री में देखिएगा तो 300-400 डिग्री टेम्परेचर वहां पैदा किया जाता है और उससे बनता है, लेकिन यहां पर सामान्य तापक्रम पर ही बन जाता है। तो ये सारे फायदे हमारे हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जैविक खेत में मिट्टी की उर्वरता, तो इनसे उर्वरता हमारी काफी बढ़ती है।
0: जी सर। सर अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करें तो जैविक खेती जब हमारे किसान भाई बहन अपनाते हैं तो उस क्रम में क्या क्या कृषि कार्य करने चाहिए जिससे पोषक तत्व का प्रबंधन हो सके?
1: तो एक चीज तो अभी हमने बताया कि फसल चक्र का चयन बहुत ही बढ़िया करना चाहिए। क्या बढ़िया होगा? जब बीच में हम कोई दलहनी फसल लेते हैं तो फसल चक्र हमारा ठीक ठाक है। तो इसीलिए एक तो पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। अब आप लोग ढैंचा वगैरह वगैरह का प्रयोग करते हैं, आप जान के ताज्जुब होगा कि ये जो है कम से कम 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल देता है, मोटा मोटी 100 किलोग्राम डाल देता है, यानी कि 220 किलोग्राम के आसपास यूरिया हमारी मिट्टी में डाल देता है। जी तो सोचिए कि कितना फायदा का काम कर रहा है। तो पहली तो बात हमने कहा कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। दूसरी बात, खेती में हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित रूप में करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे उस समय हल से खेती होती थी, बैल से खेती होती थी, तो उस समय जो बैल का गोबर था वो हमारी खेती में जाता था, लेकिन अब बैल से तो खेती हो नहीं रही है। तो अब क्या है कि हर एक किसान के पास गोबर नहीं है जो गोबर का खाद बनाने की बात करेंगे, तो इसीलिए उनको चाहिए कि कम से कम हरी खाद का प्रयोग करें। तो हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि बायोमास, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधा कार्बन को अपने शरीर में रखा और उसको जब हमने मिट्टी में पलट दिया तो वो कार्बन हमारी मिट्टी में आ गया, तो यह भी हमको फायदा हो गया कि कार्बन मिल गया। और साथ ही साथ यदि वो दलहनी फसल है, वह जो हरी खाद वाला फसल है वह भी यदि दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी किया। साथ ही साथ उसकी जड़ नीचे स्तर तक जाती है तो जो नीचे स्तर में हमारे पोषक तत्व हैं उसको भी खींच करके ऊपरी सतह में ला देता है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है फसल सामान्यतया उसी से पोषक तत्व लेकर के अपना काम चलाता है और आगे बढ़वार करता है।
0: जी सर। सर अभी आपने हरी खाद के बारे में बात की, तो हरी खाद में कौन कौन से फसल हमारे किसान भाई बहनों को लगाने चाहिए और कब लगाने चाहिए, साथ ही उसके फायदे के बारे में आप हमें विस्तार से बता दीजिए।
1: देखिए ऐसा है कि जो हरी खाद के रूप में है, सनई का भी प्रयोग होता है, धैंचा का भी प्रयोग करते हैं, उर्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लोबिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं ग्वार का प्रयोग किया जाता है, ज्वार का भी प्रयोग किया जाता है, बाजरा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सामान्य रूप से है जो अच्छी बात होगी वह ढैंचा का प्रयोग होगा। ढैंचा का प्रयोग सामान्यतः अप्रैल से जुलाई के महीने में इसकी बुआई की जाती है और इसका बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर आपको बायोमास दे देगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यह स्थिरीकृत करता है। आप वायुमंडल में देखिए तो लगभग 78-79% हमारा नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन फसल के लिए किसी काम का नहीं है। तो अब उस फसल को उसके उपलब्ध रूप में जब तक हम परिवर्तित नहीं कर देते हैं, जैसे हम धान नहीं खाते हैं, धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, इसी तरह से यह नाइट्रोजन जो वायुमंडल में गैस के रूप में है वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसको जब हम नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में परिवर्तित करते हैं तभी वह पौधे को उपलब्ध हो पाता है। तो यह उपलब्ध करवाने का काम भी करता है, इसलिए ढैंचा सबसे बढ़िया होगा। वैसे तो हमने बताया कि ये कई चीज हैं, सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, ग्वार, ये सब के सब प्रयोग किए जाते हैं।
0: जी सर। सर जो जैविक खेती अपनाते हैं वो कई तरह के जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में, हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि उसमें कितना एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है।
1: देखिए एक चीज बात बताऊं कि वास्तव में कहीं बाहर से नहीं लाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट ही बनाया तो वह केचुआ कहीं बाहर से नाइट्रोजन को लाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो कुछ भी आप जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, इसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस होगा, पोटास होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि सामान्य जो कंपोस्ट प्रयोग किया जाता है उसमें 0.4 से लेकर 2% तक नाइट्रोजन होता है, 0.4 से 1% के बीच में लगभग फास्फोरस होता है और 0.5% से लगभग 3% तक लेकर के पोटास होता है। इसी तरह से जो नाडेप कंपोस्ट है इसमें आपको 0.75% यानी 0.25% से लेकर के 0.25% तक नाइट्रोजन होगा, 0.7 से लेकर 0.9% तक फास्फोरस होता है, 1.2 से लेकर 1.4% तक पोटास होगा। खली भी प्रयोग में लाया जाता है, तो खली को यदि देखिए तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, 2.5% से 8% तक नाइट्रोजन होगा, 1 से लेकर 3% तक फास्फोरस होगा, पोटास भी 1.2 से लेकर 2.2% के बीच में होगा। कहीं कहीं जो हड्डी का चूड़ा है उसका भी प्रयोग किया जाता है, तो जो हड्डी का चूड़ा है उसमें 3 से लेकर 4% तक नाइट्रोजन होता है, 20 से 25% तक फास्फोरस होता है। जो

0: हमारा जो विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो बनाता है वह समृद्ध केचुआ खाद बनाता है, और समृद्ध केचुआ खाद में आपको खुशी होगी जान करके कि 2% के ऊपर ही रहता है, 2.25% या उससे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होता है। साथ ही साथ इससे फॉस्फोरस भी 2.5% से लेकर के 3.5% तक होता है, साथ ही साथ इससे पोटास भी 1% के ऊपर होता है। तो यह जो बर्मी कंपोस्ट है वह चूंकि समृद्ध केचुआ खाद है इसीलिए इसमें ज्यादा होता है, और किसानों को इसका निर्माण भी करना चाहिए और इसका प्रयोग भी करना चाहिए।
1: जी सर। सर अब हम गोबर की सड़ी खाद की बात करते हैं, और साथ ही इसकी तुलना में अगर हम वर्मी कंपोस्ट, हमारे किसान भाई बहन वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें तो उसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए जो गोबर की खाद है, गोबर का खाद कौन बनाता है? जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वही बनाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एक्नोमाइसिट्स हो, यही सब बनाते हैं। तो वह बनाया कौन? सूक्ष्म जीवाणु। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसको सूक्ष्म जीवाणु भी बना रहा है, साथ ही साथ केचुआ भी बनाता है। तो एक मोटी सी बात समझिए, जो केचुआ के शरीर से जो कुछ भी निकल रहा है, जैसे पेट ट्रॉफिक जेली निकला, तो वह क्या है कि जलवाष्पन को रोकने का काम करता है। तो वह जो आपने बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया तो वह ज्यादा पानी को ऊपर नहीं जाने दिया, वह मिट्टी में ही रखा। इसी तरह से जो उसमें एंजाइम्स या हार्मोन्स इस सब चीज का जो सिक्रीशन करता है, उसका जो श्रावण करता है, वह भी हमारे वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो गोबर के खाद की तुलना में हमारा वर्मी कंपोस्ट ज्यादा बढ़िया होता है। अब यदि हम पोषक मान के आधार पर आते हैं तो गोबर के खाद में देखिएगा तो उसमें लगभग 0.5% नाइट्रोजन होता है, और अभी ही हमने बताया कि वर्मी कंपोस्ट में 2.25% समृद्ध केचुआ खाद में नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस ही उसमें 0.2% यानी 0.75% के आसपास है, जबकि हमारा जो समृद्ध केचुआ खाद है उसमें 2.5 से लेकर 3% है, पोटास भी वहां सिर्फ 0.5% है, यहां पर लगभग 1% के आसपास है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां पर यदि 0.5% है तो 4 क्विंटल मुझे गोबर का खाद का प्रयोग करना पड़ता था, उसके स्थान पर यहां पर मुझे सिर्फ 1 क्विंटल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान को जब कम मात्रा में प्रयोग करना होगा तो वह उसका प्रयोग कर पाएगा, और यदि ज्यादा मात्रा में हम उसको कह दें तो उतना उसके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो प्रयोग नहीं हो कर पाता है, और इसीलिए इसका प्रयोग घटता जा रहा है। तो यह सबसे बड़ा फायदा है।
1: जी सर। सर अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में, तो जैविक खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और किस किस जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं?
0: देखिए जैव उर्वरक ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाए, उर्वरक किसके लिए करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग हो उसको जैव उर्वरक कहते हैं। तो अब इसमें देखिए कि जैव उर्वरक के रूप में जो नाइट्रोजन कौन कौन देगा, तो दलहनी फसल में देता है राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, राइजोबियम ही समझिए, किसान भाई हमारे ये राइजोबियम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, तो राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें दलहनी नहीं है, जिसकी जड़ में गांठ नहीं बन रहा है, उसमें अजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में है, एक है सिम्बियोटिक यानी सहजीवी, तो सिम्बियोटिक में जड़ में गांठ होता है तो उसका फायदा क्या होता है कि वह जो रहने का मकान है और खाना है उसने दलहनी फसल ने दे दिया, इसके एवज में इसने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, तो यह ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी 36 किलो से लेकर के 600 केजी पर हेक्टेयर या वो कर सकता है, उसका फिक्सेशन कर सकता है, स्थिरीकरण कर सकता है। इसी तरह से दूसरा हो गया आपको जो अजोटोबैक्टर या पीएस इसकी एजोस्पर्म की बात किया, तो उसके जड़ से जो रस निकलते हैं उससे करता है। तीसरी बात कि जहां पर मान लीजिए वह भी बात नहीं है तो वहां फ्री लिविंग होता है, यानी जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो उसको खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना। यदि खाने की व्यवस्था खुद कर लिया, जैसे नीलहरी शैवाल हरा होता है तो अपना खाना खुद बना लेता है, तो जो खाने की व्यवस्था खुद कर ले रहा है वो नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा फिक्स करेगा, 25 केजी से लेकर के 40 केजी तक वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। लेकिन जो जैसे ड्रग्सिया है, बेजरंगिया है, ये सब खाना नहीं बना सकता है, तो ये बहुत कम मात्रा में करता है। इसी तरह से अजोला है, अजोला जो है यह आपको एक फर्न होता है अजोला नाम का, उसी के बीच में नीलहरी शैवाल रहता है, तो ये काफी नाइट्रोजन आपको फिक्स करता है। तो ये कई तरह के आपके ये हैं, तो ये तो मैंने नाइट्रोजन की बात कहा। इसके अतिरिक्त यदि देखिए तो जो फास्फोरस हमारी मिट्टी में है वो काफी है, लेकिन पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो फास्फोरस उसका प्रयोग यदि नहीं ये नहीं कर पाते हैं वो जो हमारी मिट्टी में, तो कुछ फास्फोरस घुलनकर जीवाणु आते हैं, पीएसवी या पीएसएम के नाम से लोग कहते हैं, तो ये फास्फोरस घुलनकर जीवाणु जो है वो फास्फोरस को घुलाने का काम करते हैं। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजर है, पोटास को घुलाने का काम करेंगे। इसी तरह से जिंक मोबिलाइजर भी आ गया हम मार्केट में, तो जिंक को

0: इज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखिए तो जैव उर्वरक कई तरह के हैं, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम भी करते हैं, फास्फोरस को घुलाने का भी काम करते हैं, पोटास की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं, जिंक की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं। अब लेकिन सबके प्रयोग का मोटा मोटी तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तरीका क्या अलग है? एक तो बीज उपचार आप करते हैं, तो जब बीज उपचार आप करते हैं, अब मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए राइजोबियम कोई प्रयोग करता है तो 50 से 100 ग्राम उसने गुड़ को लेकर के आधा लीटर पानी में उसको घोल लिया, गरम कर लिया, गरम करके फिर ठंडा कर दिया। अब जब ठंडा हो गया तो उसमें 200 ग्राम कल्चर आपने प्रयोग कर दिया, अब प्रयोग करके उसको 10 किलो बीज पर आपने डाल दिया, अब उसको हल्के हाथ आपने मिला दिया जिससे कि वह कल्चर का उसके ऊपर लेप लग जाए, बस यही काम करना है। और लेप लग गया तो छाया में ही उसकी बुआई कर लिया। ये काम आप एजियोस्पर्म में भी कर सकते हैं, ये काम आप एजियोस्पर्म का थोड़ा तरीका अलग होगा, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, एजियोस्पर्म में भी कर सकते हैं, इवन पीएसवी का भी प्रयोग इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मिट्टी में सीधा प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, कम से कम 3.5 से 4 केजी पर एकड़ की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। हाँ, कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि वह बिचड़ा का प्रयोग उपचार करते हैं, तो बिचड़ा का यदि उपचार करना है तो आप 4 लीटर पानी में 1 केजी कल्चर डाल करके उसी में जो बिचड़ा है उसकी जड़ को भिगा करके 15 मिनट आपने रख दिया, और उसको रख करके उसके बाद आप बाहर निकाल करके तब उसको आप रोपाई कर दिए। लेकिन यदि कोई कंद का प्रयोग करता है, जैसे कंद है, आलू ही है, उसको यदि उपचारित करना चाहता है तो वहां 15 लीटर पानी में आप 1 केजी कल्चर डालिए और उसको डाल करके 15 मिनट के लिए उसको डुबा करके छोड़ दिया, फिर छाया में निकाल करके रख दिया, उसके बाद उसकी आपने रोपाई कर दी। तो ये सब तरीके हैं, जो तरीके का प्रयोग करते हैं तो काफी हमारा नाइट्रोजन भी बच जाता है और हमारी मिट्टी में जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या भी बढ़ती है। और विशेष विस्तार में जानने के लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय उनके बगल में है, उनके लिए हर समय तैयार है, वो यहाँ आए और जो संबंधित वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में आकर के उसको विधिवत प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली सीखें, तब जा करके वो ज़्यादा विधिवत उसको कर सकते हैं।
1: जी सर। सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: हमने तो संदेश दे दिया कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। भैया मेरे, अब यह बताओ कि यहाँ बीकानेर से एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से पंजाब से बीकानेर के लिए, उसमें इतने कैंसर पेशेंट्स रहते हैं कि उसमें उसका नाम ही लोग कैंसर ट्रेन रख दिया है। तो यदि आप खेती करते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपनी पत्नी को यदि बिना जहर की खेती नई फसल दे सकते हैं, ऐसा अनाज नहीं दे सकते हैं जो बिना जहर वाला है, तो खेती करने से क्या फायदा मेरे भाई? कम से कम मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिना जहर की खेती करो।

0: बड़े पैमाने पर 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जितनी चावल की खपत हुई थी उसकी तुलना में 2035 में 25% ज़्यादा चावल की जरूरत होगी, जो बदलते हुए पर्यावरणीय परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारे किसान बंधुओं का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक धान की खेती, पानी उपलब्ध होने की परिस्थिति में धान उगाने की एक आधुनिक तकनीक है। यह कम पानी में भी अच्छी हम उपज ले सकेंगे। अनुसंधान परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि एरोबिक धान की जल उत्पादकता जो प्रचलित परंपरागत विधि से हम लोग जो धान उगाते हैं उसकी तुलना में अधिक होती है। एरोबिक विधि से धान उगाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली एरोबिक धान की संस्तुत अधिक उपजशील प्रजाति को सीड ड्रिल या देसी हल से सीधे खेत से बुआई करते हैं तथा गेहूं के भांति धान को उगाया जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहते हैं। एरोबिक विधि से धान की खेती से बुआई के समय जो पानी बहुत कम लगता है, जैसे 67% कम पानी लगती है, और जो मजदूर जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगती है उससे 90% कम मजदूर इसमें लगते हैं, और 30% तेल की बचत होती है तथा 60-70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जबकि उत्पादन लगभग समान धान जैसा होता है।
1: तो इस तरीके से ये अलग है। और डॉक्टर साहब, धान इस एरोबिक धान की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को, वो भी बता दें।
0: जैसे प्रारंभिक प्रचलित जो हमारी धान किसान भाई खेती करते हैं वह पानी भरी एवं वायु संचारित दशा में धान की खेती करते हैं। उसके सापेक्ष में जो वायु संचारित एरोबिक धान की खेती से बहुत सारे लाभ हैं। इस पद्धति से धान की खेती में हम लोग सीधी बुआई करते हैं तथा खेत में नमी बनाई रखी जाती है। जैसा लेकिन जैसे हम लोग जो परंपरागत हम लोग खेती करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखी जाती है, इसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक नमी केवल खेत में नमी बनाई रखी जाती है और खेत में लगातार पानी भरने रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि परंपरागत में नर्सरी लगानी पड़ती है तथा रोपाई की आवश्यकता होती है, एरोबिक धान में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं। इसमें हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं जिसके कारण बीज की कम मात्रा लगती है और जो लेबर जो परंपरागत में ज़्यादा लगता है इसमें बहुत 50% से ज़्यादा इसमें हम लोग को लेबर नहीं लगता है। और सिंचाई जल 60% सिंचाई जल की बचत होती है तथा पौधा उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है और कीट एवं बीमारियों के प्रकोप में भी कमी आती है। एरोबिक धान लगाने से पर्यावरण में हानि पहुंचाने वाले मीथेन गैस के उत्सर्जन में 80-85% कमी आती है। इसमें मजबूत जड़ तंत्र विकास होने के कारण फसल में गिरावट नहीं होती है और ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार लाता है।
1: तो ये तो बातें हो गई हैं हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिल सकता है अगर एरोबिक धान की खेती कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं शस्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही प्रभेद के बारे में। तो डॉक्टर साहब, एरोबिक धान की खेती में प्रयुक्त होने वाले प्रभेद और शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं।
0: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के संयुक्त रूप से एरोबिक धान की खेती तकनीक रूप से विकसित की गई है और एरोबिक धान की खेती ऐसे किस्म करीब करीब उतनी ही उपज देती है जितनी समान तौर से ज़्यादातर पैदावार देने वाली धान की किस्में देती हैं। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राइक कल्टीवेशन कहलाता है। इसमें स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती है। ये एपो नाम के ब्राज़ील में एरोबिक

अगला गीत है वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। कविवर सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित ये गीत इतना प्रभावशाली है कि इस गीत ने हजारों देशवासियों को आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर करने की उमंग से भर दिया। इस गीत में कवि कहते हैं कि भारत माँ को गुलामी से मुक्त करने वाले जांबाजों की वंदना के स्वरों में मैं अपना स्वर भी मिलाना चाहता हूँ। माँ के स्वतंत्रता प्रेमी पुत्र की कामना है कि स्वाधीनता के जिस संग्राम में अनगिनत शीश कुर्बान हो रहे हैं, उसका शीश भी माँ पर कुर्बान होकर उनमें मिल जाए।

वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। बंदिनी माँ को न भूलो, राग में मत झूलो, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हूं जहां बलि शीश अगणित, एक शिर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो।

0: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मैडम।
0: मैम सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
1: जी ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
0: तो मैम FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
1: जी इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO के

0: नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपये किलो मिलता है वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपये किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाए तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
0: जी यही तो पूरा खेल है, फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाज़ार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सकें। दूसरी बात यह है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है।
1: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं?
0: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन हैं उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो हैं उनके साथ एक बैठक करने की ज़रूरत है। अपने ज़िले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड, उनके कार्यालय में संपर्क करने की ज़रूरत है। सरकार भी FPO बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
1: मैम, अब मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें FPO बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं?
0: जी ज़रूर, तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो FPO होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल FPO के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की, तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं, और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है, और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो, वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO, व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
1: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो, तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
0: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम, इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
1: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
0: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10-15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
1: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता ले।
0: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
1: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
0: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
1: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
3: TB?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। TB हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
8: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं, और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है, और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
9: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें।
12: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
8: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी एफएम ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे धान में कीट व्याधियों का नियंत्रण कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस एन रे। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: डॉक्टर साहब, धान में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उनके नाम सबसे पहले बता दीजिए।
1: बिहार भारत की सर्वाधिक धान उगाने वाला राज्य है। बिहार राज्य में धान की खेती एक प्रमुख फसल के रूप में की जाती है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन उपज क्षमता सबसे कम होती है। कम उपज क्षमता के बहुत से कारण हैं, परंतु कीट समस्या सबसे प्रमुख है। धान की अच्छी पैदावार कीट समस्या का एक मुख्य बाधक रही है। खरीफ मौसम में तो कीट समस्याएं बढ़ाने में और भी उपयुक्त है। इस मौसम में आबोहवा आर्द्रता के साथ साथ गर्म रहती है। यह कीटों के प्रबंधन एवं गुणन के लिए बहुत ही सहायक है। अतः इस मौसम में उचित वातावरण मिलने पर फलस्वरूप इसकी संतति तीव्र गति से बढ़ती है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उचित वातावरण मिलने पर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे धान का तनाबेधक कीट, धान का मधुआ कीट, गंधी कीट, राई सिस्पा, सैनिक कीट आदि। इस कीटों के अलावे धान में लगने वाले प्रमुख कीट धान की बभनी, धान का केसवर, धान का पत्र बेलक, धान का पतंगा आदि हैं। धान की फसल की क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों एवं कीटनाशियों के प्रबंधन में जानकारी आवश्यक है, जिससे कि उचित समय पर कीटों को रोकथाम कर सकें।
0: जी डॉक्टर साहब, तनाव भेदक कीट की बात करते हैं, ये तो धान को फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, साथ ही प्रबंधन कैसे करेंगे?
1: तनाव भेदक मादा पतंग हल्के पीले रंग उजली कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल पर बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों के गुच्छे से रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। यह मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं, जिसको हम लोग शिशु कहते हैं। यह लार्वा पत्तियों से चलकर पौधे की बढ़ती कोमल में भेदक तने में घुस जाती है और अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप तना सूख जाता है
0: जी।
1: इसे डेड हार्ट का या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती तथा इन्हें वाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल दो या अधिक बार ली जाती, तना बेधा का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करें। प्रबंधन में हम बताना चाहते हैं इस कीट के बचाव हेतु रुपाई के समय पौधों की पत्तियों को ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रुपाई करें, ताकि इस कीट के अंडे गुच्छे में खेत में न जा सके। पौधों को रोपने से पहले जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस एवं साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तना बेधक का बचाया जा सकता है। तना बेधक व्यस्त को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तना बेधक कीट के अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। तना बेधक की आर्थिक क्षति होने पर कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम, फिप्रोनिल 0.3 g, 15 किलोग्राम कार्बोफुरॉन 3 g, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में काटा हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
0: जी, तो ये बात हो गई तनाभेदक कीट की, उसका नियंत्रण से कैसे पहचानते हैं और ये कैसे हानि पहुंचाता है फसलों को। मधुआ कीट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसका पहचान कैसे किया जाए?
1: धान का मधुआ कीट भी प्रमुख कीट है। यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर लंबी होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुँचाते हैं। यह कीट धान के पौधे के तनों से रस को चूसते हैं, जिसे पत्तियां सूख एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था में हॉपर बर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान की ऊपरी भूमि में अपेक्षा निम्न भूमि की धान पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के तनों को रस चूसता है, जिसे पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के प्रकोप होने पर वृद्धि की अवस्था में पुष्प एवं गुच्छ निकलने के बाद होता है, तो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10-70% तक क्षति हो जाती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। हरा मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। इसका प्रबंधन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपनी करने से इसका प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप अधिक होता है, उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा नेत्रजन का प्रयोग इस कीट के बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों की क्षति प्रति हिल 5-10 मधुआ कीट दिखाई दे, तभी कीटनाशी दवा का प्रयोग करें। तरल दवा में विप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 250 मिलीलीटर या थायोमिथोएक्जेम दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस कीट का ध्यान रखें कि कीटनाशी का घोल पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुँचे।
0: जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया था गंधी कीट जो एक प्रमुख कीटों में से एक है जो धान में लगते हैं और इन्हें हानि पहुँचाते हैं, तो इसका प्रबंधन और इसकी पहचान कैसे की जाए?
1: गंधी कीट भी एक बहुत ही हानि पहुंचाता है। यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है, जिसके पीठ पर काले बादामी रंग का धब्बा पाया जाता है। इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, जिसकी इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। इस कीट की प्रकोप आघात वाले किस्म में ज़्यादा होता है। वयस्क मादा पीले रंग का 20 से 30 अंडे पत्तियों के एक कतार में देती है। इस अंडों से 6-7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों अवस्था में फसल को दुग्धावस्था के दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों पर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण अगाध प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट का आक्रमण हो जाता है, उस खेत के धान को चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए खेत के मीणों को खरपतवार न उगने दें, क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। खेत में प्रकाश प्रपंच जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर 20 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से, ताकि व्यस्त कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत को चारों ओर धान की फसल को साफ कर देना चाहिए, घास के साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या एक से अधिक प्रति हील दिखाई पड़े तो इकालक्स डस्ट या मलाथियन डस्ट या प्रोफेनोज डस्ट का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में इसका भुरकाव करें, जिससे कि इसे निदान मिल सकता है।
0: जी, और अब बात करते हैं पत्र लपेटक कीट की, इसकी पहचान और नियंत्रण कैसे करें।
1: पत्र लपेटक कीट भी कभी कभी बहुत ही हानि पहुंचाता है। इस कीट की भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिससे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षति पाई गई है। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का व्यस्क हल्का बादामी रंग का होता है, तथा इसको पंखों पर काली धारियां पाई जाती हैं। व्यस्क मादा पत्तियों की सिराओं को या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इस अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागों बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ देती हैं और अंदर ही अंदर हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां की सफ़ेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु लार्वा, जिसको लार्वा का अवस्था कहते हैं, फसल ज़्यादा पहुंचाता ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इस प्रबंधन के लिए खेत के मेंढ को उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इस कीट की संख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच, जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें, ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने हेतु ट्राइकोग्रामा क्लोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। अंतराल पर 6 बार करें। 10% पत्तियों की क्षति होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण हेतु कोई रासायनिक दवा करते हैं तो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 800 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1,000 लीटर में पानी का छिड़काव के साथ कर सकें।
0: जी, डॉक्टर साहब, अंत में एक और कीट सैनिक कीट, ये भी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है, जो कि फसल को हानि पहुंचाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे करें।
1: सैनिक कीट ही बहुत ही हानि पहुंचाता है। जब धान पकने की स्थिति में होता है, उस समय यह कीट बहुत ही अधिक हानि पहुँचाता है। इसके शिशु हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं, क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यह कीट धुंधली के बाद रात में पौधों को पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं, और इस कीट का के द्वारा अधिक आक्रमण होने पर पकने के पूर्व ही फसल की बालियां कटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अधिक आक्रमण होने पर पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए धान की कटाई के बाद पुआल एवं खर पतवार एवं को नष्ट कर देना चाहिए। धान के कटते ही हल चलाकर खेत को जुताई कर देना चाहिए, जिससे कि शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु या एक वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो खेत के मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 800 से 1,000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, या कोशिश करें कि जो भी किसान करें लार्ज स्केल पर करें, जिससे कि इसका निदान मिल सके। नहीं तो एक जगह आक्रमण करने पर या दवा देने पर दूसरी जगह भी ये चले जाते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि समूह में इसका उपचार करें।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, उनका पहचान कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, सारी जानकारी आपको किसान भाइयों मिल गई होंगी और आशा करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। 7 सितंबर 2026 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में विद्यार्थियों के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव यानी RAWE रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस को और अधिक व्यवहारिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल का नाम है एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान, यानी वन स्टूडेंट वन फार्मर वन सॉल्यूशन। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर DR सिंह ने किया। इस अभिनव पहल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK से जुड़कर RAWE कर रहे देश के 19 विश्वविद्यालयों के 397 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत अब प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान से जोड़ा गया है। विद्यार्थी किसान के खेत पर जाकर उसके कृषि कार्यों को समझेगा और किसान की एक प्रमुख समस्या की पहचान करेगा। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी किसान के साथ मिलकर उस समस्या का स्थानीय व्यवहारिक और कम लागत वाला समाधान खोजने और उसे खेत पर लागू करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य RAWE को केवल खेत भ्रमण या कृषि कार्यों का अनुभव प्राप्त करने तक सीमित रखना नहीं है। इसके माध्यम से RAWE को समस्या की पहचान, समाधान की खोज और उसके वास्तविक प्रभाव से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में किसानों के अपने अनुभवों और नवाचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। किसानों द्वारा विकसित जमीनी नवाचार, स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक कृषि अनुभव और कम लागत वाली तकनीकों की पहचान की जाएगी और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उपयोगी नवाचारों को वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा और सफल पाए जाने पर उन्हें अन्य किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल में किसान को केवल तकनीक प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता के रूप में देखा जाएगा। विद्यार्थी किसान की समस्या को समझने के साथ साथ उनके अनुभव और स्थानीय ज्ञान से भी सीखेंगे। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की पूरी कार्य प्रणाली की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी और किसान के बीच नियमित संवाद होगा। किसान और कृषि परिवार की आधारभूत जानकारी का संकलन किया जाएगा। इसके बाद समस्या की पहचान, वैज्ञानिक निदान, समाधान का संयुक्त विकास, खेत पर उसका प्रयोग, नियमित निगरानी, परिणामों का आकलन और दस्तावेजीकरण जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्यक्रम की सफलता का आकलन भी ठोस परिणामों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए तकनीक को अपनाने की दर, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, किसान की आय में वृद्धि, संसाधनों के बेहतर उपयोग, किसान की संतुष्टि और सफल समाधान को अन्य किसानों द्वारा अपनाया जाना प्रमुख संकेतक होंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलन किया गया और इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर डीआर सिंह ने कहा कि एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि REWE कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान के साथ जोड़कर उसकी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। माननीय कुलपति ने कहा कि किसान आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, फसलों में रोग एवं कीट, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, सिंचाई की समस्या, बढ़ती उत्पादन लागत और फसल के उचित मूल्य का न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के साथ मिलकर इन समस्याओं के व्यवहारिक और कारगर समाधान खोजें। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहा कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को खेत पर जाकर वास्तविक स्थिति को समझना होगा और ऐसा समाधान देना होगा जिसका किसान के जीवन और कृषि कार्य पर स्पष्ट और मापनीय प्रभाव दिखाई दे। माननीय कुलपति ने इस पहल को लैब टू लैंड और लैब टू लैब का बेहतर उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जहां विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा, वहीं किसानों का अनुभव और स्थानीय ज्ञान भी विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा। माननीय कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को किसानों से संवाद करने के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि किसान से बातचीत करते समय उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसकी वास्तविक समस्या को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसानों के खेत की फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेने और पूरे कार्य का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यदि आपके प्रयास से किसी किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है तो इसे ही अपने जीवन की असली कमाई समझे। कार्यक्रम के दौरान REWE विद्यार्थियों ने एक विद्यार्थी, एक किसान, एक धान पहल से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी। डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज की REWE विद्यार्थी अदिति पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस पहल में किसान केवल लाभार्थी नहीं होंगे बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता होंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव के विद्यार्थी स्वप्निल ने किसानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और किसान डेटा तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यार्थियों ने माननीय कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर की वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अनीता कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर.के. सुहाने ने कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को इस पहल के उद्देश्य और कार्य प्रणाली से अवगत कराया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर ए.के. शाह ने विद्यार्थियों को किसानों की समस्याओं के समाधान से संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। वहीं निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम के अंत में सह निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर.एन. सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब बात करते हैं इस पहल से REWE को किस तरह नई दिशा मिलेगी। एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि REWE को और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी किसान की समस्या को केवल देखे नहीं बल्कि उसे समझे, किसान के साथ मिलकर समाधान खोजे और उस समाधान के परिणाम को मापे। इस पहल में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। KVK विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ किसान नवाचारों की पहचान, उनके वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण में भी सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों और किसानों के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा, किसानों की वास्तविक समस्याएं विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगी और विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा। साथ ही देश के 19 विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों की सहभागिता से विभिन्न क्षेत्रों के कृषि अनुभव, स्थानीय ज्ञान और नवाचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान का लक्ष्य है कि RAWE के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक किसान की एक वास्तविक समस्या को समझे, उसके समाधान की दिशा में काम करे और किसान के खेत पर उसके सकारात्मक एवं मापनीय प्रभाव को सुनिश्चित करे।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: की बहुत अच्छी संभावना है आय बढ़ाने में। इस फसल का नाम है गार्लिक चाइव। किसान भाइयों, आज के समय में खेती के सामने कई सारी चुनौतियां आती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, तापमान में भी अक्सर आप देखते हैं कि उतार चढ़ाव होता है, पानी की कमी तो बहुत बड़ी समस्या है, और खेती की बढ़ती लागत, बाजार में अच्छी कीमत वाली फसलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और ऐसे समय में हमें ऐसी फसलों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कम क्षेत्र में उगाई जा सकती है और बार बार उपजते, पोषण से भरपूर हो और बदलती जलवायु में भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर सके। और गार्लिक चाइव एक ऐसी ही संभावनाशील फसल है, और इसके बारे में यानी कि गार्लिक चाइव के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी से। मैम, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, BAU सबौर से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। ये आज के श्रोताओं के लिए, जैसे किसान भाइयों बहनों, आपके लिए एक नया क्रॉप है, आपने पहली बार सुना होगा इस गार्लिक चाइव के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम ट्यूबरोसम, और यह प्याज और लहसुन वाले कुल जैसे एमिलडेसी, इसकी एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय सब्जी है। इसकी हम लोग देखा जाए तो पत्तियाँ इसकी लंबी होती है, पतली होती है और हरी होती है, जिस तरह से लहसुन और प्याज का होता है। बट इसमें क्या होता है, ये हम लोग बार बार इसको काट कर हम लोग खाया जा सकता है, और इसका सुगंध एवं एकदम से लहसुन की तरह लगता है, जिसके वजह से इसको गार्लिक चाइव बोला गया है। इसको हम लोग तड़के पे खाते हैं, आलू चोखा में आप डाल सकते हो, सूप में डाल सकते हो, चटनी बना सकते हो, नूडल्स वगैरह में, यानी कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी पत्तियों की कटाई के बाद पौधे पुनः बढ़ते हैं, तो इसीलिए उचित प्रबंधन के साथ एक ही खेत से कई बार हरी पत्तियों की उपज प्राप्त की जा सकती है।
0: जी मैम, अगर हम पोषण की दृष्टि से बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है?
1: जी बिल्कुल उमा। तो और देखा जाए कि आज उपभोक्ता केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं चाहता, बल्कि ऐसा भोजन चाहता है जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो। इसी कारण पोषण युक्त सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो इनमें से जो गार्लिक चाइव है, इसकी जो हरी पत्तियां है, इसमें विभिन्न विटामिन, खनिज तत्व, आहार फाइबर तथा जीव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा पे उपलब्ध है, कैरोटीनॉइड्स तथा विभिन्न सल्फर भी भरपूर मात्रा में पाए गए हैं, जिससे हम लोग देखा जाए कि लहसुन के पत्तियों से भी ज़्यादा इसमें मात्रा पाया जाता है।
0: जी, और अगर हम बिहार के दृष्टि से बात करें तो ये बिहार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है?
1: बिहार में सब्जी उत्पादन की अच्छी संभावना है, ये सब हम सब जानते हैं। यह छोटे और सीमांत किसान बड़ी संख्या में है, और कम क्षेत्र में अधिक मूल्य प्राप्त करने वाली फसलों की आवश्यकता रहती है। तो गार्लिक चाइव को खेत के साथ साथ हम लोग किचन गार्डन, पोषण वाटिका और छोटे व्यवसायिक प्लॉट में भी उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ताजी, विशिष्ट और स्वस्थ वर्धक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। यदि किसान स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट और प्रत्यक्ष उपभोक्ता बाजार से जुड़ते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे, यहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से विशेष सब्जियों से अतिरिक्त आय प्राप्त करने की संभावना बन सकती है।
0: और मैम, हमने जलवायु अनुकूल के बारे में भी बात की, तो जलवायु अनुकूल कितना है गार्लिक चाइव?
1: जलवायु परिवर्तन के दौर में हमें केवल अधिक उत्पादन देने वाली फसलों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जलवायु सहिष्णु और विविधीकृत फसल प्रणालियों को अपनाना चाहिए। गार्लिक चाइव अपेक्षाकृत मजबूत फसल है और उचित संभव प्रबंध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। इसकी बार बार पत्तियों की कटाई की क्षमता किसान के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकती है। हालांकि देखा जाता है कि किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फसल की सफलता के लिए सही किस्म, उपयुक्त मौसम, मिट्टी, सिंचाई, पोषण और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए बिहार के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसके वैज्ञानिक परीक्षण और स्थानीय उत्पादन तकनीक का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिशा में हमारे BAU साबुन

0: में भी इसका शूट शुरू हो चुका है।
1: जी मैम। मैम अब हम इसकी खेती की बात करते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई बहन गार्लिक चाय की खेती करते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: अगर देखिए जैसे कि गार्लिक चाय है, इसके लिए हम लोग को अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। खेत में पानी का लंबे समय तक जमाव नहीं रहना चाहिए। जैविक खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग मिट्टी का संरचना और उर्वरता सुधारने में सहायक हो सकता है। पौधों की स्थापना के लिए स्वस्थ रोपण सामग्री का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी के बाद उचित दूरी पर पौधे को स्थापना करनी चाहिए। जैसे हमको पता है कि इसमें क्लोव नहीं बनता है, तो इसका होता है नीचे का जो एक राइजोम रूट्स होता है उसको हम लोग कट करके लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लम्प। तो इससे हम लोग लगाते हैं 15-10 की दूरी में। तो सिंचाई आवश्यकता के अनुसार हम लोग को करनी चाहिए इसमें, और खेत में अधिकतम पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। तो फसल में खरपतवार नियंत्रण, संतुलित पोषण और रोग कीट की नियमित निगरानी आवश्यक है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही और अनुचित मात्रा में ही करना चाहिए, जबकि इसमें इस फसल में पाया गया कि बहुत ही कम किसी कीटाणु या कोई बीमारी का प्रभाव पड़ता है।
1: जी मैम, आजकल हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहन और हम लोग भी जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं और जैविक खेती को ही अपनाना चाहते हैं, तो गार्लिक चाय में जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, आज किसान खेती की लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में भी सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो गार्लिक चाय की खेती में हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और अन्य जैविक स्रोतों के समन्वित उपयोग पर ध्यान दिया जा सकता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में, पोषण तत्व की उपलब्धता बढ़ाने और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली विकसित कराने में भी मदद मिल सकती है।
1: जी मैम, अगर हमारे किसान भाई बहन आमदनी बढ़ाना चाहें गार्लिक चाय की खेती की मदद से, तो क्या मूल्य संवर्धन भी किया जा सकता है?
0: देखिए किसान भाइयों, केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दें। तो गार्लिक चाय की ताजी पत्तियों को साफ करके छोटे पैकेटों में बाजार में बेचा जा सकता है और इसको हम लोग अलग दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। तो स्थानीय मांग, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, इसमें अधिकतम इसका मांग ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर अन्य राज्यों से भी लोग रहते हैं और वहां पर इसकी डिमांड जो होता है वो ज्यादा रहता है। तो इसके अनुसार हम लोग इसको उपयोग मसाला मिश्रण, सूखी पत्तियों या अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों में भी इसको किया जा सकता है। इससे किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमी मिलकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा कर सकते हैं, और इसको हम लोग इसी में ही नहीं पोषण वाटिका में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। गार्लिक चाय केवल व्यवसाय किसानों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार के लिए उपयोगी है, हो सकता है। इसको हम लोग घर की पोषण वाटिका में लगाया जा सकता है, थोड़ी सी जगह में इसे उगाकर परिवार को ताजी हरी पत्तियां उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे भोजन में विविधता आती है और परिवार के आहार में भी हरी सब्जियां की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
1: जी मैम, तो क्या गार्लिक चाय में अभी भी अनुसंधान की जरूरत है?
0: बिल्कुल, गार्लिक चाय को बिहार में एक संभावनाशील अल्प उपयोगी सब्जी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसके विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। इसी दिशा में हमारे बीएयू साबौर में इसकी शोध शुरू हो चुका है, जिससे बिहार के अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों में इसकी किस्मों की मूल्यांकन, रोपण समय, पौध दूरी, सिंचाई, पोषण प्रबंधन, मल्चिंग, जैव उर्वरक, जैविक खाद को तथा कटाई प्रबंधन पर व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही इसके पोषण गुणवत्ता, बाजार मांग, उत्पादन लागत, लाभ लागत अनुपात और उपभोक्ता पसंद का भी हम लोग अध्ययन शुरू किया गया है।
1: जी मैम, मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी मेरे किसान भाई और बहनों, खेती में सफलता केवल परंपरागत फसलों से ही संभव नहीं है। समय की मांग है कि हम फसल विविधीकरण को अपनाएं और बाजार तथा पोषण की मांग के अनुरूप नई एवं अल्प उपयोगी फसलों को अपनी खेती में स्थान दे। गार्लिक चाय ऐसी ही एक फसल है जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, फसल विविधकरण, जलवायु अनुकूलन और अतिरिक्त आय, इन सभी क्षेत्रों में संभावनाएं दिखाई देती है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि किसी नई फसल को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले किसान भाई स्थानीय स्तर पर छोटे क्षेत्र में इसका परीक्षण करें, बाजार की मांग को समझे और कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग की सलाह जरूर ले।
1: जी मैम, तो किसान भाई बहन, जैसे कि मैम ने कहा, बाज़ार की मांग को समझना चाहिए और जो नई फसल है उसमें भी आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शोध करें, यानी कि नई फसल, नई सोच और नया बाज़ार, यही भविष्य की टिकाऊ खेती का आधार है। गार्लिक चाय जो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे अल्प उपयोगी गार्लिक चाय जैसे अल्प उपयोगी सब्जी फसलें हमारे खेतों में विविधता ला सकती है, हमारे भोजन को अधिक पौष्टिक बना सकती है और किसानों के आय के लिए नए अवसर खोल सकती है। आइए हम ऐसी फसल को बढ़ावा दें जो पोषण से भरपूर हो, बदलती जलवायु के अनुकूल हो और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बने। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हमारे किसान भाई बहनों को एक नई फसल के बारे में जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं।
0: धन्यवाद उमा, मुझे भी आपने ये अवसर दिया है।
1: जी मैम, तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फॉस्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फॉस्फोरस कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से सस्य फसलों के लिए, और बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
1: उमा, अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है और हमारी जो बिहार की किसान हैं उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें, और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: तो मैम, फास्फोरस क्या है अब ये बताइए।
1: जी, फास्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है, अगर आप सुने होंगे ATP, ADP, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी कोशिकाओं के लिए फॉस्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए। तो फॉस्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसमें फॉस्फोरस जरूरी होती है, जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन, और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
0: तो मैम, सस्य फसलों में अगर हम फॉस्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है।
1: जी, हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फॉस्फोरस बहुत इम्पोर्टेंट या जरूरी होती है, यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फॉस्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में, और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में, उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फास्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फास्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फास्फोरस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
1: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है, और जलोढ़ मिट्टी गंगा की गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फास्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फास्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फास्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 to 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्गीय होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 to 20 or 30% तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 to 20% यानी 15 to 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 to 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
1: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फास्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उस के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फास्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि डीएपी, एसएसपी और हम लोग यहाँ पे एनपीके के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फॉस्फरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फॉस्फरस के केस में है, जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फॉस्फरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो ले ले, अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूअर, जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूअर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए, उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस की वो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप पीएसबी को लेकर भी, चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फॉस्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो, तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी। यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे, तो ये सिद्ध हो चुका है, विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे, ये 20-30% फॉस्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है। यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
1: जी जरूर। फॉस्फरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
0: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू वेरी मच उमा।
0: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर,
13: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
14: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
13: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
14: आपकी सेहत की बातें,
13: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
14: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
13: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
14: वो कहाँ पर?
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
14: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 4 सितंबर से 8 सितंबर के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्व हवा चलेगी। कमजोर मानसून को देखते हुए एक सामान्य सलाह ये है कि कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की बीएलएम 389, आरयू 8, बाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं। जो चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें और 20 पाइरिबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। जिनके खेत में मक्का लगा है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की पहचान होती है कि उनकी मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर या लाल चना की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग और छटाई, इसके साथ ही निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत की आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं के लिए साफ और ताजा पीने की पानी की व्यवस्था करें और उन्हें संतुलित आहार दें। आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूँ आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्ने हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आपको अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, BCDE जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज़ आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है, आपका मूड कैसा होगा। अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफ़ी अच्छा रहता है, कभी काफ़ी ख़राब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी, सी, डी, ई और बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा। लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना? तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले खास बात की, अपना रखें एकदम खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप बने रहें 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: കൃഷി. നമസ്കാരം, ആപ് സുൻ റഹേ ബിഹാർ കൃഷി വിശ്വവിദ്യാലയ സബോർഡ് സേ സാമുദായിക റേഡിയോ 90.8 FM ഗ്രീൻ. ഓർ ആപ് സഭി കാ സ്വാഗത് കർത്തി ഹോ ഹമാരേ ഇസ് ഖാസ് കാര്യക്രം ഉന്നത് കൃഷി കാര്യക്രം മേ. ജി ഹാ, കിസാൻ ഭായിയോ, ജിസ്കാ ഇന്തസാർ ആപ്കോ രഹതാ ഹൈ ഓർ വോ കാര്യക്രം ഏക ബാർ ഫിർ ആപ് സുൻ റഹേ ഹൈ. ഓർ ഇസ്മേ ആജ് ഹം ദാലോ കേ ബാരേ മേ ജാൻ റഹേ ഹൈ, യാനി ദാൽ, ആജ് അർഹർ ദാൽ കേ ബാരേ മേ ഹം ജാനേംഗേ. ആപ് ഇസ്കി ഖേതി കൈസേ കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സാഥ് ഹി അർഹർ കി ഖേതി കേ ലിയേ ആപ്കോ കൗൺസി ഭൂമി ചയൻ കർനി ചാഹിയേ, കൗൺസേ പ്രഭേദോ കോ ആപ്കോ लेना चाहिए, इसके साथ ही अगर कुछ रोग व्याधि लगते हैं तो आप उनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीट कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें आज आपको अगर आप हमारा यह कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको सुनने को मिल जाएंगी. तो इस खास विषय के साथ हमारे बीच आज हैं डॉक्टर आनंद कुमार. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज पूरी की पूरी जानकारी आप इनसे सुन सकते हैं. सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मौसम अनुकूल अरहर की उन्नत खेती कैसे करके ज़्यादा हम लोग फायदा कर सकते हैं. तो जैसा हम लोग जानते हैं कि दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है तथा यह भोजन का अभिन्न अंग है. दलहनी फसलों में अरहर एक प्राचीनतम एवं लोकप्रिय फसल है. भारत में प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चना के बाद दूसरा स्थान रखता है. जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती, मृदा की उर्वर शक्ति को कायम रखने में या और पोषण सुरक्षा में अरहर जैसी दलहनी फसलों का अति महत्वपूर्ण योगदान है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है वह शाकाहारी है, उसे प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन्स की प्रतिपूर्ति हेतु दैनिक भोजन में दालों का समावेश अति आवश्यक है. अरहर एक ऐसी फसल है जिसको हम लोग उसकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं. अरहर प्राय असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है. अरहर सूखा प्रतिरोधी, जिसमें उच्च प्रोटीन युक्त 20-22% प्रोटीन पाई जाती है. नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति के वृद्धि गुणों के कारण यह फसल अब हमारे सीमांत किसानों के बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है.
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि क्या क्या ये इनकी विशेषताएं हैं, और अब खेती की बात करते हैं. तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि भूमि का चयन, तो कैसी भूमि में की जाए जो किसान भाइयों को इससे उपज अधिक हो.
1: किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरहर की खेती में भूमि का चुनाव एक अत्यंत जो हम लोग ध्यान रखने

0: करें और गहरी जुताई करने के बाद खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े सूर्य की गर्मी से मर जाएं। दो तीन बार खेत की अच्छी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। जुताई के समय गोबर की सरी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। अरहर के खेत में पानी का जमाव कभी नहीं होना चाहिए। जहां अधिक वर्षा होती हो वहां रेस्ट बेड, जैसे हम लोग कहते हैं उठी सैया बनाकर या मेर या नाली बनाकर बोना एक आदर्श बुआई विधि है। अतः अधिक उपज लेने के लिए फसल को इस विधि से लगाना अधिक उपयोग होगा। आजकल हमारे बिहार में जितने भी हमारे किसान भाई जो जो मेर पर है वो अपना मेर के जमीन का ज़्यादा उपयोग अरहर की खेती के लिए कर रहे हैं।
1: तो ये थी कुछ बातें जैसे कि आप जिसे आप करके अधिक मुनाफा पा सकते हैं। पानी बिल्कुल नहीं जमा रहने दीजिए और पानी खेतों से बिल्कुल निकाल लीजिए अगर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ उन्नतशील प्रभेदों की, तो उन्नतशील प्रभेद कौन कौन से हैं अरहर के जिसकी बुआई करके हमारे किसान भाई अधिक लाभ कर सकते हैं?
0: किसान भाई, हम लोग को प्रभेद का चयन के समय एक सावधानी बरतनी यही है कि हम लोग जो भी प्रभेद का चयन करें वो ऐसे प्रभेद लें जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन देने वाली प्रजातियां का इस्तेमाल से अरहर की उत्पादकता को हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिहार में अभी भी कि मात्र 20-30% किसान ही अरहर की उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः अरहर की उन्नत कीट रोगी प्रतिरोधी किस्मों के बीज को समय पर उपलब्धता एवं किसानों द्वारा उपयोग किया जाना बेहतर उपज के लिए निहायत जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अरहर की खेती दो समय में करते हैं, एक है खरीफ मौसम में और दूसरा सितंबर के समय में। तो जो खरीफ मौसम में करते हैं उसको लगाने का समय है 1 से 31 जुलाई। उसमें हमारे बीच बहुत से हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय चाहे दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है उससे आप लोग जो उन्नतशील प्रभेद जैसे IPA 203 यह प्रभेद अभी नवीनतम प्रभेद है और 2017 में इसको अनुशंसित किया गया है। यह प्रभेद 240 से 250 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी उपज औसत उपज 18 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे अरहर में दो रोग बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे उकठा एवं बंधता मोज़ेक रोग, ये उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। उसी तरह एक और नई किस्म आई है जो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से विकसित की गई है, यह है IPA 206। ये 260 से 270 दिनों में परिपक्व हो जाती है और इसका औसत उपज बहुत अच्छा है, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये उकठा के प्रति प्रतिरोधी है तथा इसका दाना मध्यम होता है और अंडाकार बीज इसका है। इसी तरह हमारे बिहार में जो राजेंद्र अरहर एक है उसका भी जो परिपक्व होने का समय होता है मैच्योरिटी का जो है वो 260 से 70 दिनों का है, जो 28 से 30 क्विंटल इसका औसत उपज है। ये भी उकठा के प्रति सहिष्णु एवं बंधता मोज़ेक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और जैसा कि पहले भी हमारे किसान भाई बहार उषा 9 नरेंद्र अरहर की खेती मालवीय अरहर 13 जैसे प्रति जो प्रभेद है उसका प्रयोग करके अच्छा उपज प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा जो हमारा सामान्य आकस्मिक फसल योजना, जैसे कभी कभी होता है कि मानसून दगा दे दिया और आदमी का खेत खाली हो रहा है, तो सितंबर के मौसम में भी अरहर की खेती कर सकते हैं और उसमें लगाने का समय है 25 अगस्त से 15 सितंबर। जैसा कि हम लोग सितंबर अरहर में दो प्रभेद अनुशंसित है, पूसा 9 और शरद। पूसा 9 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाता है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। और दूसरी वेरायटी है शरद जो 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। तो ये आकस्मिक फसल के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आकस्मिक फसल के रूप में भी आप अरहर की फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्नतशील प्रभेदों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, अब शस्य क्रियाओं को बताएं कि कौन कौन से शस्य क्रियाएं हमारे किसान भाई अपनाएं जिससे कि उनको इसकी खेती करके लाभ हो।
0: अरहर में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी फसल अच्छी उपज लेने के लिए बीज दर के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। जैसे समानतः अरहर की बुआई में हम लोग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज दर से बुआई करनी चाहिए और यदि हम लोग सितंबर अरहर लगाते हैं तो उसमें हम लोग को बीज दर 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी होगी। और जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग छोटे बच्चे को क्या करते हैं कि बहुत से रोगों को बचाने के लिए टीका लगवाते हैं, उसी तरह हम लोग को भी फसलों में रोग व्याधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप विकसित करने के लिए उन लोगों को भी टीका लगाना होगा, जैसे बीज को टीका लगाना होगा। बीजों को प्रारंभिक अवस्था में उकठा के रोग के को फसल से बचाने के लिए बीजोपचार करना अति आवश्यक है। तो बीजोपचार हम लोग कैसे करें इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो बुआई के 48 घंटे पूर्व हम लोग को सबसे

0: पहले 2.5 ग्राम थीरम या 1 ग्राम बेबेस्टिन अथवा 1.5 ग्राम थीरम तथा 0.5 ग्राम बेबेस्टिन के मिश्रण को प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि हमारे एक हेक्टेयर के लिए यदि हम 20 किलोग्राम बीज लेते हैं तो उसको उसी के हिसाब से हम लोग को इससे गुना करके उसको उतना मिश्रण हम लोग को बनाना होगा। और जिन खेतों में दीमक का प्रयोग अधिक हो उसमें फफूंदनाशक से बीजोपचार के उपरांत क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा आती है 20 EC 20 EC दवा 6 से 8 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को अच्छे से उपचारित कर देना चाहिए। उपचारित करने के बाद हम लोग को बीज को जीवाणु संवर्धन से बीजोपचार जैसे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार विभिन्न दलहनी फसलों के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम कल्चर होते हैं। यदि हम अरहर के लिए बीजोपचार करने जा रहे हैं तो अरहर बीजों को उपचारित करने के लिए संस्तुत राइजोबियम कल्चर का ही प्रयोग करना चाहिए। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर जो एक पैकेट में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर होता है वह 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो अरहर में 20 किलो बीज के लिए हम लोग को 2 पैकेट की आवश्यकता होगी। उसको कैसे हम लोग करते हैं तो 100 ग्राम गुड़ अथवा चीनी आधा लीटर पानी में घोल लेना चाहिए। घोल को गर्म करके ठंडा करके एक पैकेट राइजोबियम कल्चर अच्छी तरह डंडे से हिलाकर मिला देनी चाहिए। बाल्टी या घड़े में 10 किलोग्राम बीज डालकर घोल में मिला देना चाहिए ताकि राइजोबियम बीज की सतह पर अच्छी तरह चिपक जाए। इस प्रकार राइजोबियम को कल्चर को सने हुए बीज को कुछ देर छाह में सुखा देना चाहिए। जहां तक संभव हो बीजोपचार सायं काल में करें ताकि तेज धूपों में बीजों को सूखने की संभावना न रहे। धूप से बीजों को सुखाने में राइजोबियम जीवाणु मर जाते हैं जिससे वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। उस राइजोबियम कल्चर के उपरांत हम लोग को PSB कल्चर जिसको फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया से बीजोपचार करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर के भांति ही फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया कल्चर का पैकेट उपलब्ध रहते हैं जिन्हें बाजार या हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सवोर में खरीदा जा सकता है। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार की तरह ही PSB कल्चर का बीजोपचार करना चाहिए। एक बात किसान भाई बहुत जरूरी है कि हम लोग यदि पंक्ति में अपने फसल को लगावें तो हमारा उपज अपने आप बढ़ जाता है। तो खरीफ मौसम में यदि हम अरहर की खेती कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि सितंबर में हम लोग अरहर की बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। किसान भाई दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उर्वरक का प्रयोग अरहर की खेती में कैसे करें। दलहनी फसल होने के कारण नेत्रजन की आवश्यकता कम होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उसमें उसके जड़ में ग्रंथियां होती है जो नेत्र जो वायुमंडल से नेत्रजन स्थिरीकरण कर पौधे को अवेलेबल कराता है। समांतर परिस्थिति में हम लोग 20 किलोग्राम नेत्रजन 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस की दर से डालना चाहिए। और सितंबर अरहर यदि हम लोग उसकी बुआई कर रहे हैं तो उपरोक्त उर्वरक की अतिरिक्त बुआई 25 से 30 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन करें निकाई गुड़ाई के समय कर दें। यदि भूमि में जिंक और सल्फर की कमी हो तो बुआई के समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फेट का प्रयोग करें। एक बात सबसे बड़ा है कि खरपतवार की समस्या हमारे अरहर के खेत में बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार की समस्या से हम लोग कैसे इसको निजात पा सकते हैं। खरीफ फसल एवं लंबी अवधि वाली फसल में खरपतवार की समस्या प्रमुख है। खरपतवार के कारण फसल की पैदावार में 40 से 50% की कमी देखी गई है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण में पिन्नी मेथिलीन 30 EC 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के उपरांत अंकुरण पूर्व छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त इमीजा थाइपर जो एक नया मॉलिक्यूल है 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 दिन बाद छिड़काव कर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: तो किसान भाइयों यहाँ पर आपने जाना कि आप बीजोपचार कैसे कर सकते हैं, साथ ही उर्वरक का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए और खरपतवार का प्रबंधन आप इसमें कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ हो। और डॉक्टर साहब रोग की बात करते हैं, रोग व्याधि भी बहुत इसमें लग सकते हैं, तो इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई।
0: अरहर की फसल को प्रभावित करने वाले हमारे प्रमुख रोगों में उकठा, तना विगलन, बंधता मोजैक चाहे पीला मोजैक या सरकसपोरा पर्णचीतियाँ प्रमुख हैं। इन रोगों के प्रकोप से औसतः हम लोग 15 से 25% तक नुकसान हम लोग को होता है। इन रोगों को समुचित प्रबंधन हम लोग कैसे करें इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि उकठा रोग के हम लोग लक्षण कैसे पहचानें। सामान्यतः इस रोग का संक्रमण अधिकतर फसल की प्रारंभिक अवस्था 4 से 5 सप्ताह में होता है, किंतु किसी भी अवस्था के पौधे इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। खेत में यह रोग छोटे छोटे स्थानों में पैच के रूप में कई स्थानों में दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, देखिएगा तो वह मुरझाकर सूख जाते हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी की कमी के कारण ये मुरझा गए हों, जबकि वास्तव में खेतों में पर्याप्त नमी होती है। रोगी रोधी के तने का निचला भाग तथा संवहन उत्को जिससे उसको पानी और भोजन के जाता है, जिससे उसका रंग भी काला पड़ जाता है। यदि रोगी रोधी पौधे को उखाड़कर उनकी जड़ों को चीरकर देखा जाए तो उन पर पतली पतली कालियां धारियां दिखलाई पड़ती है। यदि रोगी रोधी पौधे के तने की लंबाई को चीरा जाए तो उसमें से काली धारियां दिखाई पड़ती है, जो कि भूमि की सतह से 3 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब हम लोग इस जानेंगे कि इसका हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। अधिक सबसे पहले इसको रोकथाम के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फसल चक्र अपनाना होगा। अधिक वर्षों का फसल, जैसे 4 से 5 वर्षों का फसल चक्र अपनाने के साथ खेतों में खरपतवार नियंत्रण बनाए रखने और गर्मी के समय में गहरी जुताई करके भूमि में परे रोगजनक नष्ट कर देने होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा है कि थीरम या कर्बेंडाजिम 2:1 के अनुपात से मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि अरहर का फसल चक्र तंबाकू के साथ किया जाए तो रोग की कमी देखी गई है, क्योंकि तंबाकू की जड़ों से निकलने वाले रोगजनक के हानिकारक होते हैं। यदि अरहर को ज्वार के साथ मिलाकर बोया जाए तो संक्रमण कम किया जा सकता है। ऐसे हम लोगों के पास रोगी रोधी किस्म अब बहुत से आ गए हैं, जिसकी हम लोग खेती करके इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। जैसे अभी हम बताए IPA 203, IPA 206, चाहे नरेंद्र अरहर 1, मालवीय अरहर 3। उसी तरह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोग अरहर में बंधता मोज़ेक रोग है। इसमें इसके लक्षण होते हैं, रोगी पौधे खेतों में हल्के हरे दिखलाई पड़ते हैं तथा स्वस्थ हरे पौधों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्राय रोगी पौधे की पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, जिस पर अनियमित आकार के हल्के हरे और गहरे हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोगी पौधे पर फूल और फल उत्पन्न नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, उनमें से शाखाएं निकल फूटती है, जिससे पौधे झाड़ी नुमा दिखाई पड़ते हैं। प्राय पौधे की कुछ शाखाएं रोग संक्रमित होती है तथा बाकी शाखाएं से बिल्कुल स्वस्थ होती है। रोगी शाखाओं पर फल फूल नहीं आते हैं, जिससे स्वस्थ हिस्से में फल फूल आते हैं। इसके प्रबंधन में हम लोग को क्या क्या रखना चाहिए, इसकी रोकथाम हम लोग कैसे करें, तो सबसे पहले खेत में सफाई रखनी चाहिए, खरपतवार आदि को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जिस खेत में अरहर को बोना है उसके आसपास अरहर के पुराने या स्वयं उगे पौधे को उखाड़ देना चाहिए। और रोग रोधी किस्म जो हम लोग बताए हैं, IPA 203, 206, मालवीय अरहर 13, ये प्रभेदों को लगाना चाहिए। खेत में जो ही रोगी पौधे दिखाई दें तो इमिडाक्लोरोपीड, रोगी पौधे के साथ इमिडाक्लोरोपीड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर जो कीड़े दिखाई दें उसे, जैसे हम लोग को सफ़ेद मक्खी दिखाई दे उसे ये इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। उसी तरह जैसे कीट प्रबंधन अरहर में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें फली छेदक जो कीड़ा होता है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें कीट का व्यस्क जो रहता है वो पीले भूरे रंग का होता है एवं सफ़ेद पंख के किनारे काले रंग की पट्टी बनी होती है। इसके पिल्लू हरे रंग के होते हैं, जिनके पीठ पर गहरी भूरी रेखाएँ दिखाई देती है। इस कीट के पिल्लू के प्रारंभ में पत्तियां को खा जाती है तथा बाद में फलियों को छेद कर इसके दाने को भी खा जाती है। इसके प्रबंधन में हम लोग को ध्यान रखना है कि खेत में को गर्मी में हम लोग गहरी जुताई करें, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें तथा सबसे बड़ा है कि 10 फेरोमोन फंदा, जिसको हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का ल्योर लगा के प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाना चाहिए। हम लोग प्रकाश फंदा का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। आजकल जैसे कि हम लोग जैविक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो 15 से 20 टी आकार का बर्ड पर्चर प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जिससे कि वो हमारा जो पहले जो कौवा या कोई जानवर हो, कौवा जो हमारा जो है वो भी हमारा खेत में जो इसका जो लार्वा है उसको खा जाए। खरीफ फसल में इसके अतिरिक्त एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे जैविक दवा है NPB 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। अरहर के लिए 500 के प्रति हेक्टेयर की मात्रा से NPV वायरस गोल का छिड़काव कर फली छेदक अंडे देने के समय कर सकते हैं। दोबारा अंडे देने की स्थिति में 15 से 20 दिनों के बाद NPV का छिड़काव करें। यदि फली छेदक का संक्रमण अधिक हो तो अरहर के पौधों को जोर से हिलाकर लार्वा को पॉलीथीन की चादर या जूट के बोरी में जमा करके नष्ट कर दें। या एक दवा आती है प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव फूल आने के समय तथा दूसरा छिड़काव फली बनाते समय करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये इस विधि से यदि हम लोग अरहर की खेती करें तो अरहर फसल की पैदावार जो हमारा जो उन्नतशील प्रभेद है जो उससे हम लोग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना अरहर के बारे में, अरहर की खेती और वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं। और इस बहुत ही अच्छे विषय के साथ हमारे साथ थे डॉक्टर आनंद कुमार। और दोस्तों, हमारे किसान भाइयों, आपसे आशा करते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है आप उन्हें सुनेंगे और अपनी खेती में ज़रूर उसे अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृति मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद उमा, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
6: मैम, सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों की जो स्थिति है और उनका जो योगदान है उसके बारे में बताइए।
10: बिल्कुल, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक है और इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो लगभग ऐसा है कि 80% ग्रामीण महिलाएँ हैं जो कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न होते हैं और इनमें से लगभग 33% जो महिलाएं होती हैं वो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं तथा 48% जो महिलाएं हैं वो स्वयं अपने खेतों में किसानी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो 40 से 45% से भी अधिक होती है और ऐसे आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का लगभग 76-77% हिस्सा कृषि में ही कार्यरत है।
11: जी मैम,
10: ये स्पष्ट करता है कि भारत में कृषि का जो महिलाकरण है, जिसको हम की फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये तेजी से हो रहा है और खासकर पुरुषों के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण महिला केवल अब एक श्रमिक नहीं है, बल्कि वो एक उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन तक पूरे वैल्यू चेन में भी सक्रिय है और पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, बागवानी में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है और खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी इसे निभाती भी हैं। महिलाओं का जो इन सभी में जो निर्णायक रोल है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय भी है।
11: मैम, आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई काफ़ी आकर्षक है, लेकिन मैम बिहार के संदर्भ में स्थिति क्या है?
10: अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला किसानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उमा, क्योंकि यह राज्य कृषि पर ही आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है, तो अगर हम बिहार में प्रमुख आंकड़े की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है कृषि कार्यों में शामिल होती हैं और लगभग हर कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी होती है। राज्य में जैसे कि पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं अब हम सिर्फ इनको घर तक सीमित नहीं समझ सकते हैं, बल्कि ये फार्म मैनेजर की भूमिका भी निभा रही हैं आजकल। और अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसके माध्यम से भी महिलाओं का व्यापक संगठन हुआ है। जैसे कि जीविका की बात करें, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल, ना कि राज्य स्तर पर बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जो जीविका मॉडल है यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसका बहुत प्रसिद्ध मॉडल है, जिसमें कि अगर कहें तो 10 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुई हैं और अगर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लगभग हर दूसरे ग्रामीण परिवार तक पहुंच चुका है और अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जाती है। जैसे कि इसे अगर देखा जाए तो इससे अधिक बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें, या 15-20% तक किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 लाख से अधिक किसानों की आधुनिक कृषि प्रशिक्षण मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और सहायक भी होता है।
11: तो मैम, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को आप कैसे समझाते हैं?
10: अगर हम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को जाने तो इसका, इस मॉडल का ग्रामीण विकास में सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है आज के दिन में। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें सही मायने में तो हम इसको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें जैसे बचत हो गया, महिलाएं कुछ कुछ पैसे हर महीने जमा करती हैं और इनसे उनका आंतरिक ऋण, बैंक लिंकेज का जो ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है और कृषि निवेश में भी इन्हें सहायता मिलता है। अगर हम कृषि आधारित उद्यमिता की बात करें जो हमारी महिलाएं हैं, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह मशरूम उत्पादन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, डेयरी की बात करें अगर हम, बकरी पालन हो गया, या खाद्य प्रसंस्करण की भी बात जैसे अचार, पापड़, मिलेट उत्पाद का जो आजकल वैल्यू एडिशन होता है वो सब में भी इनको इससे मदद मिलता है। जैसे कि सामूहिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सामूहिक खेती हो गया, या इनपुट के माध्यम से सामूहिक खरीद भी होता है, उत्पादों का सामूहिक विपणन भी कर सकते हैं। और अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, पंचायत में भागीदारी, या स्वास्थ्य, या पोषण और शिक्षा में सुधार, ये एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रभाव है जो कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देखा जा सकता है।
11: तो मैम, क्या हमारे राज्य में इस दिशा में कोई विशेष पहल भी की जा रही है?
10: जी हाँ, बिहार में तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी ऐसे हमारी जो सरकार हैं वो बहुत पहल चलाती हैं और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। तो अगर हम कहें तो इसके माध्यम से महिलाएं बचत करती हैं, और आपस में ऋण भी ले लेती हैं। और छोटे छोटे कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन की मैंने बात करी, या वर्मी कंपोस्ट, या अचार पापड़ जो हम बनाते हैं उस सब की आदि की भी शुरुआत करती हैं। सो इसके अलावा ये समूह जो होता है सामूहिक खेती इनपुट जो कि मैंने पहले भी बताया है, और उत्पादनों के विपणन में भी सहयोग करते हैं, तो इससे कम लागत में इनकी आय बढ़ती है। और अगर राज्य से हम राज्य से स्तर को देखें और उसके बाद हम अपने अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी पहल को देखें, तो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी राज्य के साथ साथ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य ना केवल शिक्षा और शोध है, बल्कि किसानों तक तकनीक को पहुँचाना और उनके कौशल विकास करना भी है। तो अगर हम इसमें कुछ पहलों के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ, तो जैसे प्रशिक्षण एवं क्षमता को निर्माण करते हैं हम इनकी, जैसे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिला किसान जो हैं और स्वयं सहायता समूह को भी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मशरूम उत्पादन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, या मधुमक्खी पालन के ऊपर, या जैविक खेती, ऐसे पशुपालन, ऐसे बहुत सारे जो उद्यमता जो हैं उसके शामिल होते हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे महिला केंद्रित कार्यशालाएँ भी होती हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर दी जाती है, आयोजित की जाती है, और इसमें महिलाओं को नई तकनीक, धान उत्पादन, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि उद्यमता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये हमारे जो राज्य की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उद्यमता को अपनाना चाहती हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। ये सब हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समय समय पर जैसा कि हम अभी रेडियो टॉक दे रहे हैं, ऐसे डिजिटल और रेडियो के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं। तो विश्वविद्यालय एफएम रेडियो जैसे 90.8 एफएम ग्रीन है और इसका मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को, विशेषकर महिला किसानों को, समय समय पर कृषि सलाह और मौसम जानकारी भी पहुँचते रहता है। और अगर हम सब बातों का जो हम कहते हैं जो सार है महिला सशक्तिकरण, वो कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय जैसे कृषि सखी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इनसे महिलाएं आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती सीखकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करती है। तो हम सिर्फ एक महिलाओं के ऊपर नहीं बल्कि हम पूरे समाज के लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो प्रयासरत है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो, हम उनको कैसे सशक्त बना सकें। और इसके अलावा कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होती है जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है या लखपति दीदी है, ये सब अभियान भी महिलाओं को सशक्तिकरण है। और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं उनको भी इनसे लाभ होता है।
11: जी मैम, आपने बहुत सारे पहलों के बारे में बताया, बहुत सारे योजनाओं के बारे में आपने बताया, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि न केवल हमारा राज्य बल्कि हमारा अपना विश्वविद्यालय भी इतने अच्छे प्रयास कर रहा है। तो मैम, क्या इन पहलों का या इन प्रयासों का कोई प्रभाव दिख रहा है?
10: बिल्कुल उमा, इन पहलों से महिलाओं की आय भी बढ़ी है और वो आत्मनिर्भर भी बनी है, और अब वे केवल श्रमिक नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा भी अवार्ड मिला है, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया। और अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो इसके माध्यम से उनकी बाजार तक जो पहुँच है वो बढ़ी है। हम सही बात अगर सही मायने में की जाए तो, और वे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में भी आगे आ रही हैं, उद्यमता जैसे कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो 2.7 लाख महिला किसान जो हैं वो कृषि उत्पादक संघ से जुड़ी हुई हैं बिहार में, और इनसे इनका सामूहिक विपणन से आय में भी वृद्धि हो रहा है।
11: तो मैम, भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतियां भी होती है, तो क्या चुनौतियां भी सामने आती हैं?
10: जी हाँ, हर चीज़ में जो हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी उसके फायदे होते हैं उसके चुनौतियां भी होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जी हाँ, कई गंभीर चुनौतियां भी हैं इस राह में। तो जैसे भूमि स्वामित्व की अगर बात करें तो भूमि स्वामित्व में महिलाओं की कम भागीदारी होती है और तकनीक और संसाधनों भी महिलाओं तक जो है वो सीमित होती है। तो मजदूरी में भी असमानता देखी जाती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें तो मेन जो होता है महिलाओं के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी होती है। और हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, जो उनका रोल होता है, वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज में। तो इसको हम जितना कम कर सके और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में अपना भागीदारी आगे आकर निभाएं, तो इससे इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
11: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां तो हैं और ये वाकई और हर घर में ऐसी चुनौती देखी जाती है। ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आकर इसका सामना करें और वो अपने हक के लिए बात करें। तो मैम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
10: जो हमारी महिला किसान हैं, महिला कृषक बहनें हैं और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी महिलाओं हैं, जो बहनें हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृषि विकास की धुरी हैं और यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग या बाजार से जुड़ाव दिया जाए तो ये ना केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं। अगर हम बिहार जैसे राज्यों में यह मॉडल पहले से सफल है ये हम जान रहे हैं, जैसे मैंने जीविका की बात कही, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है और वो हमारी जो सरकार है, हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये पहल कर ही रही हैं और कार्य ये जारी है, ये जो प्रयास है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो प्रयास हैं इससे और मजबूत करने की आवश्यकता है। और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं से जुड़कर प्रशिक्षण लें और नई तकनीकों को भी अपनाएं। इससे ना केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।
11: जी मैम, धन्यवाद। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ ही जिन चुनौतियों के बारे में आपने बात की वो चुनौतियाँ महिला और समाज खुद ही उनका निदान निकाल सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
10: धन्यवाद उमा।
11: और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
12: उन्नत कृषि
13: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
14: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
13: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
15: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के।
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करे। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होते हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज के उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखता, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
1: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
3: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
4: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली।
5: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
6: अरे हाँ, गाड़ी रुको।
5: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
6: हाँ, अब बन गई रेल।
4: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
5: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
6: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
7: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
6: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
7: चलो
4: रेल चली भाई रेल चली,
7: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
5: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
7: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
5: अच्छा
7: अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
6: दादाजी मैंने देखी है।
7: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
6: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
7: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
5: अरे वाह,
7: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
5: हाँ आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेल

0: गाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
1: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
2: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
1: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
2: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ जाओ।
1: बैठो बैठो, जल्दी खड़े हो, बैठो बैठो बैठो, बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
2: उतरो उतरो।
3: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
1: हाँ हाँ उतरो बेटी।
4: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
0: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
1: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
0: अच्छा, तो ये बात है।
1: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
0: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
3: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
0: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
0: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
0: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।

बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे गांव गांव और शहर शहर तक वो

डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ഉന്നത് കൃഷി.
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं. उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं. तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
2: धन्यवाद. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
1: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ. सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं.
2: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है. जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं. तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं. सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं. और जैसीड जो लीफ हॉपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है. और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं.
1: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
2: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है. ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है. और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसकी वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है. और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है.
1: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
2: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं.
1: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
2: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं. जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है. अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है.
1: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है.
2: बिल्कुल.
1: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
2: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए. और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं. तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है. लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे. तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें. और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें. खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
0: अच्छा।
2: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़ा होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो है उसका 1500 ppm 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
1: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
2: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि

0: टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
2: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज
सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। दोस्तों जहां हम बातें इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के बारे में, किस प्रकार के उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल से आप मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि जल विलय उर्वरक क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग करना चाहिए और उनके उपयोग से क्या फायदा होता है। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो उर्वरकों का महत्व बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उर्वरक। लेकिन बाजार में बहुत सारे उर्वरक मौजूद हैं और उनमें से एक है जल विलय उर्वरक। ये क्या है, क्यों जरूरी है, आज इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से। सर आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जल विलय उर्वरक क्या है।
1: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के।

0: लिए जल जल विलय उर्वरक या फिर जिनको हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर उस तरह के उर्वरक होते हैं जो पानी में पूर्णतः घुलनशील होते हैं और जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व त्वरित एवं संतुलित रूप में उपलब्ध कराते हैं। और जो आधुनिक कृषि है, विशेषकर संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई या फिर फर्टिगेशन जैसे प्रणालियों में इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।
1: सर, जैसे कि आपने बताया कि इसका उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसी कुछ विशेषताएं ज़रूर होंगी, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
0: जल विलय उर्वरकों की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले तो आता है कि ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। इनमें ऐसे कोई पदार्थ नहीं होते हैं जो अघुलनशील होकर रह जाएं। शीघ्र अवशोषण या फिर तुरंत मिट्टी में जाने के बाद या फिर पौधों पर छिड़काव करने के बाद वो तुरंत उनमें घुल जाते हैं।
1: अच्छा।
0: सटीक मात्रा में इनका उपयोग करना ज़्यादा आसान होता है पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले। और ये अपने तरीके से मैक्रो, माइक्रो या फिर जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है। फर्टिगेशन या फिर फोलियर स्प्रे, जिसको हम पौधों में छिड़काव कहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से उपयुक्त हैं।
1: सर, इनका महत्व क्या है कृषि में?
0: इनके कई सारे महत्व हैं, मैं कुछ ज़रूरी महत्व आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ हमारे किसान भाई बहनों के लिए। जो सबसे पहला इसका महत्व है वो है इसका त्वरित पोषण उपलब्धता। जल विलय उर्वरक पौधों की जड़ों या पत्तियों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाते हैं, जिससे फसल की प्रारंभिक वृद्धि, पुष्पन एवं फलन में तेज़ी आती है। उसके बाद इनकी उपयोगिता फर्टिगेशन जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उर्वरकों की बचत भी होती है, श्रम की लागत में भी कमी आती है और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद पोषक तत्वों की जो उपयोग दक्षता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी भी कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है, लीचिंग को कम करता है, वाष्पीकरण जो पोषक तत्व होते हैं जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं उसको भी रोकता है और सटीक समय पर पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। ये ज़्यादातर उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पे ज़्यादातर कारगर साबित होता है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, फलों की आकार और रंग को भी बढ़ाता है और अधिक उत्पादकता के साथ साथ बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी लाने की सक्षमता रखता है।
1: यानी कि मतलब ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसकी वजह से ये पौधों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है।
0: जी
1: सर, आप ये बताइए कि ये पारंपरिक उर्वरक से कैसे अलग है?
0: देखिए, हम जो पारंपरिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो है यूरिया है, डीएपी है, पोटाश है, जिसको हमारे किसान भाई बहन यूज़ करते हैं। पारंपरिक उर्वरक जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग फर्टिगेशन, संरक्षित खेती या फिर ड्रिप इरीगेशन जैसी चीज़ों पर, पौधों में छिड़काव करने के लिए उनका उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं उनमें कुछ और कण भी होते हैं जिनका इसकी वजह से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। तो जल विलय उर्वरक उस मुकाबले में उनसे बेहतर हैं, क्योंकि पूर्ण तरह से घुलनशील होते हैं और पौधों को अच्छी तरीके से हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, फर्टिगेशन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की जो दक्षता है, उपयोग दक्षता है, वो पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पारंपरिक उर्वरकों में हम 20 से 25 या फिर 30% तक उपयोग दक्षता देखने को मिलता है हमें, लेकिन जब हम जल विलय उर्वरकों की बात करें वहाँ पे हम 80-90% तक उपयोग दक्षता बढ़ा सकते हैं पोषक तत्वों की। और लागत में भी उसके मुकाबले, पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले, इसमें लागत भी कम है। भले ही इसकी जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है, उससे थोड़ा अधिक है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं, अपने कृषि प्रणाली में इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: सर, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से उर्वरक, जल विलय उर्वरक बाजार में मौजूद है, इसके कुछ उदाहरण दे दीजिए।
0: कुछ प्राथमिक पोषक तत्वों के भी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी हैं, जैसे कि यूरिया फॉस्फेट एक उर्वरक है, जिससे हम 17% नाइट्रोजन, 44% तक फॉस्फोरस का पौधों तक पहुँचा सकते हैं फॉस्फोरस। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं, जिसमें 16% तक नाइट्रोजन होते हैं और 19% तक कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं, ज़्यादातर फल की फसलों में हमारे लिए बहुत उपयोगिता दिखाता है, उसमें 13% नाइट्रोजन और 46% पोटाश हैं। उसी प्रकार मोनोअमोनियम फॉस्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे और उर्वरक हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं।
1: सर, जब भी हम किसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ सावधानियां अपनाते हैं। जब हम जल विलय उर्वरक की बात कर रहे हैं तो इनमें भी कुछ विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती होगी।
0: जी, कुछ प्रमुख ऐसी सावधानियां हैं, जैसे कि हमें कभी भी किसी भी उर्वरक को प्रयोग करने से पहले, वो चाहे पारंपरिक उर्वरक हो या जल विलय उर्वरक हो, सबसे पहले हम कहते हैं अपने किसान भाइयों बहनों से कि मृदा का परीक्षण अवश्य करें। मृदा परीक्षण के आधार पर ही इनका उपयोग करें, अनुशंसित मात्रा में ही इसका उपयोग करें, और अत्यधिक सांद्रता से पत्तियां जलने की संभावना होती है, इसलिए उसका सांद्रता या फिर जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं उसको कम या फिर अनुशंसित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें। स्वच्छ जल का प्रयोग करें सिंचाई के लिए, जिसमें लवण की मात्रा कम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छी तरीके से हम सिंचाई का जल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलग अलग उर्वरकों को मिला के अगर हम कुछ तैयार कर रहे हैं तो उनका आपस में संगतता या फिर संगतता, जिसको हम कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, कि आपस में वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना बना ले, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम फर्टिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसे चीज़ों के लिए उसका उपयोग करें।
1: मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो कि पारंपरिक उर्वरक के समय भी हम ध्यान रखते हैं, वो ज़रूरी है। सर, और कुछ?
0: जैसे कि हम कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य है अधिक उत्पादन पाना, बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उच्च दक्षता का, अगर हमारा लक्ष्य अधिक उत्पादन पाना, बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उच्च दक्षता का अगर हमारा लक्ष्य है तो जल विलय उर्वरक अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। जबकि पारंपरिक उर्वरक व्यापक क्षेत्रीय क्षति में, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं, वहाँ पर उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है।
1: सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये पारंपरिक उर्वरक से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पौधों में इसका जो क्योंकि पौधे इसे बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं।
0: जी, और इसमें दक्षता भी ज़्यादा होती है पारंपरिक उर्वरक के मुकाबले।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं

0: सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
8: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर,
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
2: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
12: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि चूंकि वर्षा भी होती रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है तो बड़ी तेजी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
2: यस सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
12: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है, या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र कहे तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं, तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है,

उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूं है इसको लगाते हैं कम से कम एक साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है, और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं और आपके की मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है। और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब वो तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा फिर बढ़ेगा अपना जीवन चक्र पूरा करेगा तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्यतः दो चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर दो बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से एक महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है, ये वेजिटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया तो पौधा चूँकि बहुत कमज़ोर रहता है तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है।
तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। उसके बाद जो है कि हम लोग जो जो लाइन

0: से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है, इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो, चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में, तो खरपतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है, वहाँ पे जो कीट है वो छुपे रहते हैं, छुप जाते हैं, और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पर आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं, इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पर कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश मेमो ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश मेमो रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
1: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है, तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है, तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है, और इसमें जो है और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है, बैंगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं, तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गूंद लगाया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है उसकी संख्या घट जाती है, और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन के फ्रूट एंड शूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है और जब फल निकलने लगता है भिंडी का, तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मलमूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड शूट बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते हैं दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है जो नीम का जो तेल है उसका जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड शूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलवुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 gram मात्रा 10 liter पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है, तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुदकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है, ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपकी जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है 1 hectare में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है, और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं ये येलो वेन मोज़ेइक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जाकर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों, इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है और उसके बाद जो कीटनाशी है जैसे थायोमेथोक्सिजम 25WG इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सिजम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोक्सिजम 25WG एक टारा के नाम से भी आता है, एक टारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी आधा ML मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो एलोवेरा मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं जिसको आप लोग लोकल भाषा में टुकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोक्सिजम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इसे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम जरूर करता है लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगा लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेस से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताए 90.8 FM गेन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

0: ഭാരത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है. अक्सर हम ऐसी कुछ सब्जियों को खाते हैं जो हम अगर बिहार के बाहर जाएं तो बहुत कम लोग जानते हैं और बाहर मिलता भी नहीं है, जबकि उन सब्जियों में भी काफी पोषक तत्व होते हैं और काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होता है. लेकिन बावजूद इसके उन सब्जियों पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो अल्प उपयोगी रह जाते हैं. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी फसलों की भूमिका के बारे में. और इस बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी. आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से. मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा और धन्यवाद मेरे भाई बंधु किसान भाइयों और एवं बहनों. मैं आज आपसे जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड फसलों की भूमिका इस विषय पर चर्चा करूंगी. तो देखा गया कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है. बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी तथा नई नई कीट एवं रोग समस्याएं किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रही है. ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है जो बदलती जलवायु के अनुकूल हो तथा कम संसाधनों में भी अच्छा उत्पादन दे सके. अल्प उपयोगी अथवा अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलों इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रही है.
0: मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अल्प उपयोगी सब्जी क्या है.
1: अल्प उपयोगी सब्जियां वे फसलें हैं जिनका स्थानीय स्तर पर लंबे समय से उत्पादन और उपयोग होता रहा है, लेकिन आधुनिक कृषि एवं बाजार व्यवस्था में उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उसमें बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रहा है. सो इनमें से देखा जाए तो चौलाई, सहजन, मालाबर पालक, ककोड़ा, विंग्ड बीन, याम बीन तथा राइस बीन जैसे प्रमुख फसलें हैं.
0: मैम इसका क्या जलवायु परिवर्तन में भी कुछ रोल रहता है?
1: हाँ बिल्कुल, इन फसलों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जलवायु सहनशीलता ही है. अधिकांश अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कम पानी, अधिक तापमान तथा कम उर्वरक भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है. यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन में बढ़ते प्रभावों के बीच इनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है. उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं सहजन का पौधा, सूखा और गर्मी दोनों को सहन करने की क्षमता रखता है. मलाबार पालक जिसको हम लोग पोईसाक भी बोलते हैं, और चौलाई जैसे पत्तेदार सब्जियां कम अवधि में तैयार हो जाती है तथा विपरीत मौसम में भी किसानों को उत्पादन प्रदान करती है. इसी प्रकार ककोड़ा और विंग्ड बीन जैसे फसलें स्थानीय परिस्थितियों में अच्छी तरह विकसित होती है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकती है.
0: मैम ये तो बात हो गई जलवायु परिवर्तन की. अगर हम पोषक तत्व के नजरिए से समझे तो पोषक तत्व के नजरिए से इसका क्या महत्व है?
1: हाँ उमा, तो इसमें अल्प उपयोगित सब्जियां पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इनमें विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. सहजन की पत्तियां और फलियों पोषण का उत्कृष्ट स्रोत है, जबकि चौलाई में आयरन और खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है. इनका नियमित सेवन कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है.
0: मैम आजकल हम लोग काफी ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी अल्प उपयोगी सब्जी महत्वपूर्ण होता है?
1: जी बिल्कुल, इन फसलों के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है. इससे खेती की लागत कम होती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है. जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है. अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कृषि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है. जब किसान केवल कुछ सीमित फसलों पर निर्भर रहते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के समय जोखिम बढ़ जाता है. लेकिन विभिन्न प्रकार की सब्जियां का उत्पादन कृषि प्रणाली को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाता है।
0: मैम, अभी जब आपने उदाहरण दिए तो बहुत सारे ऐसे सब्जियों का आपने नाम लिया जो बिहार में पाए जाते हैं, बिहार के लोग खाते हैं, लेकिन बिहार में इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इन सब्जियों को?
1: हाँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। तो बिहार में भी इन फसलों के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें हम लोग गृह वाटिका, पोषण वाटिका, समेकित कृषि प्रणाली तथा व्यावसायिक खेती में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सकता है। इसीलिए इनके संरक्षण, उन्नत किस्मों के विकास, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारा BAU साबोर विशेष प्रयास कर रहा है।
0: मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों और श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कृषि में विविधता लानी होगी और ऐसी फसलों को बढ़ावा देना होगा जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन दे सके। अल्प उपयोगी या अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि पोषण, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी इन फसलों के महत्व को समझें, इनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दें तथा जलवायु स्मार्ट कृषि के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद उमा।
0: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई बहन और अन्य श्रोता, आपने इस बात को अभी जो मैम ने बताया, आपने समझा होगा कि कुछ जो अल्प उपयोगी सब्जी है वो कई पैमानों पर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उन सब्जियों को आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा, इस तरीके से हम अपनी ओर से इन सब्जियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और और 20 पायरी बेग सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरे जोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
10: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in। हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे। फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति डी 96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोंकण कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में। बिल्कुल आपको मालूम होगा, हम बातें करते हैं खेती बाड़ी की। और जहां तक बात है मशरूम की खेती की, तो बिल्कुल आजकल मैं देख रही हूं कि लोग जो हैं मशरूम की खेती करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम भी आपको मशरूम के बारे में, अलग अलग मशरूम के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो आज का जो विषय है पुआल मशरूम, आज हम पुआल मशरूम की खेती के बारे में जानेंगे। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं अनीता कुमारी मैडम, जो कि केवीके में, जी हाँ, केवीके सबौर में एसएमएस हैं और आज पूरी जानकारी के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, सबसे पहले तो जो मशरूम है, अलग अलग प्रकार के मशरूम होते हैं, उन्हें अलग अलग मौसम में उगाया जाता है, अलग अलग तापमान उनके लिए ज़रूरी होता है। तो ये पुआल मशरूम क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: अनु, हमारे बिहार राज्य का जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें अलग अलग मौसम में चार तरह के मशरूम की खेती की जा सकती है
0: जी।
1: इसमें ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पुआल मशरूम। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो पुआल मशरूम है। ये पुआल मशरूम को हम लोग पैडी स्ट्रॉ मशरूम भी कहते हैं, या फिर धान पुआल मशरूम भी कहते हैं, या फिर चाइनीज मशरूम भी कहते हैं, और इसे गर्मा मशरूम भी कहा जाता है। और ऐसे इसका जो प्रजाति है उसके अनुसार वोल्वेरिया वोल्वेरिया भी इसे कहा जाता है। और इसका जो इजाद हुआ था, सबसे पहले जो इसकी खेती शुरू हुई थी, वह 1822 में चाइना में, चीन में शुरू हुआ था। और इसका जो वोल्वेरिया शब्द का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो मशरूम का जो उत्पादन होता है, जिस वक्त यह मैच्योर होता है, उस वक्त उसके ऊपर एक वॉल्व टाइप का रहता है, वो फटता है तो हम जानते हैं कि इसकी तुराई हो गया है। और ये जो वर्ड है वोल्वेरिया वर्ड से इसलिए लिया गया है इसका नाम जो है, कि उसके वो जो तुराई का एक स्टेप है, या उसके उत्पादन का एक स्टेप है, जिसके जो कि इस वर्ड से जुड़ा हुआ है
0: जी। मैम, इसकी खेती कब की जा सकती है, तापमान इसके लिए क्या सुटेबल होगा?
1: इसकी खेती हम लोग अप्रैल मई से सितंबर तक आराम से कर सकते हैं। और तापमान की यदि हम बात करें तो 34 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम इसके लिए उपयुक्त होता है। और थोड़ा यदि टेम्परेचर इससे कम बेस हो तो हम लोग थोड़ा प्रबंधन करके वहाँ भी

0: हम लोग और भी जो तीन प्रजाति है मशरूम की, ऑयस्टर हो या बटन हो या फिर मिल्की हो, उसके उसके लिए जो पोषाधार लेते हैं, कृषि अवशेष जो लेते हैं, वो धान का पुआल का कुट्टी हुआ या फिर गेहूं का भूसा हुआ, मतलब वो हम लोग टुकड़े में लेते हैं, पुआल कुट्टी के रूप में लेते हैं। लेकिन ये जो पुआल मशरूम का जो हम लोग खेती करते हैं, पेडिस्ट्रो मशरूम का या पुआल मशरूम की जो खेती करते हैं, इसमें हम लोग धान का जो ताज़ा साफ सूखा हुआ पुआल जो होता है, उस पुआल का गट्ठर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो गट्ठर लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर का मोटाई होता है, गट्ठर का जो मोटाई होता है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। और जिस जिसे हम लोग कोई तेज धारदार हथियार से उसके जो जिस तरफ से धान का बाली निकला होता है या पीछे का पोर्शन, दोनों को काट के बराबर एक जिस डायमेंशन का कर लेते हैं, दोनों तरफ से तेज धारदार हथियार से काट करके उसको बराबर साइज का कर लेते हैं। और गट्ठर की जो मोटाई रखते हैं वह 20 से 25 सेंटीमीटर की मोटाई का गट्ठर रखते हैं। इस तरह का गट्ठर इसके लिए हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ जो मान लो हमारा उत्पादन कक्ष जो है, उस कक्ष में एक इसके लिए हम लोग मचान बनाते हैं। वो मचान जमीन से लगभग 1 फीट ऊंचा होना चाहिए और उसी मचान पर इसकी खेती की जाती है। इसके बाद हम लोग पुआल का गट्ठर बना लिए, पुआल के गट्ठर को रात भर पानी में भिगो देते हैं, किसी पानी के टैंकी या ड्रम जैसी भी हो, जो भी सुविधा हो उसमें हम लोग रात भर भिगो देते हैं। सुबह वहाँ उसे निकाल करके दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए।
1: जी।
0: जब अतिरिक्त पानी निकल जाता है तो तब उसे लगभग आधा घंटा तक खौलते पानी में उबालते हैं और उसके बाद फिर उसमें लगभग 2-3 घंटे छोड़ दिए, फिर उसको निकाल करके पुनः हम लोग दीवार के सहारे उसको खड़ा करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी है उसमें, वह अतिरिक्त नमी उसका निकल जाए। उसके बाद उसको गट्ठर को हम लोग जो मचान बनाए हुए हैं उस मचान पर हम लोग गट्ठर को का एक परत लगाते हैं, और परत जो हम लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं कि जिस तरह से एक बंडल हम रखे, दूसरा बंडल जो रखेंगे तो जिस तरफ से गट्ठर को हम लोग बांधे हैं वो अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक जो रखे हैं जिस तरफ से गट्ठर है तो दूसरी तरफ, दूसरी बार आपका जो पुआल जिधर से बाली लगा रहता है वो पोर्शन उसके बगल में रहना चाहिए। इस तरह से 6 से 8 गट्ठर हम लोग तह बिछा देते हैं, इसके ऊपर हम लोग मशरूम का स्पॉन डालते हैं, फिर दूसरा तह बिछाते हैं, फिर मशरूम का स्पॉन डालेंगे, फिर तीसरा तह बिछाते हैं। इस तरह से करीब 4 से 6 तह बिछाते हैं और इस प्रकार से तह बिछा के हमारा जो उसका ऊंचाई हो जाना चाहिए वो लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक तह का 4 से 6 तह जो देते हैं उसका ऊंचाई हो जाना चाहिए। उसके बाद उसको हल्का हल्का हाथ से हम लोग दबा देते हैं, दबाने के बाद ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट से उसको हम लोग ढक देते हैं। इसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद हमारा पूरा माइसेलियम रन हो जाता है। जब माइसेलियम पूरा रन हो जाता है तो हम लोग पॉलीथीन सीट को हटा देते हैं, उसके आवश्यकता अनुसार हल्का हल्का नमी डाल देते हैं उसमें, हल्का फुल्का नमी। उसके 2 से 3 दिन के बाद हमारा मशरूम निकलना शुरू हो जाता है और वो 1 से 2 दिन वो तुराई योग्य हो जाता है। यदि अनुकूल तापमान रहता है तो ये, चूँकि उस वक्त गर्मी काफ़ी रहता है, उसको मॉइस्चर मिलता है, तो इसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अनुकूल सारा कुछ इन्वायरमेंट अनुकूल रहे तो दिन में इसकी तुराई 3 बार भी करनी पड़ सकती है, सुबह दोपहर शाम, इतना फास्ट ये ग्रो करता है। तो इस तरह से हम लोग इसकी इसका इस तकनीक से इसको हम लोग उत्पादन
1: करते हैं। जी मैम, ये तो बात हो गई उत्पादन की, लेकिन अब बात करते हैं तुड़ाई की, कि तुड़ाई किस प्रकार करनी चाहिए और इसके बाद भंडारण किस प्रकार करनी चाहिए।
0: तुराई, जब तुराई के लिए जब मशरूम को हम लोग देखते हैं उसका ऊपरी सिरा, जो ऊपरी सिरा झिल्ली को फाड़ के, जब झिल्ली जब फट जाए उसके बाद ऊपरी सिरा दिखने लगे यदि मशरूम का, तो हम समझते हैं कि यह तुराई योग्य हो गया, उसको हम लोग तुरंत तोड़ लें। जैसा कि हम अभी पहले ही बताए कि यदि अनुकूल सारा चीज इन्वायरमेंट रहे, आइडियल रहे, तो इसकी इतना फास्ट बढ़वार होता है, कुछ दिन में 3 बार भी तुराई करना पड़ सकता है, तो उस अनुसार हम नहीं भी पड़ सकता है। ये जब अनुकूल रहेगा तभी हम 3 बार तुराई करेंगे, नहीं तो फिर 1 बार भी हो सकता है। तो जैसा आवश्यकता रहेगा उसके अनुसार हम लोग फटते ही, या तो फटने के जस्ट पूर्व तुराई करें या फट गया तो बिल्कुल तुरंत हमको तुराई कर लेना है, तुराई कर लेंगे। और इसको तुराई के बाद जैसे भंडारण की बात कही, तो भंडारण के लिए इस मशरूम का जो गुणवत्ता है वह भंडारण के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग इसको तुराई करके तुरंत उपयोग करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग तुरंत उपयोग कर लें। और इसका पहले तुराई जब सारा कुछ आइडियल रहा तो लगभग 9 से 10 दिन में हो कर लेते हैं, और यदि बहुत

0: तेल नहीं रहा तो भी 13 से 15 दिन के अंदर हम लोग इसका तुराई
1: कर
0: हो जाता है, मतलब काफ़ी फास्ट ग्रो, कहने का मतलब काफ़ी फास्ट ग्रो इसका होता है। और इसका जो टोटल पूरा फसल चक्र है वह लगभग 4 से 5 सप्ताह का होता है, 4 से 5 सप्ताह के अंदर इसका फसल चक्र तो आपका समाप्त हो जाता है। और यह चूँकि काफ़ी नाजुक होता है इसलिए इसकी इसका भंडारण यदि हम करना भी चाहें तो 2 से 3 दिन तक फ्रिज में कर सकते हैं, वो फ्रिज में भी टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो हम लोग 2 से 3 दिन तक इसका भंडारण कर सकते हैं। नहीं तो तुराई के कुछ घंटे के अंदर ही हम लोग को इसको उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो यह स्वविलय हो जाता है। और हम इस वजह से इसको हम लोग मार्केटिंग पर्पस से या तो इसका फिर प्रोसेसिंग पे चले जाइए, निर्जलीकरण करके कोई प्रोडक्ट बना लीजिए। तो इसको यदि हम फसल चक्र में इसको हम इंक्लूड करते इस मशरूम को तो एक टेस्ट के लिए कि अलग टेस्ट मिलता है, लेकिन हम यदि रॉ मार्केटिंग करना चाहें तो थोड़ा इसका रॉ मार्केटिंग में डिफिकल्टी आती है क्योंकि इसका स्व लाइफ काफ़ी कम है।
1: मतलब ये जितना फास्ट ग्रो करता है उतना ही फास्ट मतलब ये सड़ भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत जल्दी आप तुड़ाई के बाद इसका इस्तेमाल कर लें। मैम ये तो बातें हो गई भंडारण तुड़ाई की, बात करते हैं सावधानियों की, इसकी खेती के दौरान क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
0: जैसे कि अन्य मशरूम के खेती के दौरान जो सावधानियां हम बरतते हैं क्योंकि यह भी तो एक मशरूम फंगस है तो सारे के लिए सेम सावधानी लगभग सेम ही है, तो हम उसी तरह से पुआल मशरूम की भी यदि हम खेती करते हैं तो हम यह ध्यान रखें जो हम पोषाधार का जो पुआल का गट्ठर का हम चयन किए हैं वह बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना हो, पानी का भीगा हुआ होना चाहिए या सड़ा गला होना चाहिए, वो नहीं, बिल्कुल ताज़ा सूखा हुआ पुआल की गट्ठर का हम प्रयोग करेंगे। और जो भी जिस कमरे में हम इसकी खेती कर रहे हैं चाहे या पुआल सीट से जो ढक रहे हैं या मचान जो भी या उपकरण का उपयोग कर रहे हैं सारे चीज़ों को हम लोग फॉर्मलिन से 2% फॉर्मलिन से सारे चीज़ को हम लोग उपचारित कर लें, शोधित कर लें, उसके बाद ही उसको हम लोग बिजाई कक्ष में ले जाएं और उसका उपयोग करें। और स्पॉन जो भी हम इसके लिए स्पॉन का चयन करते हैं वो स्पॉन ताज़ा होना चाहिए, 1 महीने से पुराना स्पॉन किसी हाल में नहीं लेंगे, किसी भी रूप में जो स्पॉन हो वो दूषित नहीं होना चाहिए, और स्पॉन में कोई गीलापन नहीं होना चाहिए, कोई बदबू नहीं होना चाहिए, रंगीन दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, सब हम लोग को जब स्पॉन लेते हैं तो उस वक्त यह ध्यान देना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ स्पॉन में है तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए उस स्पॉन को, ऐसे या जहाँ तहाँ फेंके नहीं, नहीं तो वहाँ से फिर इन्फेक्शन आपके कक्ष तक आ सकता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इस मशरूम की खेती हम लोग गर्मी में करते हैं और उस वक्त गर्मी के समय में जो इन्वायरमेंट में जो जीवाणु इसका संक्रमण का दर काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो इस मशरूम के साथ साथ और दूसरे भी अवांछित जीवाणु आ जाएंगे और जो कि हमारे मशरूम को नुकसान पहुँचाएंगे। और जो आपका हमारा नमी बनाए रखना चाहिए 80 से 85% हमारा नमी रहे, तापमान कोशिश करना चाहिए कि हम जो अनुकूल तापमान है उसको भी बना के रखें तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, अनुकूलता ज़्यादा सही रहेगी। और जब हमारा फसल निकल रहा हो तो उस वक्त उसमें किसी तरह का डायरेक्ट फसल पर किसी तरह का रसायन का प्रयोग ना करें, और यदि और जो भी दूषित पन्नी या पुआल जो भी आपका उत्पादन के बाद निकलता है उसको उस उत्पादन कक्ष से हटा दें, और उसको आप जो भी उसका खाद बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन उत्पादन कक्ष से हटा लीजिए। जब एक फसल आप ले लेते हैं, फसल चक्र एक पूरा हो जाता है तो दोबारा फसल लगाना हो तो एक बार कमरे को अवश्य फिर से निर्जीवीकृत कर लें तो फिर उसमें हम लोग दूसरा फसल लगाएं। तीन सावधानियों को यदि हम बरतेंगे तो हमारा पुआल मशरूम की खेती काफ़ी अच्छी होगी और उसको कम से कम हम लोग अपने खाने के लिए कुछ बेड तो जरूर लगाएं ताकि हम अपने में आहार विविधता ला सकें और इसको अपने डाइट में हम शामिल
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं और किसान भाइयों और जो भी हमारे श्रोतागण पुआल की मशरूम की खेती करना चाहते तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये आज का टॉपिक था, तो आशा करते हैं कि बहुत कुछ सीखने को जानने को आपको मिला होगा और सावधानियों के बारे में जो मैडम ने बताया है तो आप उनको भी ज़रूर ध्यान में रखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ഉന്നത് കൃഷി. जी हाँ किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं रूबरू हो रही हूँ आप सभी के बीच, आप सभी के पास उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर. और हमारे साथ आज एक और खास मेहमान है और खास विषय भी है आप सभी के लिए, और वो है पपीता की वैज्ञानिक खेती. जी हाँ दोस्तों, वैसे हमारे भारत देश की बात करें तो रंग बिरंगे फल और फूल यहाँ पर मिलते हैं, और फलों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं ये फल, और बहुत सारे पौष्टिक गुणों से भरे रहते हैं ये फल. वैसे पपीता की बात करें तो इसकी वैज्ञानिक खेती एक जो समझ है वो हमें होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर किसान भाइयों को ये समझ होनी चाहिए. और इसी विषय पर और यही समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फिज़ा अहमद, जो है प्रोफेसर ऑफ हॉर्टिकल्चर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
0: और डॉक्टर साहब, जब पपीता की बात आती है तो खेती का सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सही समय क्या होता है.
1: देखिए, पपीता एक ऐसे फल है जो कि हम यहाँ पे हर समय लगा सकते हैं, सिर्फ आप ठंडे को छोड़ करके. उसकी वजह यह है कि पपीता जो है ठंडे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है.
0: अच्छा.
1: तो आप ये रखिए उम्मीद कि आपको नवंबर से लेकर के फरवरी तक पपीते को नहीं लगाना चाहिए, बाकी समय में आप कभी भी पपीता लगा सकते हैं. लेकिन पपीता लगाने के लिए आपको नर्सरी तैयार करना होगा, और जो एक अहम प्रक्रिया है पपीते का बाग लगाने के लिए. नर्सरी जैसे कि आपने फरवरी में लगा दिया है तो आपका एक महीने के बाद ये नर्सरी तैयार हो जाएगा, और आप मार्च में भी लगा सकते हैं. किसी वजह से आपने मार्च में नहीं लगा सके तो आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, मई में भी लगा सकते हैं. अगर मई में नहीं है तो जुलाई में, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस समय नर्सरी का प्रबंधन बहुत समुचित तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि आपको जैसा बताया कि पानी में पपीता नहीं चल पाता है.
0: अच्छा.
1: तो इसलिए आपको चाहिए कि जब पपीता का नर्सरी तैयार करना है तो आपको ज़मीन से करीब 1 फीट ऊपर का मट्टी का एक बना दें, रेज बेड बना दें, और रेज बेड पे ही आप उसमें सीड डालें.
0: अच्छा.
1: ताकि रेज बेड डालने से क्या होता है कि पपाया जो सीड है वो पानी के संपर्क में नहीं आएगा और मरेगा नहीं, इसलिए हमेशा रेज बेड पे उगाना चाहिए. नर्सरी प्रबंधन करने के लिए पपीता में सबसे अच्छा तरीका है कि इस चीज़ों के लिए हमें मट्टी में ज़्यादा नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि मट्टी में सीड का जर्मिनेशन बहुत कम होता है, क्योंकि सीड बहुत महंगे आ रहे हैं आजकल. इसलिए हमें हर सीड से पौधे बनने चाहिए. उसके लिए प्रोट्रे आता है. किसान भाइयों के लिए प्रोट्रे समझाना बड़ा मुश्किल है यहाँ से, वो विश्वविद्यालय आकर के यहाँ हम देख सकते हैं कि हम पपीता का सीड कैसे तैयार करते हैं. प्रोट्रे होता है, उसमें एक बुरादा हम लोग डालते हैं और उसमें थोड़ा सा मिक्सचर भी डाल देते हैं, जिससे कि पपाया का पौधा तैयार होता है. पपीता जो है इसमें वायरस बहुत लगता है. जब नर्सरी तैयार करते हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि उसको बाहर में छोड़ देते हैं, उससे वायरस लग जाता है. तो हम लोग उसको पपीता को बाहर में नहीं नर्सरी को तैयार करते हैं, अगर करते भी हैं तो उसमें हम लोग एक जाली नुमा दार जो है चद्दर डाल देते हैं, वो मार्केट में मिलता है,
0: कवरिंग
1: कर देते हैं, ताकि उसमें जो है कीट जो है नहीं घुस सके. अगर कीट वो चला जाएगा तो वायरस कर देगा, और वायरस कर देगा तो आगे चल के कुकड़िया रोग लग जाएगा इसमें, जो पपीता का सबसे बड़ी समस्या है. किसान भाई पपीता का बहुत अच्छा पौधा देखते हैं, 1-2 महीने के तक बहुत अच्छा चलता है, बाद में पता चला कि इसमें कुकड़िया रोग लग गया और कुछ भी फल नहीं आते हैं. ये सबसे बड़ा समस्या है इसके लिए. इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी वो नर्सरी तैयार करें, रेज बेड में करें, जमीन से उठे हुए एरिया में करें जहाँ पानी न लगता हो, और जब वो सीड डालें और जब पौधा निकलना शुरू हो जाए तो उसमें नेट लगा दे वो, ताकि इंसेक्ट नहीं जा सके उसमें. अगर कीड़ा जाएगा तो मुश्किल होगा.
0: डॉक्टर साहब, आपने कुकरैया रोग के बारे में कहा, अभी उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पपीता की खेती के लिए जो बीज से नर्सरी तैयार किया जाता है तो उसकी विधि क्या हो सकती है?
1: हाँ, हमने जैसे कहा कि जो प्रोट्रे है उसमें बहुत अच्छा होता है, उसमें आपको 100% जर्मिनेशन मिलेगा. और वही चीज़ अगर आप जमीन में लगा के करते हैं तो उसमें आपको 60%, 60% 70% तक मिलेगा, लेकिन प्रोट्रे में बहुत अच्छा होगा. और किसान को चाहिए कि वो विश्वविद्यालय आकर के सीखे कि पपीता का सीड को कैसे बनाया जाता है, उससे किसान बहुत लाभान्वित होंगे.
0: अच्छा, तो ये बात हो गई है यहाँ पर सीखने की. तो जहाँ तक बात आती है सीखने की, तो हमारे किसान भाई जितना कुछ सीखना चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में आकर सीख सकते हैं. फिलहाल यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है. हम कोशिश करते हैं कि आपको हम पूरी की पूरी जानकारी रेडियो के थ्रू, यानी कि हमारा जो FM ग्रीन है उसके थ्रू दें. फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब, जब बाग तैयार करने के तरीके आते हैं तो बाग तैयार कैसे करें, उस तरीकों के बारे में भी आप किसान भाई.
1: ये अहम प्रक्रिया है. बाग तैयार करने से पहले भूमि का चयन का बहुत जरूरी है, कि पपीता जो है वो पानी जहाँ लगता वो नहीं लगेगा, इसलिए ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पानी ना लगता हो। अगर बारिश में पानी एक रात भी अगर किसी खेत में लग जाएगा और वो पपीता के संपर्क में आ जाएगा तो पपीता रात भर में मर जाएगा। इसलिए किसान भाई इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जरूरत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस खेतों का चुनाव करें जहाँ की सालों भर पानी ना लगता हो। अगर पानी भर भी जाता हो तो 2 या 3 घंटे में वो पानी निकल जानी चाहिए, तो ऐसे खेतों का चुनाव होना चाहिए। और मिट्टी जो है दोमट बलुआही मिट्टी जरूरी है इसके लिए, बलुआही मिट्टी भी है, दोमट भी चलेगा इसमें, मतलब हर तरह के फील्ड में रहता है, लेकिन काली मिट्टी में ये नहीं चलेगा क्योंकि उसके रूट नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो ऐसे जब चुनाव कर लिया गया है तो ये वैरायटी पे डेवलप करता है कि कौन सी प्रजाति आप लगा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टिस है, ये अच्छी वैरायटी है और ये वैरायटी जो है पैदावार के लिहाज से भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये पौधा राजेंद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में, वहाँ पे IRI का रीजनल स्टेशन है, वो बीज तैयार करते हैं वहाँ पे और किसानों के लिए ही बीज वो तैयार किया जाता है। तो किसान पूसा में जा करके पपीता का बीज ला करके नर्सरी तैयार करेंगे। अगर पूसा डिलीशियस लगा रहे हैं तो वो 2 मीटर बाय 2 मीटर पे वो गड्ढा खोदेंगे जिसमें लगाना है, उससे करीब 15 दिन पहले गड्ढे को खुला छोड़ दें। अब छोड़ने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर उसमें 2 टोकरी कम से कम डाल दें। अगर वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है किसानों को तो वो भी 0.5 किलो 1 किलो के बीच में हर गड्ढे में डालते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बाग में जो हम पौधे लगाते हैं तो साथ ही हम जानना चाहेंगे आपसे कि पौधे की दूरी, मतलब पौधे के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी सेंटीमीटर है?
1: हाँ, जैसे वो लगा रहे हैं जो पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टिक है, जो पूसा ड्वार्फ है, ये सबको 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: आज जो चलन यहाँ हो रहा है बिहार में वो रेड लेडी का चलन चल रहा है यहाँ।
0: ये क्या होता है?
1: रेड लेडी एक वैरायटी है जो ताइवान से आती है।
0: अच्छा,
1: और ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है इसमें नर और मादा दोनों जो है फल देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसीलिए इसमें कहते हैं ना पपीता में कि आधे में फल आता है आधे में नर आता है, तो नर वाला तो फल नहीं देता है, लेकिन ये जो रेड लेडी वैरायटी है ये जो भी पौधा लगेगा खेत में सब में फल आएगा, इसलिए किसान जो है इसी को प्रीफर करता है कि हमको जो है हर पौधे में फल मिले। इसलिए ये वैरायटी जो है ड्वार्फ वैरायटी है, ये छोटा वैरायटी है।
0: हाँ।
1: तो इसको आप 1.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, ये 1.25 मीटर पे भी लगा सकते हैं।
0: और तो अक्सर देखा भी गया कि जो किसान भाई हैं वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द फल मिले हमें, तो ये वाला वैरायटी मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा।
1: जी जी, हर साल लगाना चाहिए, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है रेड लेडी में, इसमें बीमारी बड़ी जबरदस्त तरीके से लगती है। अगर सही समय पर इसका उपचार जो कुकड़िया रोग है नहीं करा जाएगा तो हम समझते हैं कि किसान फिर मुश्किल में लग जाएगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आप खाद की मात्रा बता रहे थे अभी कुछ देर पहले।
1: जी जी जी, खाद जो है अहम है, किसी भी पौधों को खाद जो एक अहम है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हर टाइम खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, उसी तरह पौधा भी चाहता है कि हमको बार बार मिले। तो हम देखते हैं किसानों को क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार में वो खाद की मात्रा को पूरा कर देते हैं। लेकिन साइंटिफिक तरीका ये है कि पपीता में हर जो डोज है उसका, जैसे 200 ग्राम नाइट्रोजन है, 200 ग्राम फास्फोरस है, और लगाते ही 100 ग्राम फास्फोरस है और 200 से 300 ग्राम जो है पोटास है।
0: हाँ।
1: तो फास्फोरस की मात्रा वो लगाते समय ही डाल दे 100 ग्राम, उसके बाद वो कभी पौधे की जिंदगी भर जब तक पौधे रहेंगे तब तक फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमने कहा 200 ग्राम यूरिया का और 300 ग्राम पोटास का, उसको 5 भाग में बांट करके दे वो, ताकि वो हर महीना अगर डालते रहेंगे तो उसको खाना मिलता रहेगा। अगर वो खाना मिलता रहेगा तो उसका बढ़वार भी बहुत अच्छा होगा। पपीता का जो असली खाना है वो पोटास है।
0: अच्छा।
1: अगर आप पोटास उसमें डालते हैं तो पपीता जो है अंदर से लाल और पीला जैसा जो वैरायटी है वो अच्छा होगा और स्वाद बहुत जबरदस्त होता है। हम देखते हैं कि किसानों के खेत में टमाटर लाल नहीं हुआ, टमाटर लाल ना होने की वजह है कि किसान पोटास डालता ही नहीं है। जो भी रंगीन फल है उसके लिए पोटास का होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे केला है, केला बहुत ही पोटास चाहता है, उसी तरह से पपीता भी है वो भी पोटास बहुत चाहता है। तो पोटास की मात्रा को आप हर महीने उसमें 50-50-50 ग्राम देते रहें 5 डोज में, तो आपका हम समझते हैं कि पपीता जो है बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट और मीठा और बाजार में बहुत पसंद किया जाएगा। जब उसको काट करके आप रखेंगे और रंग देखेगा तो जो व्यापारी भी होंगे वो भी ले जाएंगे और जो डेली कंज्यूमर है वो भी इस चीज़ को पसंद करेंगे।
0: डॉक्टर साहब, आपने एक कुकरैया रोग के बारे में भी आप बता रहे थे और उसमें आप कह रहे थे कि ये पपीता जो है इसमें गलना, जमीन से गलन इसका जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसके उपचार के बारे में?
1: हाँ, देखिए गलन वाला जो बीमारी है, हम लोग जितने बैठते हैं ऑफिस में, मैं देखता हूँ कि सारे किसान जो भी आ रहे हैं वो पपीता के गलने वाले रोग को अभी लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि वो जब क्या होता है कि किसानों को उतना अंदाज नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ पपीता लगा देते हैं, लेकिन जब पानी लग जाता है तो वहाँ गलन शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जड़ से लगा हुआ होता है वहीं से ये गलन शुरू होता है। तो होना क्या चाहिए कि थोड़ा सा रेज बेड पे पपीता को लगाए, जहाँ जहाँ पानी लग रहा है थोड़ा सा पपीता को रेज बेड लगाए, था पानी जो है उसके जो मेन ट्रंक है उसको टच न कर सके।
0: एक
1: तो ये चीजें हैं। हाँ, अगर मान लिया जाए कि किसी पौधे में, एक दो पौधे में गलना शुरू हो गया है, तो उसको बचाव करने के लिए आप 1 ग्राम वेवेस्टीन पानी में घोल करके उसके जड़ में दे दें। 1 ग्राम वेवेस्टीन पानी में घोल करके करीब आधा लीटर या एक
0: हाँ,
1: आधा लीटर पानी हर पौधे में डाल दें, तो ये गलने का रोग जो है वो से आप दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे पौधे। लेकिन पानी अगर नहीं लगेगा तो ये गलना वाला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है।
0: अच्छा।
1: दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बीमारी है इसमें है, ये है ये कुकड़िया रोग, जो कि पौधा का पत्ती जो है कुकड़ हो करके मुड़ करके ये नीचे लटक जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये वायरस से होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है।
0: अच्छा।
1: इसका इलाज जो है वो है कि जो इसको वायरस फैलाता है उसको मारना है, जैसे डेंगू बीमारी है। डेंगू का कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं इलाज है डेंगू को? डेंगू का इलाज है मच्छर को मारना। अगर आप मच्छर मार दिए तो डेंगू नहीं होगा। उसी तरह से पपीता में है, अगर आपने कीड़े को मार दिया तो उसमें कुकड़िया रोग लगेगा ही नहीं है। तो ये एक समस्या है, यहाँ पे किसान इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मिर्चा में कुकड़िया रोग लगता है, उसी तरह पपीता में भी लगता है, तो वो नहीं समझता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर 20 दिन से 22 दिन के अंदर पे कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी कीटनाशक पौधों में छिड़किया, और इसका जो कीड़ा रहता है वो पत्ती के नीचे रहता है, तो दवाई ऐसे छिड़कना चाहिए कि पत्ती के नीचे भी दवाई लगे, तो इससे बहुत इफेक्टिव होगा, वो कीड़ा मर जाएगा, तो ये जो बीमारी जहाँ लगा है वहाँ नहीं ले जाएगा। अगर शुरू के टाइम पे किसी पौधे में ये बीमारी लगा है तो उसको उखाड़ करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि यही रोग फैलाने का कारण बनता है। एक रिंग स्पॉट होता है, किसान भाई जब आप खेत में जाएं तो पत्ती को गौर से देखें, और गौर देखने के बाद वहां देखेंगे कि पत्ती पर अगर गोल गोल रिंग बन रहा है तो आप उसको तुरंत उखाड़ करके जमीन के नीचे गाड़ दें, क्योंकि यही रिंग स्पॉट वायरस जो है पूरे बाग को चौपट कर देता है, अगर ये लग गया रिंग स्पॉट वायरस तो।
0: हाँ।
1: इसका वही कंट्रोल है कि उसमें आप हर 15 से 20 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, कोई भी इंसेक्टिसाइड लें, सिस्टमेटिक ले लें या आप कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड ले लें, जो भी है आपके पास उपलब्ध आप छिड़क दीजिए, तो हम समझते हैं कि उससे बहुत बच जाएंगे और पपीता का उत्पादन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग खेती सिर्फ कुकड़िया बीमारी की वजह से नहीं करते हैं किसान भाई, लेकिन अगर आप समुचित प्रबंधन करेंगे कीटनाशक के द्वारा, तो हम समझते हैं कि आपका बहुत अच्छा फल आएगा इसमें।
0: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 20 से 25 दिन पर आप अपने जो पपीता के जो पौधे हैं उसका देखभाल करते रहें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर कोई रोग आ रहा है तो आप उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पपीता गलन के इस बीमारी के बारे में हमने जाना, उसके उपचार के बारे में भी जाना। अब एक सवाल और पूछना मैं चाहूँगी आपसे कि जो पपीता में जो फल लगते हैं वो कितने समय में लग जाते हैं?
1: हाँ, देखिए ये पपीता जो है, जैसे कि पपीता आपने लगाया, रेड लेडी पपीता लगाया, तो ये करीब 3 से 4 महीने के बीच में फूल आ जाते हैं इसमें, और ये फिर उसके बाद जो है 7-6 महीने में ये तैयार हो जाते हैं, करीब साल भर में आपका साइकिल तैयार हो जाता है। तो किसान आजकल क्या कर रहे हैं, वो दो साल नहीं ले रहे हैं पपीता, वो 1 साल का पपीता लेके काट देते हैं। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे वो एक पपीता से करीब 5-6 साल लेते थे, तो वो अब जवाना नहीं रह गया है, अब ये जवाना आ गया है कि हर साल पपीता लगाइए और हर साल आप पपीता को लगा करके फल ले लीजिए। 1 साल में आप रेड लेडी पपीता को अच्छी तरह तोड़ करके बेच करके अच्छा आय कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो ये फल लगने के समय हो गया डॉक्टर साहब, और इसकी तुड़ाई हम कब करें ये जानना चाहेंगे?
1: हाँ, देखिए इसका तुड़ाई करने का तरीका है, कैसे जानेंगे कि ये पपीता मेरा पक गया है? तो इसके लिए किसान भाइयों, देखिए आप जो पपीता लगा हुआ है उसमें आप ब्लेड से चीरा लगाएं, अगर वहाँ से दूध जो गिर रहा है वो पतला धार हो गया है तो समझिए कि वो पपीता आपका पक गया है। अगर दूध का धार जो है वो गाढ़ा है तो समझ लीजिएगा कि ये अभी नहीं पका है। ये सबसे अच्छा तरीका है।
0: अच्छा।
1: और वो 1-2 पौधे में देखेंगे कि वहाँ पे रंग चढ़ रहा है, तो वो भी एक तरीका है पपीता को जानने का कि ये पक गया है और इसको अब तुड़ाई शुरू करनी चाहिए।
0: तो ये पूरी की पूरी जानकारी किसान भाइयों, आपने सुने पपीता की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और साथ ही अंत में डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, किसान भाइयों से सलाह देना चाहता हूँ कि रेडियो पे तो आप सुनते ही हैं हम लोगों को, लेकिन आप अगर विश्वविद्यालय में आके यहाँ के प्राध्यापक के साथ बैठ करके आप चर्चा करेंगे तो हम समझते हैं कि आपको, किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। जिसके लिए विश्वविद्यालय बना है वही लोग यहाँ नहीं आते हैं, ये किसान के लिए विश्वविद्यालय बना है। यहाँ पे एक प्राध्यापक बैठा हुआ द्वारा जो शोध करके किसानों तक पहुंचाने के लिए अगर किसान भी एक कदम आगे बढ़ा करके विश्वविद्यालय में आता है, हम समझते हैं कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा।
0: तो किसान भाइयों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने कैसे कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप मिल सकते हैं और पूरी की पूरी जो एक डॉक्टर्स की टीम है, आप समझ लें कि आपकी खेती के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। जैसे कि आप अपने रोगों का इलाज कराते हो डॉक्टर के पास जाकर, तो आप अपने फसलों का इलाज, अपने जो भी रोग हैं आपके पौधों के, फल के, सब्जियों के, आप उसका इलाज भी यहाँ पर आके करवा सकते हो, यानी कि जानकारी ले सकते हो और सही जानकारी से कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए रास्तों पर चलेंगे, इसे अपनाएंगे और अच्छे तरीके से पपीता की खेती कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंतसी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഭാരത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं मखाना के बारे में. मखाना की पौष्टिक गुणों के बारे में अब तक देश दुनिया में सबको पता है. इसकी मांग भी देश और दुनिया हर जगह है और बढ़ती मांग यानी कि रोजगार के बढ़ते अवसर. और जब मखाना की बात होती है, मखाना से जुड़े रोजगार की बात होती है, तो हम पाते हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करने वाला देश है. और भारत में बिहार, जी हाँ, अकेला बिहार 85 से 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है. और फिर बिहार में लोगों को मखाना से जुड़े रोजगार के अवसर के बारे में पता तो होना ही चाहिए. और इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है मधुमिता मैम. आप हैं प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा. तो आज हम बात करेंगे कि मखाना से कैसे आप उद्यम स्थापित कर सकते हैं और इसके क्या अवसर हैं. सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ. मैं हूँ मधुमिता और मैं आज मखाना के गुणों के बारे में, उसके उद्यमिता के अवसर के बारे में आप लोगों से बताने जा रही हूँ. हम जानते हैं जैसा कि इसे मखाना को हम सुपर फूड कहते हैं. ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं. आइए हम कुछ इनके इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं. सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे कि हमारे शरीर के मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को यह हम बचाता है और त्वचा को जवां रखता है. दूसरी चीज़ है हृदय स्वास्थ्य. इसमें मौजूद पोटेशियम और कम सोडियम के कारण ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित रखने में मदद करता है और यह दिल के लिए अच्छा है. फिर है वजन प्रबंधन. कम कैलोरी, वसा और उच्च फाइबर के कारण यह हमारा पेट भरा रखता है और वजन घटाने में भी सहायक है. पाचन में सहायक, यह हमारे पाचन में भी काफ़ी सहायता करता है. डायबिटीज़ के लिए, चूँकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता है. यह फाइबर और मैग्नीशियम से युक्त होता है जिससे कि शुगर नियंत्रित रहता है. फिर है हड्डियों को मजबूत बनाता है. मखाना में मौजूद कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है. बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव के लिए यह काफ़ी लाभदायक है. हमारे त्वचा और बालों के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है. मानसिक विकास के लिए यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है. नींद और तनाव, यह तनाव कम करके बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है. तो हम देख सकते हैं कि इसके अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं जिसके चलते यह हर एक वर्ग के लोगों द्वारा मांग किया जाता है, पसंद किया जाता है, जिससे कि उद्यमिता के अपार अवसर खुल जाते हैं. खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां कोई खेती नहीं होती, ऐसी जगहों पर हम मखाना की खेती करके एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं.
0: तो मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि मखाना एक तो वजन को नियंत्रित करता है, बहुत सारे फायदे आपने बताए, उनमें से जो आजकल युवाओं की चाहत होती है वजन नियंत्रित हो और उनकी त्वचा जवा दिखे, और ये दोनों ही फायदे मखाना में भरपूर रूप से हैं. और अभी आप जैसे बता रही थी कि अपने बिहार में 90 एकड़,
1: 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि खेती योग्य नहीं है, उसमें जल जमाव वाली जमीन भी शामिल है, तो हम
0: वहाँ मखाना
1: लगा करके जो है रोजगार के अवसर
0: पैदा कर सकते हैं. तो अभी रोजगार के बारे में आप बात कर रही थी, तो मखाना का उद्यम स्थापित करने के लिए क्या क्या संभावनाएं बिहार में हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, मैम ये बताइए.
1: जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है जिसमें कि रोजगार भी एक मुद्दा है. तो खासकर बिहार के लिए जहाँ पर कि 85-90% उत्पादन होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे उद्यम लगा सकते हैं और रोजगार के अवसर खड़े कर सकते हैं। सबसे पहली बात है तो कि कच्चे मखाने के बजाय उसे प्रोसेस या प्रसंस्कृत करके बेचना अधिक लाभदायक होता है। रोस्टिंग और फ्लेवरिंग, सादे मखाने के बजाय हम पेरी पेरी, पुदीना, पनीर टिक्का या चॉकलेट फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाना स्नैक्स बना करके बेच सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है हमारे युवाओं के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। और है मखाना पाउडर, मखाना को पीस कर पाउडर बनाया जाता है, जिसका उपयोग शिशु आहार, एनर्जी बार, हेल्थ सप्लीमेंट और बेकरी उत्पादों जैसे कि मखाना कुकीज़ और विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों में किया जाता है। फिर है मखाना बेस्ड बहुत प्रोडक्ट्स, जैसे मखाने का आटा, मखाना फ्लैक्स, पास्ता, मैकरोनी जैसे आधुनिक उत्पाद बना करके भी बेचा जा सकता है, यह भी काफ़ी मांग में है। मखाना खीर मिक्स, यह एक रेडी टू कुक जो कि पकाने के लिए तैयार उत्पाद है, जिसमें मखाना पाउडर या छोटे मखाना के टुकड़ों के साथ चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स आदि मिश्रित होते हैं। इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। बेकरी उत्पाद, मखाना के आटे के का उपयोग ग्लूटेन मुक्त बिस्किट, ब्रेड और कुकीज़ बनाने में किया जा सकता है। और कुछ अन्य खाद्य उत्पाद हैं जैसे कि मखाने का उपयोग हम अनेक पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन पफ्स, मखाना भेल, अचार, कलाकंद एवं अन्य मिठाइयाँ, पास्ता और सलाद के टॉपिंग के रूप में। बहुत सारे ऐसे हमारे पास विकल्प मौजूद हैं जो कि हम मखाना से प्रोसेस करके, प्रसंस्कृत करके बना सकते हैं, और ये हमारे युवा और व्यस्क वर्ग में काफ़ी ज़्यादा
0: पॉपुलर है,
1: मांग में है।
0: मतलब लोगों के बीच मखाना की मांग तो है, और साथ ही जब मखाना इतने फ्लेवर में आ रहा हो, मखाना इतने अलग अलग वैरायटी में आ रहा हो, तो मांग काफ़ी होती है और रोजगार के अवसर भी होते हैं। लेकिन मैम, क्या मखाना उत्पादन में, मखाना के उद्यम में क्या सरकार द्वारा भी कोई सहायता प्रदान की जाती है?
1: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि अगर हमें सरकारी सहायता मिल जाती है तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और सरकार भी काफ़ी सारी योजनाओं के साथ युवाओं को मदद कर रही है। जैसे कि हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें एक है PMFME योजना, जिसको कि हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से भी जानते हैं। इसके तहत मखाना प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 35% तक सब्सिडी और ऋण सहायता दी जाती है, PMFME पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, खास करके बिहार में कई जिलों जैसे कि दरभंगा, मधुबनी में इस में मखाने की इस योजना के तहत चुना गया है, जिसमें कि सरकारी सहायता मिलती है। अब तीसरा है मखाना विकास योजना, ये जो बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है ये योजना, मखाना विकास योजना, ये बिहार के 10 विशिष्ट जिलों में मखाना की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह किसानों को प्रशिक्षण देने और मखाना की खेती और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान करने पर केंद्रित है। फिर यह योजना जो है एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत संचालित होती है, जिसमें मखाना बीज वितरण, भंडारण, गृह निर्माण और प्रोसेसिंग पर सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। इसके कुछ मुख्य हम उद्देश्य बता देते हैं मखाना विकास योजना के। इसके तहत जो है किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास दिया जाता है, फिर अनुशंसित मखाना किस्मों के बीज पर सब्सिडी मिलता है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को भी प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है और महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और है मखाना बोर्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा बिहार में स्थापित एक सरकारी संस्था है, यह मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना होता है ताकि किसानों की आय बढ़े और यह सुपर फूड मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। यह मखाना उद्योग की विभिन्न चुनौतियों को हल करने, नवाचार लाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए, मखाना के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती हैं। तो युवा बढ़ चढ़कर आगे आएं और इसका लाभ उठाएं और उद्यम लगाएं।
0: मैम, मखाना उद्यम के बारे में तो हमने बात कर ली और बार बार आप प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं और प्रोसेस्ड मखाना की मांग भी ज़्यादा है। मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस का बाज़ार क्या है और किस तरह इस तक पहुंचा जा सकता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, मखाना प्रोसेसिंग का ही बाज़ार है और बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। आजकल लोग जो है, चूँकि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और लोग रेडी टू सर्व खाने को पसंद करते हैं, इसीलिए जो है ये हेल्दी स्नैक के रूप में इसकी मांग बढ़ रही है और बाजार में इसका पकड़ मजबूत हो रहा है। मखाना के बाजार एवं संभावनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो मखाना जो है भारत में एक हेल्दी स्नैक के रूप में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में इसकी मांग बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग, खासकर युवा, जिम जाने वाले लोग और डायबिटीज़ और हृदय रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं वो अपनी डाइट में इसे शामिल कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका निर्यात भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में इसकी भारी मांग है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। अब हम उद्योग रिपोर्ट की बात करें तो फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में हेल्दी स्नैक्स का बाजार 12% की सालाना वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस एक अहम हिस्सा हो सकता है। और विविध उत्पादों की मांग भी है, जैसे कि भुना हुआ मखाना, चॉकलेट कोटेड मखाना, पनीर फ्लेवर मखाना, मसाला मखाना और अन्य फ्लेवर के मखाना की भी काफ़ी मांग बढ़ रही है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग बिजनेस का जो बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, नहीं सिर्फ हमारे घरेलू बाजार में भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है। तो हम जो है पैकेजिंग करके और ब्रांडिंग करके एक उद्यमी के रूप में आप स्थानीय किसानों से मखाना खरीदकर उसे ब्रांडिंग करके आकर्षक व लुभावने पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी छोटे उद्यमी वैश्विक बाज़ार में भी अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप आधुनिक खेती भी करके जो है अच्छा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पारंपरिक तालाबों के बजाय आप मखाने की खेती को खेत प्रणाली से कर सकते हैं, जिससे कि उद्यमी आधुनिक सिंचाई और कटाई की मशीनों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग बाज़ार का इसका बहुत ज़्यादा अवसर है, तो लोग, युवा को इसमें आगे आना चाहिए।
0: बिल्कुल, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो मैम, मखाना के स्वास्थ्य लाभ के बारे में तो हमने बहुत बातें जान ली, लेकिन मखाना की उद्यमियता से क्या लाभ मिल सकता है किसान को, या फिर जो युवा इसमें आना चाहते हैं, इस उद्यम में आना चाहते हैं, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है?
1: मखाना उद्यमिता के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें प्रसंस्कृत हम अगर इसे कर लेते हैं तो चूंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है तो ये रोजगार सृजन में मदद करता है, साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि करता है। हम मखाना जो होता है वो धान और गेहूं जैसी फसलों से दोगुना लाभ देता है, जिससे कि छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की मांग चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा हम अगर इसमें जाते हैं, अगर इसका उद्यम हम स्थापित करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। निर्यात के भी अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसा बताया हमने कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में काफ़ी इसकी मांग है, तो निर्यात की भी बहुत संभावनाएँ हैं। फिर ग्रामीण विकास में काफ़ी ये मदद करता है, क्योंकि पलायन रोकने, युवाओं का पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ से भी रोक लगाने में मखाना उद्यम मदद करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। और चूंकि सरकारी समर्थन भी इसमें है तो ये बहुत हम इसमें उद्यम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हम आपको एक BAU हमारे जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक प्रभेद है मखाना की, उसके बारे में भी एक संक्षेप में देना चाहेंगे जानकारी। यह एक ऐसी किस्म है सबौर मखाना 1, जो मखाना की एक ऐसी किस्म है, बेहतरीन किस्म है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिसमें कि पुराने प्रभेदों की तुलना में 50% ज़्यादा उपज मिलता है, साथ ही यह कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस प्रकार यह प्रभेद किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक उत्तम माध्यम है। अंत में हम बताना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि मखाना जो देवताओं का भोजन माना जाता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों, उपवास और प्रसाद में इस्तेमाल होता है, उसके बहुमुखी फायदे हैं। यह एक पौष्टिक सुपर फूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। मखाना उद्यमिता से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसका उद्यम कृषि मूल्य संवर्धन, नवाचार और निर्यात के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रबल कारक है। संक्षेप में, मखाना उद्यमिता एक सुपरफूड क्रांति का हिस्सा है जो पोषण, आर्थिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इन कारणों से यह एक टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय का सटीक साधन है। धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और मखाना से जुड़ी इतनी सारी बातें आपने बताई। आपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया, सरकार से क्या सहायता मिलती है लोगों को मखाना उद्यम के लिए,

0: परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर,
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि।
13: नमस्कार श्रोताओं, और आज खास तौर पर हम बात करने वाले हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। जी हाँ, पशुपालक भाइयों, आज आपकी पशुओं से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, और पशुओं की जहाँ तक बात है तो आज बकरी के बारे में हम बातें करेंगे। जहाँ तक हमारे छोटे और मंझोले किसान भाइयों की बात आती है और पशुपालक भाइयों की बात आती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़े गाय और भी भैंस जैसे उन सारे पशुओं को वो पाल सकें, क्योंकि उन्हें पालने में लागत ज़्यादा लगती है और कहीं ना कहीं देखभाल भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर आप बकरी पालते हैं तो आपके पास कम समय में आप इसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकती हो, और ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है। और कहीं ना कहीं इसे किसानों का ATM भी कहा जाता है। कई बार देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और अचानक से फंस जाते हैं, तो उस समय ये बकरी जो आप पाल रहे हैं वो आपके काम आते हैं। तो आइए आज कुछ बातें जानेंगे और सबसे पहले हम आपको अपना विषय बता दें। आज का विषय है बकरी में सामान्य रोग एवं बचाव के।

0: जी हाँ, अगर आप बकरी पाल रहे हैं तो उसकी खास देखभाल आपको करनी होती है। उनके अंदर जो रोग पनप रहे हैं उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है और उनके रोगों का उपचार कैसे करें उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सस्य विज्ञान विभाग से और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीमार बकरी की जहाँ तक बात आती है तो हम कैसे पहचानें, क्योंकि हम आदि तो नहीं होते हैं कि हम जैसे मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य कह देता है कि भाई मुझे बुखार लग रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो मुझे है, लेकिन बकरी बोल नहीं पाते हैं, तो हम अंतर कैसे कर पाएंगे कि ये बकरी बीमार है और ये बकरी स्वस्थ है?
1: देखिए, पशुपालकों के लिए सबसे ज़रूरी है, जैसे ही आप पशु की बात करते हैं उनके पास कुछ बोलने की क्षमता नहीं है, आप खाना लगाते हैं, पानी देते हैं, उसके पास जाते हैं, आप उसका व्यवहार देखते हैं और पता कर सकते हैं कि व्यवहार में कोई परिवर्तन है। सपोज़ अगर बकरी सुस्त लग रहा हो, उसका उठना बैठना कम हो, सपोज़ कि वो खाना नहीं खा रही है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दिक्कत हुआ है। कभी कभी नाक से पानी निकलेगा, आँख से पानी निकलेगा, या फिर बहुत सारा मुंह उधर सूख जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पशु का जो नॉर्मल व्यवहार है वो बदल गया है, वो सुस्त पड़ गया, सिर झुका हुआ रहेगा, कान दोनों झुका हुआ रहेगा, आप उसके व्यवहार को देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही उसके पास जाते हैं तो आप एक आवाज़ लगा करके भी पता कर सकते हैं कि आपके आवाज़ के प्रति उसका रिएक्शन क्या है। पशुपालक अपने पशु से इतना जुड़े होते हैं कि पशु को बुलाते हैं तो पशु अपने पास किसान के पास पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, उसका खाना कम हो जाना, उसका सुस्त पड़ जाना, उसका सिर झुका के बैठना, उसके नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, या फिर कभी कभी अफरा बीमारी हो तो पेट भी फूल जाता है, कहीं घाव हो, अगर शरीर में कहीं घाव हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा, वो गाल घाव बाल से ढका हुआ रहता है, तो आप देखेंगे मक्खी लग रहा है बहुत सारा, वहाँ पर गीला हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जब आप दूर से देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, जब नज़दीक जाके बाल हटा के देखेंगे तो ढेर सारा वहाँ पर आपको पिल्लू नज़र आएगा कि घाव है और पिल्लू फट गया है उसमें। हम तो ऐसा भी देखें कि किसान जो है उनको पता ही नहीं था और एक महीने से बकरी के पेट में घाव है और उनको बाहर से दिखता नहीं था, जब बहुत सारा कीड़ा मैगेट उंड करते हैं वैसा हो गया, जब भयावह स्थिति तब वो दौड़ करके हमारे पास आए। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन जब भी आप खाना देने जाते हैं, उसके पास पानी देने जाते हैं, तो आप उसका ध्यान दें, उसके व्यवहार में परिवर्तन को देखें और समझें, और खुद भी पता कर सकते हैं इस तरह से कि उसके परिवर्तन है सामान्य व्यवहार में, तो आप संपर्क करें पशु चिकित्सक से।
0: हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया पशुपालक भाइयों की, आप जैसे कि डॉक्टर चेकअप करते हैं तो आप अगर उसे खाना देने जाते हैं तो चारा देने जाते हैं तो आप एक बार देख लें उनके शरीर पर कोई जो है एबनॉर्मल चीज़ें तो आपको नहीं दिख रही हैं, इसके अलावे उनके सिम्टम्स भी बताएं डॉक्टर साहब ने, जैसे कि कान झुके रहते हैं, आँख से पानी, नाक से पानी आना, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका जो पशु है, आपकी जो बकरी है वो बीमार है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अभी जो है ठंड का मौसम आने वाला है, तो इस समय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में, इस ठंड के समय में कौन कौन से रोग बकरी में देखे जाते हैं?
1: देखिए, जैसे सीजन परिवर्तन होगा, थोड़ा अभी गर्मी से तुरंत ठंडी वातावरण में जाएगा, ठंड हवा सांस में लेगी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है उसको फेफड़ा में प्रॉब्लम हो। निमोनिया बहुत कॉमन इस सीज़न में, ठंडे के सीज़न में, और नाक से पानी आने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि बार बार छींक रही है, खांसी आ रहा है और नाक से पानी गिर रहा है, तो ये निमोनिया का लक्षण है। ये लंग में जो इन्फेक्शन होता है उससे होता है। और दूसरी बीमारी जैसे कि बकरी कभी अनाज ज़्यादा खा लिया तो बायां साइड पेट फूल जाता है, उसको अफरा बीमारी कहते हैं। और आप देखेंगे ठंडी के दिन में कभी कभी पूंछ के पीछे बहुत सारा पतला पैखाना लगा हुआ रहेगा, वो डायरिया का लक्षण है। डायरिया भी बहुत कॉमन ठंडी के दिनों में, अधिकांश बकरी की मृत्यु दस्त के कारण होती है। डायरिया एक बार पकड़ता है फिर आपको वो संभल पाना मुश्किल होता है। और बहुत सारी बीमारी है, आप उसको शुरू से पर ध्यान दें तो आप उसको संभाल सकते हैं, पशु को उस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे कि एक होता है इंट्रोटॉक्सीमिया, PPR, जो इस तरह का वर्म है, इंटेस्टाइन में भी उसको वर्म हो जाता है, राउंड वर्म और स्केरिस जैसा। इसके बाद आता है डर्मेटाइटिस, स्किन में डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारा स्केबीज का भी इन्फेक्शन होता है, कभी कभी मैगेट उंड देखने को मिलता है। इसके बाद है एक ORF, मुंह में बहुत सारा स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वार्ट जैसा ग्रोथ कर जाता है, ORF बीमारी कहते हैं, वायरल डिजीज है, इसको कंटेजियस एक्थाइमा भी कहते हैं। इसके बाद कुछ बीमारी है जैसे TB, पैराट्यूबरकुलोसिस, गलघोटू, FMD, ये सब बीमारी भी आपको देखने को मिल सकता है। और एक हीमोप्रोटोजन डिजीज भी, ट्रिप्नोसोमा का भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और फुट रॉट, पैर में खुर के बीच में घाव हो तो इस तरह का भी आदिवासी बीमारी है, तो उसको फुट रॉट कहते हैं। और थनेला का भी रोग बकरी में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम सबसे ज़रूरी है कि बात करें कि आपको सामान्य क्या दिखता है इस सीज़न में। जैसे ही आगे ठंडी का सीज़न आने जा रहा है तो बकरी में ठंडी के कारण यदि आप ठंड हवा से नहीं बचाएंगे उसको निमोनिया होगा, निमोनिया के बाद दस्त भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो पतला पैखाना हो जाएगा। और इस समय वायरल इन्फेक्शन जो एक PPR बीमारी कहते हैं उसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। इस सबसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि बकरी को प्रत्येक 3 साल में एक बार PPR का टीका लगवाएं। PPR का टीका लगवाने से ठंडी में बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं।
0: मतलब और जो अभी ये ठंडी में आने वाली बीमारियों के बारे में आपने कहा तो उसका एक ही सलूशन है कि टीका लगाना, या फिर उसके अलावा भी कुछ और?
1: हाँ, जैसे पेट में कीड़ा हो जाता है, बहुत सारा टेप वर्म है, राउंड वर्म है, एस्केरिस है, एक हिमोंकस कंटोर्टस एक वर्म है जिसके कारण बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी होती है। तो यदि आप इस सब जो वर्म है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इससे बचना चाहते हैं तो डिवर्मिंग कीजिए। प्रत्येक 3 से 4 महीने पे इसको अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, आइवरमेक्टिन, इन सारी दवाओं से आप उसको डिवर्मिंग कराएं नियमित रूप से। पेट में कीड़े नहीं होंगे, जोक नहीं होंगे, तो उसको इस तरह के डिवर्मिंग से बचा जा सकता है।
0: अच्छा, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन अपने बकरी के लिए बनाएं। और सर, इस अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन वो बकरियों के लिए तैयार करें, तो उसके लिए किन किन बातों पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना होगा?
1: देखिए, शुरू से ही बकरी को जो आप खाना पीना देते हैं उसमें हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में होने चाहिए। जैसे कि आप अब चरने के लिए जमीन बहुत कम हो गया, बकरी को जैसे खुल करके चरने देते थे तो नेचुरली वो अपना बहुत सारा पौष्टिक चीज वो चर करके प्राप्त कर लेता था। लेकिन आजकल जो है चारागाह की कमी होते जा रही है, आप खुला में छोड़ेंगे दूसरे खेत में खाएगा तो उससे प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी खेत में दवा छींटा जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अगर आपकी बकरी वहाँ जाके खाती है तो उससे भी नुकसान होगा। आप जो स्टॉल फीडिंग का ट्रेंड आ रहा है, हम लोग घर में पालते हैं और खेत से चारा ला करके खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से पौष्टिक चारा देना पड़ेगा। कुछ दलहनी पौधे वाला, बरसीम, काउपी जैसा चारा भी उसको देना पड़ेगा, पौष्टिक चारा। और उसके साथ साथ अनाज देना है। एक बकरी को प्रतिदिन जो है आपको कम से कम 200 से 250 ग्राम अनाज देना ही चाहिए, और उसको 2 से 3 किलो हरा चारा उसको मिलना चाहिए। यदि आप ये देते हैं, साथ में मिनरल मिक्सर देते हैं, कुछ नमक देते हैं, 10 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है, आप नमक, मिनरल मिक्सर, हरा चारा और अनाज ये सब खिलाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और उसको कोई बीमारी नहीं होगा। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि कभी किसी तरह की बात आ जाए तो समय रहते तुरंत इलाज करें। जैसे कि अभी जो ठंडी के सीज़न में आपको देखने को मिलेगा डायरिया, बहुत ज़्यादा दस्त दिखता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल का, लाइसिप्टीडेज या टिनिडाजोल के नाम से दवाती है, तो उस दवा को, टेबलेट को तुरंत अपनाएं। उसके साथ भी यदि दस्त बंद नहीं हो रहा है तो एक नेवलॉन पाउडर आता है, नेवलॉन पाउडर दें और वो रुक जाएगा। लोग क्या करते हैं कि पैर पशु का बांधते हैं, बकरी का क्या करेंगे, चारों पैर में कपड़ा बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस यदि सामान्य दस्त हो, सामान्य डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, पाचन में समस्या हो, आप खाना एक दिन के लिए बंद कर दीजिए बकरी का, वो अगले दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो अगले दिन दवा दें, एंटीबायोटिक्स दें और कुछ सपोर्टिव थेरेपी दें, तो इस तरह से आप बचा सकते हैं।
0: और डॉक्टर साहब, देखा गया कि ठंड के समय में जो बकरी पालक, जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो उन्हें ठंड से बचाने के लिए जो ऊनी कपड़े हैं वो पहना देते हैं कई बार, तो क्या ये सही है?
1: बिल्कुल, देखिए जैसे हम अपनी सुरक्षा करते हैं वैसे उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और जहाँ आप रखते हैं, गर्मी के दिन में तो बकरी को खुला भी रखते हैं, पेड़ के नीचे भी रखते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में ठंड हवा से, सर्द हवा से उसको सुरक्षा देना, बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ठंड हवा लगती रहेगी भर रात तो अगले दिन वो बीमार रहेगी, खाना नहीं खाएगी। तो ठंड हवा से बचाएं, डायरेक्ट जो है सर्द हवा उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, कवर होना चाहिए, छत के अंदर रखें। यदि आपको अपना ही घर है तो कहीं प्लास्टिक का भी एक खड़ा करके उसको प्रोटेक्ट करें ठंड हवा से। और कभी कभी होता है किसान क्या करते हैं कि घर को चारों तरफ से इतना पैक कर देते हैं कि उससे हवा नहीं निकलता है, तो वो भी हानिकारक है। उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब ताज़ी हवा आनी चाहिए और अंदर जो गंदी हवा है जो उसमें
0: बाहर जानी चाहिए,
1: वो जानी चाहिए। ये वेंटिलेशन होते रहना चाहिए और ज़्यादा ठंड हवा नहीं आना चाहिए। खिड़की पर पर्दा लगा दे लेकिन ऊपर थोड़ा सा खुला छोड़ दे।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई अपने बकरी को चेक करते हैं, उसके शरीर पर चेक करते हैं कि कहीं कोई निशान या फिर कुछ एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो तो नहीं दिख रही हैं, अगर उन्हें तब पता चलता है कि उनका जो पशु है, उनकी जो बकरी है वो बीमार है, तब उपचार के लिए वो किन के पास जाएंगे?
1: देखिए प्रत्येक किसान को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका पशु बीमार पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। सबसे पहले होता है फर्स्ट एड। आप खुद ही बहुत कुछ उस स्थिति को सुधारने के लिए अपने से कर सकते हैं। जैसे कि बकरी के शरीर में मैगेटुंड कहते हैं कि घाव था और उसमें बहुत सारा पिल्लू फट गया, कीड़े मकोड़े हो गए, आप घबरा जाते हैं कि लगता है कितना बड़ा मुसीबत आ गया। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको इलाज आना चाहिए, उसका उपचार आना चाहिए। आप अधिक जानते हैं तो मैगेटुंड का इलाज खुद भी किसान कर सकते हैं। उसकी दवा आती है टॉपिक्योर हिमैक्स, यदि वो आप सही सही इस्तेमाल कर देते हैं तो बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि अपने से, तो आप अपने प्रखंड में, हर प्रखंड में पशु चिकित्सालय है, प्रखंड के प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करें और वहाँ एक पशु चिकित्सक से, योग्य वेटनेरियन से आप ज़रूर अपने पशु को दिखवा लें, जाँच करवा लें। और अभी जो है कभी कभी सरकार की तरफ से टीकाकरण की योजनाएं चलती है, PPR का टीकाकरण बकरियों के लिए चलाया जाता है ठंडी से पहले, ये इसी अक्टूबर नवंबर के महीने में। यदि PPR का टीकाकरण सरकार के द्वारा आपके पशु चिकित्सालय से चलाया जा रहा हो तो निश्चित रूप से वो आप टीकाकरण लगवा लें।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ने फर्स्ट एड की बात कही, तो जो हम मानव हैं, मनुष्य हैं, उनमें फ़र्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन जहाँ तक पशुओं की बात आती है तो उनके फर्स्ट एड के लिए क्या कुछ शामिल होना चाहिए वो जाना चाहिए।
1: देखिए फर्स्ट एड सिंपल है कि आप देखते ही किस तरह का, सपोज कोई पशु को चोट लग गया कहीं, हाँ, खून बह रहा, हाँ, है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि खून बहना बंद हो जाए। आप बैंडेज रखते हैं घर में, किसी तरह उसको टाइट करके बांध दें कि जो खून का रिसाव है वो तेज ना हो, वो बंद हो जाए, और कुछ देर वो बंधा हुआ रहेगा तो ब्लड जो है ब्लीडिंग क्लॉट होगा और वो जम जाए,
0: अच्छा,
1: बंद हो जाएगा, तो पशु की जो मृत्यु हो सकती थी वो बच सकता है। सपोज यदि घाव दिखता है कहीं, आप खुद भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, डिटॉल से, सेवलॉन से, किसी भी तरह का ये आपके पास होगा, सोफ्रामाइसिन हो या अपने घर में बीटाडीन हर किसान रखते हैं या लोग अपने लिए भी रखते हैं, उससे उस घाव को पहले ताज़ा पानी से धो के उस दवा को लगा दें, उसके बाद आप निश्चित रूप से संपर्क करें कि उसका उचित उपाय क्या है। लेकिन फर्स्ट एड सब कि यदि हम हल्का पेट फूला हुआ देखते हैं पशु को तो मीठा सोडा खिला सकते हैं, मीठा,
0: अच्छा,
1: सोडा खिलाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए आप दो दो दिन तक परेशान हैं, डॉक्टर साहब को खोजें। मीठा सोडा, यदि पशु में अफरा की बीमारी हो, यदि पेट थोड़ा फूल गया हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक दिन खाना नहीं दीजिए,
0: अच्छा,
1: और शाम में आप उसको मीठा सोडा खिला दीजिए, अगले दिन बिल्कुल वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती।
0: तो देखा जाता है कि पशुओं में कई बार बीमारी और रोग की वजह से हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो खर्च है उनसे गुजरते हैं और इनका जो आर्थिक नुकसान है वो ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक देखा जाए तो आर्थिक नुकसान से और इन पशुओं के रोग की वजह से जो इनका आर्थिक नुकसान होता है हमारे पशुपालक भाइयों का, तो उनसे वो कैसे बचे?
1: देखिए निश्चित रूप से यदि हमारे पशु बीमार रहेंगे तो हमें नुकसान होगा, उससे
0: चाहे हम मनुष्य भी बीमार रहते हैं,
1: बीमार रहते हैं, हमारा नुकसान होता है। जो पशु तेजी से शरीर में वृद्धि होना चाहिए, उसका वजन बढ़ना चाहिए, आज वो 4 किलो का है तो वो बहुत जल्दी 8 किलो का भी हो जाना चाहिए। तो इस तरह से यदि वो शरीर में वृद्धि दर ग्रहण कर रहा है तो निश्चित रूप से अच्छी कीमत आपको मिलती है, रिटर्न मिलता है। और उसके पेट में यदि कीड़ा हो, आपको पता नहीं चलेगा, वो खाते पीते रहेगी लेकिन उसके शरीर में एक आशातीत विकास नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। उसको होना चाहिए था 15-20 किलो का, लेकिन वो 7-8 किलो भी नहीं पहुंच पाया। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान है, सीधा कम से कम 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा आपका। तो निश्चित रूप से पशु को यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं तो आपको अधिक से अधिक 25-30-40 रुपये का नुकसान है, मतलब खर्चा है। तो लेकिन आप एक हेलमिंस होता है इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स, उससे एक बकरी में आगा गया है कि एक बकरी को 168 रुपये का नुकसान होता है। यदि आप इसको वैज्ञानिक टर्म में जानना चाहेंगे कि एक सिर्फ इंटेस्टाइनल पैरासाइट के चलते इतना नुकसान हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं कि आप यदि 10 बकरी पालते हैं तो उस तरह से यदि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे और सबके पेट में जोंक हो जाएगा तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा।
0: तो इस तरीके से आप आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने टीकाकरण की बात कही, PPR टीकाकरण की बात कही, तो वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भी मिल जाएंगे, पशु चिकित्सक वो दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, खासकर बकरी के बारे में हमने बात किया, बकरी में जो रोग देखने को मिलते हैं और आने वाले दिनों में यानी कि ठंड के मौसम में जो रोग देखने को मिलेंगे उनके बारे में हमने बात किया, और बचाव के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको विस्तार से बताया। तो डॉक्टर साहब आज अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी पशुपालक भाइयों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने प्रस्तुत की। तो आप सभी से, हमारे किसान भाइयों से, हमारे पशुपालक भाइयों से अगले दिन मैं लेकर आऊँगी अगले विषय को, तो ये वादा करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हाँ, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं,
सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं

0: फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है। बुआई के समय में, अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज़ को AI बहुत तेज़ी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज़्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके AI के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में AI आपको मदद करता है।
1: अच्छा, AI क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है AI हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो AI आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से यह तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, AI से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में AI मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। और करियर वॉच में आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी के बारे में, जिसे लगभग हर विद्यार्थी जूझता है कि वो अकेले पढ़ाई करे या ग्रुप स्टडी करे। और ये परेशानी हर बच्चे को अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होती ही है, क्योंकि कुछ बच्चा अकेले पढ़ाई करके अच्छा कर रहा है और कुछ बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप में अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। और हमें क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किसी और को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हर किसी के लिए ग्रुप स्टडी नहीं होता, और उसी तरीके से हर किसी के लिए इंडिविजुअल स्टडी यानी कि अकेले पढ़ाई करना भी बेहतर नहीं होता है। तो क्या है आपके लिए बेहतर, ये जानने के लिए कुछ चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्रुप स्टडी के फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो यही होता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो जो भी समझते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जिससे बहुत टफ सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से समझ में हमें आ जाता है। इसके अलावा रिटेंशन बढ़ता है, यानी कि जब आप किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दूसरों को समझा कर पढ़ाते हैं, तो ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक ज़्यादा याद रहता है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को समझ लिया और आपने उसी टॉपिक को किसी और को समझाया, तो ऐसे में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 50% तक बढ़ सकती है। और इसके अलावा जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप थोड़ा लो भी फील करते हैं तो कोई आपका पार्टनर होता है, आपका दोस्त होता है जो आपको मोटिवेट करता है। और ग्रुप में पढ़ना मजेदार होता है, प्रेरणादायक होता है, जिससे पढ़ाई जारी रखने का मन करता है। तो एक तरीके से जो टीम का सपोर्ट होता है आपके पास वो आपको मोटिवेट करता है। और इसके अलावा आपके अंदर संचार और नेतृत्व का कौशल भी बनता है। आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, सवाल जवाब आपस में कर रहे हैं, विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक जो कम्युनिकेशन स्किल है और लीडरशिप है ये भी डेवलप होती है। और बहुत सारे एग्जाम्स में ना अब ग्रुप डिस्कशंस को भी शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे प्रोसेस में जाकर मिलता है। और ग्रुप स्टडीज के ऐसे नहीं है कि सिर्फ फायदे होते हैं, इसमें कुछ चुनौतियां भी होती है। जैसे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चा थोड़ा स्लो होगा पढ़ाई करने में, कुछ लोग ऐसा होगा जो काफ़ी फास्ट चीज़ें सीख रहा है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे चीज़ों को आधी ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो देखेगा कि ग्रुप के सारे बच्चों ने तो सीख लिया पर मुझे ही परेशानी हो रहा है। तो कई बार हम शर्म की वजह से चीज़ें नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए और बातें करने लग जाते हैं, और वो बातें ऑफ टॉपिक हो जाती है, यानी कि आपको जिस टॉपिक पे बातें करनी थी वो टॉपिक उससे निकल कर न जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं, और फिर ये हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालती है। तो ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा ध्यान भी बहुत ईजिली भटकता है, हम बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक और परेशानी होती है कि समय और योजना की परेशानी होती है। सारे बच्चे एक वक्त पे फ्री नहीं हो सकते हैं, और सारे बच्चों का जो गोल है वो भी एक नहीं हो सकता है। तो अगर आप जब ग्रुप स्टडी की सोच रहे हैं और सभी का टाइम प्लानिंग बिल्कुल सही है और आपका गोल भी एक ही है, तो ये परेशानी नहीं रहती है, ये बात करके सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप बना ले जो कि एक ही एग्जाम को, सेम एग्जाम को टारगेट कर रहे हों, तो ये परेशानी तो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर आप ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से

पढ़ाई करना चाहते हैं तो जरूरी है कि जो आप अपना गोल है वो क्लियर रखें और रोल्स बांट दें बच्चों में, जैसे कि कौन नोट लाएगा, कौन टाइम का ध्यान रखेगा और कौन क्या करेगा, ये चीज़ें आप बांट दें तो सारे लोगों में जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बटी रहेगी। और एक और बात थी ग्रुप स्टडी की, जो परेशानी होती है कि कोई बच्चा शायद पीछे रह जाता है और वो शर्म से नहीं बता पाता है, तो जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर सारे बच्चे खुलकर अपने जो परेशानी है वो साझा कर पाएं। आपके दोस्त ही तो हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनाए जहाँ पर ओपन हर कोई अपने प्रॉब्लम को बता पाने में बिल्कुल सहज महसूस करे और एक अच्छे तरीके से प्लान करें और ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने की भी एक समय सीमा रखें कि इतने बजे तक ही पढ़ाई करनी है, इतने बजे के बाद हमें अपने घर जाना। और इसके अलावा आप क्या करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें प्लान करें, एक टाइम लिमिट भी रखें कि हमें इतने देर तक ही पढ़ाई करनी है, ताकि छोटे छोटे ब्रेक लें और ब्रेक में जितनी बातें करनी है कर लें, जैसे ही ब्रेक ख़त्म हो आप पढ़ाई करने पे वापस चले जाए। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान ना पढ़ाई पे बना रहेगा। इसके साथ ही आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी ग्रुप स्टडी खत्म होती है तब आप ये चीजें देखें कि आपने आज क्या सीखा है, हर बच्चे ने क्या सीखा है, तो इसे ये भी पता लगेगा कि किसने कितना प्रोग्रेस किया और आज की पढ़ाई में ग्रुप स्टडी में आपने सिर्फ बातें ज्यादा की है या पढ़ाई भी की है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टडी की, यानी कि जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो क्या परेशानी होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और इंडिविजुअल स्टडी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो पढ़ने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी अलग होता है, वो चीज़ों को बहुत गहरी तरीके से समझना चाहते हैं और आत्म अध्ययन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के भी बहुत फ़ायदे होते हैं जैसे कि ग्रुप स्टडी के भी फायदे होते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के फायदे ये होते हैं कि आप अपनी गति पे पढ़ सकते हो, आपका एक पर्सनल पेस चलता रहता है। आपको अगर कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है तो उसी टॉपिक को आप बार बार बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रुप स्टडी में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई तेजी से सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, तो ऐसे में जो स्लो लर्नर होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इंडिविजुअल स्टडी का एक और फायदा ये होता है कि आपके पास ध्यान भटकाने वाले तत्व काफी कम होते हैं, आप लंबे समय तक एक ही विषय पर बहुत ही डीपली बहुत गहराई से काम कर सकते हैं और आपके पास कोई और आपका ध्यान भटकाने वाला नहीं होता है। और यहाँ पर परेशानियाँ भी बहुत होती है, लेकिन इसके पहले हम फायदों के बारे में और बातें कर लेते हैं। जब आप अकेले पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है और एक आत्म अनुशासन आता है, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि आपको खुद ही सारी योजनाएँ बनानी है, आपको खुद ही समय सीमा तय करना है, आपको खुद ही अपना लक्ष्य तय करना है ताकि आपके स्किल्स मजबूत हो सके। आप टाइम पे पढ़ने इसलिए नहीं बैठते हो क्योंकि बाकी बच्चे आ गए हैं, बल्कि आप टाइम पे पढ़ने इसलिए बैठते हो क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप स्टडी हमें सिखाता है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हो, आपको ग्रुप टास्क बेहतर सिखाता है, ग्रुप डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो विकसित करता है, वहीं जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आता है और इसके साथ ही आप अपने स्टाइल में अपने हिसाब से अपनी जो रूटीन है, अपनी रणनीति है, प्लानिंग है, वो कर सकते हैं। आप अपने स्टाइल के नोट्स बना सकते हैं, आपका जो रिवीजन का टेक्निक है वो अलग हो सकता है, आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो इसके फायदे तो हमने जान लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं, इसकी चुनौतियां भी बहुत सारी है, जैसे कि आपको तुरंत कोई फीडबैक नहीं मिलता। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंफ्यूजन आ गया, आप किसी सवाल से परेशान हो गए तो आपको तुरंत जवाब नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके आसपास कोई होता नहीं है। वहीं जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जो चीजें हमने नहीं समझी हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने समझ लिया है। और जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो इसमें ध्यान भटकने का भी खतरा रहता है। जब हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ध्यान इसलिए भटकता है कि हम किसी और टॉपिक पे अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप खुद पर बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तब तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, बहुत ही अच्छे से गहन फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे पास ध्यान भटकाने के हजारों संसाधन आज के टाइम पे मौजूद है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा ध्यान आसानी से भटका सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई हमें टोक देता है कि चलो
चलो फोन नीचे रखो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ही पढ़ाई करें या फिर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है कि आप ग्रुप के साथ पढ़ाई करें, तो कैसे आप बेहतर तरीके से अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस ढूंढना होगा, जहां पर कि आपके डिस्ट्रैक्शन की कोई भी चीज ना हो।

0: आप अपने फोन को दूर रख दीजिए, सोशल मीडिया को तय कर लीजिए कि इस जगह पर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी के आने से आपको परेशानी होती है तो आप वहाँ पर पहले ही बता दीजिए कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, कोई भी यहाँ पर ना आए। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, और एक टेक्निक तो हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, 25 से 40 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज पे फोकस कर ही नहीं सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो, यानी कि हर 25 से 40 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो भी 40 मिनट करेंगे, 45 मिनट करेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें गाने सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद वापस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके साथ ही आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन जैसी टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉल को समझते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप किताब बंद करके दिमाग से जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा मेहनत करता है, और यही मेहनत आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। और जब हम स्पेस्ड रिपीटेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि एक ही जानकारी को आप थोड़े थोड़े गैप के बाद दोहरा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई लाइन पढ़ी या फिर किसी डेट को पढ़ा, तो अगले पेज पे जैसे ही हम गए तो एक बार हमने उस डेट के बारे में याद कर लिया कि हाँ इस डेट में ये हुआ था। तो जब आप एक ही चीज को, एक ही टर्म को या एक ही जानकारी को बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपको याद रहता है। और इसके लिए एक जरूरी चीज होती है कि पहले दिन पढ़ें आप, तीसरे दिन उस चीज को बिल्कुल दोहराना चाहिए, सातवें दिन आप फिर दोहराइए, पंद्रहवें दिन आप फिर से रिविजन कीजिए। अगर आप इस टेक्निक को आजमाते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और लंबे समय तक एक किसी चीज को याद रख सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले दिन आपने पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन आप उस चीज को रिवाइज कीजिए, सातवें दिन आपको फिर से रिवाइज करना है, पंद्रहवें दिन फिर से रिवाइज करना है, उसके बाद आपको ये चीज लंबे समय तक याद रहेगी, आपको वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये चीजें भी आप जब आप अकेले पढ़ते हैं या ग्रुप में भी पढ़ते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखने के लिए। और जब आप अकेले हैं तो आपके पास कोई भी ये बताने के लिए नहीं होता है, कोई भी ये कहने के लिए नहीं होता है कि वाओ तुमने कितने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया है या फिर तुमने कितनी जल्दी इस काम को कर लिया है। तो खुद के लिए रिवॉर्ड्स सेट करें और छोटे छोटे ब्रेक ले और छोटी छोटी सफलताओं के बाद खुशियां खुद ही मना ले कि वाओ कितनी अच्छी बात है, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया और मैंने आज इस टॉपिक को अपने टाइम से पहले या टाइम पे फिनिश कर दिया। तो खुद ही खुश हो जाइए, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मोटिवेट करते हैं, तो आगे पढ़ाई करने के लिए आप जब अकेले होते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। इसको जानने का, समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने सीखने के स्टाइल को समझें। अगर आप देखकर चीजें जल्दी सीखते हैं, पढ़कर जल्दी चीजें सीखते हैं तो आप अकेले पढ़िए, लेकिन आप सुनकर चीजों को जल्दी सीखते हैं, याद रखते हैं तो आप ग्रुप में पढ़िए। जब दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए सुनेंगे तो वहां पर आप चीजें सुन रहे होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तब तो आपको ग्रुप स्टडी में ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आप इंट्रोवर्ट है तब आपके लिए ग्रुप स्टडी बहुत बड़ी परेशानी होगी, आप अकेले पढ़ना पसंद करेंगे। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए बहुत गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है, एक फोकस की जरूरत होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अकेले ही पढ़ें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे बच्चे अकेले पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, तो इससे बहुत फायदे होते हैं। एक तो आपने किसी टफ टॉपिक को अकेले में समझ लिया, लेकिन अब आप ग्रुप में जाकर अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आई तो कन्फ्यूज़न दूर किया, या फिर किसी और के कन्फ्यूज़न को आपने दूर किया तो फिर आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ गए। तो आप ना जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप दोनों ही टेक्निक को मिलाकर पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडी भी करें, इंडिविजुअल स्टडी भी करें। जब आप इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी टफ टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस के साथ समझ रहे होते हैं, फिर उसी टॉपिक को आप ग्रुप में जाकर डिस्कस करते हैं तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। आप पहले क्या करें कि नोट्स को अकेले पढ़ लें, फिर आप ग्रुप में जाकर जो भी मुश्किल चीज़ें हैं उस पर चर्चा करें, और जब आप समूह में कोई भी चीज़ें सीखते हैं तो उसे फिर आप वापस आकर अकेले में दोहराएं और रिव्यू करें कि आपने क्या सीखा है। और अगर कोई टफ प्रॉब्लम है तो उसे अकेले में सॉल्व करें और फिर ग्रुप में जाकर डिस्कस करें कि कैसे आपने सॉल्व किया, या फिर किसी और ने उसे सॉल्व कर लिया है तो उससे पूछें कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी एक चीज पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंडिविजुअली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो भी आपको ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत फायदेमंद आपके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चीजों को अलग तरीके से सीखने का, समझने का जो मौका होता है वो होता है। इसके साथ ही वहाँ पर आप अपने जो कन्फ्यूजन होते हैं वो भी दूर कर सकते हैं। तो आप दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करें और दोनों ही तकनीकों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों तरीकों को मिलाकर पढ़ें और ऐसे ग्रुप के साथ पढ़ें जिनका कि लक्ष्य गोल एक जैसा हो, आपके सीखने की शैली भी अगर एक जैसी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम यानी कि करियर वॉच को देते हैं विराम। आप मुझे यानी कि अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात कि स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रोज मेहनत करते रहें, हर रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अनु। दोस्तों, अभी देखा जा रहा है कि किसानों की सहूलियत के लिए सरकार तो कुछ काम कर ही रही है, लेकिन यहां पर ज़रूरी है कि किसान भी कुछ समझे अपने विकास के लिए, अपनी खेती के विकास के लिए, अपनी आय को कैसे वो दोगुना कर सकते हैं, उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, उन्हें जानने की बारी आती है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा विषय भी है, बहुत ही खास विषय है, कृषि तकनीक की प्रसार में नेतृत्व की भूमिका। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर एस दिवाकर जी, और मैं बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये प्रसार शिक्षा विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कृषि के विकास के लिए क्यों ज़रूरी है नेतृत्व का होना।
2: जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नेतृत्व को आजकल सीधा सीधी लोग ले लेते हैं पॉलिटिकल लीडर के जैसा, वो केवल पॉलिटिकल लीडर को ही वो लीडर मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लीडर कोई भी हो सकता है। पहले इसके बैकग्राउंड में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हम जब आज़ादी के बाद से पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई भी मैनिफेस्टो या कोई भी बड़े नेता की भाषण को हम लोग सुनेंगे या उनकी मैनिफेस्टो को देखेंगे, तो उसमें एक बात तो क्लियर है कि सारे पार्टी जो हैं किसान की तरक्की के लिए हमेशा वो वचनबद्ध रहे हैं
0: जी।
2: अपने मैनिफेस्टो में भी
0: सबसे पहला उनका जो सबसे पहला जो उनका मुद्दा भी होता है, वो लोगों के सामने लोगों को इम्प्रेस भी करना चाहते हैं अपने जो मैनिफेस्टो वगैरह है उससे, तो सबसे पहले किसानों की बात ही करते हैं और उन्हें बहुत सारे जो हैं सहूलियत देने की बात करते हैं।
2: फिर भी हमारे किसानों को बहुत सारे प्रॉब्लम है। इतना सारे पॉलिटिकल पार्टीज किसान के बारे में बात करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम है। और यहाँ तक कि हम देखेंगे आज़ादी के समय जो हमारा जीडीपी में कृषि का जो कंट्रीब्यूशन था लगभग 50% के आसपास था।
0: अच्छा।
2: और आज के डेट में 13% पे आ गया है। मतलब कि कृषि से ज़्यादा अदर सेक्टर्स ज़्यादा ग्रोथ किया है।
0: अच्छा।
2: लेकिन कृषि का ग्रोथ
0: अभी तक नहीं हुआ है।
2: हुआ है ग्रोथ, हमारा प्रोडक्शन तो 5 गुना बढ़ा है, लेकिन
0: जो
2: जिस हिसाब से दूसरे सेक्टर बढ़े हैं उस हिसाब से हमारा प्रगति नहीं हुआ है।
0: मतलब कि प्रगति अभी धीरे धीरे हो रही है
2: जी,
0: जिस जो स्पीड में होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो रही है, जितना एक्सेप्ट करते हैं हम उतना नहीं हुआ है कृषि में तकनीक के विकास। और फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर साहब और भी कुछ बातें आप बताने वाले थे
2: जी। इसमें मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये सोचने वाली बात है कि सरकार की योजना के बावजूद हमारा किसानों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भारत में किसान संगठित तो है ही नहीं।
0: अच्छा।
2: बहुत कमी है। भारत सरकार की योजना भी है, जैसे FPO बनाइए, फार्मर इंटरेस्ट बनवाती है और नाबार्ड उसमें फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, फिर भी हमारे किसान एकजुट या संगठित नहीं हो रहे हैं। और संगठन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है, एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ इसको। सपोज आपके गांव में किसी सिंचाई की प्रॉब्लम है।
0: अच्छा।
2: और कोई एक किसान जाकर के ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर्स हैं उनसे गुहार लगाते हैं कि इस गाँव में ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपकी आवाज को ना सुना जाए।
0: अच्छा।
2: लेकिन यही जब किसान का एक संगठन ये अपनी बात रखेगा इस गांव में प्रॉब्लम है, तो संगठन की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। और वो संगठन सपोज हमारा यहाँ तो लोकतंत्र है, वो भी डिसेंट्रलाइज लोकतंत्र है, हर बार डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं कहा जा सकता है। इसी के लिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज लोकतंत्र है जिसमें आप मुखिया भी चुनते हैं, आप अपनी समस्या को मुखिया से तो कह ही सकते हैं। सपोज मुखिया वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए तो ब्लॉक पंचायत समिति में ले जाएंगे बात, वहां भी प्रॉब्लम का निदान नहीं हुआ तो जिला परिषद में जाएगा। हाँ। और जिला परिषद तक जाते जाते मुद्दा इतना बड़ा हो जाए कि सरकार इस चीज को जान जाएगी कि वहां पर रियल प्रॉब्लम है, तो आपका समस्या का निदान ऑब्वियसली हो सकता है। इस तरह
0: मतलब जरूरी है एकजुट होना, संगठित होना अभी किसान भाइयों का।
2: एकजुट होने पे ही आपकी आवाज को सुना
0: जा सकता है। हाँ।
2: और इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, जैसे कृषि तकनीक में आजकल हम लोग देखते हैं कंबाइन हार्वेस्टर, खास करके विदेशों में इसकी तो बहुत इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इंडियन कंडीशन में कंबाइन हार्वेस्टर हम लोग कम ही देखते हैं यहाँ, खास करके बिहार में तो बहुत कम ही देखा जाता है। इसका रीजन ये है कि हमारे जो किसान है मार्जिनलाइज्ड है, कम

0: जोत वाले किसान हैं, और यदि हमारे किसान जैसे कि ये गांव में 50 किसान संगठित हो गए, तो 50 किसान मिल करके जो नई तकनीक जो आई है कंबाइन हार्वेस्टर, उसको वो हायर कर सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। तो नई तकनीक का वो संगठन के रूप बना करके वो यूज कर सकते हैं।
1: मतलब ये एक तरीका हुआ कि आप अगर उस योग्य नहीं है कि आप अकेले खरीद सकते हैं या फिर उसे हायर कर सकते हैं, तो आप संगठित होकर भी जो है उसे हायर कर सकते हैं और उसका फायदा हर कोई जो है ले सकता है खेती में।
0: जी, तो अभी हम लोग देखा कि दो लाभ देखे संगठन का।
1: हाँ।
0: हम लोग दो ही लाभ पे बात करेंगे आज।
1: हाँ।
0: एक तो देखे कि आपकी आवाज को सरकार सुन सकती है जब आप संगठित होंगे, और दूसरा कि आप नई तकनीक जो महंगी तकनीक है उसको आप संगठित होकर के यूज करने में कामयाब होंगे।
1: तो यहाँ पर संगठित होने के लिए एक लीडर की भी जरूरत होती है डॉक्टर साहब, तो इस लीडर में क्या क्या गुण होना चाहिए?
0: जी, लीडर में कुछ जो गुण होने चाहिए मोटा मोटी मैं कुछ गुण बताता हूँ।
1: जी,
0: पहला तो गुण में ये होना चाहिए कि वो लीड बाय एग्जांपल, उनको खुद को एक एग्जांपल के रूप में पेश करना है।
1: अच्छा।
0: सपोज कोई नया वैराइटीज आई रिलीज हुई यूनिवर्सिटी के द्वारा, और वहाँ के किसी एक पर्टिकुलर गांव के एक प्रोग्रेसिव फार्मर उस तकनीक को, उस वैरायटी को अपने खेत में लगाए और अच्छा रिजल्ट देखे, तो वो अपने फेलो फार्मर्स, उस गांव के जितने अदर फार्मर्स हैं, उनको बता सकते हैं कि नहीं, मैं तो इसको यूज किया हूँ और हमारे कंडीशन के लिए बहुत अच्छा ये वैरायटी है।
1: अच्छा।
0: और सपोज कोई दूसरा आदमी जो वो वैरायटी को यूज नहीं किया, तो उसकी बात को लोग नहीं सुनेगा। तो पहले एग्जाम्पल अपने आप को पेश करना होगा, ये लीडर का एक पहला गुण होना ही चाहिए। और इसके अलावा एक होता है कि लीडर को हमेशा एंथुसियास्टिक होना चाहिए, हमेशा उनको उत्साहित रहना चाहिए। कोई लीडर है और खुद से निराश है कि नहीं, ये नई तकनीक जो आई है हमारे गांव के लिए सुटेबल नहीं है, तो उससे कोई भी लोग प्रभावित नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
0: और लीडर का तो डेफिनेशन ही है, जब आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तभी आप लीडर
1: बन सकते हैं,
0: तो आपको एंथुसियास्टिक होना ही पड़ेगा। एक है एम्बिशियस, लीडर को हमेशा गोल ओरिएंटेड काम करना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए कि नहीं हमें ये कर लेना है। एक हो गया डिटरमाइंड, वो हमेशा डिटरमाइंड होना चाहिए उसको, एक काम में लग गए तो ये नहीं कि इनिशियल स्टेज में हमें सफलता नहीं मिल रही तो काम को छोड़ दें। इसको एक एग्जांपल के रूप में आप समझ लीजिए, कोई एक किसान है, वो जो कुआं खोदना चाहता है और थोड़ा सा खोदा, फिर उसके दिमाग में आ गया कि नहीं यहाँ से तो पानी नहीं निकलेगा, फिर वो दूसरा गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है, ऐसे कर करके वो पूरा दिन वेस्ट कर देगा, सप्ताह वेस्ट कर देगा।
1: अगर इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, पेशेंस होना चाहिए।
0: पेशेंस। एक फिल्म भी आई थी माउंटेन मैन करके, जो दशरथ मांझी जी का अकेला आदमी पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिए, डिटर्मिनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो।
1: और लोग उन्हें कह भी रहे थे कि ये क्यों कर रहे हो, उसे तुम्हें क्या मिलेगा, फिर भी
0: लीडर को मतलब हमेशा एकाग्र होना चाहिए। और उनको हमेशा, जैसे किसान का जो प्रोग्रेसिव फार्मर नेता है, उनको हमेशा अदर किसान को इनकरेज करना चाहिए कि तुम भी करो ना, प्रॉफिट होगा, अच्छा काम करेगा। उनको डराना नहीं चाहिए कि नया तकनीक है, नया वैरायटी है, फेल हो जाएगा, जबकि नेता ही ऐसा बोल देगा तो किसान नहीं लगाएंगे उस चीज।
1: अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि LIC के जो एजेंट्स होते हैं वो हमेशा लोगों को कन्विंस करने में हमेशा पॉजिटिव चीजें ही रखते हैं,
0: तो
1: इस तरीके के थोड़े हमारे जो किसान भाइयों के जो लीडर हैं इस यूनिटी के या फिर यूनिट के जो भी लीडर हैं, उनका थोड़ा सा ऐसा फीचर्स होना चाहिए उनके पास कि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो रखें लोगों के सामने और उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं वो भूल कर भी ना रखें।
0: जी, और एक और गुण कह सकते हैं नेता में जो होना चाहिए, वो रेडी टू लर्न।
1: अच्छा।
0: उनको हमेशा सीखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। सपोज आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और गांव के सभी किसान आपको इज्जत करते हैं, तो जो चीज सपोज आपको नहीं आता है उसको सीखने में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए,
1: बताने में भी
0: जो चीज आपको नहीं आता है तो आप कहीं से सीख लीजिए। तो ये सब ये सारे गुण मोटा मोटी होना चाहिए प्रोग्रेसिव फार्मर में।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी हमने बात किया इस संगठित होने का, जो दो लाभ आपने बताया कि एक जो किसी यंत्र को खरीद कर और दूसरा कि अपनी आवाज़ को हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आय की ओर बढ़ते हैं हम, तो किसान भाई संगठित रूप से कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी बताएं।
0: का भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन।
1: अच्छा,
0: इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कोई एक गांव है जो शहर से 50 किलोमीटर दूर है, वहां के किसान सब्जी की खेती कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: और प्रचुर मात्रा में मान लीजिए कि गोभी वहां पे पैदावार हो रही है, और वो गोभी को मार्केट पटना मार्केट में सपोज रेट अच्छा मिल रहा है सबौर मार्केट के, और जो वहाँ जो भी उनका नियरेस्ट मार्केट हो, और दूर की मार्केट में अच्छा उनको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन किसान अकेला वहाँ तो ले नहीं जा सकते हैं अपने प्रोड्यूस को। लेकिन वहाँ के किसान 100 किसान जो 100 फूल गोभी की जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, 100 किसान एक साथ मिल करके अपने प्रोड्यूस को मार्केट दूर तक की मार्केट में, यहाँ तक कि अदर स्टेट में भी वो भेज सकते हैं, और जो ट्रक का जो भाड़ा होगा वो सब पे शेयर हो जाएगा। तो मामूली सी मार्केटिंग कॉस्ट में अपना प्रोड्यूस को बेच करके अच्छा इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी पे अब आते हैं, इसके लिए आपको 500 किसानों को जो एक ही चीज़ यूज कर रहे हैं एकत्रित करना होगा, और सबका शेयर बनता है। सपोज एक किसान 1,000 रुपया सब इन्वेस्ट किया, तो 1,000 लोग है, तो जितना अमाउंट जोड़ के आएगा उतना पैसा नाबार्ड भी आपको दे देगी आपको आगे की खेती करने, या खेती का जो नई तकनीक आप जो यूज लेना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं इसका यूज।
1: तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि संगठित होने का क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है आपको, और कृषि

तकनीक के प्रसार में नेतृत्व की भूमिका बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
7: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 1 के पाठ 4 पर आधारित कार्यक्रम पत्ते ही पत्ते।
1: बच्चे बाहर खेल रहे थे तभी दीदी बोली,
2: अरे पियू काचू ये देखो तो, देखो मेरे पास क्या है।
3: क्या है दीदी
4: बताओ ना।
2: देखो मेरे पास कुछ पत्ते हैं।
4: अरे वाह कितने सारे पत्ते।
3: मुझे ये लंबा पत्ता बहुत अच्छा लगता है।
2: ये आम का पत्ता है। कई जगह पर लोग इस पत्ते का पूजा में उपयोग करते हैं।
4: ये पत्ता तो देखो कितना खुरदुरा है।
2: हाँ ये पारिजात का पत्ता है। ऐसा और कोई पत्ता देखा है आपने?
3: नहीं हमने तो नहीं देखा।
5: मैंने भी नहीं देखा।
4: दीदी ये छोटा गोल पत्ता गुलाब का है ना?
2: हाँ एकदम सही पहचाना तुमने, ये गुलाब का ही पत्ता है।
3: और ये पत्ता?
2: अच्छा ये कतरीला पत्ता तो पपीते का है।
5: दीदी इमली के पत्ते ऐसे ही होते हैं ना?
2: हाँ इसी प्रकार के होते हैं लेकिन थोड़े छोटे होते हैं। देखो तो ये कैसे बंधनवार जैसे दिखता है ना?
4: हाँ दीदी।
5: हाँ दीदी। दीदी सभी पत्ते तो हरे हैं लेकिन ये पत्ते तो पीले हैं।
3: और ये जामनी क्यों है?
2: बच्चों वनस्पति के पत्ते विविध रंगों के और प्रकार के भी होते हैं। ऐसे ही खेलते खेलते हम पत्तों के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है
3: दीदी।
2: तो चलो फिर और पत्ते इकट्ठा करते हैं।
3: दीदी मैं भी चलूंगा। दीदी
2: हाँ हाँ ठीक है।
0: पत्ते ही पत्ते अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT, विषय संयोजन सह आचार्य डॉक्टर रमेश कुमार प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार ममता मलकानी शालिनी सिंह और रक्षित थपलियाल, बाल कलाकार निशांत नमन रवीश रितिका रियान और सौरभ, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों

में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन पर. मैं हूं अनु और स्वागत करती हूं हर रोज़ की तरह हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. तो दोस्तों, हम आज खास विषय आप सभी के लिए लेकर आए हैं, धान में पोषक तत्व प्रबंधन. और इस विषय को आज हमारे बीच लेकर आए हैं डॉक्टर राजीव रक्षित. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में. हम डॉक्टर साहब से जानते हैं सबसे पहले कि बीज स्थली में उर्वरक प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए.
1: नमस्कार किसान बंधु, जहाँ तक धान की बात है, बीज स्थली हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधी तरह इसका बुआई नहीं करते धान में, हम लोगों को पता है. तो बीज स्थली में जहाँ तक की बात है, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है किसी भी बीज स्थली में, उसकी क्यारियों में हम कोशिश करेंगे कि 1 kg नाइट्रोजन, जिसे हिंदी में नेत्रोजन कहा जाता है, 1 kg पोटाश और 1 kg स्फूर या उसे फॉस्फोरस कहा जाता है.
0: अच्छा.
1: तो हम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसको देने की कोशिश करेंगे, जब हम मिट्टी की प्रिपरेशन या फिर जब शुरुआत करेंगे, जब बीज स्थली बनाने की क्यारियों को तैयार करेंगे. फिर जब बीज गिरने के 15 दिन बाद हम करते हैं कि उसमें 1 kg नाइट्रोजन और देने की कोशिश करेंगे. और नाइट्रोजन जो है, बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और सब किसान बंधु इसी विषय की जानकारी अवश्य रखते हैं कि यूरिया जो है, जिसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है या नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम ये पाएंगे कि बीज स्थली में या बीज गिराने के 15 दिन बाद हम 2.2 किलोग्राम यूरिया का बीज स्थली में उपनिवेशन करेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन या फिर उस बीज स्थली में डालेंगे.
0: जी, तो यहाँ पर उर्वरक प्रबंधन आपने जाना, और बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब की मात्रा, यानी कि खाद की मात्रा की हम बात करते हैं. अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फसल बर्बाद भी हो जाते हैं, इसलिए मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है. तो कितनी मात्रा होनी चाहिए खाद की इसमें?
1: अब ये जो है विषय जो है आपकी, कि ये आप डिपेंड करेगा कि क्या कौन से सारे प्रभेद आप इस्तेमाल कर रहे हैं.
0: अच्छा.
1: जैसे अगर हमने कहा कि अगर ऊपरी ज़मीन है आपकी, तो वहाँ कुछ अगर जल्द पकने वाली कुछ प्रभेद रहेंगे, तो अवश्य किसान भाई ये करेंगे कि 80, 40 और 20 के हिसाब से, मतलब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे. अगर कुछ संकर किस्म है, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, वो उन्नत मान के किस्म है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी. जैसे हमने कहा कि जल्द पकने वाली प्रभेदों में 80, 40, 20 के हिसाब से करेंगे, पर जैसे ही संकर किस्मों का अगर इस्तेमाल करने लगे, तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा हम 20 kg और बढ़ा देंगे. तो इस अनुसार अगर संकर किस्म है आपके पास, तो 100, 40 और 20 kg के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का इस्तेमाल आप करेंगे. कई किसान ऐसे हैं जो भागलपुर या इससे जुड़े हुए जिलों में सुगंधित किस्में लगाते हैं.
0: जी,
1: सुगंधित किस्मों में आपके दो तरह के किस्में और आएंगी, एक बौनी किस्म होगी, एक हो सकती है लंबी किस्में. तो बौनी किस्मों में मूलतः हम 80, 40 और 20 kg NPK के हिसाब से ही चलेंगे, पर जो अगर लंबी किस्में हैं, जिनके गिरने का डर रहता है, तो इसलिए हम वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा में थोड़ी कमी कर देंगे, और बौनी लंबी किस्मों के लिए 40, 30 और 20 kg NPK का इस्तेमाल हम प्रति हेक्टेयर के मात्रा में करेंगे.
0: और इसके बाद जो अलग खाद हम देते हैं, तो उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
1: जैसे हम ये कह सकते हैं कि अलग खादों में धान के लिए सबसे मूलतः जरूरी है आपका जिंक सल्फेट. जिंक की कमी मूलतः धान में पाई जाती है. भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जिंक की कमी है, और इस बात को ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि धान की फसलों में कहीं जिंक की कमी ना आ जाए. तो 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मुख्य खेत की अंतिम जुताई के समय एवं कदवा जब करेंगे, जब कादो करेंगे उस फील्ड को, तो उसके पूर्व खेत में हम इसको मिला दें, ताकि किसी भी तरह की जिंक से जुड़ी हुई समस्याएं ना उत्पन्न हो. इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि हाँ, जब हम फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि कंपोस्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर किसान भाई कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अवश्य ये कोशिश करें कि 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वो रोपाई के 20 से 25 दिन पहले कंपोस्ट का इस्तेमाल कर ले।
0: जी, और किन फसल चरणों में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए?
1: जहाँ तक फसल चरण की बात है, हर एक किसानों को ये पता है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम एक बार में नहीं कर देते। हम कोशिश करते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड स्टेज है, जहाँ पर फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी जगह उसको इस्तेमाल की जाए। तो अगर फसल चरण की बात कही जाए धान में, तो नाइट्रोजन की आधी एवं पोटाशियम एवं फॉस्फोरस की पूरी मात्रा जब हम कादो के समय, तथा 1/4 नाइट्रोजन की मात्रा रोपाई के 20 से 30 दिन बाद, तथा शेष जो नाइट्रोजन बचेगी हमारे पास वो बाली निकलने के वक्त ही हम उसका इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल कंडीशन में हम ये करें, साधारण मूलतः यही किया जाता है। अगर आप किसान भाई के पास ऐसी कोई प्रभेद है जो 150 दिन लेगी या 150 से ज़्यादा दिन लेगी, तो ऐसे क्षेत्र में वो नाइट्रोजन का 1/4 मात्रा रोपाई के पहले इस्तेमाल करें, दूसरा 1/4 मात्रा रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, तीसरा जो है वो 5 से 6 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, और अंतिम जो 1/4 बचेगी वो 7 से 8 सप्ताह में जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए इस जगह कि

0: मेरी फसल में नाइट्रोजन का व्यवहार करने के पूर्व खेत से आप अवश्य आपके खरपतवार जो है उसको निकाल दें, या यदि पानी का जमाव बहुत ज्यादा है तो उसकी भी निकासी कर दी जाए। इन बातों का ध्यान आप फसल के चरणों में रखिए जब आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे।
1: जी, तो आपने सुना किसान भाइयों कि जल जमाव नहीं रहना चाहिए आपके खेतों में और आप पानी की निकासी का व्यवस्था ज़रूर रखें। अब जैव उर्वरक की बात करते हैं, तो क्या इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: अभी भारत सरकार या कई राज्य सरकार भी पारंपरिक खेती की बात कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अवश्य ये रेकमेंड करते हैं, हम अवश्य ये किसानों को बताते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली का उपयोग करें। अच्छा। तो इनके देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि धान में आप अजोला का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं, या इस्तेमाल किया भी जाता है, या कुछ लोग कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु भी हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन आपका है उसका इस्तेमाल उसको खींच कर अपने पास रख लेते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो उसका स्थिरीकरण कर लेते हैं मिट्टी में। कुछ ऐसे हैं हमारे सूक्ष्म जीवाणु। उसके साथ साथ आप धान की उत्पादकता अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो अवश्य ही एजोला के साथ साथ कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनका उदाहरण हम कह सकते हैं एजो स्पाइरिलम है, उसके अलावा नील हरित शैवाल है जिसे अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साथ ही साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि फॉस्फोबैक्टीरिया जो फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाएगी, ऐसे बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है आज। और साथ ही साथ माइकोराइजा भी है, किसान इस माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाया जा सके। तो यही सब है कि आप रासायनिक के साथ साथ जैविक खाद का भी समेकित तरीके से इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करें ताकि धान की उत्पादकता भी बनी रहे और भविष्य में हमारी सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी बने रहे। जो मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आज हमारे पास जो खाना है उसको हम इस तरह बचा के रखें ताकि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को भी मिलते रहे। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, मुझे लगता है कि जितने अच्छे से डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उतने अच्छे से आप सुनेंगे और इसे अपने व्यवहार में ज़रूर लाएंगे तो आप अच्छे से धान में पोषक तत्व प्रबंधन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। इसे फ्रिक्वेंसी याद रखें 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
2: 90 क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।
6: सुनो सुनो, एक

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। 7 सितंबर 2026 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में विद्यार्थियों के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव यानी RAWE रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस को और अधिक व्यवहारिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल का नाम है एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान, यानी वन स्टूडेंट वन फार्मर वन सॉल्यूशन। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर DR सिंह ने किया। इस अभिनव पहल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVKs से जुड़कर RAWE कर रहे देश के 19 विश्वविद्यालयों के 397 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत अब प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान से जोड़ा गया है। विद्यार्थी किसान के खेत पर जाकर उसके कृषि कार्यों को समझेगा और किसान की एक प्रमुख समस्या की पहचान करेगा। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी किसान के साथ मिलकर उस समस्या का स्थानीय व्यवहारिक और कम लागत वाला समाधान खोजने और उसे खेत पर लागू करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य RAWE को केवल खेत भ्रमण या कृषि कार्यों का अनुभव प्राप्त करने तक सीमित रखना नहीं है। इसके माध्यम से RAWE को समस्या की पहचान, समाधान की खोज और उसके वास्तविक प्रभाव से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में किसानों के अपने अनुभवों और नवाचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। किसानों द्वारा विकसित जमीनी नवाचार, स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक कृषि अनुभव और कम लागत वाली तकनीकों की पहचान की जाएगी और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उपयोगी नवाचारों को वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा और सफल पाए जाने पर उन्हें अन्य किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया

जाएगा। इस पहल में किसान को केवल तकनीक प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता के रूप में देखा जाएगा। विद्यार्थी किसान की समस्या को समझने के साथ साथ उनके अनुभव और स्थानीय ज्ञान से भी सीखेंगे। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की पूरी कार्य प्रणाली की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी और किसान के बीच नियमित संवाद होगा। किसान और कृषि परिवार की आधारभूत जानकारी का संकलन किया जाएगा। इसके बाद समस्या की पहचान, वैज्ञानिक निदान, समाधान का संयुक्त विकास, खेत पर उसका प्रयोग, नियमित निगरानी, परिणामों का आकलन और दस्तावेजीकरण जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्यक्रम की सफलता का आकलन भी ठोस परिणामों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए तकनीक को अपनाने की दर, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, किसान की आय में वृद्धि, संसाधनों के बेहतर उपयोग, किसान की संतुष्टि और सफल समाधान को अन्य किसानों द्वारा अपनाया जाना प्रमुख संकेतक होंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलन किया गया और इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर डीआर सिंह ने कहा कि एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि REWE कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान के साथ जोड़कर उसकी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। माननीय कुलपति ने कहा कि किसान आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, फसलों में रोग एवं कीट, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, सिंचाई की समस्या, बढ़ती उत्पादन लागत और फसल के उचित मूल्य का न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के साथ मिलकर इन समस्याओं के व्यवहारिक और कारगर समाधान खोजें। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहा कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को खेत पर जाकर वास्तविक स्थिति को समझना होगा और ऐसा समाधान देना होगा जिसका किसान के जीवन और कृषि कार्य पर स्पष्ट और मापनीय प्रभाव दिखाई दे। माननीय कुलपति ने इस पहल को लैब टू लैंड और लैब टू लैब का बेहतर उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जहां विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा, वहीं किसानों का अनुभव और स्थानीय ज्ञान भी विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा। माननीय कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को किसानों से संवाद करने के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि किसान से बातचीत करते समय उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसकी वास्तविक समस्या को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसानों के खेत की फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेने और पूरे कार्य का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यदि आपके प्रयास से किसी किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है तो इसे ही अपने जीवन की असली कमाई समझें। कार्यक्रम के दौरान REWE विद्यार्थियों ने एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान पहल से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी। डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज की REWE विद्यार्थी अदिति पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस पहल में किसान केवल लाभार्थी नहीं होंगे बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता होंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव के विद्यार्थी स्वप्निल ने किसानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और किसान डेटा तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यार्थियों ने माननीय कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर की वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अनीता कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर R.K. सुहाने ने कार्यक्रम

के अंत में सह निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर्यन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब बात करते हैं इस पहल से RAWE को किस तरह नई दिशा मिलेगी। एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि RAWE को और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी किसान की समस्या को केवल देखे नहीं बल्कि उसे समझे, किसान के साथ मिलकर समाधान खोजे और उस समाधान के परिणाम को मापे। इस पहल में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। KVK विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ किसान नवाचारों की पहचान, उनके वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण में भी सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों और किसानों के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा, किसानों की वास्तविक समस्याएं विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगी और विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा। साथ ही देश के 19 विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों की सहभागिता से विभिन्न क्षेत्रों के कृषि अनुभव, स्थानीय ज्ञान और नवाचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान का लक्ष्य है कि RAWE के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक किसान की एक वास्तविक समस्या को समझे, उसके समाधान की दिशा में काम करे और किसान के खेत पर उसके सकारात्मक एवं मापनीय प्रभाव को सुनिश्चित करे।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना?
4: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की।

0: राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फॉस्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फॉस्फोरस कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर से सस्य फसलों के लिए, और बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
1: उमा, अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है। और हमारी जो बिहार की किसान हैं उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें, और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: तो मैम, फॉस्फोरस क्या है, अब ये बताइए।
1: जी, फॉस्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है, अगर आप सुने होंगे ATP, ADP, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी कोशिकाओं के लिए फॉस्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए। तो फॉस्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसमें फॉस्फोरस जरूरी होती है, जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन, और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
0: तो मैम, सस्य फसलों में अगर हम फॉस्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है?
1: जी, हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फॉस्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट या जरूरी होती है, यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फॉस्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्ते फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की जरूरत होती है, जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में, उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की जरूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फास्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फास्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फास्फोरस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
1: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा की, गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फास्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फास्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फास्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 टू 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्गीय होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 या 30 प्रतिशत तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत यानी 15 से 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नट से अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 से 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
1: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फास्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उस के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फास्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि डीएपी, एसएसपी और हम लोग यहाँ पे एनपीके के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फॉस्फरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फॉस्फरस के केस में है, जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फॉस्फरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो ले ले, अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्योर, जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्योर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए, उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस की वो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप पीएसबी को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक फिर क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फॉस्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो, तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी। यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे ये 20-30% फॉस्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
1: जी जरूर। फॉस्फरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
0: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू वेरी मच उमा।
0: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
13: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
14: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
13: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
14: आपकी सेहत की बातें,
13: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
14: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
13: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
14: वो कहाँ पर?
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
14: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आप को अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, BCDE जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज़ आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है। आपका मूड कैसा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफ़ी अच्छा रहता है, कभी काफ़ी ख़राब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी, सी, डी, ई और बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा। लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना? तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखें एकदम खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप बने रहें 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो सुनो एक

0: कभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हां, किसान भाइयों, जिसका इंतज़ार आपको रहता है और वो कार्यक्रम एक बार फिर आप सुन रहे हैं, और इसमें आज हम दालों के बारे में जान रहे हैं, यानी दाल, आज अरहर दाल के बारे में हम जानेंगे। आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं और साथ ही अरहर की खेती के लिए आपको कौन सी भूमि चयन करनी चाहिए, कौन से प्रभेदों को आपको लेना चाहिए, इसके साथ ही अगर कुछ रोग व्याधि लगते हैं तो आप उनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीट कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें आज आपको अगर आप हमारा यह कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो इस खास विषय के साथ हमारे बीच आज हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज पूरी की पूरी जानकारी आप इनसे सुन सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मौसम अनुकूल अरहर की उन्नत खेती कैसे करके ज़्यादा हम लोग फायदा कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है तथा यह भोजन का अभिन्न अंग है। दलहनी फसलों में अरहर एक प्राचीनतम एवं लोकप्रिय फसल है। भारत में प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चना के बाद दूसरा स्थान रखता है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती, मृदा की उर्वर शक्ति को कायम रखने में या और पोषण सुरक्षा में अरहर जैसी दलहनी फसलों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है वह शाकाहारी है, उसे प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन की प्रतिपूर्ति हेतु दैनिक भोजन में दालों का समावेश अति आवश्यक है। अरहर एक ऐसी फसल है जिसको हम लोग उसकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। अरहर प्राय असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। अरहर सूखा प्रतिरोधी, जिसमें उच्च प्रोटीन युक्त 20-22% प्रोटीन पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति के वृद्धि गुणों के कारण यह फसल अब हमारे सीमांत किसानों के बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि क्या क्या ये इनकी विशेषताएं हैं, और अब खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि भूमि का चयन, तो कैसी भूमि में की जाए जो किसान भाइयों को इससे उपज अधिक हो।
1: किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरहर की खेती में भूमि का चुनाव एक अत्यंत जो हम लोग ध्यान रखने की बात है, और भूमि का चुनाव करते समय हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि खेत ऊंचा और समतल हो, जिससे जल निकास अच्छी हो। बिहार में अरहर प्राय मटियार दोमट मिट्टी से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अरहर की फसल के लिए बलुई दोमट या अथवा दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच सर्वोत्तम मानी जाती है। और खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अरहर की फसल उगाने के लिए खेत को की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी की फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई करने के बाद खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े सूर्य की गर्मी से मर जाएं। 2-3 बार खेत की अच्छी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। जुताई के समय गोबर की सरी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। अरहर के खेत में पानी का जमाव कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ अधिक वर्षा होती हो वहाँ रेस्ट बेड, जैसे हम लोग कहते हैं उठी सैया बनाकर या मेर या नाली बनाकर बोना एक आदर्श बुआई विधि है। अतः अधिक उपज लेने के लिए फसल को इस विधि से लगाना अधिक उपयोग होगा। आजकल हमारे बिहार में जितने भी हमारे किसान भाई जो मेर पर है, वो अपना मेर के जमीन का ज़्यादा उपयोग अरहर की खेती के लिए कर रहे हैं।
0: तो ये थी कुछ बातें जिससे कि आप जिसे आप करके अधिक मुनाफा पा सकते हैं। पानी बिल्कुल नहीं जमा रहने दीजिए, और पानी खेतों से बिल्कुल निकाल लीजिए अगर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ उन्नतशील प्रभेदों की, तो उन्नतशील प्रभेद कौन कौन से हैं अरहर के, जिसकी बुआई करके हमारे किसान भाई अधिक लाभ कर सकते हैं।
1: किसान भाई, हम लोग को प्रभेद का चयन के समय एक सावधानी बरतनी यही है कि हम लोग जो भी प्रभेद का चयन करें वो ऐसे प्रभेद लें जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन देने वाली प्रजातियां का इस्तेमाल से अरहर की उत्पादकता को हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिहार में अभी भी मात्र 20-30% किसान ही अरहर की उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः अरहर की उन्नत कीट रोगी प्रतिरोधी किस्मों के बीज को समय पर उपलब्धता एवं किसानों द्वारा उपयोग किया जाना बेहतर उपज के लिए निहायत जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अरहर की खेती 2 समय में करते हैं, एक है खरीफ मौसम में और दूसरा सितंबर के समय में। तो जो जो खरीफ मौसम में करते हैं उसको लगाने का समय है 1 से 31 जुलाई। उसमें हमारे बीच बहुत से हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय चाहे दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है उससे आप लोग जो उन्नतशील प्रभेद जैसे IPA 203 यह प्रभेद अभी नवीनतम प्रभेद है और 2017 में इसको अनुशंसित किया गया है। यह प्रभेद 240 से 250 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी उपज औसत उपज 18 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे अरहर में दो रोग बहुत महत्वपूर्ण होती है जैसे उकठा एवं बंधता मोज़ेक रोग, ये उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। उसी तरह एक और नई किस्म आई है जो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से विकसित की गई है, यह IPA 206। यह 260 से 270 दिनों में परिपक्व हो जाती है और इसका औसत उपज बहुत अच्छा है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये उकठा के प्रति प्रतिरोधी है तथा इसका दाना मध्यम होता है और अंडाकार बीज इसका है। इसी तरह हमारे बिहार में जो राजेंद्र अरहर एक है उसका भी जो परिपक्व होने का समय होता है मैच्योरिटी का जो है वो 260 से 70 दिनों का है, जो 28 से 30 क्विंटल इसका औसत उपज है। ये भी उकठा के प्रति सहिष्णु एवं बंधता मोज़ेक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और जैसा कि पहले भी हमारे किसान भाई बहार पूसा 9 नरेंद्र अरहर की खेती मालवीय अरहर 13 जैसे प्रति जो प्रभेद है उसका प्रयोग करके अच्छा उपज प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा जो हमारा सामान्य आकस्मिक फसल योजना, जैसे कभी कभी होता है कि मानसून दगा दे दिया और आदमी का खेत खाली हो रहा है तो सितंबर के मौसम में भी अरहर की खेती कर सकते हैं और उसमें लगाने का समय है 25 अगस्त से 15 सितंबर। जैसा कि हम लोग सितंबर अरहर में दो प्रभेद अनुशंसित है पूसा 9 और शरद। पूसा 9 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाता है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। और दूसरी वेरायटी है शरद जो 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। तो ये आकस्मिक फसल के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आकस्मिक फसल के रूप में भी आप अरहर की फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्नतशील प्रभेदों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, अब शस्य क्रियाओं को बताएं कि कौन कौन से शस्य क्रियाएं हमारे किसान भाई अपनाएं जैसे कि उनको इस

0: विकसित करने के लिए उन लोगों को भी टीका लगाना होगा, जैसे बीज को टीका लगाना होगा। बीजों को प्रारंभिक अवस्था में उकठा के रोके को फसल से बचाने के लिए बीजोपचार करना अति आवश्यक है। तो बीजोपचार हम लोग कैसे करें, इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो बुआई के 48 घंटे पूर्व हम लोग को सबसे पहले 2.5 ग्राम थीरम या 1 ग्राम बेबेस्टिन अथवा 1.5 ग्राम थीरम तथा 0.5 ग्राम बेबेस्टिन के मिश्रण को प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि हमारे एक हेक्टेयर के लिए यदि हम 20 किलोग्राम बीज लेते हैं तो उसको उसी के हिसाब से हम लोग को इससे गुना करके उसको उतना मिश्रण हम लोग को बनाना होगा। और जिन खेतों में दीमक का प्रयोग अधिक हो उसमें फफूंदनाशक से बीजोपचार के उपरांत क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा आती है 20 EC 20 EC दवा 6 से 8 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को अच्छे से उपचारित कर देना चाहिए। उपचारित करने के बाद हम लोग को बीज को जीवाणु संवर्धन से बीजोपचार जैसे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार विभिन्न दलहनी फसलों के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम कल्चर होते हैं। यदि हम अरहर के लिए बीजोपचार करने जा रहे हैं तो अरहर बीजों को उपचारित करने के लिए संस्तुत राइजोबियम कल्चर का ही प्रयोग करना चाहिए। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर जो एक पैकेट में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर होता है वह 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो अरहर में 20 किलो बीज के लिए हम लोग को 2 पैकेट की आवश्यकता होगी। उसको कैसे हम लोग करते हैं तो 100 ग्राम गुड़ अथवा चीनी आधा लीटर पानी में घोल लेना चाहिए। घोल को गर्म करके ठंडा करके एक पैकेट राइजोबियम कल्चर अच्छी तरह डंडे से हिलाकर मिला देनी चाहिए। बाल्टी या घड़े में 10 किलोग्राम बीज डालकर घोल में मिला देना चाहिए ताकि राइजोबियम बीज की सतह पर अच्छी तरह चिपक जाए। इस प्रकार राइजोबियम को कल्चर को सने हुए बीज को कुछ देर छाह में सुखा देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बीजोपचार सायं काल में करें ताकि तेज धूपों में बीजों को सूखने की संभावना न रहे। धूप से बीजों को सुखाने में राइजोबियम जीवाणु मर जाते हैं जिससे वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। उस राइजोबियम कल्चर के उपरांत हम लोग को PSB कल्चर जिसको फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया से बीजोपचार करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर के भांति ही फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया कल्चर का पैकेट उपलब्ध रहते हैं जिन्हें बाजार या हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सवोर में खरीदा जा सकता है। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार की तरह ही PSB कल्चर का बीजोपचार करना चाहिए। एक बात किसान भाई बहुत जरूरी है कि हम लोग यदि पंक्ति में अपने फसल को लगावें तो हमारा उपज अपने आप बढ़ जाता है। तो खरीफ मौसम में यदि हम अरहर की खेती कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि सितंबर में हम लोग अरहर की बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। किसान भाई दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उर्वरक का प्रयोग अरहर की खेती में कैसे करें। दलहनी फसल होने के कारण नेत्रजन की आवश्यकता कम होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उसमें उसके जड़ में ग्रंथियां होती है जो नेत्र जो वायुमंडल से नेत्रजन स्थिरीकरण कर पौधे को अवेलेबल कराता है। समानांतर परिस्थिति में हम लोग 20 किलोग्राम नेत्रजन 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस की दर से डालना चाहिए। और सितंबर अरहर यदि हम लोग उसकी बुआई कर रहे हैं तो उपरोक्त उर्वरक की अतिरिक्त बुआई 25 से 30 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन करें निकाई गुड़ाई के समय कर दें। यदि भूमि में जिंक और सल्फर की कमी हो तो बुआई के समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फेट का प्रयोग करें। एक बात सबसे बड़ा है कि खरपतवार की समस्या हमारे अरहर के खेत में बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार की समस्या से हम लोग कैसे इसको निजात पा सकते हैं। खरीफ फसल एवं लंबी अवधि वाली फसल में खरपतवार की समस्या प्रमुख है। खरपतवार के कारण फसल की पैदावार में 40 से 50% की कमी देखी गई है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण में पेंडी मेथिलीन 30 EC 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के उपरांत अंकुरण पूर्व छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त इमीजा थाइपर जो एक नया मॉलिक्यूल है 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 दिन बाद छिड़काव कर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: तो किसान भाइयों यहाँ पर आपने जाना कि आप बीजोपचार कैसे कर सकते हैं, साथ ही उर्वरक का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए और खरपतवार का प्रबंधन आप इसमें कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ हो। और डॉक्टर साहब रोग की बात करते हैं, रोग व्याधि भी बहुत इसमें लग सकते हैं, तो इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई।
0: किसान भाई अरहर की फसल को प्रभावित करने वाले हमारे प्रमुख रोगों में उकठा, तना विगलन, बंधता मोजैक चाहे पीला मोजैक या सरकसपोरा पर्णचीतियाँ प्रमुख हैं। इन रोगों के प्रकोप से औसतः हम लोग 15-25% तक नुकसान हम लोग को होता है। इन रोगों को समुचित प्रबंधन हम लोग कैसे करें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि उकठा रोग के हम लोग लक्षण

0: कैसे पहचानें? सामान्यतः इस रोग का संक्रमण अधिकतर फसल की प्रारंभिक अवस्था 4 से 5 सप्ताह में होता है, किंतु किसी भी अवस्था के पौधे इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। खेत में यह रोग छोटे छोटे स्थानों में पैच के रूप में कई स्थानों में दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, देखिएगा तो वह मुरझाकर सूख जाते हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी की कमी के कारण ये मुरझा गए हों, जबकि वास्तव में खेतों में पर्याप्त नमी होती है। रोगी रोधी के तने का निचला भाग तथा संवहन उत्को जिससे उसको पानी और भोजन के जाता है, जिससे उसका रंग भी काला पड़ जाता है। यदि रोगी रोधी पौधे को उखाड़ कर उनकी जड़ों को चीर कर देखा जाए तो उन पर पतली पतली कालियां धारियां दिखलाई पड़ती है। यदि रोगी रोधी पौधे के तने की लंबाई को चीरा जाए तो उसमें से काली धारियां दिखाई पड़ती है, जो कि भूमि की सतह से 3 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको रोकथाम के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फसल चक्र अपनाना होगा। अधिक वर्षों का फसल, जैसे 4 से 5 वर्षों का फसल चक्र अपनाने के साथ खेतों में खरपतवार नियंत्रण बनाए रखने और गर्मी के समय में गहरी जुताई करके भूमि में परे रोगजनक नष्ट कर देने होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा है कि थीरम या कर्बेंडाजिम 2:1 के अनुपात से मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि अरहर का फसल चक्र तंबाकू के साथ किया जाए तो रोग की कमी देखी गई है, क्योंकि तंबाकू की जड़ों से निकलने वाले रोगजनक के हानिकारक होते हैं। यदि अरहर को ज्वार के साथ मिलाकर बोया जाए तो संक्रमण कम किया जा सकता है। ऐसे हम लोगों के पास रोगी रोधी किस्म अब बहुत से आ गए हैं, जिसकी हम लोग खेती करके इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। जैसे अभी हम बताएं IPA 203, IPA 206, चाहे नरेंद्र अरहर 1, मालवीय अरहर 3। उसी तरह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोग अरहर में बंधता मोज़ेक रोग है। इसके लक्षण होते हैं, रोगी पौधे खेतों में हल्के हरे दिखलाई पड़ते हैं तथा स्वस्थ हरे पौधों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्रायः रोगी पौधे की पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, जिस पर अनियमित आकार के हल्के हरे और गहरे हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोगी पौधे पर फूल और फल उत्पन्न नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, उनमें से शाखाएं निकल फूटती है, जिससे पौधे झाड़ी नुमा दिखाई पड़ते हैं। प्रायः पौधे की कुछ शाखाएं रोग संक्रमित होती है तथा बाकी शाखाएं से बिल्कुल स्वस्थ होती है। रोगी शाखाओं पर फल फूल नहीं आते हैं, जिससे स्वस्थ हिस्से में फल फूल आते हैं। इसके प्रबंधन में हम लोग को क्या क्या रखना चाहिए, इसकी रोकथाम हम लोग कैसे करें? तो सबसे पहले खेत में सफाई रखनी चाहिए, खरपतवार आदि को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जिस खेत में अरहर को बोना है उसके आसपास अरहर के पुराने या स्वयं उगे पौधे को उखाड़ देना चाहिए। और रोग रोधी किस्म जो हम लोग बताए हैं, IPA 203, 206, मालवीय अरहर 13, ये प्रभेदों को लगाना चाहिए। खेत में जो ही रोगी पौधे दिखाई दें तो इमीडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर जो कीड़े दिखाई दें उसे, जैसे हम लोग को सफ़ेद मक्खी दिखाई दे उसे ये इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। उसी तरह जैसे कीट प्रबंधन अरहर में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें फली छेदक जो कीड़ा होता है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें कीट का व्यस्क जो रहता है वो पीले भूरे रंग का होता है एवं सफ़ेद पंख के किनारे काले रंग की पट्टी बनी होती है। इसके पिल्लू हरे रंग के होते हैं, जिनकी पीठ पर गहरी भूरी रेखाएं दिखाई देती है। इस कीट के पिल्लू के प्रारंभ में पत्तियां को खा जाती है तथा बाद में फलियों को छेद कर इसके दाने को भी खा जाती है। इसके प्रबंधन में हम लोग को ध्यान रखना है कि खेत में को गर्मी में हम लोग गहरी जुताई करें, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें तथा सबसे बड़ा है कि 10 फेरोमोन फंदा, जिसको हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का ल्योर लगा के प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाना चाहिए। हम लोग प्रकाश फंदा का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। आजकल जैसे कि हम लोग जैविक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो 15 से 20 टी आकार का बर्ड पर्चर प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जिससे कि वो हमारा जो पहले जो कौवा या कोई जानवर हो, कौवा जो हमारा जो है वो भी हमारा खेत में जो इसका जो लियो इसका जो लार्वा है उसको खा जाए। खरीफ फसल में इसके अतिरिक्त एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे जैविक दवा है NPV 250 एली प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। अरहर के लिए 500 के प्रति हेक्टेयर की मात्रा से एनपीवी वायरस गोल का छिड़काव कर फली छेदक अंडे देने के समय कर सकते हैं। दोबारा अंडे देने की स्थिति में 15 से 20 दिनों के बाद एनपीवी का छिड़काव करें। यदि फली छेदक का संक्रमण अधिक हो तो अरहर के पौधों को जोर से हिलाकर लार्वा को पॉलीथीन की चादर या जूट के बोरी में जमा करके नष्ट कर दें। या एक दवा आती है प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव फूल आने के समय तथा दूसरा छिड़काव फली बनाते समय करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये इस विधि से यदि हम लोग अरहर की खेती करें तो अरहर फसल की पैदावार जो हमारा जो उन्नतशील प्रभेद है जो उससे हम लोग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना अरहर के बारे में, अरहर की खेती और वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं। और इस बहुत ही अच्छे विषय के साथ हमारे साथ थे डॉक्टर आनंद कुमार। और दोस्तों, हमारे किसान भाइयों, आपसे आशा करते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है आप उन्हें सुनेंगे और अपनी खेती में ज़रूर उसे अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृति मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद उमा, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
12: मैम, सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों की जो स्थिति है और उनका जो योगदान है उसके बारे में बताइए।
13: बिल्कुल, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो लगभग ऐसा है कि 80% ग्रामीण महिलाएँ हैं जो कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न होते हैं, और इनमें से लगभग 33% जो महिलाएं होती हैं वो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, तथा 48% जो महिलाएं हैं वो स्वयं अपने खेतों में किसानी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो 40 से 45% से भी अधिक होती है, और ऐसे आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का लगभग 76-77% हिस्सा कृषि में ही कार्यरत है।
14: जी मैम,
13: ये स्पष्ट करता है कि भारत में कृषि का जो महिलाकरण है, जिसको हम की फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये तेजी से हो रहा है और खासकर पुरुषों के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण महिला केवल अब एक श्रमिक नहीं है, बल्कि वो एक उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन तक पूरे वैल्यू चेन में भी सक्रिय हैं और पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, बागवानी में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है और खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी इसे निभाती भी हैं। महिलाओं का जो इन सभी में जो निर्णायक रोल है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय भी है।
14: मैम, आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई काफ़ी आकर्षक है, लेकिन मैम बिहार के संदर्भ में स्थिति क्या है?
13: अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला किसानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उमा, क्योंकि यह राज्य कृषि पर ही आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है, तो अगर हम बिहार में प्रमुख आंकड़े की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है कृषि कार्यों में शामिल होती हैं और लगभग हर कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी होती है। राज्य में जैसे कि पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं अब हम सिर्फ इनको घर तक सीमित नहीं समझ सकते हैं, बल्कि ये फार्म मैनेजर की भूमिका भी निभा रही हैं आजकल। और अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसके माध्यम से भी महिलाओं का व्यापक संगठन हुआ है। जैसे कि जीविका की बात करें, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल, ना कि राज्य स्तर पर बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जो जीविका मॉडल है यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसका बहुत प्रसिद्ध मॉडल है, जिसमें कि अगर कहें तो 10 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुई हैं और अगर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लगभग हर दूसरे ग्रामीण परिवार तक पहुंच चुका है और अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जाती है। जैसे कि इसे अगर देखा जाए तो इससे अधिक बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें, या 15-20% तक किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 लाख से अधिक किसानों की आधुनिक कृषि प्रशिक्षण मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और सहायक भी होता है।
14: तो मैम, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को आप कैसे समझाते हैं?
13: अगर हम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को जानें तो इसका, इस मॉडल का ग्रामीण विकास में सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही हैं आज के दिन में। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें सही मायने में तो हम इसको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें जैसे बचत हो गया, महिलाएं कुछ कुछ पैसे हर महीने जमा करती हैं और इनसे उनका आंतरिक ऋण, बैंक लिंकेज का जो ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है और कृषि निवेश में भी इन्हें सहायता मिलता है। अगर हम कृषि आधारित उद्यमिता की बात करें जो हमारी महिलाएं हैं, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह मशरूम उत्पादन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, डेयरी की बात करें अगर हम, बकरी पालन हो गया, या खाद्य प्रसंस्करण की भी बात जैसे अचार, पापड़, मिलेट उत्पाद का जो आजकल वैल्यू एडिशन होता है वो सब में भी इनको इससे मदद मिलता है। जैसे कि सामूहिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सामूहिक खेती हो गया, या इनपुट की माध्यम से सामूहिक खरीद भी होता है, उत्पादों का सामूहिक विपणन भी कर सकते हैं। और अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, पंचायत में भागीदारी, या स्वास्थ्य, या पोषण और शिक्षा में सुधार, ये एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रभाव है जो कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देखा जा सकता है।
14: तो मैम, क्या हमारे राज्य में इस दिशा में कोई विशेष पहल भी की जा रही है?
13: जी हाँ, बिहार में तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी ऐसे हमारी जो सरकार हैं वो बहुत पहल चलाती हैं और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। तो अगर हम कहें तो इसके माध्यम से महिलाएं बचत करती हैं और आपस में ऋण भी ले लेती हैं, और छोटे छोटे कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन की मैंने बात करी, या वर्मी कंपोस्ट या अचार पापड़ जो हम बनाते हैं उस सब की आदि की भी शुरुआत करती हैं। सो इसके अलावा ये समूह जो होता है सामूहिक खेती इनपुट जो कि मैंने पहले भी बताया है, और उत्पादनों के विपणन में भी सहयोग करते हैं, तो इससे कम लागत में इनकी आय बढ़ती है। और अगर राज्य से स्तर को देखें और उसके बाद हम अपने अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी पहल को देखें, तो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी राज्य के साथ साथ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य न केवल शिक्षा और शोध है, बल्कि किसानों तक तकनीक को पहुँचाना और उनके कौशल विकास करना भी है। तो अगर हम इसमें कुछ पहलों के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ, तो जैसे प्रशिक्षण एवं क्षमता को निर्माण करते हैं हम इनकी, जैसे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिला किसान जो हैं और स्वयं सहायता समूह को भी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मशरूम उत्पादन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, या मधुमक्खी पालन के ऊपर, या जैविक खेती, ऐसे पशुपालन, ऐसे बहुत सारे जो उद्यमता जो हैं उसके शामिल होते हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे महिला केंद्रित कार्यशालाएँ भी होती हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर दी जाती है, आयोजित की जाती है, और इसमें महिलाओं को नई तकनीक, धान उत्पादन, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि उद्यमता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये हमारे जो राज्य की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उद्यमता को अपनाना चाहती हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। ये सब हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समय समय पर जैसा कि हम अभी रेडियो टॉक दे रहे हैं, ऐसे डिजिटल और रेडियो के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं। तो विश्वविद्यालय एफएम रेडियो जैसे 90.8 एफएम ग्रीन है, और इसका मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को, विशेषकर महिला किसानों को, समय समय पर कृषि सलाह और मौसम जानकारी भी पहुँचते रहता है। और अगर हम सब बातों का जो हम कहते हैं जो सार है महिला सशक्तिकरण, वो कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय जैसे कृषि सखी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और इनसे महिलाएं आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती सीखकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करती है। तो हम सिर्फ एक महिलाओं के ऊपर नहीं, बल्कि हम पूरे समाज के लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो प्रयासरत है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो, हम उनको कैसे सशक्त बना सकें। और इसके अलावा कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होती है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है या लखपति दीदी है, ये सब अभियान भी महिलाओं को सशक्तिकरण है, और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं उनको भी इनसे लाभ होता है।
15: जी मैम, आपने बहुत सारे पहलों के बारे में बताया, बहुत सारे योजनाओं के बारे में आपने बताया, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि न केवल हमारा राज्य बल्कि हमारा अपना विश्वविद्यालय भी इतने अच्छे प्रयास कर रहा है। तो मैम, क्या इन पहलों का या इन प्रयासों का कोई प्रभाव दिख रहा है?
13: बिल्कुल उमा, इन पहलों से महिलाओं की आय भी बढ़ी है और वो आत्मनिर्भर भी बनी है, और अब वे केवल श्रमिक नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा भी अवार्ड मिला है, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया। और अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो इसके माध्यम से उनकी बाजार तक जो पहुँच है वो बढ़ी है। हम सही बात अगर सही मायने में की जाए तो, और वे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में भी आगे आ रही हैं, उद्यमता जैसे कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो 2.7 लाख महिला किसान जो हैं वो कृषि उत्पादक संघ से जुड़ी हुई हैं बिहार में, और इनसे इनका सामूहिक विपणन से आय में भी वृद्धि हो रहा है।
15: तो मैम, भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतियां भी होती है, तो क्या चुनौतियां भी सामने आती हैं?
13: जी हाँ, हर चीज़ में जो हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी उसके फायदे होते हैं उसके चुनौतियां भी होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जी हाँ, कई गंभीर चुनौतियां भी हैं इस राह में। तो जैसे भूमि स्वामित्व की अगर बात करें तो भूमि स्वामित्व में महिलाओं की कम भागीदारी होती है और तकनीक और संसाधनों भी महिलाओं तक जो है वो सीमित होती है, तो मजदूरी में भी असमानता देखी जाती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें तो मेन जो होता है महिलाओं के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी होती है, और हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, जो उनका रोल होता है, वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज में। तो इसको हम जितना कम कर सके और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में अपना भागीदारी आगे आकर निभाएं, तो इससे इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
14: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां तो हैं और ये वाकई और हर घर में ऐसी चुनौती देखी जाती है। ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आकर इसका सामना करें और वो अपने हक के लिए बात करें। तो मैम अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
13: जो हमारी महिला किसान हैं, महिला कृषक बहनें हैं और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी महिलाओं हैं, जो बहनें हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृषि विकास की धुरी हैं
14: जी।
13: और यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग या बाजार से जुड़ाव दिया जाए तो ये ना केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं। अगर हम बिहार जैसे राज्यों में यह मॉडल पहले से सफल है ये हम जान रहे हैं, जैसे मैंने जीविका की बात कही, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है और वो हमारी जो सरकार है, हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये पहल कर ही रही हैं और कार्य ये जारी है, ये जो प्रयास है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो प्रयास हैं इससे और मजबूत करने की आवश्यकता है। और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं से जुड़कर प्रशिक्षण लें और नई तकनीकों को भी अपनाएं। इससे ना केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।
14: जी मैम, धन्यवाद। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ ही जिन चुनौतियों के बारे में आपने बात की वो चुनौतियाँ महिला और समाज खुद ही उनका निदान निकाल सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
13: धन्यवाद उमा।
14: और श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
16: उन्नत कृषि
17: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
18: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
17: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
19: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
20: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ। सुनो सुनो, एक

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूखकर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे,
2: मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया।
1: नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
5: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहाँ हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
7: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
8: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
7: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
8: हाँ अब बन गई रेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
7: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
8: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
9: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
8: हाँ, हाँ दादाजी ये ठीक रहेगा।
9: चलो
6: रेल चली भाई रेल चली,
9: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली।

0: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
1: अरे वाह,
0: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
1: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
0: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
2: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
0: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
2: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
0: बैठो बैठो, जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
2: उतरो उतरो।
3: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
0: हाँ हाँ, उतरो बेटी।
4: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
1: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
0: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
1: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
3: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
0: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
1: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
0: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
1: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
0: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
1: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
6: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, छुक छुक छुक छुक छुक

के पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो

अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं. उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं. तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ. सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं.
1: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है. जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं. तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं. सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं. और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है. और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं.
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
1: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है. ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है. और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है. और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है.
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
1: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं.
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
1: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं. जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है. अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है.
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है.
1: बिल्कुल.
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
1: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए. और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं. तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है. कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है, लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे. तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें. खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
0: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
1: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
0: जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ। सुनो

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ
स्वस्थ पशुओं से अलग रखे और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करे। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखे और ध्यान दे कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखे, सूखा रखे और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के बारे में, किस प्रकार के उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल से आप मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि जल विलय उर्वरक क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग करना चाहिए और उनके उपयोग से क्या फायदा होता है। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो उर्वरकों का महत्व बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उर्वरक। लेकिन बाजार में बहुत सारे उर्वरक मौजूद हैं और उनमें से एक है जल विलय उर्वरक। ये क्या है, क्यों जरूरी है, आज इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से। सर, आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जल विलय उर्वरक क्या है।
1: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जल विलय उर्वरक, या फिर जिनको हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर उस तरह के उर्वरक होते हैं जो पानी में पूर्णतः घुलनशील होते हैं और जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व त्वरित एवं संतुलित रूप में उपलब्ध कराते हैं। और जो आधुनिक कृषि है, विशेषकर संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई या फिर फर्टिगेशन जैसी प्रणालियों में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
0: सर, जैसे कि आपने बताया कि इसका उपयोग काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसी कुछ विशेषताएं जरूर होंगी, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
1: जल विलय उर्वरकों की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले तो आता है कि ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। इनमें ऐसे कोई पदार्थ नहीं होते हैं जो अघुलनशील होकर रह जाएं। शीघ्र अवशोषण या फिर तुरंत मिट्टी में जाने के बाद या फिर पौधों पर छिड़काव करने के बाद वो तुरंत उनमें घुल जाते हैं।
0: अच्छा।
1: सटीक मात्रा में इनका उपयोग करना ज़्यादा आसान होता है पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले। और ये अपने तरीके से मैक्रो, माइक्रो या फिर जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है। फर्टिगेशन या फिर फोलियर स्प्रे, जिसको हम पौधों में छिड़काव कहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से उपयुक्त हैं।
0: सर, इनका महत्व क्या है कृषि में?
1: इनके कई सारे महत्व हैं। मैं कुछ ज़रूरी महत्व आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ हमारे किसान भाई बहनों के लिए। जो सबसे पहला इसका महत्व है वो है इसका त्वरित पोषण उपलब्धता। जल विलय उर्वरक पौधों की जड़ों या पत्तियों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाते हैं, जिससे फसल की प्रारंभिक वृद्धि, पुष्पन एवं फलन में तेजी आती है। उसके बाद इनकी उपयोगिता फर्टिगेशन जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उर्वरकों की बचत भी होती है, श्रम की लागत में भी कमी आती है और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद पोषक तत्वों की जो उपयोग दक्षता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है। लीचिंग को कम करता है, वाष्पीकरण जो पोषक तत्व होते हैं जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं उसको भी रोकता है और सटीक समय पर पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। ये ज़्यादातर उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पर ज़्यादातर कारगर साबित होता है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, फलों की आकार और रंग को भी बढ़ाता है और अधिक उत्पादकता के साथ साथ बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी लाने की सक्षमता रखता है।
0: यानी कि मतलब ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसकी वजह से ये पौधों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है।
1: जी
0: सर, आप ये बताइए कि ये पारंपरिक उर्वरक से कैसे अलग है?
1: देखिए, हम जो पारंपरिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो है यूरिया है, DAP है, पोटाश है, जिसको हमारे किसान भाई बहन यूज़ करते हैं। पारंपरिक उर्वरक जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग फर्टिगेशन, संरक्षित खेती या फिर ड्रिप इरीगेशन जैसी चीज़ों पर पौधों में छिड़काव करने के लिए उनका उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं उनमें कुछ और कण भी होते हैं जिनका इसकी वजह से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। तो जल विलय उर्वरक उस मुकाबले में उनसे बेहतर है, क्योंकि पूर्ण तरह से घुलनशील होते हैं और पौधों को अच्छी तरीके से हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, फर्टिगेशन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की जो दक्षता है, उपयोग दक्षता है, वो पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पारंपरिक उर्वरकों में हम 20 से 25 या फिर 30% तक उपयोग दक्षता देखने को मिलता है हमें, लेकिन जब हम जल विलय उर्वरकों की बात करें वहां पे हम 80-90% तक उपयोग दक्षता बढ़ा सकते हैं पोषक तत्वों की, और लागत में भी उसके मुकाबले पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले इसमें लागत भी कम है, भले ही इसकी जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है उससे थोड़ा अधिक है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं, अपने कृषि प्रणाली में इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: सर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से उर्वरक, जल विलय उर्वरक बाजार में मौजूद है, इसके कुछ उदाहरण दे दीजिए।
1: कुछ प्राथमिक पोषक तत्वों के भी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी हैं, जैसे कि यूरिया फॉस्फेट एक उर्वरक है, जिससे हम 17% नाइट्रोजन 44% तक फॉस्फोरस का पौधों तक पहुंचा सकते हैं फॉस्फोरस। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं जिसमें 16% तक नाइट्रोजन होते हैं और 19% तक कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं ज़्यादातर फल की फसलों में हमारे लिए बहुत उपयोगिता दिखाता है, उसमें 13% नाइट्रोजन और 46% पोटाश हैं। उसी प्रकार मोनोअमोनियम फॉस्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे और उर्वरक हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं।
0: सर जब भी हम किसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ सावधानियां अपनाते हैं, जब हम जल विलय उर्वरक की बात कर रहे हैं तो इनमें भी कुछ विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती होगी।
1: जी, कुछ प्रमुख ऐसी सावधानियां हैं, जैसे कि हमें कभी भी किसी भी उर्वरक को प्रयोग करने से पहले, वो चाहे पारंपरिक उर्वरक हो या जल विलय उर्वरक हो, सबसे पहले हम कहते हैं अपने किसान भाइयों बहनों से कि मृदा का परीक्षण अवश्य करें, मृदा परीक्षण के आधार पर ही इनका उपयोग करें, अनुशंसित मात्रा में ही इसका उपयोग करें, और अत्यधिक सांद्रता से पत्तियां जलने की संभावना होती है, इसलिए उसका सांद्रता या फिर जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं उसको कम या फिर अनुशंसित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें। स्वच्छ जल का प्रयोग करें सिंचाई के लिए, जिसमें लवण की मात्रा कम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छी तरीके से हम सिंचाई का जल इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलग अलग उर्वरकों को मिला के अगर हम कुछ तैयार कर रहे हैं तो उनका आपस में संगतता या फिर संगतता जिसको हम कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं कि आपस में वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना बना ले, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम फर्टिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसे चीज़ों के लिए उसका उपयोग करें।
0: मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो कि पारंपरिक उर्वरक के समय भी हम ध्यान रखते हैं वो ज़रूरी है। सर और कुछ,
1: जैसे कि हम कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य है अधिक उत्पादन पाना, बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उच्च दक्षता का अगर हमारा लक्ष्य है तो जल विलय उर्वरक अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं, जबकि पारंपरिक उर्वरक व्यापक क्षेत्रीय क्षेत्र में जहां पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं वहां पर उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है।
0: सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पारंपरिक उर्वरक से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है क्योंकि पौधों में इसका जो क्योंकि पौधे इसे बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं।
1: जी, और इसमें दक्षता भी ज़्यादा होती है पारंपरिक उर्वरक के मुकाबले।
0: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी,
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
11: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
10: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
13: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
14: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
13: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
14: आपकी सेहत की बातें,
13: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
14: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
13: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
14: वो कहाँ पर?
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
14: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: उन्नत कृषि।
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
16: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
15: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
16: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि चूँकि वर्षा भी होते रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है तो बड़ी तेज़ी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
15: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
16: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र का है तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं जिस खेत में, मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम 1 साल के लिए तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइज़र देते हैं, उर्वरक जो देते हैं उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं और आपके मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है, और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है, तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब वो तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा फिर बढ़ेगा अपना जीवन चक्र पूरा करेगा तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्य दो चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर दो बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से एक महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है, ये वेजिटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये

0: और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। तो उसके बाद जो है कि हम लोग जो जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है, इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो, चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में, तो खरपतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है। वहाँ पे जो कीट है वो छुपे रहते हैं, छुप जाते हैं, और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पर आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं, इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पर कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जा कर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
1: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है। तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है, तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है। और इसमें जो है, और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है, बैंगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं। तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गूंद लगाया हुआ रहता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है उसकी संख्या घट जाती है और आपके जो

0: पौधे हैं, बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैंगन के फ्रूट एंड सूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है और जब फल निकलने लगता है भिंडी का तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मलमूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड सूट बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैंगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते हैं दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है, जो नीम का जो तेल है उसका जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड सूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलवुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है, घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है, तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुदकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है, ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपके जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियां होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है। और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे, कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे, तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, ये येल्लो वेन मोज़ेइक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जाकर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है, और उसके बाद जो कीटनाशी है जैसे थायोमेथोक्सम 25WG इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोक्सम 25WG एक टाड़ा के नाम से भी आता है, एक टाड़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी आधा ml मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो एलोवेरा मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं, जिसको आप लोग लोकल भाषा में तुकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है, और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोक्सम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इससे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों का बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई कि जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम जरूर करता है लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेस से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है. अक्सर हम ऐसी कुछ सब्जियों को खाते हैं जो हम अगर बिहार के बाहर जाएं तो बहुत कम लोग जानते हैं और बाहर मिलता भी नहीं है, जबकि उन सब्जियों में भी काफी पोषक तत्व होते हैं और काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होता है. लेकिन बावजूद इसके उन सब्जियों पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो अल्प उपयोगी रह जाते हैं. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी फसलों की भूमिका के बारे में. और इस बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी. आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा और धन्यवाद मेरे भाई बंधु किसान भाइयों और एवं बहनों. मैं आज आपसे जलवायु परिवर्तन में अल्प उपयोगी सब्जी यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड फसलों की भूमिका इस विषय पर चर्चा करूंगी. तो देखा गया कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है. बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी तथा नई नई कीट एवं रोग समस्याएं किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रही है. ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है जो बदलती जलवायु के अनुकूल हो तथा कम संसाधनों में भी अच्छा उत्पादन दे सके. अल्प उपयोगी अथवा अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलों इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रही है.
0: मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अल्प उपयोगी सब्जी क्या है.
1: अल्प उपयोगी सब्जियां वे फसलें हैं जिनका स्थानीय स्तर पर लंबे समय से उत्पादन और उपयोग होता रहा है, लेकिन आधुनिक कृषि एवं बाजार व्यवस्था में उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उसमें बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रहा है. सो इनमें से देखा जाए तो चौलाय, सहजन, मालाबर पालक, ककोड़ा, विंग्ड बीन, याम बीन तथा राइस बीन जैसे प्रमुख फसलें हैं.
0: मैम इसका क्या जलवायु परिवर्तन में भी कुछ रोल रहता है?
1: हाँ बिल्कुल, इन फसलों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जलवायु सहनशीलता ही है. अधिकांश अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कम पानी, अधिक तापमान तथा कम उर्वरक भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है. यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन में बढ़ते प्रभावों के बीच इनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है. उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं सहजन का पौधा, सूखा और गर्मी दोनों को सहन करने की क्षमता रखता है. मलाबार पालक जिसको हम लोग पोईसाक भी बोलते हैं, और चौलाय जैसे पत्तेदार सब्जियां कम अवधि में तैयार हो जाती है तथा विपरीत मौसम में भी किसानों को उत्पादन प्रदान करती है. इसी प्रकार ककोड़ा और विंग्ड बीन जैसी फसलें स्थानीय परिस्थितियों में अच्छी तरह विकसित होती है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकती है.
0: मैम ये तो बात हो गई जलवायु परिवर्तन की, अगर हम पोषक तत्व के नजरिए से समझें तो पोषक तत्व के नजरिए से इसका क्या महत्व है?
1: हाँ उमा, तो इसमें अल्प उपयोगित सब्जियां पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इनमें विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. सहजन की पत्तियां और फलियों पोषण का उत्कृष्ट स्रोत है, जबकि चौलाई में आयरन और खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है. इनका नियमित सेवन कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है.
0: मैम आजकल हम लोग काफी ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी अल्प उपयोगी सब्जी महत्वपूर्ण होता है?
1: जी बिल्कुल, इन फसलों के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है. इससे खेती की लागत कम होती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है. जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है. अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें कृषि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है. जब किसान केवल कुछ सीमित फसलों पर निर्भर रहते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के समय जोखिम बढ़ जाता है. लेकिन विभिन्न प्रकार की सब्जियां का उत्पादन कृषि प्रणाली को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाता है।
0: मैम, अभी जब आपने उदाहरण दिए तो बहुत सारे ऐसे सब्जियों का आपने नाम लिया जो बिहार में पाए जाते हैं, बिहार के लोग खाते हैं, लेकिन बिहार में इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सब्जियों को?
1: हाँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। तो बिहार में भी इन फसलों के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें हम लोग गृह वाटिका, पोषण वाटिका, समेकित कृषि प्रणाली तथा व्यावसायिक खेती में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सकता है। इसीलिए इनके संरक्षण, उन्नत किस्मों के विकास, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारा BAU साबोर विशेष प्रयास कर रहा है।
0: मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों और श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कृषि में विविधता लानी होगी और ऐसी फसलों को बढ़ावा देना होगा जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन दे सके। अल्प उपयोगी या अंडर यूटिलाइज सब्जी फसलें न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि पोषण, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी इन फसलों के महत्व को समझें, इनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दें तथा जलवायु स्मार्ट कृषि के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद उमा।
0: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई बहन और अन्य श्रोता, आपने इस बात को अभी जो मैम ने बताया आपने समझा होगा कि कुछ जो अल्प उपयोगी सब्जी है वो कई पैमानों पर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उन सब्जियों को आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा, इस तरीके से हम अपनी ओर से इन सब्जियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। और 20 पायरी बेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरे जोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोंकण कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
10: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ करें।

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में. बिल्कुल आपको मालूम होगा, हम बातें करते हैं खेती बाड़ी की. और जहां तक बात है मशरूम की खेती की, तो बिल्कुल आजकल मैं देख रही हूं कि लोग जो हैं मशरूम की खेती करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. तो हम भी आपको मशरूम के बारे में, अलग अलग मशरूम के बारे में जानकारी देते रहेंगे. तो आज का जो विषय है पुआल मशरूम, आज हम पुआल मशरूम की खेती के बारे में जानेंगे. और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं अनीता कुमारी मैडम, जो कि केवीके में, जी हाँ, केवीके सबौर में एसएमएस हैं और आज पूरी जानकारी के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं. मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद अनु.
0: मैम, सबसे पहले तो जो मशरूम है, अलग अलग प्रकार के मशरूम होते हैं, उन्हें अलग अलग मौसम में उगाया जाता है, अलग अलग तापमान उनके लिए ज़रूरी होता है. तो ये पुआल मशरूम क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें.
1: अनु, हमारे बिहार राज्य का जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें अलग अलग मौसम में चार तरह के मशरूम की खेती की जा सकती है.
0: जी,
1: इसमें ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पुआल मशरूम. आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो पुआल मशरूम है. ये पुआल मशरूम को हम लोग पैडी स्ट्रॉ मशरूम भी कहते हैं, या फिर धान पुआल मशरूम भी कहते हैं, या फिर चाइनीज मशरूम भी कहते हैं, और इसे गर्मा मशरूम भी कहा जाता है. और ऐसे इसका जो प्रजाति है उसके अनुसार वोल्वेरिला वोल्वेरिया भी इसे कहा जाता है. और इसका जो इजाद हुआ था, सबसे पहले जो इसकी खेती शुरू हुई थी, वह 1822 में चाइना में, चीन में शुरू हुआ था. और इसका जो वोल्वेरिला शब्द का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो मशरूम का जो उत्पादन होता है, जिस वक्त यह मैच्योर होता है, उस वक्त उसके ऊपर एक वॉल्व टाइप का रहता है, वो फटता है तो हम जानते हैं कि इसकी तुराई हो गया है. और ये जो वर्ड है वोल्वेरिला वर्ड से इसलिए लिया गया है इसका नाम जो है, कि उसके वो जो तुराई का एक स्टेप है, या उसके उत्पादन का एक स्टेप है, जिसके जो कि इस वर्ड से जुड़ा हुआ है.
0: जी मैम, इसकी खेती कब की जा सकती है, तापमान इसके लिए क्या सुटेबल होगा?
1: इसकी खेती हम लोग अप्रैल मई से सितंबर तक आराम से कर सकते हैं. और तापमान की यदि हम बात करें तो 34 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम इसके लिए उपयुक्त होता है. और थोड़ा यदि टेम्परेचर इससे कम बेस हो तो हम लोग थोड़ा प्रबंधन करके वहाँ भी इसकी खेती कर सकते हैं. और इसके लिए आवश्यक नमी जो है 80 से 85% लगभग इसमें नमी चाहिए. इसका जो इस मशरूम को जो हम लगाते हैं, तो एक स्टेज होता है कवक जाल फैलाव का. तो कवक जाल फैलाव के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो हमारा 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए. और लगभग 7 से 8 दिन में इसका पूरा कवक जाल फैल जाता है. और नमी हम लोग को 80 से 85% पूरे फसल अवधि के दौरान मेंटेन करके रखना होता है.
0: जी ये तो बात हो गई तापमान की, कब खेती इसकी करनी चाहिए हमें. और पुआल मशरूम का उत्पादन तकनीक, मैम ये बहुत ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों को बताना, और जो भी लोग इसकी खेती करना चाहते हैं.
1: हाँ बिल्कुल, पुआल मशरूम की तकनीक थोड़ी अलग है. जैसे कि हम लोग और भी जो तीन प्रजाति है मशरूम की, ऑयस्टर हो या बटन हो या फिर मिल्की हो, उसके लिए जो पोषाधार लेते हैं, कृषि अवशेष जो लेते हैं, वो धान का पुआल का कुट्टी हुआ या फिर गेहूँ का भूसा हुआ, मतलब वो हम लोग टुकड़े में लेते हैं, पुआल कुट्टी के रूप में लेते हैं. लेकिन ये जो पुआल मशरूम का जो हम लोग खेती करते हैं, पैडी स्ट्रॉ मशरूम का या पुआल मशरूम की जो खेती करते हैं, इसमें हम लोग धान का जो ताज़ा साफ सूखा हुआ पुआल जो होता है, उस पुआल का गट्ठर लेते हैं.
0: अच्छा.
1: और वो गट्ठर लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर का मोटाई होता है. गट्ठर का जो मोटाई होता है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होता है. और जिसे हम लोग कोई तेज धारदार हथियार से उसके जो जिस तरफ से धान का बाली निकला होता है या पीछे का पोर्शन, दोनों को काट के बराबर एक जिस डायमेंशन का कर लेते हैं, दोनों तरफ से तेज धारदार हथियार से काट करके उसको बराबर साइज का कर लेते हैं. और गट्ठर की जो मोटाई रखते हैं वह 20 से 25 सेंटीमीटर की मोटाई के गट्ठर रखते हैं. इस तरह का गट्ठर इसके लिए हम लोग बना लेते हैं. इसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ जो मान लो हमारा उत्पादन कक्ष जो है, उस कक्ष में एक इसके लिए हम लोग मचान बनाते हैं. वो मचान जमीन से लगभग 1 फीट ऊंचा होना चाहिए और उसी मचान पर इसकी खेती की जाती है। इसके बाद हम लोग पुआल का गट्ठर बना लिए, पुआल के गट्ठर को रात भर पानी में भिगो देते हैं, किसी पानी के टंकी या ड्रम जैसी भी हो, जो भी सुविधा हो उसमें हम लोग रात भर भिगो देते हैं। सुबह वहाँ उसे निकाल करके दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए।
0: जी,
1: जब अतिरिक्त पानी निकल जाता है तो तब उसे लगभग आधा घंटा तक खौलते पानी में उबालते हैं और उसके बाद फिर उसमें लगभग 2-3 घंटे छोड़ दिए, फिर उसको निकाल करके पुनः हम लोग दीवार के सहारे उसको खड़ा करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी है उसमें वह अतिरिक्त नमी उसका निकल जाए। इसके बाद उसको गट्ठर को हम लोग जो मचान बनाए हुए हैं उस मचान पर हम लोग गट्ठर को का एक परत लगाते हैं और परत जो हम लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं कि जिस तरह से एक बंडल हम रखे दूसरा बंडल जो रखेंगे तो जिस तरफ से गट्ठर को हम लोग बांधे हैं वो अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक जो रखे हैं जिस तरफ से गट्ठर है तो दूसरी तरफ दूसरी बार आपका जो पुआल जिधर से बाली लगा रहता है वो पोर्शन उसके बगल में रहना चाहिए। इस तरह से 6 से 8 गट्ठर हम लोग तह बिछा देते हैं, इसके ऊपर हम लोग मशरूम का स्पॉन डालते हैं, फिर दूसरा तह बिछाते हैं, फिर मशरूम का स्पॉन डालेंगे, फिर तीसरा तह बिछाते हैं। इस तरह से करीब 4 से 6 तह बिछाते हैं और इस प्रकार से तह बिछा के हमारा जो उसका ऊंचाई हो जाना चाहिए वो लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक तह का 4 से 6 तह जो देते हैं उसका ऊंचाई हो जाना चाहिए। उसके बाद उसको हल्का हल्का हाथ से हम लोग दबा देते हैं, दबाने के बाद ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन सीट से उसको हम लोग ढक देते हैं। इसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद हमारा पूरा माइसेलियम रन हो जाता है। जब माइसेलियम पूरा रन हो जाता है तो हम लोग पॉलीथीन सीट को हटा देते हैं, उसके आवश्यकता अनुसार हल्का हल्का नमी डाल देते हैं उसमें, हल्का फुल्का नमी। उसके 2 से 3 दिन के बाद हमारा मशरूम निकलना शुरू हो जाता है और वह 1 से 2 दिन वो तुराई योग्य हो जाता है। यदि अनुकूल तापमान रहता है तो ये चूँकि उस वक्त गर्मी काफ़ी रहता है, उसको मॉइस्चर मिलता है, तो इसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अनुकूल सारा कुछ इन्वायरमेंट अनुकूल रहे तो दिन में इसकी तुराई 3 बार भी करनी पड़ सकती है, सुबह दोपहर शाम, इतना फास्ट ये ग्रो करता है। तो इस तरह से हम लोग इसकी इसका इस तकनीक से इसको हम लोग उत्पादन
0: करते हैं। जी मैम, ये तो बात हो गई उत्पादन की, लेकिन अब बात करते हैं तुड़ाई की, कि तुड़ाई किस प्रकार करनी चाहिए और इसके बाद भंडारण किस प्रकार करनी चाहिए।
1: तुराई जब तुराई के लिए जब मशरूम को हम लोग देते हैं उसका ऊपरी सिरा जो ऊपरी सिरा झिल्ली को फाड़ के जब झिल्ली जब फट जाए उसके बाद ऊपरी सिरा दिखने लगे यदि मशरूम का, तो हम समझते हैं कि यह तुराई योग्य हो गया, उसको हम लोग तुरंत तोड़ लें। जैसा कि हम अभी पहले ही बताए कि यदि अनुकूल सारा चीज इन्वायरमेंट रहे आइडियल रहे तो इसकी इतना फास्ट बढ़वार होता है, कुछ दिन में 3 बार भी तुराई करना पड़ सकता है, तो उस अनुसार हम नहीं भी पड़ सकता है। ये जब अनुकूल रहेगा तभी हम 3 बार तुराई करेंगे, नहीं तो फिर 1 बार भी हो सकता है। तो जैसा आवश्यकता रहेगा उसके अनुसार हम लोग फटते ही, या तो फटने के जस्ट पूर्व तुराई करें या फट गया तो बिल्कुल तुरंत हमको तुराई कर लेना है, तुराई कर लेंगे। और इसको तुराई के बाद जैसे भंडारण की बात कही, तो भंडारण के लिए इस मशरूम का जो गुणवत्ता है वह भंडारण के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग इसको तुराई करके तुरंत उपयोग करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग तुरंत उपयोग कर लें। और इसका पहले तुराई जब सारा कुछ आइडियल रहा तो लगभग 9 से 10 दिन में हो कर लेते हैं, और यदि बहुत आइडियल नहीं रहा तो भी 13 से 15 दिन के अंदर हम लोग इसका तुराई
0: कर
1: हो जाता है। मतलब काफ़ी फास्ट ग्रो, कहने का मतलब काफ़ी फास्ट ग्रो इसका होता है। और इसका जो टोटल पूरा फसल चक्र है वह लगभग 4 से 5 सप्ताह का होता है,

0: प्रोडक्ट बना लीजिए। तो इसको यदि हम फसल चक्र में इसको हम इंक्लूड करते इस मशरूम को, तो एक टेस्ट के लिए कि अलग टेस्ट मिलता है। लेकिन हम यदि रॉ मार्केटिंग करना चाहें तो थोड़ा इसका रॉ मार्केटिंग में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ काफ़ी कम है।
1: मतलब ये जितना फास्ट ग्रो करता है उतना ही फास्ट मतलब ये सड़ भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत जल्दी आप तोड़ाई के बाद इसका इस्तेमाल कर ले। मैम ये तो बातें हो गई भंडारण तोड़ाई की, बात करते हैं सावधानियों की, इसकी खेती के दौरान क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
0: जैसे कि अन्य मशरूम के खेती के दौरान जो सावधानियां हम बरतते हैं, क्योंकि यह भी तो एक मशरूम फंगस है, तो सारे के लिए सेम सावधानी लगभग सेम ही है। तो हम उसी तरह से पुआल मशरूम की भी यदि हम खेती करते हैं तो हम यह ध्यान रखें जो हम पोषाधार का जो पुआल का गट्ठर का हम चयन किए हैं वह बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना हो, पानी का भीगा हुआ होना चाहिए या सड़ा गला होना चाहिए, वो नहीं, बिल्कुल ताज़ा सूखा हुआ पुआल की गट्ठर का हम प्रयोग करेंगे। और जो भी जिस कमरे में हम इसकी खेती कर रहे हैं, चाहे या पुआल सीट से जो ढक रहे हैं या मचान जो भी या उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, सारे चीज़ों को हम लोग फॉर्मलिन से 2% फॉर्मलिन से सारे चीज़ को हम लोग उपचारित कर लें, शोधित कर लें, उसके बाद ही उसको हम लोग बिजाई कक्ष में ले जाएं और उसका उपयोग करें। और स्पॉन जो भी हम इसके लिए स्पॉन का चयन करते हैं वो स्पॉन ताज़ा होना चाहिए, एक महीने से पुराना स्पॉन किसी हाल में नहीं लेंगे, किसी भी रूप में जो स्पॉन हो वो दूषित नहीं होना चाहिए, और स्पॉन में कोई गीलापन नहीं होना चाहिए, कोई बदबू नहीं होना चाहिए, रंगीन दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, सब हम लोग को जब स्पॉन लेते हैं तो उस वक्त यह ध्यान देना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ स्पॉन में है तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए उस स्पॉन को, ऐसा या जहाँ तहाँ फेंकें नहीं तो वहाँ से फिर इन्फेक्शन आपके कक्ष तक आ सकता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इस मशरूम की खेती हम लोग गर्मी में करते हैं, और उस वक्त गर्मी के समय में जो इन्वायरमेंट में जो जीवाणु इसका संक्रमण का दर काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो इस मशरूम के साथ साथ और दूसरे अवांछित जीवाणु आ जाएंगे और जो कि हमारे मशरूम को नुकसान पहुँचाएंगे। और जो आपका हमारा नमी बनाए रखना चाहिए, 80-85% हमारा नमी रहे, तापमान कोशिश करना चाहिए कि हम जो अनुकूल तापमान है उसको भी बना के रखें, तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, अनुकूलता ज़्यादा सही रहेगी। और जब हमारा फसल निकल रहा हो तो उस वक्त उसमें किसी तरह का डायरेक्ट फसल पर किसी तरह का रसायन का प्रयोग ना करें, और यदि और जो भी दूषित पन्नी या पुआल जो भी आपका उत्पादन के बाद निकलता है उसको उत्पादन कक्ष से हटा दें, और उसको आप जो भी उसका खाद बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन उत्पादन कक्ष से हटा लीजिए। जब एक फसल आप ले लेते हैं, फसल चक्र एक पूरा हो जाता है, तो दोबारा फसल लगाना हो तो एक बार कमरे को अवश्य फिर से निर्जीवीकृत कर लें, तो फिर उसमें हम लोग दूसरा फसल लगाएं। तीन सावधानियों को यदि हम बरतेंगे तो हमारा पुआल मशरूम की खेती काफ़ी अच्छी होगी, और उसको कम से कम हम लोग अपने खाने के लिए कुछ बेड तो जरूर लगाएं ताकि हम अपने आहार विविधता ला सकें और इसको अपने डाइट में हम शामिल
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं और किसान भाइयों और जो भी हमारे श्रोतागण पुआल की मशरूम की खेती करना चाहते तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये आज का टॉपिक था। तो आशा करते हैं कि बहुत कुछ सीखने को जानने को आपको मिला होगा, और सावधानियों के बारे में जो मैडम ने बताया है तो आप उनको भी ज़रूर ध्यान में रखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?

0: दूसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
2: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
2: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ഉന്നത് കൃഷി. जी हाँ किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं रूबरू हो रही हूँ आप सभी के बीच, आप सभी के पास उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर. और हमारे साथ आज एक और खास मेहमान है और खास विषय भी है आप सभी के लिए, और वो है पपीता की वैज्ञानिक खेती. जी हाँ दोस्तों, वैसे हमारे भारत देश की बात करें तो रंग बिरंगे फल और फूल यहाँ पर मिलते हैं, और फलों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं ये फल, और बहुत सारे पौष्टिक गुणों से भरे रहते हैं ये फल. वैसे पपीता की बात करें तो इसकी वैज्ञानिक खेती एक जो समझ है वो हमें होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर किसान भाइयों को ये समझ होनी चाहिए. और इसी विषय पर और यही समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फिज़ा अहमद, जो है प्रोफेसर ऑफ हॉर्टिकल्चर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
0: और डॉक्टर साहब, जब पपीता की बात आती है तो खेती का सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सही समय क्या होता है.
1: देखिए, पपीता एक ऐसे फल है जो कि हम यहाँ पे हर समय लगा सकते हैं, सिर्फ आप ठंडे को छोड़ करके. उसकी वजह यह है कि पपीता जो है ठंडे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है.
0: अच्छा.
1: तो आप ये रखिए उम्मीद कि आपको नवंबर से लेकर के फरवरी तक पपीते को नहीं लगाना चाहिए, बाकी समय में आप कभी भी पपीता लगा सकते हैं. लेकिन पपीता लगाने के लिए आपको नर्सरी तैयार करना होगा, और जो एक अहम प्रक्रिया है पपीते का बाग लगाने के लिए, नर्सरी जैसे कि आपने फरवरी में लगा दिया है तो आपका एक महीने के बाद ये नर्सरी तैयार हो जाएगा, और आप मार्च में भी लगा सकते हैं. किसी वजह से आपने मार्च में नहीं लगा सके तो आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, मई में भी लगा सकते हैं. अगर मई में नहीं है तो जुलाई में अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस समय नर्सरी का प्रबंधन बहुत समुचित तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि आपको जैसा बताया कि पानी में पपीता नहीं चल पाता है.
0: अच्छा.
1: तो इसलिए आपको चाहिए कि जब पपीता का नर्सरी तैयार करना है तो आपको ज़मीन से करीब 1 फीट ऊपर का मट्टी का एक बना दें, रेज बेड बना दें, और रेज बेड पे ही आप उसमें सीड डालें.
0: अच्छा.
1: ताकि रेज बेड डालने से क्या होता है कि पपाया जो सीड है वो पानी के संपर्क में नहीं आएगा और मरेगा नहीं, इसलिए हमेशा रेज बेड पे उगाना चाहिए. नर्सरी प्रबंधन करने के लिए पपीता में सबसे अच्छा तरीका है कि इस चीज़ों के लिए हमें मिट्टी में ज़्यादा नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी में सीड का जर्मिनेशन बहुत कम होता है, क्योंकि सीड बहुत महंगे आ रहे हैं आजकल. इसलिए हमें हर सीड से पौधे बनने चाहिए. उसके लिए प्रोट्रे आता है. किसान भाइयों के लिए प्रोट्रे समझाना बड़ा मुश्किल है यहाँ से, वो विश्वविद्यालय आकर के यहाँ हम देख सकते हैं कि हम पपीता का सीड कैसे तैयार करते हैं. प्रोट्रे होता है, उसमें एक बुरादा हम लोग डालते हैं और उसमें थोड़ा सा मिक्सचर भी डाल देते हैं, जिससे कि पपाया का पौधा तैयार होता है. पपीता जो है इसमें वायरस बहुत लगता है. जब नर्सरी तैयार करते हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि उसको बाहर में छोड़ देते हैं, उसे वायरस लग जाता है. तो हम लोग उसको पपीता को बाहर में नहीं नर्सरी को तैयार करते हैं, अगर करते भी हैं तो उसमें हम लोग एक जाली नुमा दार जो है चद्दर डाल देते हैं, वो मार्केट में मिलता है,
0: कवरिंग
1: कर देते हैं, ताकि उसमें जो है कीट जो है नहीं घुस सके. अगर कीट वो चला जाएगा तो वायरस कर देगा, और वायरस कर देगा तो आगे चल के कुकड़िया रोग लग जाएगा इसमें, जो पपीता का सबसे बड़ी समस्या है. किसान भाई पपीता का बहुत अच्छा पौधा देखते हैं, 1-2 महीने के तक बहुत अच्छा चलता है, बाद में पता चला कि इसमें कुकड़िया रोग लग गया और कुछ भी फल नहीं आते हैं. ये सबसे बड़ा समस्या है इसके लिए. इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी वो नर्सरी तैयार करें, रेज बेड में करें, जमीन से उठे हुए एरिया में करें जहाँ पानी ना लगता हो, और जब वो सीड डालें और जब पौधा निकलना शुरू हो जाए तो उसमें नेट लगा दे वो, ताकि इंसेक्ट नहीं जा सके उसमें. अगर कीड़ा जाएगा तो मुश्किल होगा.
0: डॉक्टर साहब, आपने कुकरैया रोग के बारे में कहा, अभी उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पपीता की खेती के लिए जो बीज से नर्सरी तैयार किया जाता है तो उसकी विधि क्या हो सकती है?
1: हाँ, हमने जैसे कहा कि जो प्रोट्रे है उसमें बहुत अच्छा होता है, उसमें आपको 100% जर्मिनेशन मिलेगा. और वही चीज़ अगर आप जमीन में लगा के करते हैं तो उसमें आपको 60%, 60% 70% तक मिलेगा, लेकिन प्रोट्रे में बहुत अच्छा होगा. और किसान को चाहिए कि वो विश्वविद्यालय आकर के सीखे कि पपीता का सीड को कैसे बनाया जाता है, उससे किसान बहुत लाभान्वित होंगे.
0: अच्छा, तो ये बात हो गई है यहाँ पर सीखने की. तो जहाँ तक बात आती है सीखने की, तो हमारे किसान भाई जितना कुछ सीखना चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में आकर सीख सकते हैं. फिलहाल यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है. हम कोशिश करते हैं कि आपको हम पूरी की पूरी जानकारी रेडियो के थ्रू, यानी कि हमारा जो FM ग्रीन है उसके थ्रू दें. फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब, जब बाग तैयार करने के तरीके आते हैं तो बाग तैयार कैसे करें, उस तरीकों के बारे में भी आप किसान भाई.
1: ये अहम प्रक्रिया है. बाग तैयार करने से पहले भूमि का चयन का बहुत जरूरी है, कि कि पपीता जो है वो पानी जहाँ लगता वो नहीं लगेगा, इसलिए ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पानी ना लगता हो। अगर बारिश में पानी एक रात भी अगर किसी खेत में लग जाएगा और वो पपीता के संपर्क में आ जाएगा तो पपीता रात भर में मर जाएगा। इसलिए किसान भाई इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जरूरत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस खेतों का चुनाव करें जहाँ की सालों भर पानी ना लगता हो। अगर पानी भर भी जाता हो तो 2 या 3 घंटे में वो पानी निकल जानी चाहिए, तो ऐसे खेतों का चुनाव होना चाहिए। और मट्टी जो है दोमट बलुआही मट्टी जरूरी है इसके लिए, बलुआही मट्टी भी, दोमट भी चलेगा इसमें, मतलब हर तरह के फील्ड में रहता है, लेकिन काली मट्टी में ये नहीं चलेगा क्योंकि उसके रूट नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो ऐसे जब चुनाव कर लिया गया है तो ये वैरायटी पे डेवलप करता है कि कौन सी प्रजाति आप लगा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टिस है, ये अच्छी वैरायटी है और ये वैरायटी जो है पैदावार के लिहाज से भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये पौधा राजेंद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में, वहाँ पे IRI का रीजनल स्टेशन है, वो बीज तैयार करते हैं वहाँ पे और किसानों के लिए ही बीज वो तैयार किया जाता है। तो किसान पूसा में जा करके पपीता का बीज ला करके नर्सरी तैयार करेंगे। अगर पूसा डिलीशियस लगा रहे हैं तो वो 2 मीटर बाय 2 मीटर पे वो गड्ढा खोदेंगे जिसमें लगाना है, उससे करीब 15 दिन पहले गड्ढे को खुला छोड़ दें। अब छोड़ने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर उसमें 2 टोकरी कम से कम डाल दें। अगर भर्मी कंपोस्ट मिल जाता है किसानों को तो वो भी 0.5 किलो 1 किलो के बीच में हर गड्ढे में डालते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बाग में जो हम पौधे लगाते हैं तो साथ ही हम जानना चाहेंगे आपसे कि पौधे की दूरी, मतलब पौधे के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी सेंटीमीटर है?
1: हाँ, जैसे वो लगा रहे हैं जो पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टिक है, जो पूसा ड्वार्फ है, ये सबको 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: आज जो चलन यहाँ हो रहा है बिहार में वो रेड लेडी का चलन चल रहा है यहाँ।
0: ये क्या होता है?
1: रेड लेडी एक वैरायटी है जो ताइवान से आती है।
0: अच्छा,
1: और ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है इसमें नर और मादा दोनों जो है फल देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसीलिए इसमें कहते हैं ना पपीता में कि आधे में फल आता है आधे में नर आता है, तो नर वाला तो फल नहीं देता है, लेकिन ये जो रेड लेडी वैरायटी है ये जो भी पौधा लगेगा खेत में सब में फल आएगा। इसलिए किसान जो है इसी को प्रीफर करता है कि हमको जो है हर पौधे में फल मिले। इसलिए ये वैरायटी जो है ड्वार्फ वैरायटी है, ये छोटा वैरायटी है।
0: हाँ।
1: तो इसको आप 1.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, ये 1.25 मीटर पे भी लगा सकते हैं।
0: और तो अक्सर देखा भी गया कि जो किसान भाई हैं वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द फल मिले हमें, तो ये वाला वैरायटी मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा।
1: जी जी, हर साल लगाना चाहिए, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है रेड लेडी में, इसमें बीमारी बड़ी जबरदस्त तरीके से लगती है। अगर सही समय पर इसका उपचार जो कुकड़िया रोग है नहीं करा जाएगा तो हम समझते हैं कि किसान फिर मुश्किल में लग जाएगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आप खाद की मात्रा बता रहे थे अभी कुछ देर
1: जी पहले। जी जी, खाद जो है अहम है, किसी भी पौधों को खाद जो एक अहम है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हर टाइम खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, उसी तरह पौधा भी चाहता है कि हमको बार बार मिले। तो हम देखते हैं किसानों को क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार में वो खाद की मात्रा को पूरा कर देते हैं। लेकिन साइंटिफिक तरीका ये है कि पपीता में हर जो डोज है उसका, जैसे 200 ग्राम नाइट्रोजन है, 200 ग्राम फास्फोरस है और लगाते हैं 100 ग्राम फास्फोरस है और 200 से 300 ग्राम जो है पोटास है। तो फास्फोरस की मात्रा वो लगाते समय ही डाल दे 100 ग्राम, उसके बाद वो कभी पौधे की जिंदगी भर जब तक पौधे रहेंगे तब तक फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमने कहा 200 ग्राम यूरिया का और 300 ग्राम पोटास का, उसको 5 भाग में बांट करके दे वो, ताकि वो हर महीना अगर डालते रहेंगे तो उसको खाना मिलता रहेगा। अगर वो खाना मिलता रहेगा तो उसका बढ़वार भी बहुत अच्छा होगा। पपीता का जो असली खाना है वो पोटास है।
0: अच्छा।
1: अगर आप पोटास उसमें डालते हैं तो पपीता जो है अंदर से लाल और पीला जैसा जो वैरायटी है वो अच्छा होगा और स्वाद बहुत जबरदस्त होता है। हम देखते हैं कि किसानों के खेत में टमाटर लाल नहीं हुआ, टमाटर लाल ना होने की वजह है कि किसान पोटास डालता ही नहीं है।
0: अच्छा।
1: जो भी रंगीन फल है उसके लिए पोटास का होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे केला है, केला बहुत ही पोटास चाहता है, उसी तरह से पपीता भी है वो भी पोटास बहुत चाहता है। तो पोटास की मात्रा को आप हर महीने उसमें 50-50-50 ग्राम देते रहें 5 डोज में, तो आपका हम समझते हैं कि पपीता जो है बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट और मीठा और बाजार में बहुत पसंद किया जाएगा। जब उसको काट करके आप रखेंगे और रंग देखेगा तो जो व्यापारी भी होंगे वो भी ले जाएंगे और जो डेली कंज्यूमर है वो भी इस चीज़ को पसंद करेंगे।
0: डॉक्टर साहब, आपने एक कुकरैया रोग के बारे में भी आप बता रहे थे और उसमें आप कह रहे थे कि ये पपीता जो है इसमें गलना, जमीन से गलन का जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसके उपचार के बारे में?
1: हाँ देखिए, गलन वाला जो बीमारी है, हम लोग जितने बैठते हैं ऑफिस में, मैं देखता हूँ कि सारे किसान जो भी आ रहे हैं वो पपीता के गलने वाले रोग को अभी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वो जब क्या होता है कि किसानों को उतना अंदाज नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ पपीता लगा देते हैं, लेकिन जब पानी लग जाता है तो वहाँ गलन शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जड़ से लगा हुआ होता है वहीं से ये गलन शुरू होता है। तो होना क्या चाहिए कि थोड़ा सा रेज बेड पे पपीता को लगाए, जहाँ जहाँ पानी लग रहा है थोड़ा सा पपीता को रेज बेड लगाए, ताकि पानी जो है उसके जो मेन ट्रंक है उसको टच न कर सके। एक तो ये चीजें हैं। हाँ, अगर मान लिया जाए कि किसी पौधे में, एक दो पौधे में गलना शुरू हो गया है, तो उसको बचाव करने के लिए आप 1 ग्राम वेवस्टीन पानी में घोल करके उसके जड़ में दे दें। 1 ग्राम वेवस्टीन पानी में घोल करके करीब आधा लीटर या एक,
0: हाँ,
1: आधा लीटर पानी हर पौधे में डाल दें, तो ये गलने का रोग जो है वो से आप दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे पौधे। लेकिन पानी अगर नहीं लगेगा तो ये गलना वाला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है।
0: अच्छा।
1: दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बीमारी है इसमें है, ये है ये कुकड़िया रोग, जो कि पौधा का पत्ती जो है कुकड़ी होकर के मुड़ करके ये नीचे लटक जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये वायरस से होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है।
0: अच्छा।
1: इसका इलाज जो है वो है कि जो इसको वायरस फैलाता है उसको मारना है, जैसे डेंगू बीमारी है। डेंगू का कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं इलाज है डेंगू को? डेंगू का इलाज है मच्छर को मारना। अगर आप मच्छर मार दिए तो डेंगू नहीं होगा। उसी तरह से पपीता में है, अगर आपने कीड़े को मार दिया तो उसमें कुकड़िया रोग लगेगा ही नहीं है। तो ये एक समस्या है, यहाँ पे किसान इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मिर्चा में कुकड़िया रोग लगता है, उसी तरह पपीता में भी लगता है, तो वो नहीं समझता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर 20 दिन से 22 दिन के अंदर पे कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी कीटनाशक पौधों में छिड़किए, और इसका जो कीड़ा रहता है वो पत्ती के नीचे रहता है, तो दवाई ऐसे छिड़कना चाहिए कि पत्ती के नीचे भी दवाई लगे, तो इससे बहुत इफेक्टिव होगा, वो कीड़ा मर जाएगा, तो ये जो बीमारी जहाँ लगा है वहाँ नहीं ले जाएगा। अगर शुरू के टाइम पे किसी पौधे में ये बीमारी लगा है तो उसको उखाड़ करके जमीन में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि यही रोग फैलाने का कारण बनता है। एक रिंग स्पॉट होता है, किसान भाई जब आप खेत में जाएं तो पत्ती को गौर से देखें, और गौर देखने के बाद वहां देखेंगे कि पत्ती पर अगर गोल गोल रिंग बन रहा है तो आप उसको तुरंत उखाड़ करके जमीन के नीचे गाड़ दें, क्योंकि यही रिंग स्पॉट वायरस जो है पूरे बाग को चौपट कर देता है, अगर ये लग गया रिंग स्पॉट वायरस तो।
0: हाँ।
1: इसका वही कंट्रोल है कि उसमें आप हर 15-20 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, कोई भी इंसेक्टिसाइड लें, सिस्टमेटिक ले लें या आप कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड ले लें, जो भी है आपके पास उपलब्ध आप छिड़क दीजिए, तो हम समझते हैं कि उससे बहुत बच जाएंगे और पपीता का उत्पादन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग खेती सिर्फ कुकड़िया बीमारी की वजह से नहीं करते हैं किसान भाई, लेकिन अगर आप समुचित प्रबंधन करेंगे कीटनाशक के द्वारा, तो हम समझते हैं कि आपका बहुत अच्छा फल आएगा इसमें।
0: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 20 से 25 दिन पर आप अपने जो पपीता के जो पौधे हैं उसका देखभाल करते रहें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई रोग आ रहा है तो आप उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पपीता गलन के इस बीमारी के बारे में हमने जाना, उसके उपचार के बारे में भी जाना। अब एक सवाल और पूछना मैं चाहूँगी आपसे कि जो पपीता में जो फल लगते हैं वो कितने समय में लग जाते हैं?
1: हाँ देखिए, ये पपीता जो है, जैसे कि पपीता आपने लगाया, रेड लेडी पपीता लगाया, तो ये करीब 3-4 महीने के बीच में फूल आ जाते हैं इसमें, और ये फिर उसके बाद जो है 7-6 महीने में ये तैयार हो जाते हैं, करीब साल भर में आपका साइकिल तैयार हो जाता है। तो किसान आजकल क्या कर रहे हैं, वो दो साल नहीं ले रहे हैं पपीता, वो 1 साल का पपीता लेके काट देते हैं। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे वो एक पपीता से करीब 5-6 साल लेते थे, तो वो अब जवाना नहीं रह गया है, अब ये जवाना आ गया है कि हर साल पपीता लगाइए और हर साल आप पपीता को लगा करके फल ले लीजिए। 1 साल में आप रेड लेडी पपीता को अच्छी तरह तोड़ करके बेच करके अच्छा आय कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो ये फल लगने के समय हो गया डॉक्टर साहब, और इसकी तुड़ाई हम कब करें ये जानना चाहेंगे?
1: हाँ देखिए, इसका तुड़ाई करने का तरीका है, कैसे जानेंगे कि ये पपीता मेरा पक गया है? तो इसके लिए किसान भाइयों, देखिए आप जो पपीता लगा हुआ है उसमें आप ब्लेड से चीरा लगाएं, अगर वहाँ से दूध जो गिर रहा है वो पतला धार हो गया है तो समझिए कि वो पपीता आपका पक गया है। अगर दूध का धार जो है वो गाढ़ा है तो समझ लीजिएगा कि ये अभी नहीं पका है, ये सबसे अच्छा तरीका है। और वो एक दो पौधे में देखेंगे कि वहाँ पे रंग चढ़ रहा है तो वो भी एक तरीका है पपीता को जानने का कि ये पक गया है, और इसको अब तोड़ाई शुरू करनी चाहिए।
0: तो ये पूरी की पूरी जानकारी किसान भाइयों आपने सुनी पपीता की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और साथ ही अंत में डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, किसान भाइयों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि रेडियो पे तो आप सुनते ही हैं हम लोगों को, लेकिन आप अगर विश्वविद्यालय में आके यहाँ के प्राध्यापक के साथ बैठ करके आप चर्चा करेंगे तो हम समझते हैं कि आपको किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। जिसके लिए विश्वविद्यालय बना है वही लोग यहाँ नहीं आते हैं, ये किसान के लिए विश्वविद्यालय बना है। यहाँ पे एक प्राध्यापक बैठा हुआ है जो शोध करके किसानों तक पहुंचाने के लिए, अगर किसान भी एक कदम आगे बढ़ा करके विश्वविद्यालय में आता है, हम समझते हैं कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा।
0: तो किसान भाइयों आपने सुना डॉक्टर साहब ने कैसे कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप मिल सकते हैं, और पूरी की पूरी जो एक डॉक्टर्स की टीम है, आप समझ लें कि आपकी खेती के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। जैसे कि आप अपने रोगों का इलाज कराते हो डॉक्टर के पास जाकर, तो आप अपने फसलों का इलाज, अपने जो भी रोग हैं आपके पौधों के, फल के, सब्जियों के, आप उसका इलाज भी यहाँ पर आके करवा सकते हो, यानी कि जानकारी ले सकते हो, और सही जानकारी से कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए रास्तों पर चलेंगे, इसे अपनाएंगे और अच्छे तरीके से पपीता की खेती कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हिमज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में
11: फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वही मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं मखाना के बारे में. मखाना के पौष्टिक गुणों के बारे में अब तक देश दुनिया में सबको पता है. इसकी मांग भी देश और दुनिया हर जगह है और बढ़ती मांग यानी कि रोजगार के बढ़ते अवसर. और जब मखाना की बात होती है, मखाना से जुड़े रोजगार की बात होती है, तो हम पाते हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करने वाला देश है. और भारत में बिहार, जी हाँ, अकेला बिहार 85 से 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है. और फिर बिहार में लोगों को मखाना से जुड़े रोजगार के अवसर के बारे में पता तो होना ही चाहिए. और इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है मधुमिता मैम. आप हैं प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा. तो आज हम बात करेंगे कि मखाना से कैसे आप उद्यम स्थापित कर सकते हैं और इसके क्या अवसर हैं. सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ. मैं हूँ मधुमिता और मैं आज मखाना के गुणों के बारे में, उसके उद्यमिता के अवसर के बारे में आप लोगों से बताने जा रही हूँ. हम जानते हैं जैसा कि इसे मखाना को हम सुपर फूड कहते हैं. ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं. आइए हम कुछ इनके इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं. सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे कि हमारे शरीर के मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को यह हम बचाता है और त्वचा को जमा रखता है. दूसरी चीज़ है हृदय स्वास्थ्य. इसमें मौजूद पोटेशियम और कम सोडियम के कारण ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित रखने में मदद करता है और यह दिल के लिए अच्छा है. फिर है वजन प्रबंधन. कम कैलोरी, वसा और उच्च फाइबर के कारण यह हमारा पेट भरा रखता है और वजन घटाने में भी सहायक है. पाचन में सहायक, यह हमारे पाचन में भी काफ़ी सहायता करता है. डायबिटीज़ के लिए, चूँकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता है. यह फाइबर और मैग्नीशियम से युक्त होता है जिससे कि शुगर नियंत्रित रहता है. फिर यह हड्डियों को मजबूत बनाता है. मखाना में मौजूद कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है. बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव के लिए यह काफ़ी लाभदायक है. हमारे त्वचा और बालों के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है. मानसिक विकास के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि यह याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है. नींद और तनाव, यह तनाव कम करके बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है. तो हम देख सकते हैं कि इसके अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं जिसके चलते यह हर एक वर्ग के लोगों द्वारा मांग किया जाता है, पसंद किया जाता है, जिससे कि उद्यमिता के अपार अवसर खुल जाते हैं. खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जहां कोई खेती नहीं होती, ऐसी जगहों पर हम मखाना की खेती करके एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं.
0: तो मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि मखाना एक तो वजन को नियंत्रित करता है, बहुत सारे फायदे आपने बताए, उनमें से जो आजकल युवाओं की चाहत होती है वजन नियंत्रित हो और उनकी त्वचा जवा दिखे, और ये दोनों ही फायदे मखाना में भरपूर रूप से हैं. और अभी आप जैसे बता रही थी कि अपने बिहार में 90 एकड़,
1: 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो कि खेती योग्य नहीं है, उसमें जल जमाव वाली जमीन भी शामिल है, तो हम
0: वहाँ मखाना
1: लगा करके जो है रोजगार के अवसर
0: पैदा कर सकते हैं. तो अभी रोजगार के बारे में आप बात कर रही थी, तो मखाना का उद्यम स्थापित करने के लिए क्या क्या संभावनाएं बिहार में हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, मैम ये बताइए.
1: जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है जिसमें कि रोजगार भी एक मुद्दा है. तो खासकर बिहार के लिए जहाँ पर कि 85-90% उत्पादन होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे उद्यम लगा सकते हैं और रोजगार के अवसर खड़े कर सकते हैं। सबसे पहली बात है तो कि कच्चे मखाने के बजाय उसे प्रोसेस या प्रसंस्कृत करके बेचना अधिक लाभदायक होता है। रोस्टिंग और फ्लेवरिंग, सादे मखाने के बजाय हम पेरी पेरी, पुदीना, पनीर टिक्का या चॉकलेट फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाना स्नैक्स बना करके बेच सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है हमारे युवाओं के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। और है मखाना पाउडर, मखाना को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसका उपयोग शिशु आहार, एनर्जी बार, हेल्थ सप्लीमेंट और बेकरी उत्पादों जैसे कि मखाना कुकीज़ और विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों में किया जाता है। फिर है मखाना बेस्ड बहुत प्रोडक्ट्स, जैसे मखाने का आटा, मखाना फ्लैक्स, पास्ता, मैकरोनी जैसे आधुनिक उत्पाद बना करके भी बेचा जा सकता है, यह भी काफ़ी मांग में है। मखाना खीर मिक्स, यह एक रेडी टू कुक जो कि पकाने के लिए तैयार उत्पाद है, जिसमें मखाना पाउडर या छोटे मखाना के टुकड़ों के साथ चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स आदि मिश्रित होते हैं। इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। बेकरी उत्पाद, मखाना के आटे के का उपयोग ग्लूटेन मुक्त बिस्किट, ब्रेड और कुकीज़ बनाने में किया जा सकता है। और कुछ अन्य खाद्य उत्पाद हैं जैसे कि मखाने का उपयोग हम अनेक पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन पफ्स, मखाना भेल, अचार, कलाकंद एवं अन्य मिठाइयाँ, पास्ता और सलाद के टॉपिंग के रूप में। बहुत सारे ऐसे हमारे पास विकल्प मौजूद हैं जो कि हम मखाना से प्रोसेस करके, प्रसंस्कृत करके बना सकते हैं, और ये हमारे युवा और व्यस्क वर्ग में काफ़ी ज़्यादा
0: पॉपुलर है,
1: मांग में है।
0: मतलब लोगों के बीच मखाना की मांग तो है, और साथ ही जब मखाना इतने फ्लेवर में आ रहा हो, मखाना इतनी अलग अलग वैरायटी में आ रहा हो, तो मांग काफ़ी होती है और रोजगार के अवसर भी होते हैं। लेकिन मैम, क्या मखाना उत्पादन में, मखाना के उद्यम में क्या सरकार द्वारा भी कोई सहायता प्रदान की जाती है?
1: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि अगर हमें सरकारी सहायता मिल जाती है तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और सरकार भी काफ़ी सारी योजनाओं के साथ युवाओं को मदद कर रही है। जैसे कि हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें एक है PMFME योजना, जिसको कि हम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से भी जानते हैं। इसके तहत मखाना प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 35% तक सब्सिडी और ऋण सहायता दी जाती है, PMFME पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, खास करके बिहार में कई जिलों जैसे कि दरभंगा, मधुबनी में इसमें मखाने की इस योजना के तहत चुना गया है, जिसमें कि सरकारी सहायता मिलती है। अब तीसरा है मखाना विकास योजना, ये जो बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है ये योजना, मखाना विकास योजना, ये बिहार के 10 विशिष्ट जिलों में मखाना की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह किसानों को प्रशिक्षण देने और मखाना की खेती और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान करने पर केंद्रित है। फिर यह योजना जो है एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत संचालित होती है, जिसमें मखाना बीज वितरण, भंडारण, गृह निर्माण और प्रोसेसिंग पर सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। इसके कुछ मुख्य हम उद्देश्य बता देते हैं मखाना विकास योजना के। इसके तहत जो है किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास दिया जाता है, फिर अनुशंसित मखाना किस्मों के बीज पर सब्सिडी मिलता है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को भी प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है और महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। 30% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और है मखाना बोर्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा बिहार में स्थापित एक सरकारी संस्था है, यह मखाना बोर्ड, जिसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना होता है ताकि किसानों की आय बढ़े और यह सुपर फूड मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। यह मखाना उद्योग की विभिन्न चुनौतियों को हल करने, नवाचार लाने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए, मखाना के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती हैं। तो युवा बढ़ चढ़कर आगे आएं और इसका लाभ उठाएं और उद्यम लगाएं।
0: मैम, मखाना उद्यम के बारे में तो हमने बात कर ली और बार बार आप प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं और प्रोसेस्ड मखाना की मांग भी ज़्यादा है। मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस का बाज़ार क्या है और किस तरह इस तक पहुंचा जा सकता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, मखाना प्रोसेसिंग का ही बाज़ार है और बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। आजकल लोग जो है, चूँकि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और लोग रेडी टू सर्व खाने को पसंद करते हैं, इसीलिए जो है ये हेल्दी स्नैक के रूप में इसकी मांग बढ़ रही है और बाजार में इसका पकड़ मजबूत हो रहा है। मखाना के बाजार एवं संभावनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो मखाना जो है भारत में एक हेल्दी स्नैक के रूप में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में इसकी मांग बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग, खासकर युवा, जिम जाने वाले लोग और डायबिटीज़ और हृदय रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं वो अपनी डाइट में इसे शामिल कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में इसकी भारी मांग है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है। अब हम उद्योग रिपोर्ट की बात करें तो फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में हेल्दी स्नैक्स का बाजार 12% की सालाना वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि मखाना प्रोसेसिंग बिजनेस एक अहम हिस्सा हो सकता है। और विविध उत्पादों की मांग भी है, जैसे कि भुना हुआ मखाना, चॉकलेट कोटेड मखाना, पनीर फ्लेवर मखाना, मसाला मखाना और अन्य फ्लेवर के मखाना की भी काफ़ी मांग बढ़ रही है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग बिजनेस का जो बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, नहीं सिर्फ हमारे घरेलू बाजार में भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है। तो हम जो है पैकेजिंग करके और ब्रांडिंग करके एक उद्यमी के रूप में आप स्थानीय किसानों से मखाना खरीदकर उसे ब्रांडिंग करके आकर्षक व लुभावने पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी छोटे उद्यमी वैश्विक बाजार में भी अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप आधुनिक खेती भी करके जो है अच्छा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पारंपरिक तालाबों के बजाय आप मखाने की खेती को खेत प्रणाली से कर सकते हैं, जिससे कि उद्यमी आधुनिक सिंचाई और कटाई की मशीनों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग बाज़ार का इसका बहुत ज़्यादा अवसर है, तो लोग, युवा को इसमें आगे आना चाहिए।
0: बिल्कुल, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, इसकी क्या संभावनाएं हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो मैम, मखाना के स्वास्थ्य लाभ के बारे में तो हमने बहुत बातें जान ली, लेकिन मखाना की उद्यमियता से क्या लाभ मिल सकता है किसान को, या फिर जो युवा इसमें आना चाहते हैं, इस उद्यम में आना चाहते हैं, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है?
1: मखाना उद्यमिता के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें प्रसंस्कृत हम अगर इसे कर लेते हैं तो चूंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है तो ये रोजगार सृजन में मदद करता है, साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि करता है। हम मखाना जो होता है वो धान और गेहूं जैसी फसलों से दोगुना लाभ देता है, जिससे कि छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की मांग चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा हम अगर इसमें जाते हैं, अगर इसका उद्यम हम स्थापित करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। निर्यात के भी अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे बताया हमने कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में काफ़ी इसकी मांग है, तो निर्यात की भी बहुत संभावनाएं हैं। फिर ग्रामीण विकास में काफ़ी ये मदद करता है, क्योंकि पलायन रोकने, युवाओं का पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ से भी रोक लगाने में मखाना उद्यम मदद करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। और चूंकि सरकारी समर्थन भी इसमें है तो ये बहुत हम इसमें उद्यम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हम आपको एक बीएयू हमारे जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक प्रभेद है मखाना की, उसके बारे में भी एक संक्षेप में देना चाहेंगे जानकारी। यह एक ऐसी किस्म है सबौर मखाना वन, जो मखाना कि एक ऐसी किस्म है, बेहतरीन किस्म है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिसमें कि पुराने प्रभेदों की तुलना में 50% ज़्यादा उपज मिलता है, साथ ही यह कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस प्रकार यह प्रभेद किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक उत्तम माध्यम है। अंत में हम बताना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि मखाना जो देवताओं का भोजन माना जाता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों, उपवास और प्रसाद में इस्तेमाल होता है, उसके बहुमुखी फायदे हैं। यह एक पौष्टिक सुपर फूड है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। मखाना उद्यमिता से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसका उद्यम कृषि मूल्य संवर्धन, नवाचार और निर्यात के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रबल कारक है। संक्षेप में, मखाना उद्यमिता एक सुपरफूड क्रांति का हिस्सा है जो पोषण, आर्थिक विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इन कारणों से यह एक टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय का सटीक साधन है। धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और मखाना से जुड़ी इतनी सारी बातें आपने बताई। आपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया, सरकार से क्या सहायता मिलती है लोगों को मखाना उद्यम के लिए, ये सब कुछ आपने बताया और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज के कार्यक्रम उन्नत कृषि में इतना ही। दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए, ढेर सारी बातों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के,
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
10: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर,
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि।
14: नमस्कार श्रोताओं, और आज खास तौर पर हम बात करने वाले हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। जी हाँ, पशुपालक भाइयों, आज आपकी पशुओं से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, और पशुओं की जहाँ तक बात है तो आज बकरी के बारे में हम बातें करेंगे। जहाँ तक हमारे छोटे और मंझोले किसान भाइयों की बात आती है और पशुपालक भाइयों की बात आती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़े गाय और भी भैंस जैसे उन सारे पशुओं को वो पाल सकें, क्योंकि उन्हें पालने में लागत ज़्यादा लगती है और कहीं ना कहीं देखभाल भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर आप बकरी पालते हैं तो आपके पास कम समय में आप इसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकती हो, और ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है। और कहीं ना कहीं इसे किसानों का ATM भी कहा जाता है। कई बार देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और अचानक से फंस जाते हैं, तो उस समय ये बकरी जो आप पाल रहे हैं वो आपके काम आते हैं। तो आइए आज कुछ बातें जानेंगे। और सबसे पहले हम आपको अपना विषय बता दें। आज का विषय है बकरी में सामान्य रोग एवं बचाव के उपाय। जी हाँ, अगर आप बकरी पाल रहे हैं तो उसकी खास देखभाल आपको करनी होती है। उनके अंदर जो रोग पनप रहे हैं उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है

0: पशुपाल लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है। जैसे ही आप पशु की बात करते हैं, उनके पास कुछ बोलने की क्षमता नहीं है। आप खाना लगाते हैं, पानी देते हैं, उसके पास जाते हैं, आप उसका व्यवहार देखते हैं और पता कर सकते हैं कि व्यवहार में कोई परिवर्तन है। सपोज़ अगर बकरी सुस्त लग रहा हो, उसका उठना बैठना कम हो, सपोज़ कि वो खाना नहीं खा रही है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दिक्कत हुआ है। कभी कभी नाक से पानी निकलेगा, आँख से पानी निकलेगा, या फिर बहुत सारा मुँह उधर सूख जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पशु का जो नॉर्मल व्यवहार है वो बदल गया है, वो सुस्त पड़ गया, सिर झुका हुआ रहेगा, कान दोनों झुका हुआ रहेगा। आप उसके व्यवहार को देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही उसके पास जाते हैं तो आप एक आवाज़ लगा करके भी पता कर सकते हैं कि आपके आवाज़ के प्रति उसका रिएक्शन क्या है। पशुपालक अपने पशु से इतना जुड़े होते हैं कि पशु को बुलाते हैं तो पशु अपने पास किसान के पास पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, उसका खाना कम हो जाना, उसका सुस्त पड़ जाना, उसका सिर झुका के बैठना, उसके नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, या फिर कभी कभी अफरा बीमारी हो तो पेट भी फूल जाता है, कहीं घाव हो, अगर शरीर में कहीं घाव हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा, वो गाल घाव बाल से ढका हुआ रहता है, तो आप देखेंगे मक्खी लग रहा है बहुत सारा, वहाँ पर गीला हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब आप दूर से देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, जब नज़दीक जाके बाल हटा के देखेंगे तो ढेर सारा वहाँ पर आपको पिल्लू नज़र आएगा कि घाव है और पिल्लू फट गया है उसमें। हम तो ऐसा भी देखें कि किसान जो है उनको पता ही नहीं था और एक महीने से बकरी के पेट में घाव है और उनको बाहर से दिखता नहीं था। जब बहुत सारा कीड़ा मैगेट उंड करते हैं वैसा हो गया, जब भयावह स्थिति, तब वो दौड़ करके हमारे पास आए। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन जब भी आप खाना देने जाते हैं, उसके पास पानी देने जाते हैं, तो आप उसका ध्यान दें, उसके व्यवहार में परिवर्तन को देखें और समझें, और खुद भी पता कर सकते हैं इस तरह से कि उसके परिवर्तन है सामान्य व्यवहार में, तो आप संपर्क करें पशु चिकित्सक से।
1: हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया पशुपालक भाइयों की, आप जैसे कि डॉक्टर चेकअप करते हैं, तो आप अगर उसे खाना देने जाते हैं तो चारा देने जाते हैं, तो आप एक बार देख लें उनके शरीर पर कोई जो है एबनॉर्मल चीज़ें तो आपको नहीं दिख रही हैं। इसके अलावे उनके सिम्टम्स भी बताएं डॉक्टर साहब ने, जैसे कि कान झुके रहते हैं, आँख से पानी, नाक से पानी आना, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका जो पशु है, आपकी जो बकरी है, वो बीमार है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अभी जो है ठंड का मौसम आने वाला है, तो इस समय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में, इस ठंड के समय में कौन कौन से रोग बकरी में देखे जाते हैं?
0: देखिए, जैसे सीजन परिवर्तन होगा, थोड़ा अभी गर्मी से तुरंत ठंडी वातावरण में जाएगा, ठंड हवा सांस में लेगी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है उसको फेफड़ा में प्रॉब्लम हो। निमोनिया बहुत कॉमन इस सीजन में, ठंडे के सीजन में, और नाक से पानी आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि बार बार छींक रही है, खांसी आ रहा है और नाक से पानी गिर रहा है, तो ये निमोनिया का लक्षण है। ये लंग में जो इन्फेक्शन होता है उससे होता है। और दूसरी बीमारी जैसे कि बकरी कभी अनाज ज़्यादा खा लिया तो बायां साइड पेट फूल जाता है, उसको अफरा बीमारी कहते हैं। और आप देखेंगे ठंडी के दिन में कभी कभी पूंछ के पीछे बहुत सारा पतला पैखाना लगा हुआ रहेगा, वो डायरिया का लक्षण है। डायरिया भी बहुत कॉमन ठंडी के दिनों में, अधिकांश बकरी की मृत्यु दस्त के कारण होती है। डायरिया एक बार पकड़ता है फिर आपको वो संभल पाना मुश्किल होता है। और बहुत सारी बीमारी है, आप उसको शुरू से उस पर ध्यान दें तो आप उसको संभाल सकते हैं, पशु को उस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे कि एक होता है इंट्रोटॉक्सीमिया, PPR, जो इस तरह का वर्म है, इंटेस्टाइन में भी उसको वर्म हो जाता है, राउंड वर्म और स्केरिस जैसा। इसके बाद आता है डर्मेटाइटिस, स्किन में डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारा स्केबीज का भी इन्फेक्शन होता है, कभी कभी मैगेट उंड देखने को मिलता है। इसके बाद है एक ORF, मुंह में बहुत सारा स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वार्ट जैसा ग्रोथ कर जाता है, ORF बीमारी कहते हैं, वायरल डिजीज है, इसको कंटेजियस एक्थाइमा भी कहते हैं। इसके बाद कुछ बीमारी है जैसे TB, पैराट्यूबरकुलोसिस, गलघोटू, FMD, ये सब बीमारी भी आपको देखने को मिल सकता है। और एक हीमोप्रोटोजन डिजीज भी, ट्रिप्नोसोमा का भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और फूट रॉट, पैर में खुर के बीच में घाव हो तो इस तरह का भी आदिवासी बीमारी है, तो उसको फूट रॉट कहते हैं। और थनेला का भी रोग बकरी में देखने को मिल सकता है। इसके बाद

0: हम सबसे ज़रूरी है कि बात करें कि आपको सामान्य क्या दिखता है इस सीज़न में, जैसे ही आगे ठंडी का सीज़न आने जा रहा है तो बकरी में ठंडी के कारण यदि आप ठंड हवा से नहीं बचाएंगे उसको निमोनिया होगा, निमोनिया के बाद दस्त भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो पतला पैखाना हो जाएगा और इस समय वायरल इन्फेक्शन जो एक PPR बीमारी कहते हैं उसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। इस सब से बचाने के लिए ज़रूरी है कि बकरी को प्रति 3 साल में एक बार PPR का टीका लगवाएं। PPR का टीका लगवाने से ठंडी में बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं।
1: मतलब जो अभी ये ठंडी में आने वाली बीमारियों के बारे में आपने कहा तो उसका एक ही सलूशन है कि टीका लगाना, या फिर उसके अलावा भी कुछ और?
0: हाँ, जैसे पेट में कीड़ा हो जाता है, बहुत सारा टेप वर्म है, राउंड वर्म है, एस्केरिस है, एक हिमोंकस कंटॉर्टस एक वर्म है जिसके कारण बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी होती है। तो यदि आप इस सब जो वर्म है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इससे बचना चाहते हैं तो डीवर्मिंग कीजिए। प्रत्येक 3 से 4 महीने पे इसको अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, आइवरमेक्टिन, इन सारी दवाओं से आप उसको डीवर्मिंग कराएं नियमित रूप से। पेट में कीड़े नहीं होंगे, जोक नहीं होंगे, तो उसको इस तरह के डीवर्मिंग से बचा जा सकता है।
1: अच्छा, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन अपने बकरी के लिए बनाएं। और सर, इस अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन वो बकरियों के लिए तैयार करें, तो उसके लिए किन किन बातों पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना होगा?
0: देखिए, शुरू से ही बकरी को जो आप खाना पीना देते हैं उसमें हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में होने चाहिए। जैसे कि आप अब चरने के लिए जमीन बहुत कम हो गया, बकरी को जैसे खुल करके चरने देते थे तो नेचुरली वो अपना बहुत सारा पौष्टिक चीज वो चर करके प्राप्त कर लेता था। लेकिन आजकल जो है चारागाह की कमी होते जा रही है, आप खुला में छोड़ेंगे दूसरे खेत में खाएगा तो उससे प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी खेत में दवा छींटा जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अगर आपकी बकरी वहाँ जाके खाती है तो उससे भी नुकसान होगा। आप जो स्टॉल फीडिंग का ट्रेंड आ रहा है, हम लोग घर में पालते हैं और खेत से चारा ला करके खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से पौष्टिक चारा देना पड़ेगा। कुछ दलहनी पौधे वाला बरसीम, काउपी जैसा चारा भी उसको देना पड़ेगा, पौष्टिक चारा, और उसके साथ साथ अनाज देना है। एक बकरी को प्रतिदिन जो है आपको कम से कम 200 से 250 ग्राम अनाज देना ही चाहिए, और उसके 2 से 3 किलो हरा चारा उसको मिलना चाहिए। यदि आप ये देते हैं, साथ में मिनरल मिक्सर देते हैं, कुछ नमक देते हैं, 10 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है, आप नमक, मिनरल मिक्सर, हरा चारा और अनाज ये सब खिलाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और उसको कोई बीमारी नहीं होगा। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि कभी किसी तरह की बात आ जाए तो समय रहते तुरंत इलाज करें। जैसे कि अभी जो ठंडी के सीज़न में आपको देखने को मिलेगा डायरिया, बहुत ज़्यादा दस्त दिखता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल का, लाइसिप टी डेर या टिनिडाजोल के नाम से दवाती है, तो उस दवा को, टेबलेट को तुरंत अपनाएं। उसके साथ भी यदि दस्त बंद नहीं हो रहा है तो एक नेबलॉन पाउडर आता है, नेबलॉन पाउडर दें और वो रुक जाएगा। लोग क्या करते हैं कि पैर पशु का बांधते हैं, बकरी का क्या करेंगे, चारों पैर में कपड़ा बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस यदि सामान्य दस्त हो, सामान्य डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, पाचन में समस्या हो, आप खाना एक दिन के लिए बंद कर दीजिए बकरी का, वो अगले दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो अगले दिन दवा दें, एंटीबायोटिक्स दें और कुछ सपोर्टिव थेरेपी दें, तो इस तरह से आप बचा सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, देखा गया कि ठंड के समय में जो बकरी पालक, जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो उन्हें ठंड से बचाने के लिए जो ऊनी कपड़े हैं वो पहना देते हैं कई बार, तो क्या ये सही है?
0: बिल्कुल, देखिए जैसे हम अपनी सुरक्षा करते हैं वैसे उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और जहाँ आप रखते हैं, गर्मी के दिन में तो बकरी को खुला भी रखते हैं, पेड़ के नीचे भी रखते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में ठंड हवा से, सर्द हवा से उसको सुरक्षा देना, बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ठंड हवा लगती रहेगी भर रात तो अगले दिन वो बीमार रहेगी, खाना नहीं खाएगी, तो ठंड हवा से बचाएं। डायरेक्ट जो है सर्द हवा उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, कवर होना चाहिए, छत के अंदर रखें। यदि आपको अपना ही घर है तो कहीं प्लास्टिक का भी एक खड़ा करके उसको प्रोटेक्ट करें ठंड हवा से। और कभी कभी होता है किसान क्या करते हैं कि घर को चारों तरफ से इतना पैक कर देते हैं कि उससे हवा नहीं निकलता है, तो वो भी हानिकारक है। उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब ताजी हवा आनी चाहिए और अंदर जो गंदी हवा है जो उसमें
1: बाहर जानी चाहिए
0: वो जानी चाहिए। ये वेंटिलेशन होते रहना चाहिए और ज्यादा ठंड हवा नहीं आना चाहिए। खिड़की पर है पर्दा लगा दे लेकिन ऊपर थोड़ा सा खुला छोड़ दे।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई अपने बकरी को चेक करते हैं, उसके शरीर पर चेक करते हैं कि कहीं कोई निशान या फिर कुछ एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो तो नहीं दिख रही, अगर उन्हें तब पता चलता है कि उनका जो पशु है, उनकी जो बकरी है वो बीमार है, तब उपचार के लिए वो किन के पास जाएंगे?
0: देखिए, प्रत्येक किसान को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका पशु बीमार पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। सबसे पहले होता है फर्स्ट एड। आप खुद ही बहुत कुछ उस स्थिति को सुधारने के लिए अपने से कर सकते हैं। जैसे कि बकरी के शरीर में मैगेटुंड कहते हैं कि घाव था और उसमें बहुत सारा पिल्लू फड़ गया, कीड़े मकोड़े हो गए, आप घबरा जाते हैं कि लगता है कितना बड़ा मुसीबत आ गया। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको इलाज आना चाहिए, उसका उपचार आना चाहिए। आप अधिक जानते हैं तो मैगेटुंड का इलाज खुद भी किसान कर सकते हैं। उसकी दवा आती है टॉपिक्योर हिमैक्स, यदि वो आप सही सही इस्तेमाल कर देते हैं तो बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि अपने से, तो आप अपने प्रखंड में, हर प्रखंड में पशु चिकित्सालय है, प्रखंड के प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करें और वहाँ एक पशु चिकित्सक से, योग्य वेटनेरियन से आप जरूर अपने पशु को दिखवा लें, जाँच करवा लें। और अभी जो है कभी कभी सरकार की तरफ से टीकाकरण की योजनाएं चलती है, PPR का टीकाकरण बकरियों के लिए चलाया जाता है ठंडी से पहले, ये इसी अक्टूबर नवंबर के महीने में। यदि PPR का टीकाकरण सरकार के द्वारा आपके पशु चिकित्सालय से चलाया जा रहा हो तो निश्चित रूप से वो आप टीकाकरण लगवा लें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फर्स्ट एड की बात कही, तो जो हम मानव हैं, मनुष्य हैं, उनमें फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन जहाँ तक पशुओं की बात आती है तो उनके फर्स्ट एड के लिए क्या कुछ शामिल होना चाहिए वो जाना चाहिए।
0: देखिए, फर्स्ट एड सिंपल है कि आप देखते ही किस तरह का, सपोज कोई पशु को चोट लग गया कहीं, हाँ, खून बह रहा है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि खून बहना बंद हो जाए। आप बैंडेज रखते हैं घर में, किसी तरह उसको टाइट करके बांध दें कि जो खून का रिसाव है वो तेज ना हो, वो बंद हो जाए, और कुछ देर वो बंधा हुआ रहेगा तो ब्लड जो है ब्लीडिंग क्लॉट होगा और वो जम जाए, बंद हो जाएगा, तो पशु की जो मृत्यु हो सकती थी वो बच सकता है। सपोज यदि घाव दिखता है कहीं, आप खुद भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, डिटॉल से, सेवलॉन से, किसी भी तरह का ये आपके पास होगा, सोफ्रामाइसिन हो या अपने घर में बीटाडीन हर किसान रखते हैं या लोग अपने लिए भी रखते हैं, उससे उस घाव को पहले ताज़ा पानी से धो के उस दवा को लगा दें, उसके बाद आप निश्चित रूप से संपर्क करें कि उसका उचित उपाय क्या है। लेकिन फर्स्ट एड सब कि यदि हम हल्का पेट फूला हुआ देखते हैं पशु को तो मीठा सोडा खिला सकते हैं, मीठा सोडा खिलाएंगे, आपको जरूरत नहीं है कि उसके लिए आप दो दो दिन तक परेशान हैं डॉक्टर साहब को खोजें। मीठा सोडा, यदि पशु में अफरा की बीमारी हो, यदि पेट थोड़ा फूल गया हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक दिन खाना नहीं दीजिए और शाम में आप उसको मीठा सोडा खिला दीजिए, अगले दिन बिल्कुल वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है।
1: तो देखा जाता है कि पशुओं में कई बार बीमारी और रोग की वजह से हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो खर्च है उनसे गुजरते हैं और इनका जो आर्थिक नुकसान है वो ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक देखा जाए तो आर्थिक नुकसान से और इन पशुओं के रोग की वजह से जो इनका आर्थिक नुकसान होता है हमारे पशुपालक भाइयों का, तो उनसे वो कैसे बचे?
0: देखिए, निश्चित रूप से यदि हमारे पशु बीमार रहेंगे तो हमें नुकसान होगा, उससे
1: चाहे हम मनुष्य भी बीमार रहते हैं,
0: बीमार रहते हैं, हमारा नुकसान होता है। जो पशु तेजी से शरीर में वृद्धि होना चाहिए, उसका वजन बढ़ना चाहिए, आज वो 4 किलो का है तो वो बहुत जल्दी 8 किलो का भी हो जाना चाहिए, तो इस तरह से यदि वो शरीर में वृद्धि दर ग्रहण कर रहा है तो निश्चित रूप से अच्छी कीमत आपको मिलती है, रिटर्न मिलता है। और उसके पेट में यदि कीड़ा हो, आपको पता नहीं चलेगा, वो खाते पीते रहेगी लेकिन उसके शरीर में एक आसातीत विकास नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। उसको होना चाहिए था 15-20 किलो का, लेकिन वो 7-8 किलो भी नहीं पहुंच पाया, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान है, सीधा कम से कम 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा आपका। तो निश्चित रूप से पशु को यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं तो आपको अधिक से अधिक 25-30-40 रुपये का नुकसान है, मतलब खर्चा है। तो लेकिन आप एक हेलमिंस होता है इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स, उससे एक बकरी में आगा गया है कि एक बकरी को 168 रुपया का नुकसान होता है। यदि आप इसको वैज्ञानिक टर्म में जानना चाहेंगे कि एक सिर्फ इंटेस्टाइनल पैरासाइट के चलते इतना नुकसान हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं कि आप यदि 10 बकरी पालते हैं तो उस तरह से यदि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे और सबके पेट में जोंक हो जाएगा तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा।
1: तो इस तरीके से आप आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने टीकाकरण की बात कही, PPR टीकाकरण की बात कही, तो वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भी मिल जाएंगे, पशु चिकित्सक वो दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, खासकर बकरी के बारे में हमने बात किया, बकरी में जो रोग देखने को मिलते हैं और आने वाले दिनों में यानी कि ठंड के मौसम में जो रोग देखने को मिलेंगे उनके बारे में हमने बात किया, और बचाव के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको विस्तार से बताया। तो डॉक्टर साहब आज अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारी पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था ये, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने प्रस्तुत की। तो आप सभी से, हमारे किसान भाइयों से, हमारे पशुपालक भाइयों से अगले दिन मैं लेकर आऊँगी अगले विषय को, तो ये वादा करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हाँ, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं,
सही जानकारी से फैसला ले। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोंकण कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। और करियर वॉच में आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी के बारे में, जिसे लगभग हर विद्यार्थी जूझता है कि वो अकेले पढ़ाई करे या ग्रुप स्टडी करे। और ये परेशानी हर बच्चे को अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होती ही है, क्योंकि कुछ बच्चा अकेले पढ़ाई करके अच्छा कर रहा है और कुछ बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप में अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। और हमें क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किसी और को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हर किसी के लिए ग्रुप स्टडी नहीं होता, और उसी तरीके से हर किसी के लिए इंडिविजुअल स्टडी यानी कि अकेले पढ़ाई करना भी बेहतर नहीं होता है। तो क्या है आपके लिए बेहतर, ये जानने के लिए कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्रुप स्टडी के फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो यही होता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो जो भी समझते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जिससे बहुत टफ सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से समझ में हमें आ जाता है। इसके अलावा रिटेंशन बढ़ता है, यानी कि जब आप किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दूसरों को समझा कर पढ़ाते हैं, तो ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक ज़्यादा याद रहता है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को समझ लिया और आपने उसी टॉपिक को किसी और को समझाया, तो ऐसे में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 50% तक बढ़ सकती है। और इसके अलावा जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप थोड़ा लो भी फील करते हैं तो कोई आपका पार्टनर होता है, आपका दोस्त होता है जो आपको मोटिवेट करता है। और ग्रुप में पढ़ना मज़ेदार होता है, प्रेरणादायक होता है, जिससे पढ़ाई जारी रखने का मन करता है। तो एक तरीके से जो टीम का सपोर्ट होता है आपके पास वो आपको मोटिवेट करता है। और इसके अलावा आपके अंदर संचार और नेतृत्व का कौशल भी बनता है। आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, सवाल जवाब आपस में कर रहे हैं, विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक जो कम्युनिकेशन स्किल है और लीडरशिप है ये भी डेवलप होती है। और बहुत सारे एग्जाम्स में ना अब ग्रुप डिस्कशंस को भी शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे प्रोसेस में जाकर मिलता है। और ग्रुप स्टडीज के ऐसे नहीं है कि सिर्फ फायदे होते हैं, इसमें कुछ चुनौतियां भी होती है। जैसे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चा थोड़ा स्लो होगा पढ़ाई करने में, कुछ लोग ऐसा होगा जो काफ़ी फास्ट चीज़ें सीख रहा है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे चीज़ों को आधी ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो देखेगा कि ग्रुप के सारे बच्चों ने तो सीख लिया पर मुझे ही परेशानी हो रहा है। तो कई बार हम शर्म की वजह से चीज़ें नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए और बातें करने लग जाते हैं और वो बातें ऑफ टॉपिक हो जाती है, यानी कि आपको जिस टॉपिक पे बातें करनी थी वो टॉपिक उससे निकल कर न जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं, और फिर ये हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालती है। तो ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा ध्यान भी बहुत ईजिली भटकता है, हम बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक और परेशानी होती है कि समय और योजना की परेशानी होती है। सारे बच्चे एक वक्त पे फ्री नहीं हो सकते हैं, और सारे बच्चों का जो गोल है वो भी एक नहीं हो सकता है। तो अगर आप जब ग्रुप स्टडी की सोच रहे हैं और सभी का टाइम प्लानिंग बिल्कुल सही है और आपका गोल भी एक ही है, तो ये परेशानी नहीं रहती है, ये बात करके सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप बना ले जो कि एक ही एग्जाम को, सेम एग्जाम को टारगेट कर रहे हों, तो ये परेशानी तो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर आप ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जो आप अपना गोल है वो क्लियर रखें और रोल्स बांट दें बच्चों में, जैसे कि कौन नोट लाएगा, कौन टाइम का ध्यान रखेगा और कौन क्या करेगा, ये चीज़ें आप बांट दें तो सारे लोगों में जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बटी रहेगी। और एक और बात थी ग्रुप स्टडी की जो परेशानी होती है कि कोई बच्चा शायद पीछे रह जाता है और वो शर्म से नहीं बता पाता है। तो जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर सारे बच्चे खुलकर अपने जो परेशानी है वो साझा कर पाएं। आपके दोस्त ही तो हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनाए जहाँ पर ओपन हर कोई अपने प्रॉब्लम को बता पाने में बिल्कुल सहज महसूस करे और एक अच्छी तरीके से प्लान करें और ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने की भी एक समय सीमा रखें कि इतने बजे तक ही पढ़ाई करनी है, इतने बजे के बाद हमें अपने घर जाना है। और इसके अलावा आप क्या करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें प्लान करें, एक टाइम लिमिट भी रखें कि हमें इतने देर तक ही पढ़ाई करनी है, ताकि छोटे छोटे ब्रेक लें और ब्रेक में जितनी बातें करनी है कर लें, जैसे ही ब्रेक ख़त्म हो आप पढ़ाई करने पे वापस चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान ना पढ़ाई पे बना रहेगा। इसके साथ ही आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी ग्रुप स्टडी खत्म होती है तब आप ये चीजें देखें कि आपने आज क्या सीखा है, हर बच्चे ने क्या सीखा है, तो इसे ये भी पता लगेगा कि किसने कितना प्रोग्रेस किया और आज की पढ़ाई में, ग्रुप स्टडी में, आपने सिर्फ बातें ज्यादा की है या पढ़ाई भी की है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। और अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टडी की, यानी कि जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो क्या परेशानी होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और इंडिविजुअल स्टडी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो पढ़ने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी अलग होता है। वो चीज़ों को बहुत गहरी तरीके से समझना चाहते हैं और आत्म अध्ययन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के भी बहुत फ़ायदे होते हैं जैसे कि ग्रुप स्टडी के भी फायदे होते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के फायदे ये होते हैं कि आप अपनी गति पे पढ़ सकते हो, आपका एक पर्सनल पेस चलता रहता है। आपको अगर कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है तो उसी टॉपिक को आप बार बार बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रुप स्टडी में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई तेजी से सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, तो ऐसे में जो स्लो लर्नर होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इंडिविजुअल स्टडी का एक और फायदा ये होता है कि आपके पास ध्यान भटकाने वाले तत्व काफी कम होते हैं। आप लंबे समय तक एक ही विषय पर बहुत ही डीपली, बहुत गहराई से काम कर सकते हैं और आपके पास कोई और आपका ध्यान भटकाने वाला नहीं होता है। और यहाँ पर परेशानियां भी बहुत होती है, लेकिन इसके पहले हम फायदों के बारे में और बातें कर लेते हैं। जब आप अकेले पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है और एक आत्म अनुशासन आता है, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि आपको खुद ही सारी योजनाएं बनानी है, आपको खुद ही समय सीमा तय करना है, आपको खुद ही अपना लक्ष्य तय करना है ताकि आपके स्किल्स मजबूत हो सके। आप टाइम पे पढ़ने इसलिए नहीं बैठते हो क्योंकि बाकी बच्चे आ गए हैं, बल्कि आप टाइम पे पढ़ने इसलिए बैठते हो क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप स्टडी हमें सिखाता है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हो, आपको ग्रुप टास्क बेहतर सिखाता है, ग्रुप डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो विकसित करता है, वहीं जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आता है और इसके साथ ही आप अपने स्टाइल में, अपने हिसाब से, अपनी जो रूटीन है, अपनी रणनीति है, प्लानिंग है, वो कर सकते हैं। आप अपने स्टाइल के नोट्स बना सकते हैं, आपका जो रिवीजन का टेक्निक है वो अलग हो सकता है, आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो इसके फायदे तो हमने जान लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं, इसकी चुनौतियां भी बहुत सारी है। जैसे कि आपको तुरंत कोई फीडबैक नहीं मिलता, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंफ्यूजन आ गया, आप किसी सवाल से परेशान हो गए तो आपको तुरंत जवाब नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके आसपास कोई होता नहीं है। वहीं जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जो चीजें हमने नहीं समझी हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने समझ लिया है। और जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो इसमें ध्यान भटकने का भी खतरा रहता है। जब हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ध्यान इसलिए भटकता है कि हम किसी और टॉपिक पे अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप खुद पर बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तब तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, बहुत ही अच्छे से गहन फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे पास ध्यान भटकाने के हजारों संसाधन आज के टाइम पे मौजूद है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा ध्यान आसानी से भटका सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई हमें टोक देता है कि चलो फोन नीचे रखो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ही पढ़ाई करें या फिर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है कि आप ग्रुप के साथ पढ़ाई करें, तो कैसे आप बेहतर तरीके से अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस ढूंढना होगा जहां पर कि आपके डिस्ट्रैक्शन की कोई भी चीज ना हो। आप अपने फोन को दूर रख दीजिए, सोशल मीडिया को तय कर लीजिए कि इस जगह पर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी के आने से आपको परेशानी होती है तो आप वहां पर पहले ही बता दीजिए कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, कोई भी यहाँ पर ना आए। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, और एक टेक्निक तो हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, 25 से 40 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज पे फोकस कर ही नहीं सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो, यानी कि हर 25 से 40 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो भी 40 मिनट करेंगे, 45 मिनट करेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें गाने सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद वापस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके साथ ही आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन जैसी टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉल को समझते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप किताब बंद करके दिमाग से जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा मेहनत करता है, और यही मेहनत आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। और जब हम स्पेस्ड रिपीटेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि एक ही जानकारी को आप थोड़े थोड़े गैप के बाद दोहरा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई लाइन पढ़ी या फिर किसी डेट को पढ़ा, तो अगले पेज पे जैसे ही हम गए तो एक बार हमने उस डेट के बारे में याद कर लिया कि हाँ इस डेट में ये हुआ था। तो जब आप एक ही चीज को, एक ही टर्म को या एक ही जानकारी को बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपको याद रहता है। और इसके लिए एक जरूरी चीज होती है कि पहले दिन पढ़ें आप, तीसरे दिन उस चीज को बिल्कुल दोहराना चाहिए, सातवें दिन आप फिर दोहराइए, पंद्रहवें दिन आप फिर से रिविजन कीजिए। अगर आप इस टेक्निक को आजमाते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और लंबे समय तक एक किसी चीज को याद रख सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले दिन आपने पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन आप उस चीज को रिवाइज कीजिए, सातवें दिन आपको फिर से रिवाइज करना है, पंद्रहवें दिन फिर से रिवाइज करना है, उसके बाद आपको ये चीज लंबे समय तक याद रहेगी, आपको वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये चीजें भी आप जब आप अकेले पढ़ते हैं या ग्रुप में भी पढ़ते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखने के लिए। और जब आप अकेले हैं तो आपके पास कोई भी ये बताने के लिए नहीं होता है, कोई भी ये कहने के लिए नहीं होता है कि वाओ तुमने कितने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया है या फिर तुमने कितनी जल्दी इस काम को कर लिया है। तो खुद के लिए रिवॉर्ड्स सेट करें और छोटे छोटे ब्रेक ले और छोटी छोटी सफलताओं के बाद खुशियां खुद ही मना ले कि वाओ कितनी अच्छी बात है, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया और मैंने आज इस टॉपिक को अपने टाइम से पहले या टाइम पे फिनिश कर दिया। तो खुद ही खुश हो जाइए, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मोटिवेट करते हैं, तो आगे पढ़ाई करने के लिए आप जब अकेले होते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। इसको जानने का, समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने सीखने के स्टाइल को समझें। अगर आप देखकर चीजें जल्दी सीखते हैं, पढ़कर जल्दी चीजें सीखते हैं तो आप अकेले पढ़िए, लेकिन आप सुनकर चीजों को जल्दी सीखते हैं, याद रखते हैं तो आप ग्रुप में पढ़िए। जब दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए सुनेंगे तो वहां पर आप चीजें सुन रहे होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तब तो आपको ग्रुप स्टडी में ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आप इंट्रोवर्ट है तब आपके लिए ग्रुप स्टडी बहुत बड़ी परेशानी होगी, आप अकेले पढ़ना पसंद करेंगे। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए बहुत गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है, एक फोकस की जरूरत होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अकेले ही पढ़ें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे बच्चे अकेले पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, तो इससे बहुत फायदे होते हैं। एक तो आपने किसी टफ टॉपिक को अकेले में समझ लिया, लेकिन अब आप ग्रुप में जाकर अगर कोई चीजें समझ नहीं आई तो कन्फ्यूजन दूर किया, या फिर किसी और के कन्फ्यूजन को आपने दूर किया तो फिर आप चीजों को और अच्छी तरीके से समझ गए। तो आप ना जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप दोनों ही टेक्निक को मिलाकर पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडी भी करें, इंडिविजुअल स्टडी भी करें। जब आप इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी टफ टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस के साथ समझ रहे होते हैं, फिर उसी टॉपिक को आप ग्रुप में जाकर डिस्कस करते हैं तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। आप पहले क्या करें कि नोट्स को अकेले पढ़ लें, फिर आप ग्रुप में जाकर जो भी मुश्किल चीज़ें हैं उस पर चर्चा करें, और जब आप समूह में कोई भी चीज़ें सीखते हैं तो उसे फिर आप वापस आकर अकेले में दोहराएं और रिव्यू करें कि आपने क्या सीखा है। और अगर कोई टफ प्रॉब्लम है तो उसे अकेले में सॉल्व करें और फिर ग्रुप में जाकर डिस्कस करें कि कैसे आपने सॉल्व किया, या फिर किसी और ने उसे सॉल्व कर लिया है तो उससे पूछें कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी एक चीज पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंडिविजुअली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो भी आपको ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत फायदेमंद आपके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चीजों को अलग तरीके से सीखने का, समझने का जो मौका होता है वो होता है। इसके साथ ही वहाँ पर आप अपने जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो भी दूर कर सकते हैं। तो आप दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करें और दोनों ही तकनीकों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों तरीकों को मिलाकर पढ़ें और ऐसे ग्रुप के साथ पढ़ें जिनका कि लक्ष्य गोल एक जैसा हो, आपके सीखने की शैली भी अगर एक जैसी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम यानी कि करियर वॉच को देते हैं विराम। आप मुझे यानी कि अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात कि स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रोज मेहनत करते रहें, हर रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम।

0: में आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अनु। दोस्तों, अभी देखा जा रहा है कि किसानों की सहूलियत के लिए सरकार तो कुछ काम कर ही रही है, लेकिन यहां पर ज़रूरी है कि किसान भी कुछ समझे अपने विकास के लिए, अपनी खेती के विकास के लिए, अपनी आय को कैसे वो दोगुना कर सकते हैं, उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, उन्हें जानने की बारी आती है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा विषय भी है, बहुत ही खास विषय है, कृषि की प्रसार में नेतृत्व की भूमिका। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर एस दिवाकर जी, और मैं बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये प्रसार शिक्षा विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कृषि के विकास के लिए क्यों ज़रूरी है नेतृत्व का होना।
1: जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नेतृत्व को आजकल सीधा सीधी लोग ले लेते हैं पॉलिटिकल लीडर के जैसा, वो केवल पॉलिटिकल लीडर को ही वो लीडर मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लीडर कोई भी हो सकता है। पहले इसके बैकग्राउंड में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हम जब आज़ादी के बाद से पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी मैनिफेस्टो या कोई भी बड़े नेता की भाषण को हम लोग सुनेंगे या उनकी मैनिफेस्टो को देखेंगे, तो उसमें एक बात तो क्लियर है कि सारे पार्टी जो हैं किसान की तरक्की के लिए हमेशा वो वचनबद्ध रहे हैं
0: जी।
1: अपने मैनिफेस्टो में भी
0: सबसे पहला उनका जो सबसे पहला जो उनका मुद्दा भी होता है, वो लोगों के सामने लोगों को इम्प्रेस भी करना चाहते हैं अपने जो मैनिफेस्टो वगैरह है उससे, तो सबसे पहले किसानों की बात ही करते हैं और उन्हें बहुत सारे जो है सहूलियत देने की बात करते हैं।
1: फिर भी हमारे किसानों को बहुत सारे प्रॉब्लम है। इतना सारे पॉलिटिकल पार्टीज किसान के बारे में बात करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम है। और यहाँ तक कि हम देखेंगे आज़ादी के समय जो हमारा जीडीपी में कृषि का जो कंट्रीब्यूशन था लगभग 50% के आसपास था।
0: अच्छा।
1: और आज के डेट में 13% पे आ गया है। मतलब कि कृषि से ज़्यादा अदर सेक्टर्स ज़्यादा ग्रोथ किया है।
0: अच्छा।
1: लेकिन कृषि का ग्रोथ
0: अभी तक नहीं हुआ है।
1: हुआ है ग्रोथ, हमारा प्रोडक्शन तो 5 गुना बढ़ा है, लेकिन जो जिस हिसाब से दूसरे सेक्टर बढ़े हैं उस हिसाब से हमारा प्रगति नहीं हुआ है।
0: मतलब कि प्रगति अभी धीरे धीरे हो रही है।
1: जी,
0: जिस जो स्पीड में होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो रही है, जितना एक्सेप्ट करते हैं हम उतना नहीं हुआ है कृषि में तकनीक के विकास। और फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर साहब और भी कुछ बातें आप बताने वाले थे।
1: जी, इसमें मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये सोचने वाली बात है कि सरकार की योजना के बावजूद हमारा किसानों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भारत में किसान संगठित तो है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: बहुत कमी है। भारत सरकार की योजना भी है, जैसे FPO बनाइए, फार्मर इंटरेस्ट बनवाती है और नबार्ड उसमें फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, फिर भी हमारे किसान एकजुट या संगठित नहीं हो रहे हैं। और संगठन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है, एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ इसको। सपोज आपके गांव में किसी सिंचाई की प्रॉब्लम है।
0: अच्छा।
1: और कोई एक किसान जाकर के ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर्स हैं उनसे गुहार लगाते हैं कि इस गांव में ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपकी आवाज को ना सुना जाए।
0: अच्छा।
1: लेकिन यही जब किसान का एक संगठन ये अपनी बात रखेगा इस गांव में प्रॉब्लम है, तो संगठन की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। और वो संगठन, सपोज हमारा यहाँ तो लोकतंत्र है, वो भी डिसेंट्रलाइज लोकतंत्र है, हर बार डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं कहा जा सकता है। इसी के लिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज लोकतंत्र है, जिसमें आप मुखिया भी चुनते हैं। आप अपनी समस्या को मुखिया से तो कह ही सकते हैं। सपोज मुखिया वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए तो ब्लॉक पंचायत समिति में ले जाएंगे बात, वहाँ भी प्रॉब्लम का निदान नहीं हुआ तो जिला परिषद में जाएगा।
0: हाँ।
1: और जिला परिषद तक जाते जाते मुद्दा इतना बड़ा हो जाए कि सरकार इस चीज को जान जाएगी कि वहाँ पर रियल प्रॉब्लम है, तो आपका समस्या का निदान ऑब्वियसली हो सकता है इस तरह।
0: मतलब जरूरी है एकजुट होना, संगठित होना अभी किसान भाइयों का।
1: एकजुट होने पे ही आपकी आवाज को सुना
0: जा सकता है। हाँ।
1: और इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। जैसे कृषि तकनीक में आजकल हम लोग देखते हैं कंबाइन हार्वेस्टर, खास करके विदेशों में इसकी तो बहुत इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इंडियन कंडीशन में कंबाइन हार्वेस्टर हम लोग कम ही देखते हैं यहाँ, खास करके बिहार में तो बहुत कम ही देखा जाता है। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो किसान हैं मार्जिनलाइज्ड हैं, कम जोत वाले किसान हैं, और यदि हमारे किसान जैसे कि ये गांव में 50 किसान संगठित हो गए तो 50 किसान मिल करके जो नई तकनीक जो आई है कंबाइन हार्वेस्टर उसको वो हायर कर सकते हैं या खरीद भी सकते हैं, तो नई तकनीक का वो संगठन के रूप बना करके वो यूज कर सकते हैं।
0: मतलब ये एक तरीका हुआ कि आप अगर उस योग्य नहीं है कि आप अकेले खरीद सकते हैं या फिर उसे हायर कर सकते हैं, तो आप संगठित होकर भी जो है उसे हायर कर सकते हैं और उसका फायदा हर कोई जो है ले सकता है खेती में।
1: जी, तो अभी हम लोग देखा कि दो लाभ देखे संगठन का। हम लोग दो ही लाभ पे बात करेंगे आज। एक तो देखे कि आपकी आवाज को सरकार सुन सकती है जब आप संगठित होंगे, और दूसरा कि आप नई तकनीक जो महंगी तकनीक है उसको आप संगठित होकर के यूज करने में कामयाब होंगे।
0: तो यहाँ पर संगठित होने के लिए एक लीडर की भी जरूरत होती है डॉक्टर साहब, तो इस लीडर में क्या क्या गुण होना चाहिए?
1: जी, लीडर में कुछ जो गुण होने चाहिए मोटा मोटी मैं कुछ गुण बताता हूँ।
0: जी,
1: पहला तो गुण में ये होना चाहिए कि वो लीड बाय एग्जांपल, उनको खुद को एक एग्जांपल के रूप में पेश करना है।
0: अच्छा,
1: सपोज कोई नया वैरायटीज आई रिलीज हुई यूनिवर्सिटी के द्वारा, और वहाँ के किसी एक पार्टिकुलर गांव के एक प्रोग्रेसिव फार्मर उस तकनीक को उस वैरायटी को अपने खेत में लगाए और अच्छा रिजल्ट देखे, तो वो अपने फेलो फार्मर्स उस गांव के जितने अदर फार्मर्स हैं उनको बता सकते हैं कि नहीं मैं तो इसको यूज किया हूं और ये हमारे कंडीशन के लिए बहुत अच्छा ये वैरायटी है।
0: अच्छा,
1: और सपोज कोई दूसरा आदमी जो वो वैरायटी को यूज नहीं किया तो उसकी बात को लोग नहीं सुनेगा। तो पहले एग्जाम्पल अपने आप को पेश करना होगा, ये लीडर का एक पहला गुण होना ही चाहिए। और इसके अलावा एक होता है कि लीडर को हमेशा एंथुसियास्टिक होना चाहिए, हमेशा उनको उत्साहित रहना चाहिए। कोई लीडर है और खुद से निराश है कि नहीं ये नई तकनीक जो आई है हमारे गांव के लिए सुटेबल नहीं है, तो उससे कोई भी लोग प्रभावित नहीं होगा।
0: बिल्कुल,
1: और लीडर का तो डेफिनेशन ही है, जब आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तभी आप लीडर
0: बन सकते हैं।
1: तो आपको एंथुसियास्टिक होना ही पड़ेगा। एक है एम्बिशियस, लीडर को हमेशा गोल ओरिएंटेड काम करना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए कि नहीं हमें एक कर लेना है। एक हो गया डिटरमाइंड, वो हमेशा डिटरमाइंड होना चाहिए उसको। एक काम में लग गए तो ये नहीं कि इनिशियल स्टेज में हमें सफलता नहीं मिल रही तो काम को छोड़ दें।
0: अच्छा,
1: इसको एक एग्जांपल के रूप में आप समझ लीजिए, कोई एक किसान है वो जो कुआं खोदना चाहता है और थोड़ा सा खोदा फिर उसके दिमाग में आ गया कि नहीं यहाँ से तो पानी नहीं निकलेगा, फिर वो दूसरा गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है। ऐसे कर करके वो पूरा दिन वेस्ट कर देगा, सप्ताह वेस्ट कर देगा।
0: अगर इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते, पेशेंस होना चाहिए।
1: पेशेंस, एक फिल्म भी आई थी माउंटेन मैन करके, जो दशरथ मांझी जी का अकेला आदमी पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिए, डिटर्मिनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल।
0: और लोग उन्हें कह भी रहे थे कि ये क्यों कर रहे हो, उसे तुम्हें क्या मिलेगा, फिर भी
1: लीडर को मतलब हमेशा एकाग्र होना चाहिए। और उनको हमेशा जैसे किसान का जो प्रोग्रेसिव फार्मर नेता है उनको हमेशा अदर किसान को इनकरेज करना चाहिए कि तुम भी करो ना, प्रॉफिट होगा, अच्छा काम करेगा। उनको डराना नहीं चाहिए कि नया तकनीक है नया वैरायटी है फेल हो जाएगा, जबकि नेता ही ऐसा बोल देगा तो किसान नहीं लगाएंगे उस चीज।
0: अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि LIC के जो एजेंट्स होते हैं वो हमेशा लोगों को कन्विंस करने में हमेशा पॉजिटिव चीजें ही रखते हैं, तो इस तरीके के थोड़े हमारे जो किसान भाइयों के जो लीडर हैं इस यूनिटी के या फिर यूनिट के जो भी लीडर हैं उनका थोड़ा सा ऐसा फीचर्स होना चाहिए उनके पास कि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो रखें लोगों के सामने और उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं वो भूल कर भी ना रखें।
1: जी, और एक और गुण कह सकते हैं नेता में जो होना चाहिए वो रेडी टू लर्न।
0: अच्छा,
1: उनको हमेशा सीखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। सपोज आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और गांव के सभी किसान आपको इज्जत करते हैं, तो जो चीज सपोज आपको नहीं आता है उसको सीखने में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए,
0: बताने में भी।
1: और बताने में भी जो चीज आपको नहीं आता है तो आप कहीं से सीख लीजिए। तो ये सब, ये सारे गुण मोटा मोटी होना चाहिए प्रोग्रेसिव फार्मर में।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी हमने बात किया इस संगठित होने का, जो दो लाभ आपने बताया कि एक जो किसी यंत्र को खरीद कर और दूसरा कि अपनी आवाज़ को हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आय की ओर बढ़ते हैं हम, तो किसान भाई संगठित रूप से कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी बताएं।
1: का भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन।
0: अच्छा,
1: इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कोई एक गांव है जो शहर से 50 किलोमीटर दूर है, वहां के किसान सब्जी की खेती कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: और प्रचुर मात्रा में मान लीजिए कि गोभी वहां पे पैदावार हो रही है, और वो गोभी को मार्केट पटना मार्केट में सपोज रेट अच्छा मिल रहा है सबौर मार्केट के, और जो वहाँ जो भी उनका नियरेस्ट मार्केट हो और दूर की मार्केट में अच्छा उनको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन किसान अकेला वहाँ तो ले नहीं जा सकते हैं अपने प्रोड्यूस को। लेकिन वहाँ के किसान 100 किसान जो 100 फूल गोभी की जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, 100 किसान एक साथ मिलकर के अपने प्रोड्यूस को मार्केट दूर तक की मार्केट में, यहाँ तक कि अदर स्टेट में भी वो भेज सकते हैं, और जो ट्रक का जो भाड़ा होगा वो सब पे शेयर हो जाएगा। तो मामूली सी मार्केटिंग कॉस्ट में अपना प्रोड्यूस को बेच करके अच्छा इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी पे आप आते हैं, इसके लिए आपको 500 किसानों को जो एक ही चीज़ यूज कर रहे हैं एकत्रित करना होगा, और सबका शेयर बनता है। सपोज एक किसान 1,000 रुपया सब इन्वेस्ट किया,
0: अच्छा,
1: तो 1,000 लोग है तो जितना अमाउंट जोड़ के आएगा उतना पैसा नाबार्ड भी आपको दे देगी, आपको आगे की खेती करने या खेती का जो नई तकनीक आप जो यूज लेना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं इसका यूज।
0: तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि संगठित होने का क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है आपको, और कृषि तकनीक के प्रसार में नेतृत्व की भूमिका बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग एक के पाठ चार पर आधारित कार्यक्रम पत्ते ही पत्ते।
1: बच्चे बाहर खेल रहे थे तभी दीदी बोली,
2: अरे पियो काचू ये देखो, तो देखो मेरे पास क्या है।
3: क्या है दीदी,
4: बताओ ना।
2: देखो मेरे पास कुछ पत्ते हैं।
4: अरे वाह, कितने सारे पत्ते।
3: मुझे ये लंबा पत्ता बहुत अच्छा लगता है।
2: ये आम का पत्ता है। कई जगह पर लोग इस पत्ते का पूजा में उपयोग करते हैं।
4: ये पत्ता तो देखो कितना खुरदुरा है।
2: हाँ, ये पारिजात का पत्ता है। ऐसा और कोई पत्ता देखा है आपने?
3: नहीं, हमने तो नहीं देखा।
5: मैंने भी नहीं देखा।
4: दीदी ये छोटा गोल पत्ता गुलाब का है ना?
2: हाँ, एकदम सही पहचाना तुमने, ये गुलाब का ही पत्ता है।
3: और ये पत्ता?
2: अच्छा ये कतरीला पत्ता तो पपीते का है।
5: दीदी इमली के पत्ते ऐसे ही होते हैं ना?
2: हाँ, इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन थोड़े छोटे होते हैं। देखो तो ये कैसे बंधनवार जैसे दिखता है ना?
4: हाँ दीदी।
5: हाँ दीदी।
4: दीदी सभी पत्ते तो हरे हैं, लेकिन ये पत्ते तो पीले हैं।
5: और ये जामनी क्यों है?
2: बच्चों वनस्पति के पत्ते विविध रंगों के और प्रकार के भी होते हैं। ऐसे ही खेलते खेलते हम पत्तों के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है,
3: ठीक है दीदी।
2: तो चलो फिर और पत्ते इकट्ठा करते हैं।
3: दीदी मैं भी चलूंगा।
2: दीदी हाँ हाँ ठीक है।
0: पत्ते ही पत्ते, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT, विषय संयोजन सह आचार्य डॉक्टर रमेश कुमार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार ममता मलकानी, शालिनी सिंह और रक्षित थपलियाल, बाल कलाकार निशांत, नमन, रवीश, रितिका, रियान और सौरभ, ध्वनिंकन बटी लहलिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन पर। मैं हूं अनु और स्वागत करती हूं हर रोज की तरह हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो दोस्तों, हम आज खास विषय आप सभी के लिए लेकर आए हैं, धान में पोषक तत्व प्रबंधन। और इस विषय को आज हमारे बीच लेकर आए हैं डॉक्टर राजीव रक्षित। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम डॉक्टर साहब से जानते हैं सबसे पहले कि बीज स्थली में उर्वरक प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए।
1: नमस्कार किसान बंधु, जहाँ तक धान की बात है, बीज स्थली हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधी तरह इसका बुआई नहीं करते धान में, हम लोगों को पता है। तो बीज स्थली में जहाँ तक की बात है, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है किसी भी बीज स्थली में, उसकी क्यारियों में हम कोशिश करेंगे कि 1 kg नाइट्रोजन, जिसे हिंदी में नेत्रोजन कहा जाता है, 1 kg पोटाश और 1 kg स्फुर या उसे फॉस्फोरस कहा जाता है।
0: अच्छा।
1: तो हम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसको देने की कोशिश करेंगे, जब हम मिट्टी की प्रिपरेशन या फिर जब शुरुआत करेंगे, जब बीज स्थली बनाने की क्यारियों को तैयार करेंगे। फिर जब बीज गिरने के 15 दिन बाद हम करते हैं कि उसमें 1 kg नाइट्रोजन और देने की कोशिश करेंगे, और नाइट्रोजन जो है बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और सब किसान बंधु इसी विषय की जानकारी अवश्य रखते हैं कि यूरिया जो है जिसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है या नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम ये पाएंगे कि बीज स्थली में या बीज गिराने के 15 दिन बाद हम 2.2 kg यूरिया का बीज स्थली में उपनिवेशन करेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन या फिर उस बीज स्थली में डालेंगे।
0: जी, तो यहाँ पर उर्वरक प्रबंधन आपने जाना, और बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब की मात्रा, यानी कि खाद की मात्रा की हम बात करते हैं, अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फसल बर्बाद भी हो जाते हैं, इसलिए मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी मात्रा होनी चाहिए खाद की इसमें?
1: अब ये जो है विषय जो है आपकी, कि ये आप डिपेंड करेगा कि क्या कौन से सारे प्रभेद आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे अगर हमने कहा कि अगर ऊपरी जमीन है आपकी, तो वहाँ कुछ अगर जल्द पकने वाली कुछ प्रभेद रहेंगे, तो अवश्य किसान भाई ये करेंगे कि 80, 40 और 20 के हिसाब से, मतलब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ संकर किस्म है, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, वो उन्नत मान के किस्म है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा कि जल्द पकने वाली प्रभेदों में 80, 40, 20 के हिसाब से करेंगे, पर जैसे ही संकर किस्मों का अगर इस्तेमाल करने लगे, तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा हम 20 kg और बढ़ा देंगे। तो इस अनुसार अगर संकर किस्म है आपके पास, तो 100, 40 और 20 kg के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का इस्तेमाल आप करेंगे। कई किसान ऐसे हैं जो भागलपुर या इससे जुड़े हुए जिलों में सुगंधित किस्में लगाते हैं।
0: जी,
1: सुगंधित किस्मों में आपके दो तरह के किस्में और आएंगी, एक बौनी किस्म होगी, एक हो सकती है लंबी किस्में। तो बौनी किस्मों में मूलतः हम 80, 40 और 20 kg NPK के हिसाब से ही चलेंगे, पर जो अगर लंबी किस्में हैं, जिनके गिरने का डर रहता है, तो इसलिए हम वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा में थोड़ी कमी कर देंगे, और बौनी की लंबी किस्मों के लिए 40, 30 और 20 kg NPK का इस्तेमाल हम प्रति हेक्टेयर के मात्रा में करेंगे।
0: और इसके बाद जो अलग खाद हम देते हैं, तो उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
1: जैसे हम ये कह सकते हैं कि अलग खादों में धान के लिए सबसे मूलतः जरूरी है आपका जिंक सल्फेट। जिंक की कमी मूलतः धान में पाई जाती है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जिंक की कमी है, और इस बात को ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि धान की फसलों में कहीं जिंक की कमी ना आ जाए। तो 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मुख्य खेत की अंतिम जुताई के समय एवं कदवा जब करेंगे, जब कादो करेंगे उस फील्ड को, तो उसके पूर्व खेत में हम इसको मिला दें, ताकि किसी भी तरह की जिंक से जुड़ी हुई समस्याएं ना उत्पन्न हो। इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि हाँ, जब हम फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि कंपोस्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर किसान भाई कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अवश्य ये कोशिश करें कि 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वो रोपाई के 20 से 25 दिन पहले कंपोस्ट का इस्तेमाल कर ले।
0: जी, और किन फसल चरणों में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए?
1: जहाँ तक फसल चरण की बात है, हर एक किसानों को ये पता है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम एक बार में नहीं कर देते। हम कोशिश करते हैं कि जो स्पेशलाइज स्टेज है, जहाँ पर फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी जगह उसका इस्तेमाल की जाए। तो अगर फसल चरण की बात कही जाए धान में, तो नाइट्रोजन की आधी एवं पोटाशियम एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा जब हम कादो के समय तथा 1/4 नाइट्रोजन की मात्रा रोपाई के 20 से 30 दिन बाद तथा शेष जो नाइट्रोजन बचेगी हमारे पास वो बाली निकलने के वक्त ही हम उसका इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल कंडीशन में हम ये करें, साधारण मूलतः तो यही किया जाता है। अगर आप किसान भाई के पास ऐसी कोई प्रभेद है जो 150 दिन लेगी या 150 से ज़्यादा दिन लेगी, तो ऐसे क्षेत्र में वो नाइट्रोजन का 1/4 मात्रा रोपाई के पहले इस्तेमाल करें, दूसरा 1/4 मात्रा रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, तीसरा जो है वो 5 से 6 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, और अंतिम जो 1/4 बचेगी वो 7 से 8 सप्ताह में जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए इस जगह कि खड़ी फसल में नाइट्रोजन का व्यवहार करने के पूर्व खेत से आप अवश्य आपके खरपतवार जो है उसको निकाल दें, या यदि पानी का जमाव बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी निकासी कर दी जाए। इन बातों का ध्यान आप फसल के चरणों में रखिए जब आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे।
0: जी, तो आपने सुना किसान भाइयों कि जल जमाव नहीं रहना चाहिए आपके खेतों में, और आप पानी की निकासी का व्यवस्था ज़रूर रखें। अब जैव उर्वरक की बात करते हैं, तो क्या इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: अभी भारत सरकार या कई राज्य सरकार भी पारंपरिक खेती की बात कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अवश्य ये रेकमेंड करते हैं, हम अवश्य ये किसानों को बताते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली का उपयोग करें। अच्छा। तो इनके देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि धान में आप अजोला का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं, या इस्तेमाल किया भी जाता है, या कुछ लोग कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु भी हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन आपका है उसका इस्तेमाल, उसको खींच कर अपने पास रख लेते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो उसका स्थिरीकरण कर लेते हैं मिट्टी में। कुछ ऐसे हैं हमारे सूक्ष्म जीवाणु। उसके साथ साथ आप धान की उत्पादकता अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो अवश्य ही एजोला के साथ साथ कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनका उदाहरण हम कह सकते हैं एजो स्पाइरिलम है, उसके अलावा नील हरित शैवाल है जिसे अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साथ ही साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि फॉस्फोबैक्टीरिया जो फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाएगी, ऐसे बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है आज। और साथ ही साथ माइकोराइजा भी है, किसान इस माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाया जा सके। तो यही सब है कि आप रासायनिक के साथ साथ जैविक खाद का भी समेकित तरीके से इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि धान की उत्पादकता भी बनी रहे और भविष्य में हमारी सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी बने रहे। जो मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आज हमारे पास जो खाना है उसको हम इस तरह बचा के रखें ताकि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को भी मिलते रहे। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, मुझे लगता है कि जितने अच्छे से डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उतने अच्छे से आप सुनेंगे और इसे अपने व्यवहार में ज़रूर लाएंगे, तो आप अच्छे से धान में पोषक तत्व प्रबंधन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। इसे फ्रिक्वेंसी याद रखें 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। 7 सितंबर 2026 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में विद्यार्थियों के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव यानी RAWE रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस को और अधिक व्यवहारिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल का नाम है एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान, यानी वन स्टूडेंट वन फार्मर वन सॉल्यूशन। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर DR सिंह ने किया। इस अभिनव पहल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK से जुड़कर RAWE कर रहे देश के 19 विश्वविद्यालयों के 397 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत अब प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान से जोड़ा गया है। विद्यार्थी किसान के खेत पर जाकर उसके कृषि कार्यों को समझेगा और किसान की एक प्रमुख समस्या की पहचान करेगा। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी किसान के साथ मिलकर उस समस्या का स्थानीय व्यवहारिक और कम लागत वाला समाधान खोजने और उसे खेत पर लागू करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य RAWE को केवल खेत भ्रमण या कृषि कार्यों का अनुभव प्राप्त करने तक सीमित रखना नहीं है। इसके माध्यम से RAWE को समस्या की पहचान, समाधान की खोज और उसके वास्तविक प्रभाव से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में किसानों के अपने अनुभवों और नवाचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। किसानों द्वारा विकसित जमीनी नवाचार, स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक कृषि अनुभव और कम लागत वाली तकनीकों की पहचान की जाएगी और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उपयोगी नवाचारों को वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा और सफल पाए जाने पर उन्हें अन्य किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल में किसान को केवल तकनीक प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता के रूप में देखा जाएगा। विद्यार्थी किसान की समस्या को समझने के साथ साथ उनके अनुभव और स्थानीय ज्ञान से भी सीखेंगे। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की पूरी कार्य प्रणाली की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी और किसान के बीच नियमित संवाद होगा। किसान और कृषि परिवार की आधारभूत जानकारी का संकलन किया जाएगा। इसके बाद समस्या की पहचान, वैज्ञानिक निदान, समाधान का संयुक्त विकास, खेत पर उसका प्रयोग, नियमित निगरानी, परिणामों का आकलन और दस्तावेजीकरण जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्यक्रम की सफलता का आकलन भी ठोस परिणामों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए तकनीक को अपनाने की दर, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, किसान की आय में वृद्धि, संसाधनों के बेहतर उपयोग, किसान की संतुष्टि और सफल समाधान को अन्य किसानों द्वारा अपनाया जाना प्रमुख संकेतक होंगे। कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर दीप प्रज्वलन किया गया और इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर डी आर सिंह ने कहा कि एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि REWE कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक किसान के साथ जोड़कर उसकी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। माननीय कुलपति ने कहा कि किसान आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, फसलों में रोग एवं कीट, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, सिंचाई की समस्या, बढ़ती उत्पादन लागत और फसल के उचित मूल्य का न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के साथ मिलकर इन समस्याओं के व्यवहारिक और कारगर समाधान खोजें। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहा कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को खेत पर जाकर वास्तविक स्थिति को समझना होगा और ऐसा समाधान देना होगा जिसका किसान के जीवन और कृषि कार्य पर स्पष्ट और मापनीय प्रभाव दिखाई दे। माननीय कुलपति ने इस पहल को लैब टू लैंड और लैब टू लैब का बेहतर उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जहां विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा, वहीं किसानों का अनुभव और स्थानीय ज्ञान भी विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा। माननीय कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को किसानों से संवाद करने के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि किसान से बातचीत करते समय उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसकी वास्तविक समस्या को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसानों के खेत की फसलों की जियो टैग की गई तस्वीरें लेने और पूरे कार्य का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। माननीय कुलपति ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यदि आपके प्रयास से किसी किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है तो इसे ही अपने जीवन की असली कमाई समझें। कार्यक्रम के दौरान REWE विद्यार्थियों ने एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान पहल से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी। डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज की REWE विद्यार्थी अदिति पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस पहल में किसान केवल लाभार्थी नहीं होंगे बल्कि ज्ञान के साझेदार और समाधान के सह निर्माता होंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव के विद्यार्थी स्वप्नील ने किसानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और किसान डेटा तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यार्थियों ने माननीय कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर की वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अनीता कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर के सुहाने ने कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को इस पहल के उद्देश्य और कार्य प्रणाली से अवगत कराया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर AK शाह ने विद्यार्थियों को किसानों की समस्याओं के समाधान से संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। वहीं निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम के अंत में सह निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर RN सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब बात करते हैं इस पहल से REWE को किस तरह नई दिशा मिलेगी। एक विद्यार्थी, एक किसान, एक समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि REWE को और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी किसान की समस्या को केवल देखे नहीं बल्कि उसे समझे, किसान के साथ मिलकर समाधान खोजे और उस समाधान के परिणाम को मापे। इस पहल में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केवी के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ किसान नवाचारों की पहचान, उनके वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण में भी सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों और किसानों के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा, किसानों की वास्तविक समस्याएं विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगी और विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों के खेत तक पहुंचेगा। साथ ही देश के 19 विश्वविद्यालयों से आए विद्यार्थियों की सहभागिता से विभिन्न क्षेत्रों के कृषि अनुभव, स्थानीय ज्ञान और नवाचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार एक विद्यार्थी एक किसान एक समाधान का लक्ष्य है कि RAWE के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक किसान की एक वास्तविक समस्या को समझे, उसके समाधान की दिशा में काम करे और किसान के खेत पर उसके सकारात्मक एवं मापनीय प्रभाव को सुनिश्चित करें।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कितने दोस्त हैं?
1: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
0: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फॉस्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फॉस्फोरस कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से सस्य फसलों के लिए, और बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
1: उमा, अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है। और हमारी जो बिहार की किसान हैं उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें, और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: तो मैम, फॉस्फोरस क्या है, अब ये बताइए।
1: जी, फॉस्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं की अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है, अगर आप सुने होंगे एटीपी, एडीपी, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी कोशिकाओं के लिए फॉस्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएं। तो फॉस्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रिया हैं जिसमें फॉस्फोरस जरूरी होती है, जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन, और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
0: तो मैम, सस्य फसलों में अगर हम फॉस्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है?
1: जी, हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फॉस्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट या जरूरी होती है, यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फॉस्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्ते फसलों में जहाँ पे आपकी फॉस्फरस की जरूरत होती है, जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में, उसमें भी आपको फॉस्फरस की कुछ मात्राओं की जरूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थिति परिस्थितियां होती उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फॉस्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फॉस्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फॉस्फोरस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की क्या स्थिति है?
1: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है जिसको आप लोग हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फॉस्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फॉस्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फॉस्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फॉस्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फॉस्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फॉस्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 to 13.6 मिलीग्राम पर केजी फॉस्फोरस होता है जो मध्यम वर्गीय होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फॉस्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फॉस्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 to 20 or 30% तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 to 20% यानी 15 to 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फॉस्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है ताकि जितना हम फॉस्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फॉस्फोरस की क्या स्थिति है तो आप ये सोच सकते हैं 50 to 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फॉस्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फॉस्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
1: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फॉस्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फॉस्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है उसके आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर हैं जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे एनपीके के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फॉस्फरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फॉस्फरस के केस में है, जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फॉस्फरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो ले ले, अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्योर, जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्योर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए, उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस की वो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायोफर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायोलैब है जहाँ पे हम लोग बायोफर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप पीएसबी को लेकर भी, चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फॉस्फरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो, तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी। यानी जहां पे सुखाड़ है वहां पे हम लोग बीज उपचार करें, जहां पे पानी जमाव है वहां पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे, तो ये सिद्ध हो चुका है, विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे, ये 20-30% फॉस्फरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है। यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
1: जी जरूर। फॉस्फरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
0: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू वेरी मच उमा।
0: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोंकण कृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखे और ध्यान दे कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखे, सूखा रखे और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है। और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है, खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आप को अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, BCDE जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज़ आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है, आपका मूड कैसा होगा। अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफ़ी अच्छा रहता है, कभी काफ़ी ख़राब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी, सी, डी, ई और बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना? तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखें एकदम खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप बने रहें 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ಭಾರತ್ ಕೃಷಿ. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हां, किसान भाइयों, जिसका इंतज़ार आपको रहता है और वो कार्यक्रम एक बार फिर आप सुन रहे हैं. और इसमें आज हम दालों के बारे में जान रहे हैं, यानी दाल, आज अरहर दाल के बारे में हम जानेंगे. आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं और साथ ही अरहर की खेती के लिए आपको कौन सी भूमि चयन करनी चाहिए, कौन से प्रभेदों को आपको लेना चाहिए, इसके साथ ही अगर कुछ रोग व्याधि लगते हैं तो आप उनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीट कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें आज आपको अगर आप हमारा यह कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको सुनने को मिल जाएंगी. तो इस खास विषय के साथ हमारे बीच आज हैं डॉक्टर आनंद कुमार. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज पूरी की पूरी जानकारी आप इनसे सुन सकते हैं. सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मौसम अनुकूल अरहर की उन्नत खेती कैसे करके ज़्यादा हम लोग फायदा कर सकते हैं. तो जैसा हम लोग जानते हैं कि दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है तथा यह भोजन का अभिन्न अंग है. दलहनी फसलों में अरहर एक प्राचीनतम एवं लोकप्रिय फसल है. भारत में प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चना के बाद दूसरा स्थान रखता है. जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती, मृदा की उर्वर शक्ति को कायम रखने में या और पोषण सुरक्षा में अरहर जैसी दलहनी फसलों का अति महत्वपूर्ण योगदान है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है वह शाकाहारी है, उसे प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन्स की प्रतिपूर्ति हेतु दैनिक भोजन में दालों का समावेश अति आवश्यक है. अरहर एक ऐसी फसल है जिसको हम लोग उसकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं. अरहर प्राय असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है. अरहर सूखा प्रतिरोधी, जिसमें उच्च प्रोटीन युक्त 20-22% प्रोटीन पाई जाती है. नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति के वृद्धि गुणों के कारण यह फसल अब हमारे सीमांत किसानों के बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है.
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि क्या क्या ये इनकी विशेषताएं हैं, और अब खेती की बात करते हैं. तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि भूमि का चयन, तो कैसी भूमि में की जाए जो किसान भाइयों को इससे उपज अधिक हो.
1: किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरहर की खेती में भूमि का चुनाव एक अत्यंत जो हम लोग को ध्यान रखने की बात है. और भूमि का चुनाव करते समय हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि खेत ऊंचा और समतल हो, जिससे जल निकास अच्छी हो. बिहार में अरहर प्राय मटियार दोमट मिट्टी से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है. अरहर की फसल के लिए बलुई दोमट या अथवा दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच सर्वोत्तम मानी जाती है. और खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अरहर की फसल उगाने के लिए खेत को की तैयारी अच्छी होनी चाहिए. रबी की फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई करने के बाद खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े सूर्य की गर्मी से मर जाएं. 2-3 बार खेत की अच्छी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए. जुताई के समय गोबर की सरी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें. अरहर के खेत में पानी का जमाव कभी नहीं होना चाहिए. जहां अधिक वर्षा होती हो वहां रेस्ट बेड, जैसे हम लोग कहते हैं उठी से या बनाकर, या मेर या नाली बनाकर बोना एक आदर्श बुआई विधि है. अतः अधिक उपज लेने के लिए फसल को इस विधि से लगाना अधिक उपयोग होगा. आजकल हमारे बिहार में जितने भी हमारे किसान भाई जो मेर पर है, वो अपना मेर के जमीन का ज़्यादा उपयोग अरहर की खेती के लिए कर रहे हैं.
0: तो ये थी कुछ बातें जिसे आप करके अधिक मुनाफा पा सकते हैं. पानी बिल्कुल नहीं जमा रहने दीजिए, और पानी खेतों से बिल्कुल निकाल लीजिए अगर आप इसकी खेती कर सकते हैं तो. डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ उन्नतशील प्रभेदों की, तो उन्नतशील प्रभेद कौन कौन से हैं अरहर के, जिसकी बुआई करके हमारे किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
1: किसान भाई, हम लोग को प्रभेद का चयन के समय एक सावधानी बरतनी यही है कि हम लोग जो भी प्रभेद का चयन करें वो ऐसे प्रभेद लें जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन देने वाली प्रजातियां का इस्तेमाल से अरहर की उत्पादकता को हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं. बिहार में अभी भी कि मात्र 20-30% किसान ही अरहर की उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं. अतः अरहर की उन्नत कीट रोगी प्रतिरोधी किस्मों के बीज को समय पर उपलब्धता एवं किसानों द्वारा उपयोग किया जाना बेहतर उपज के लिए निहायत जरूरी है. जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अरहर की खेती 2 समय में करते हैं, एक है खरीफ मौसम में और दूसरा सितंबर के समय में. तो जो जो खरीफ मौसम में करते हैं उसको लगाने का समय है 1 से 31 जुलाई, उसमें हमारे हमारे बीच बहुत से हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय चाहे दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है उससे आप लोग जो उन्नतशील प्रभेद जैसे IPA 203 ये प्रभेद अभी नवीनतम प्रभेद है और 2017 में इसको अनुशंसित किया गया है। यह प्रभेद 240 से 250 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी उपज औसत उपज 18 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे अरहर में दो रोग बहुत महत्वपूर्ण होती है जैसे उकठा एवं बंधता मोज़ेक रोग, ये उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। उसी तरह एक और नई किस्म आई है जो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से विकसित की गई है, ये है IPA 206। ये 260 से 270 दिनों में परिपक्व हो जाती है और इसका औसत उपज बहुत अच्छा है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये उकठा के प्रति प्रतिरोधी है तथा इसका दाना मध्यम होता है और अंडाकार बीज इसका है। इसी तरह हमारे बिहार में जो राजेंद्र अरहर एक है उसका भी जो परिपक्व होने का समय होता है मैच्योरिटी का जो है वो 260 से 70 दिनों का है, जो 28 से 30 क्विंटल इसका औसत उपज है। ये भी उकठा के प्रति सहिष्णु एवं बंधता मोज़ेक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और जैसा कि पहले भी हमारे किसान भाई बहार उषा 9 नरेंद्र अरहर की खेती मालवीय अरहर 13 जैसे प्रति जो प्रभेद है उसका प्रयोग करके अच्छा उपज प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा जो हमारा सामान्य आकस्मिक फसल योजना, जैसे कभी कभी होता है कि मानसून दगा दे दिया और आदमी का खेत खाली हो रहा है तो सितंबर के मौसम में भी अरहर की खेती कर सकते हैं और उसमें लगाने का समय है 25 अगस्त से 15 सितंबर। जैसा कि हम लोग सितंबर अरहर में दो प्रभेद अनुशंसित है पूसा 9 और शरद। पूसा 9 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाता है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। और दूसरी वेरायटी है शरद जो 200 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है, इसका औसत उपज 15 से 16 क्विंटल है। तो ये आकस्मिक फसल के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आकस्मिक फसल के रूप में भी आप अरहर की फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्नतशील प्रभेदों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, अब शस्य क्रियाओं को बताएं कि कौन कौन से शस्य क्रियाएं हमारे किसान भाई अपनाएं जिससे कि उनको इसकी खेती करके लाभ हो।
1: अरहर में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी फसल अच्छी उपज लेने के लिए बीज दर के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। जैसे सामान्यतः अरहर की बुआई में हम लोग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर से बुआई करनी चाहिए और यदि हम लोग सितंबर अरहर लगाते हैं तो उसमें हम लोग को बीज दर 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी होगी। और जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग छोटे बच्चे को क्या करते हैं कि बहुत से रोगों को बचाने के लिए टीका लगवाते हैं, उसी तरह हम लोग को भी फसलों में रोग व्याधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप विकसित करने के लिए उन लोगों को भी टीका लगाना होगा, जैसे बीज को टीका लगाना होगा। बीजों को प्रारंभिक अवस्था में उकठा के रोग के को फसल से बचाने के लिए बीजोपचार करना अति आवश्यक है। तो बीजोपचार हम लोग कैसे करें इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो बुआई के 48 घंटे पूर्व हम लोग को सबसे पहले 2.5 ग्राम थीरम या 1 ग्राम बेबेस्टिन अथवा 1.5 ग्राम थीरम तथा 0.5 ग्राम बेबेस्टिन के मिश्रण को प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि हमारे एक हेक्टेयर के लिए यदि हम 20 किलोग्राम बीज लेते हैं तो उसको उसी के हिसाब से हम लोग को इससे गुना करके उसको उतना मिश्रण हम लोग को बनाना होगा। और जिन खेतों में दीमक का प्रयोग अधिक हो उसमें फफूंदनाशक से बीजोपचार के उपरांत क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा आती है 20 EC 20 EC दवा 6 से 8 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को अच्छे से उपचारित कर देना चाहिए। उपचारित करने के बाद हम लोग को बीज को जीवाणु संवर्धन से बीजोपचार जैसे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार विभिन्न दलहनी फसलों के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम कल्चर होते हैं। यदि हम अरहर के लिए बीजोपचार करने जा रहे हैं तो अरहर बीजों को उपचारित करने के लिए संस्तुत राइजोबियम कल्चर का ही प्रयोग करना चाहिए। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर जो एक पैकेट में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर होता है वह 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो अरहर में 20 किलो बीज के लिए हम लोग को 2 पैकेट की आवश्यकता होगी। उसको कैसे हम लोग करते हैं तो 100 ग्राम गुड़ अथवा चीनी आधा लीटर पानी में घोल लेना चाहिए। घोल को गर्म करके ठंडा करके एक पैकेट राइजोबियम कल्चर अच्छी तरह डंडे से हिलाकर मिला देनी चाहिए। बाल्टी या घरे में 10 किलोग्राम बीज डालकर घोल में मिला देना चाहिए ताकि राइजोबियम बीज की सतह पर अच्छी तरह चिपक जाए। इस प्रकार राइजोबियम को कल्चर को सने हुए बीज को कुछ देर छांव में सुखा देना चाहिए। जहां तक संभव हो बीजोपचार सायं काल में करें ताकि तेज धूपों में बीजों को सूखने की संभावना न रहे। धूप से बीजों को सुखाने में राइजोबियम जीवाणु मर जाते हैं जिससे वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। उस राइजोबियम कल्चर के उपरांत हम लोग को पीएसबी कल्चर जिसको फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया से बीजोपचार करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर के भांति ही फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया कल्चर का पैकेट उपलब्ध रहते हैं जिन्हें बाजार या हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में खरीदा जा सकता है। राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार की तरह ही पीएसबी कल्चर का बीजोपचार करना चाहिए। एक बात किसान भाई बहुत जरूरी है कि हम लोग यदि पंक्ति में अपने फसल को लगावें तो हमारा उपज अपने आप बढ़ जाता है। तो खरीफ मौसम में यदि हम अरहर की खेती कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि सितंबर में हम लोग अरहर की बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। किसान भाई दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उर्वरक का प्रयोग अरहर की खेती में कैसे करें। दलहनी फसल होने के कारण नेत्रजन की आवश्यकता कम होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उसमें उसके जड़ में ग्रंथियां होती है जो नेत्र जो वायुमंडल से नेत्रजन स्थिरीकरण कर पौधे को अवेलेबल कराता है। समानांतर परिस्थिति में हम लोग 20 किलोग्राम नेत्रजन 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस की दर से डालना चाहिए और सितंबर अरहर यदि हम लोग उसकी बुआई कर रहे हैं तो उपरोक्त उर्वरक की अतिरिक्त बुआई 25 से 30 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन करें निकाई गुड़ाई के समय कर दें। यदि भूमि में जिंक और सल्फर की कमी हो तो बुआई के समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फेट का प्रयोग करें। एक बात सबसे बड़ा है कि खरपतवार की समस्या हमारे अरहर के खेत में बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार की समस्या से हम लोग कैसे इसको निजात पा सकते हैं। खरीफ फसल एवं लंबी अवधि वाली फसल में खरपतवार की समस्या प्रमुख है। खरपतवार के कारण फसल की पैदावार में 40 से 50% की कमी देखी गई है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण में पेंडी मेथिलीन 30 EC 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के उपरांत अंकुरण पूर्व छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त इमीजा थाइपर जो एक नया मॉलिक्यूल है 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 दिन बाद छिड़काव कर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
0: तो किसान भाइयों यहाँ पर आपने जाना कि आप बीजोपचार कैसे कर सकते हैं, साथ ही उर्वरक का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए और खरपतवार का प्रबंधन आप इसमें कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ हो। और डॉक्टर साहब रोग की बात करते हैं, रोग व्याधि भी बहुत इसमें लग सकते हैं, तो इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई।
1: किसान भाई अरहर की फसल को प्रभावित करने वाले हमारे प्रमुख रोगों में उकठा, तना विगलन, बंधता मोजैक चाहे पीला मोजैक या सरकसपोरा पर्णचीतियाँ प्रमुख हैं। इन रोगों के प्रकोप से औसतः हम लोग 15 से 25% तक नुकसान हम लोग को होता है। इन रोगों को समुचित प्रबंधन हम लोग कैसे करें इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि उकठा रोग के हम लोग लक्षण कैसे पहचानें। समानतः इस रोग का संक्रमण अधिकतर फसल की प्रारंभिक अवस्था 4 से 5 सप्ताह में होता है, किंतु किसी भी अवस्था के पौधे इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। खेत में यह रोग छोटे छोटे स्थानों में पैच के रूप में कई स्थानों में दिखाई देता है।

0: से 3 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब हम लोग इस जानेंगे कि इसका हम लोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। अधिक सबसे पहले इसको रोकथाम के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फसल चक्र अपनाना होगा। अधिक वर्षों का फसल, जैसे 4 से 5 वर्षों का फसल चक्र अपनाने के साथ खेतों में खरपतवार नियंत्रण बनाए रखने और गर्मी के समय में गहरी जुताई करके भूमि में परे रोगजनक नष्ट कर देने होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा है कि थीरम या कर्बेंडाजिम 2:1 के अनुपात से मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि अरहर का फसल चक तंबाकू के साथ किया जाए तो रोग की कमी देखी गई है, क्योंकि तंबाकू की जड़ों से निकलने वाले रोगजनक के हानिकारक होते हैं। यदि अरहर को ज्वार के साथ मिलाकर बोया जाए तो संक्रमण कम किया जा सकता है। ऐसे हम लोगों के पास रोगी रोधी किस्म अब बहुत से आ गए हैं, जिसकी हम लोग खेती करके इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। जैसे अभी हम बताएं IPA 203, IPA 206, चाहे नरेंद्र अरहर 1, मालवीय अरहर 3। उसी तरह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोग अरहर में बंधता मोज़ेक रोग है। इसमें इसके लक्षण होते हैं, रोगी पौधे खेतों में हल्के हरे दिखलाई पड़ते हैं तथा स्वस्थ हरे पौधों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्राय रोगी पौधे की पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, जिस पर अनियमित आकार के हल्के हरे और गहरे हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोगी पौधे पर फूल और फल उत्पन्न नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं, उनमें से शाखाएं निकल फूटती है, जिससे पौधे झाड़ी नुमा दिखाई पड़ते हैं। प्राय पौधे की कुछ शाखाएँ रोग संक्रमित होती है तथा बाकी शाखाएँ से बिल्कुल स्वस्थ होती है। रोगी शाखाओं पर फल फूल नहीं आते हैं, जिससे स्वस्थ हिस्से में फल फूल आते हैं। इसके प्रबंधन में हम लोग को क्या क्या रखना चाहिए, इसकी रोकथाम हम लोग कैसे करें, तो सबसे पहले खेत में सफाई रखनी चाहिए, खरपतवार आदि को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जिस खेत में अरहर को बोना है उसके आसपास अरहर के पुराने या स्वयं उगे पौधे को उखाड़ देना चाहिए। और रोग रोधी किस्म जो हम लोग बताए हैं, IPA 203, 206, मालवीय अरहर 13, ये प्रभेदों को लगाना चाहिए। खेत में जो ही रोगी पौधे दिखाई दें तो रोगी पौधे के साथ इमीडाक्लोरपीड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर जो कीड़े दिखाई दें उसे, जैसे हम लोग को सफ़ेद मक्खी दिखाई दे उसे ये इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। उसी तरह जैसे कीट प्रबंधन अरहर में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें फली छेदक जो कीड़ा होता है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें कीट का व्यस्क जो रहता है वो पीले भूरे रंग का होता है एवं सफ़ेद पंख के किनारे काले रंग की पट्टी बनी होती है। इसके पिल्लू हरे रंग के होते हैं, जिनके पीठ पर गहरी भूरी रेखाएं दिखाई देती है। इस कीट के पिल्लू के प्रारंभ में पत्तियां को खा जाती है तथा बाद में फलियों को छेद कर इसके दाने को भी खा जाती है। इसके प्रबंधन में हम लोग को ध्यान रखना है कि खेत में को ग्रीष्म गर्मी में हम लोग गहरी जुताई करें, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें तथा सबसे बड़ा है कि 10 फेरोमोन फंदा, जिसको हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का ल्योर लगा के प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाना चाहिए। हम लोग प्रकाश फंदा का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। आजकल जैसे कि हम लोग जैविक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो 15 से 20 टी आकार का बर्ड पर्चर प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जिससे कि वो हमारा जो पहले जो कौवा या कोई जानवर हो, कौवा जो हमारा जो है वो भी हमारा खेत में जो इसका जो लियो इसका जो लार्वा है उसको खा जाए। खरीफ फसल में इसके अतिरिक्त एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे जैविक दवा है NPB 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। अरहर के लिए 500 के प्रति हेक्टेयर की मात्रा से NPV वायरस गोल का छिड़काव कर फली छेदक अंडे देने के समय कर सकते हैं। दोबारा अंडे देने की स्थिति में 15 से 20 दिनों के बाद NPV का छिड़काव करें। यदि फली छेदक का संक्रमण अधिक हो तो अरहर के पौधों को जोर से हिलाकर लार्वा को पॉलीथीन की चादर या जूट के बोरी में जमा करके नष्ट कर दें। या एक दवा आती है प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव फूल आने के समय तथा दूसरा छिड़काव फली बनाते समय करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये इस विधि से यदि हम लोग अरहर की खेती करें तो अरहर फसल की पैदावार जो हमारा जो उन्नतशील प्रभेद है जो उससे हम लोग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना अरहर के बारे में, अरहर की खेती और वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं। और इस बहुत ही अच्छे विषय के साथ हमारे साथ थे डॉक्टर आनंद कुमार। और दोस्तों, हमारे किसान भाइयों, आपसे आशा करते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है आप उन्हें सुनेंगे और अपनी

0: खेती में जरूर उसे अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बिहार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृति मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद उमा, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
11: मैम सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसानों की जो स्थिति है और उनका जो योगदान है उसके बारे में बताइए।
12: बिल्कुल, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक है और इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो लगभग ऐसा है कि 80% ग्रामीण महिलाएँ हैं जो कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न होते हैं और इनमें से लगभग 33% जो महिलाएं होती हैं वो कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं तथा 48% जो महिलाएं हैं वो स्वयं अपने खेतों में किसानी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो 40 से 45% से भी अधिक होती है और ऐसे आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का लगभग 76-77% हिस्सा कृषि में ही कार्यरत है।
13: जी मैम,
12: ये स्पष्ट करता है कि भारत में कृषि का जो महिलाकरण है, जिसको हम की फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये तेजी से हो रहा है और खासकर पुरुषों के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण महिला केवल अब एक श्रमिक नहीं है, बल्कि वो एक उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन तक पूरे वैल्यू चेन में भी सक्रिय हैं और पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, बागवानी में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहती है और खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी इसे निभाती भी हैं। महिलाओं का जो इन सभी में जो निर्णायक रोल है वो महिलाएं बखूबी निभाती हैं और ये काफ़ी ही प्रशंसनीय भी है।
13: मैम, आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई काफ़ी आकर्षक है, लेकिन मैम बिहार के संदर्भ में स्थिति क्या है?
12: अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला किसानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उमा, क्योंकि यह राज्य कृषि पर ही आधारित है। हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है, तो अगर हम बिहार में प्रमुख आंकड़े की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है कृषि कार्यों में शामिल होती हैं और लगभग हर कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी होती है। राज्य में जैसे कि पुरुषों के पलायन के कारण महिलाएं अब हम सिर्फ इनको घर तक सीमित नहीं समझ सकते हैं, बल्कि ये फार्म मैनेजर की भूमिका भी निभा रही हैं आजकल। और अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसके माध्यम से भी महिलाओं का व्यापक संगठन हुआ है। जैसे कि जीविका की बात करें, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल, ना कि राज्य स्तर पर बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जो जीविका मॉडल है यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसका बहुत प्रसिद्ध मॉडल है, जिसमें कि अगर कहें तो 10 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुई हैं और अगर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लगभग हर दूसरे ग्रामीण परिवार तक पहुंच चुका है और अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जाती है। जैसे कि इसे अगर देखा जाए तो इससे अधिक बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें, या 15-20% तक किसानों की आय में भी वृद्धि देखी गई है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 लाख से अधिक किसानों की आधुनिक कृषि प्रशिक्षण मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और सहायक भी होता है।
13: तो मैम, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को आप कैसे समझाते हैं?
12: अगर हम स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को जाने तो इसका इस मॉडल का ग्रामीण विकास में सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है आज के दिन में। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें सही मायने में तो हम इसको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें जैसे बचत हो गया, महिलाएं कुछ कुछ पैसे हर महीने जमा करती हैं और इनसे उनका आंतरिक ऋण, बैंक लिंकेज का जो ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है और कृषि निवेश में भी इन्हें सहायता मिलता है। अगर हम कृषि आधारित उद्यमिता की बात करें जो हमारी महिलाएं हैं, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह मशरूम उत्पादन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, डेयरी की बात करें अगर हम, बकरी पालन हो गया, या खाद्य प्रसंस्करण की भी बात जैसे अचार, पापड़, मिलेट उत्पाद का जो आजकल वैल्यू एडिशन होता है वो सब में भी इनको इससे मदद मिलता है। जैसे कि सामूहिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सामूहिक खेती हो गया, या इनपुट के माध्यम से सामूहिक खरीद भी होता है, उत्पादों का सामूहिक विपणन भी कर सकते हैं। और अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, पंचायत में भागीदारी, या स्वास्थ्य, या पोषण और शिक्षा में सुधार, ये एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रभाव है जो कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देखा जा सकता है।
13: तो मैम, क्या हमारे राज्य में इस दिशा में कोई विशेष पहल भी की जा रही है?
12: जी हाँ, बिहार में तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण पहलें चल रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी ऐसे हमारी जो सरकार हैं वो बहुत पहल चलाती हैं और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। तो अगर हम कहें तो इसके माध्यम से महिलाएं बचत करती हैं और आपस में ऋण भी ले लेती हैं और छोटे छोटे कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन की मैंने बात करी, या वर्मी कंपोस्ट, या अचार पापड़ जो हम बनाते हैं उस सब की आदि की भी शुरुआत करती हैं। सो इसके अलावा ये समूह जो होता है सामूहिक खेती इनपुट जो कि मैंने पहले भी बताया है और उत्पादनों के विपणन में भी सहयोग करते हैं, तो इससे कम लागत में इनकी आय बढ़ती है। और अगर राज्य से हम राज्य से स्तर को देखें और उसके बाद हम अपने अगर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी पहल को देखें तो हमारे हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी राज्य के साथ साथ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य न केवल शिक्षा और शोध है बल्कि किसानों तक तकनीक को पहुँचाना और उनके कौशल विकास करना भी है। तो अगर हम इसमें कुछ पहलों के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ तो जैसे प्रशिक्षण एवं क्षमता को निर्माण करते हैं हम इनकी, जैसे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से महिला किसान जो हैं और स्वयं सहायता समूह को भी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मशरूम उत्पादन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं या मधुमक्खी पालन के ऊपर या जैविक खेती, ऐसे पशुपालन, ऐसे बहुत सारे जो उद्यमता जो हैं उसके शामिल होते हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे महिला केंद्रित कार्यशालाएँ भी होती हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर दी जाती है, आयोजित की जाती है, और इसमें महिलाओं को नई तकनीक, धान उत्पादन, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ाव भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि उद्यमता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये हमारे जो राज्य की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उद्यमता को अपनाना चाहती हैं, वो सब इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकती हैं। ये सब हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समय समय पर जैसा कि हम अभी रेडियो टॉक दे रहे हैं, ऐसे डिजिटल और रेडियो के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं। तो विश्वविद्यालय एफएम रेडियो जैसे 90.8 एफएम ग्रीन है और इसका मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को, विशेषकर महिला किसानों को, समय समय पर कृषि सलाह और मौसम जानकारी भी पहुँचते रहता है। और अगर हम सब बातों का जो हम कहते हैं जो सार है महिला सशक्तिकरण, वो कार्यक्रम में भी विश्वविद्यालय जैसे कृषि सखी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इनसे महिलाएं आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती सीखकर दूसरों को भी प्रशिक्षित करती है। तो हम सिर्फ एक महिलाओं के ऊपर नहीं बल्कि हम पूरे समाज के लिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो प्रयासरत है कि हमारी जो समाज की महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो, हम उनको कैसे सशक्त बना सकें। और इसके अलावा कुछ कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होती है जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है या लखपति दीदी है, ये सब अभियान भी महिलाओं को सशक्तिकरण है और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं उनको भी इनसे लाभ होता है।
14: जी मैम, आपने बहुत सारे पहलों के बारे में बताया, बहुत सारे योजनाओं के बारे में आपने बताया और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि न केवल हमारा राज्य बल्कि हमारा अपना विश्वविद्यालय भी इतने अच्छे प्रयास कर रहा है। तो मैम, क्या इन पहलों का या इन प्रयासों का कोई प्रभाव दिख रहा है?
12: बिल्कुल उमा, इन पहलों से महिलाओं की आय भी बढ़ी है और वो आत्मनिर्भर भी बनी है और अब वे केवल श्रमिक नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में भी उभर रही हैं। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा भी अवार्ड मिला है, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया। और अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो इसके माध्यम से उनकी बाजार तक जो पहुँच है वो बढ़ी है। हम सही बात अगर सही मायने में की जाए तो, और वे मूल्य संवर्धन या प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में भी आगे आ रही हैं, उद्यमता जैसे कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो 2.7 लाख महिला किसान जो हैं वो कृषि उत्पादक संघ से जुड़ी हुई हैं बिहार में और इनसे इनका सामूहिक विपणन से आय में भी वृद्धि हो रहा है।
14: तो मैम, भूमिका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतियां भी होती है, तो क्या चुनौतियां भी सामने आती हैं?
12: जी हाँ, हर चीज़ में जो हम कहते हैं कि हमारे साथ जितनी उसके फ़ायदे होते हैं उसके चुनौतियां भी होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जी हाँ, कई गंभीर चुनौतियां भी हैं इस राह में। तो जैसे भूमि स्वामित्व की अगर बात करें तो भूमि स्वामित्व में महिलाओं की कम भागीदारी होती है और तकनीक और संसाधनों भी महिलाओं तक जो है वो सीमित होती है, तो मजदूरी में भी असमानता देखी जाती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें तो मेन जो होता है महिलाओं के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी होती है, और हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, जो उनका रोल होता है, वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज में। तो इसको हम जितना कम कर सके, और हम जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो इन चीज़ों में अपना भागीदारी आगे आकर निभाएं, तो इससे इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
14: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां तो हैं, और ये वाकई और हर घर में ऐसी चुनौती देखी जाती है। ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आकर इसका सामना करें और वो अपने हक के लिए बात करें। तो मैम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
12: जो हमारी महिला किसान हैं, महिला कृषक बहनें हैं, और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो हमारी महिलाओं हैं, जो बहनें हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृषि विकास की धुरी हैं
14: जी।
12: और यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग या बाजार से जुड़ाव दिया जाए, तो ये ना केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकती हैं। अगर हम बिहार जैसे राज्यों में यह मॉडल पहले से सफल है, ये हम जान रहे हैं, जैसे मैंने जीविका की बात कही, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है, और वो हमारी जो सरकार है, हमारी जो विश्वविद्यालय है, ये पहल कर ही रही हैं और कार्य ये जारी है, ये जो प्रयास है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये जो प्रयास हैं इससे और मजबूत करने की आवश्यकता है। और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं से जुड़कर प्रशिक्षण लें और नई तकनीकों को भी अपनाएं। इससे ना केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।
14: जी मैम, धन्यवाद। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और साथ ही जिन चुनौतियों के बारे में आपने बात की, वो चुनौतियाँ महिला और समाज खुद ही उनका निदान निकाल सकते हैं। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
12: धन्यवाद उमा।
14: और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
15: उन्नत कृषि
16: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
17: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
16: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
18: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
19: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर,
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहें और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोणकन कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7 अर्का सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखें, सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्यपुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज के उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
4: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली।
6: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
7: अरे हाँ, गाड़ी रुको।
6: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
7: हाँ, अब बन गई रेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली।
6: अरे अरे दादाजी आ गए।
7: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
8: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
7: हाँ, दादाजी ये ठीक रहेगा।
8: तो चलो।
5: रेल चली भाई रेल चली,
8: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली।
5: रेल चली भाई रेल चली,
8: चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी।
6: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
8: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
6: अच्छा
8: अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
7: दादाजी मैंने देखी है।
8: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
7: जब माँ के साथ नाना जी को
6: लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
8: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
6: अरे वाह,
8: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
6: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
8: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
9: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
8: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
9: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ जाओ।
8: बैठो, बैठो, जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
9: उतरो उतरो।
6: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
8: हाँ हाँ उतरो बेटी।
10: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
6: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
8: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
6: अच्छा, तो ये बात है।
8: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों अब जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
11: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
6: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई। अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
8: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
6: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
8: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
6: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
8: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
6: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।

डिब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं. उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं. तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ. सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं.
1: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है. जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं. तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं. सफ़ेद मक्खी भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सफ़ेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं. और जैसीड जो लीफ हॉपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है, तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुँचाता है. और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं.
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
1: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी, ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है. ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहाँ से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है. और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है, और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है. और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन घटता है.
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
1: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं, और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं.
0: और इससे बचने का कोई तरीका, जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सकें और अपने फसलों को बचा सकें?
1: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं. जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए, वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए, ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफ़ेद मक्खी है या जैसीड है. अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है.
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है.
1: बिल्कुल.
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
1: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए. और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं. तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है. लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत ज़रूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे. तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें. खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
2: अच्छा।
1: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
0: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
1: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
0: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि
4: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ। सुनो सुनो एक जरूरी बात, काया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 से 12 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, इस समय वर्षा कम हुई है और ऐसी स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए अगर आपके खेत में धान लगे हैं तो समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जिनके खेत में खरीफ मक्का है उन्हें बता दें, तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर खरीफ मक्का में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहे और सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश, 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई दे तो साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें और ध्यान रखें कि जल जमाव ना हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई कर ले। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोंकण कृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मिर्च के मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर होना चाहिए 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अगस्त के मध्य से बीज की बुआई शुरू कर दें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। पपीते के बीजों को उपचारित करने के लिए बाबिस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। बीजों को उपचारित करने के बाद 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बीजों को बो दें। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार करें। पपीते के लिए अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिसियस, CO7, अरका सूर्या एवं रेड लेडी। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें साफ एवं सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें और ध्यान दें कि गला घोटू एवं लंगड़ी रोगों
रोगों से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे और लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़े को साफ रखे, सूखा रखे और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के बारे में, किस प्रकार के उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल से आप मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि जल विलय उर्वरक क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग करना चाहिए और उनके उपयोग से क्या फायदा होता है। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो उर्वरकों का महत्व बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उर्वरक। लेकिन बाजार में बहुत सारे उर्वरक मौजूद हैं और उनमें से एक है जल विलय उर्वरक। ये क्या है, क्यों जरूरी है, आज इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से। सर, आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जल विलय उर्वरक क्या है।
1: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जल विलय उर्वरक, या फिर जिनको हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर उस तरह के उर्वरक होते हैं जो पानी में पूर्णतः घुलनशील होते हैं और जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व त्वरित एवं संतुलित रूप में उपलब्ध कराते हैं। और जो आधुनिक कृषि है, विशेषकर संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई या फिर फर्टिगेशन जैसी प्रणालियों में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
0: सर, जैसे कि आपने बताया कि इसका उपयोग काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसी कुछ विशेषताएं जरूर होंगी, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
1: जल विलय उर्वरकों की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले तो आता है कि ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। इनमें ऐसे कोई पदार्थ नहीं होते हैं जो अघुलनशील होकर रह जाएं। शीघ्र अवशोषण या फिर तुरंत मिट्टी में जाने के बाद या फिर पौधों पर छिड़काव करने के बाद वो तुरंत उनमें घुल जाते हैं।
0: अच्छा।
1: सटीक मात्रा में इनका उपयोग करना ज़्यादा आसान होता है पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले। और ये अपने तरीके से मैक्रो, माइक्रो या फिर जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है। फर्टिगेशन या फिर फोलियर स्प्रे, जिसको हम पौधों में छिड़काव कहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से उपयुक्त हैं।
0: सर, इनका महत्व क्या है कृषि में?
1: इनके कई सारे महत्व हैं, मैं कुछ ज़रूरी महत्व आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ हमारे किसान भाई बहनों के लिए। जो सबसे पहला इसका महत्व है वो है इसका त्वरित पोषण उपलब्धता। जल विलय उर्वरक पौधों की जड़ों या पत्तियों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाते हैं, जिससे फसल की प्रारंभिक वृद्धि, पुष्पन एवं फलन में तेजी आती है। उसके बाद इनकी उपयोगिता फर्टिगेशन जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उर्वरकों की बचत भी होती है, श्रम की लागत में भी कमी आती है और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद पोषक तत्वों की जो उपयोग दक्षता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी भी कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है, लीचिंग को कम करता है, वाष्पीकरण जो पोषक तत्व होते हैं जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं उसको भी रोकता है और सटीक समय पर पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। ये ज़्यादातर उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पर ज़्यादातर कारगर साबित होता है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, फलों की आकार और रंग को भी बढ़ाता है और अधिक उत्पादकता के साथ साथ बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी लाने की सक्षमता रखता है।
0: यानी कि मतलब ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसकी वजह से ये पौधों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है।
1: जी
0: सर, आप ये बताइए कि ये पारंपरिक उर्वरक से कैसे अलग है?
1: देखिए, हम जो पारंपरिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर बाजार में उपलब्ध हैं, वो है यूरिया है, DAP है, पोटाश है, जिसको हमारे किसान भाई बहन यूज़ करते हैं। पारंपरिक उर्वरक जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग फर्टिगेशन, संरक्षित खेती या फिर ड्रिप इरीगेशन जैसी चीज़ों पर पौधों में छिड़काव करने के लिए उनका उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं उनमें कुछ और कण भी होते हैं जिनका इसकी वजह से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। तो जल विलय उर्वरक उस मुकाबले में उनसे बेहतर हैं, क्योंकि पूर्ण तरह से घुलनशील होते हैं और पौधों को अच्छी तरीके से हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, फर्टिगेशन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की जो दक्षता है, उपयोग दक्षता है, वो पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पारंपरिक उर्वरकों में हम 20 से 25 या फिर 30% तक उपयोग दक्षता देखने को मिलता है हमें, लेकिन जब हम जल विलय उर्वरकों की बात करें वहां पे हम 80-90% तक उपयोग दक्षता बढ़ा सकते हैं पोषक तत्वों की, और लागत में भी उसके मुकाबले पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले इसमें लागत भी कम है, भले ही इसकी जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है उससे थोड़ा अधिक है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं, अपने कृषि प्रणाली में इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: सर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से उर्वरक, जल विलय उर्वरक बाजार में मौजूद है, इसके कुछ उदाहरण दे दीजिए।
1: कुछ प्राथमिक पोषक तत्वों के भी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी हैं, जैसे कि यूरिया फॉस्फेट एक उर्वरक है, जिससे हम 17% नाइट्रोजन 44% तक फॉस्फरस का पौधों तक पहुंचा सकते हैं फॉस्फरस। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं जिसमें 16% तक नाइट्रोजन होते हैं और 19% तक कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं, ज़्यादातर फल की फसलों में हमारे लिए बहुत उपयोगिता दिखाता है, उसमें 13% नाइट्रोजन और 46% पोटाश है। उसी प्रकार मोनोअमोनियम फॉस्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे और उर्वरक हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं।
0: सर जब भी हम किसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ सावधानियां अपनाते हैं, जब हम जल विलय उर्वरक की बात कर रहे हैं तो इनमें भी कुछ विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती होगी।
1: जी, कुछ प्रमुख ऐसी सावधानियां हैं, जैसे कि हमें कभी भी किसी भी उर्वरक को प्रयोग करने से पहले, वो चाहे पारंपरिक उर्वरक हो या जल विलय उर्वरक हो, सबसे पहले हम कहते हैं अपने किसान भाइयों बहनों से कि मृदा का परीक्षण अवश्य करें, मृदा परीक्षण के आधार पर ही इनका उपयोग करें, अनुशंसित मात्रा में ही इसका उपयोग करें, और अत्यधिक सांद्रता से पत्तियां जलने की संभावना होती है, इसलिए उसका सांद्रता या फिर जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं उसको कम या फिर अनुशंसित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें। स्वच्छ जल का प्रयोग करें सिंचाई के लिए, जिसमें लवण की मात्रा कम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छी तरीके से हम सिंचाई का जल इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलग अलग उर्वरकों को मिला के अगर हम कुछ तैयार कर रहे हैं तो उनका आपस में संगतता या फिर संगतता, जिसको हम कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, कि आपस में वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना बना ले, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम फर्टिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसी चीज़ों के लिए उसका उपयोग करें।
0: मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो कि पारंपरिक उर्वरक के समय भी हम ध्यान रखते हैं, वो ज़रूरी है। सर और कुछ,
1: जैसे कि हम कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य है अधिक उत्पादन पाना, बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उच्च दक्षता का अगर हमारा लक्ष्य है तो जल विलय उर्वरक अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं, जबकि पारंपरिक उर्वरक व्यापक क्षेत्रीय खेती में, जहां पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं, वहां पर उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है।
0: सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पारंपरिक उर्वरक से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पौधों में इसका जो क्योंकि पौधे इसे बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं।
1: जी, और इसमें दक्षता भी ज़्यादा होती है पारंपरिक उर्वरक के मुकाबले।
0: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी,
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
11: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
14: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
14: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
14: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
14: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
14: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि।
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
16: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
15: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
16: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि चूंकि वर्षा भी होते रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है तो बड़ी तेजी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
15: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
16: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र का है तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं जिस खेत में, मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम 1 साल के लिए तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक जो देते हैं उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं और आपके मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है, और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है, तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब वो तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा फिर बढ़ेगा अपना जीवन चक्र पूरा करेगा तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्य दो चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर दो बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से एक महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है, ये वेजिटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया तो पौधा चूँकि बहुत कमज़ोर रहता है तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। तो उसके बाद जो है कि हम लोग जो जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बंटवार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में तो खरपतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है, वहाँ पे जो कीट है वो छुप जाते हैं और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पर आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छी दुकान से जहाँ पे कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
15: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
16: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है, तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है, तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है, और इसमें जो है और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है बैगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं, तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एलो स्टिकी ट्रैप, एलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गूंद लगाया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है उसकी संख्या घट जाती है, और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन

शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मलमूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड शूट बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैंगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते हैं दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है जो नीम का जो तेल है उसका जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड शूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलवुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुदकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपकी जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियां होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है। और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं ये येलो वेन मोज़ेक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जा कर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है और उसके बाद जो कीटनाशी है जैसे थायोमेथोक्सिम 25 WG इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सिम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोक्सिम 25 WG एक टाड़ा के नाम से भी आता है, एक टाड़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी 0.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो येलो वेन मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब